0: वंदे मातरम।
1: मातरम सुजलाम सुफलाम मलयज शीतलाम शस्य शाम।

एफएम बैंड 101.3 मेगाहर्ट्ज पर ये आकाशवाणी बांसवाड़ा का माही चैनल है। आज बुधवार है, शक संवत 1948 के श्रावण माह की सातवीं तिथि, तदनुसार 29 जुलाई 2026। इस समय प्रातः के 5:57 होने को हैं। अब हमारी आज की प्रातःकालीन सभा आरंभ होती है। सभी श्रोताओं को सुप्रभात।

0: एफएम बैंड 1.3 मेगाहर्ट्ज पर ये आकाशवाणी पासवाड़ा का माही चैनल है। प्रातः के 6 बजने को है। अब आप सुनेंगे हिंदी में समाचार आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से, और 6:05 पर चिंतन व 6:10 पर वंदना आप सुनेंगे आकाशवाणी के जयपुर केंद्र से। कृपया प्रतीक्षा करें।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं फरहत नाज। लोकसभा में आज लोक परीक्षा अनुचित साधन रोकथाम संशोधन विधेयक 2024 पर फिर से चर्चा शुरू होगी।

0: श्रमिक लोक शिकायत और पेंशन राज्य मंत्री डॉ जितेंद्र सिंह ने कल सदन में विधेयक को विचार और पारित कराने के लिए पेश किया था। ये विधेयक लोक परीक्षाओं में अनुचित साधन रोकथाम अधिनियम 2024 में संशोधन के लिए लाया गया है। विधेयक में कई महत्वपूर्ण प्रावधान हैं, जिनमें 10 वर्ष तक की कैद, 10 करोड़ रुपए तक का जुर्माना और अपराधियों की संपत्ति की जब्त करने जैसे कठोर दंड भी शामिल है। डॉ जितेंद्र सिंह ने विधेयक पेश करते हुए कहा कि ये नया कानून देश के छात्रों और युवाओं के कल्याण की रक्षा के लिए सरकार की गहरी प्रतिबद्धता का परिचायक है।
1: 2 महीने के भीतर सारी जांच मुकम्मल की जाएगी और उसके बाद जो भी ट्रायल कोर्ट होगा, फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट, उसमें ये 3 महीने, यानी जिस दिन वारदात रिपोर्ट हुई है उस दिन से लेकर के आखिरी निर्णय आने तक 5 महीने से ज्यादा अवधि काल नहीं रहा जाएगा।
0: श्री सिंह ने कहा कि ये विधेयक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संकल्प को भी दोहराता है कि देश के युवाओं के भविष्य से कोई समझौता नहीं होने दिया जाएगा। वहीं कांग्रेस के गौरव गोगोई ने कहा कि सरकार शिक्षा क्षेत्र के प्रति गंभीर नहीं है।
2: ये सरकार शिक्षा विभाग को लेकर गंभीर नहीं है, सुधार नहीं लाना चाहिए। ये सिर्फ एक दिखावा का बिल है, क्योंकि ये बिल एक संशोधन बिल है।
0: वहीं भाजपा सांसद बासुरी स्वराज ने इस विधेयक को क्रांतिकारी कदम बताया। समाजवादी पार्टी के सांसद अखिलेश यादव ने विभिन्न परीक्षाओं के प्रश्न पत्र लीक होने पर चिंता व्यक्त की। एआईटीसी के अभिषेक बनर्जी, तेलुगु देशम पार्टी के लाऊ श्रीकृष्ण देवरियालू और शिवसेना के डॉ श्रीकांत शिंदे ने विधेयक का समर्थन किया। तेलुगु देशम के सांसद ने प्रश्न पत्र तैयार करने वाली समितियों के विकेंद्रीकरण की भी मांग की। विधेयक पर अभी चर्चा पूरी नहीं हुई है। पीठासीन अधिकारी राय ने सदन को आज सुबह 11 बजे फिर से शुरू करने तक के लिए स्थगित कर दिया। सर्वोच्च न्यायालय ने नीट परीक्षा पेपर लीक के विरोध में हुए प्रदर्शनों में शामिल नाबालिग छात्रों को रिहा करने का निर्देश दिया है। न्यायालय ने अधिकारियों को प्रदर्शनों से जुड़े इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल साक्ष्यों को सुरक्षित रखने का निर्देश दिया। इस बीच पश्चिम बंगाल में सर्वोच्च न्यायालय के आदेश का पालन करते हुए और नीट परीक्षा के पेपर लीक से संबंधित विरोध प्रदर्शनों के सभी पहलुओं के मूल्यांकन के बाद राज्य सरकार ने विरोध प्रदर्शनों में भाग लेने वाले छात्रों के खिलाफ कोई दंडात्मक कार्रवाई न करने का निर्णय लिया है। झारखंड में सुरक्षा बलों ने नक्सल विरोधी अभियान में बड़ी सफलता हासिल की है। प्रमुख माओवादी नेता और पोलित ब्यूरो सदस्य मिस्टर बेसरा को धनबाद गिरिडीह सीमा से गिरफ्तार किया गया है। उस पर 1 करोड़ रुपए का इनाम था। क्षेत्रीय समिति सदस्य मेहनत उर्फ मोछू, माओवादी कार्यकर्ता गौरव और 2 ग्रामीणों को भी संयुक्त अभियान के दौरान गिरफ्तार किया गया। गृह मंत्रालय ने सशस्त्र सीमा बल में कांस्टेबल सामान्य ड्यूटी भर्ती के नए नियम जारी किए हैं। इन नियमों के तहत हर साल होने वाली भर्ती में कांस्टेबल सामान्य ड्यूटी के 50% पद पूर्व अग्निवीरों के लिए आरक्षित रहेंगे। ये नए नियम 27 जुलाई से लागू हो गए हैं। गणपति भक्तों की सुविधा के लिए मध्य रेलवे 11 से 27 सितंबर तक 246 गणपति विशेष रेलगाड़ियां चलाएगा। इनमें मुंबई और पुणे को सावंतवाड़ी रोड, रत्नागिरी और मडगांव से जोड़ने वाली 184 आरक्षित रेलगाड़ियां और दीवा और खेड़ के बीच चलने वाली 62 अनारक्षित रेलगाड़ियां शामिल हैं। टिकट की बुकिंग 1 अगस्त से सभी टिकट काउंटर और IRCTC वेबसाइट पर शुरू हो जाएगी। मानवाधिकार संगठन एमनेस्टी इंटरनेशनल ने पाकिस्तान के अवैध कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में प्रदर्शनकारियों पर कथित रूप से बल प्रयोग की घटनाओं की स्वतंत्र और पारदर्शी जांच की मांग की है। संगठन ने पाकिस्तानी अधिकारियों से क्षेत्र में संचार सेवाएं बहाल करने और मीडिया तथा स्वतंत्र पर्यवेक्षकों को वहां जाने की अनुमति देने की अपील की है। मौसम विभाग ने आज जम्मू कश्मीर, लद्दाख, उत्तर प्रदेश, झारखंड, मध्य महाराष्ट्र और मराठवाड़ा में तेज बारिश का अनुमान जताया है। कर्नाटक, केरला, माहे, कोंकण, गोवा, तेलंगाना, तटीय आंध्र प्रदेश और राजस्थान में भी ऐसी ही स्थिति रहने की संभावना है। राष्ट्रमंडल खेलों में भारतीय खिलाड़ियों का शानदार प्रदर्शन जारी है। भारोत्तोलक हरजिंदर कौर और धावक गुलवीर सिंह ने रजत पदक अपने नाम किया। गुलवीर सिंह ने पुरुषों की 10,000 मीटर दौड़ में ऐतिहासिक रजत पदक जीता। गुलवीर राष्ट्रमंडल खेलों की स्पर्धा में पदक जीतने वाले पहले भारतीय हैं। भारत पदक तालिका में 2 स्वर्ण, 7 रजत और 3 कांस्य सहित कुल 12 पदकों के साथ 9वें स्थान पर है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
3: हम आकाशवाणी जयपुर अजमेर के आमिर चैनल से बोल रहे हैं। आइए सुनते हैं आज का चिंतन। चिंतन का विषय है किताबें, तो सुनते हैं चिंतन।

जिस प्रकार किसी मकान में हवा और रोशनी आने के लिए खिड़कियां और रोशनदान होना आवश्यक है, ठीक उसी प्रकार हमारे जीवन में ज्ञान का प्रकाश फैलाने के लिए किताबें होना जरूरी है। किताबें कई प्रकार से हमारे जीवन को प्रभावित करती है, जैसे धर्म ग्रंथ हमें संस्कारवान बनाते हैं, वहीं इतिहास से संबंधित किताबें हमें हमारे गौरवशाली अतीत से रूबरू करवाती हैं। स्कूल और कॉलेज की किताबें हमें सामान्य ज्ञान के साथ ही हमारे जीवन को व्यवस्थित करती हैं और हमें विकास के पथ पर आगे ले जाती हैं। वास्तव में किताबें पढ़कर हमारा विवेक जागृत होता है और हमें अच्छे बुरे का ज्ञान होता है। जब तक हमें अक्षर ज्ञान नहीं होता, तब तक हर पठनीय सामग्री हमारे लिए व्यर्थ है। इसलिए पढ़ना आने के बाद हमें बाल्यकाल से ही किताबों की दुनिया में रहने का अभ्यास कर लेना चाहिए। किताबों में ज्ञान का अथाह भंडार छिपा हुआ है और जितना हम पढ़ते जाते हैं उतनी ही ज्ञान चक्षु हमारे खुलते जाते हैं। संसार के महान आश्चर्यों के बारे में हम पढ़कर ही जान पाते हैं। कई बार हम नहीं पढ़ने के कई बहाने बनाते हैं, लेकिन हमें ये याद रखना चाहिए कि पढ़ने की कोई उम्र नहीं होती। मनुष्य ताउम्र विद्यार्थी बना रह सकता है। एक समय आपको ये लगता है कि आपने बहुत पढ़ाई कर ली है, लेकिन ये एक भ्रम है, क्योंकि पढ़ाई का कोई अंत नहीं और हमें लगातार पढ़ने के लिए दुनिया भर की किताबें आकर्षित कर रही हैं। जितना अधिक हम पढ़ेंगे उतना ही अच्छा हम लिख भी पाएंगे। बच्चों से लेकर बड़ों तक हर उम्र के लिए किताबें हमारी सच्ची दोस्त साबित होती हैं। इसलिए नौकरी के लिए नहीं, जीवन को संस्कारित करने के लिए भी हमें किताबें पढ़ते रहना चाहिए।

अभी आप सुन रहे थे चिंतन, ये आकाशवाणी है। आप सुन रहे हैं जयपुर अजमेर का अमीर चैनल। आइए अब सुनते हैं भक्ति संगीत का दैनिक कार्यक्रम वंदना।

जगदीश नारायण शर्मा की आवाज में ये भक्ति गीत अभी आपने सुना। अगला गीत सुनेंगे गार्गी बनर्जी की आवाज में।

अभी श्रोतागण सुन रहे FM बैंड 103.3 मेगाहर्ट्ज़ पर ये आकाशवाणी बांसवाड़ा का माही चैनल है। प्रातः के 6:30 होने को है। श्रोताओं, अब आप सुनेंगे रामचरित मानस गान का आज का प्रसंग।

उनके मिलने में भी संदेह है। निष्कलुष हृदय राजा ने अपनी तरह से रानी का मर्म समझा, हंसकर बोले, वे दोनों वर तो थाते की तरह तुमने संजो रखे हैं, कभी मांगा ही नहीं। रघुकुल में तो सदा से यही रीत चली आई है कि प्राण भले ही चले जाए पर वचन नहीं जाता। कैकई ने वर मांगे, मेरे मन को भाने वाला एक वर तो दीजिए भरत को राज तिलक का, दूसरा वर भी हे नाथ मैं हाथ जोड़कर मांगती हूं। तपस्वियों के वेश में विशेष उदासीन भाव से राम 14 वर्षों तक वन में निवास करें।

श्री राम के युवराज पद पाने की पूर्व संध्या। अयोध्या में बधावे बज रहे हैं और अंतःपुर में रानी कैकेयी को भवन में बैठी राजा दशरथ की गुहार सुन रही हैं। हे सुनैनी, मैं कल प्रातःकाल ही राम को युवराज पद दे रहा हूं। तुम मंगल साज सजो। कपटयुक्त प्रेम दिखाते हुए मुंह मोड़कर हंसती रानी कैकेयी बोली, कभी आपने दो वरदान देने को कहा था, किंतु

ये आकाशवाणी बांसवाड़ा का माही चैनल है। श्रोताओं, अभी आपने सुना रामचरित मानस गान का आज का प्रसंग। अब आप सुनेंगे कार्यक्रम विवरण।

अब से कुछ देर में यानी 6:45 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम खेती निबात। 6:50 पर समय रहेगा लोक संगीत का। 7:20 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम वातायन। 7:30 10:00 व 12:00 समय रहेगा विविध भारती के कार्यक्रम का।

आठ बजे आप सुनेंगे समाचार प्रभात आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से। 8:15 पर आप सुनेंगे कुछ दिल से कार्यक्रम। 8:45 पर आप सुनेंगे राजस्थानी लोक संगीत। 9 बजे हिंदी में प्रादेशिक समाचार आप सुनेंगे आकाशवाणी के जयपुर केंद्र से। 9:10 व 11 बजे समय रहेगा सुगम संगीत का। 9:30 पर आप सुनेंगे NCERT द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम उमंग। 11:30 पर आप सुनेंगे फिल्म संगीत।

सायकालीन सभा में 5:05 पर आप सुनेंगे युववाणी कार्यक्रम। 5:30 व 9:00 समय रहेगा विविध भारती के कार्यक्रम का। 6:30 पर आप सुनेंगे हिंदी में प्रादेशिक समाचार व 6:45 पर राजस्थानी में प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी के जयपुर केंद्र से। 7:00 समय रहेगा बयानी बात कार्यक्रम का। 7:30 पर आप सुनेंगे जयपुर से प्रसारित कार्यक्रम। 8:45 पर समाचार संध्या व 11:00 हिंदी में समाचार आप सुनेंगे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से। 10:00 समय रहेगा संसद में प्रश्नकाल की कार्रवाई के संपादित अंश का आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से।

0: हम आकाशवाणी बांसवाड़ा के माही चैनल से बोल रहे हैं। श्रोताओं, अभी आपने सुना कार्यक्रम विवरण, अब आप सुनेंगे खेतनी बात कार्यक्रम।
1: कार्यक्रम हमारा हमारा सब भाई ने बहना ने सोरा थी की नेता बहन राम राम राम राम। आज सोरा ऊपर आप जैविक खेती चर्चा करो कि पहले तो ये हमसे की जैविक खेती हो है। जैविक खेती ये पद्धति है जिनमें रासायनिक खादों कीटनाशकों जिन परिवर्तन करेला जो बीज मन ले संकर बीज ही एण में उपयोग अपने नहीं करो। बीजी बीजी रासायनिक दवाई है इन भी प्रयोग अपने नहीं करो, बल्कि प्राकृतिक रूप थी

प्रत्येक संसाधन थी जिनकी गोबर की खाद है, कंपोस्ट है, हरी खाद है, निजे जैव उर्वरक है, इन उपयोग कर खेती करो। तो आवे प्रकार से खेती करो इन्हें अपने जैविक खेती करो। जैविक खेती है कुछ मुख्य सिद्धांतों पर काम करे, जिनके आमे अपने बात करी है कि प्राकृतिक संसाधन नो उपयोग करो। इन थी ये था कि मिट्टी ने जो उर्वरकता है ये बनी ले रहे। तो आम एक सिद्धांत भी है कि मिट्टी ने जो उर्वरक क्षमता है इन्हें बनावे रखो। बीजू पर्यावरण संतुलन ने बनावे रखो, रसायन थी की बचाव करवो, ने हाथे हाथी जैव विविधता ने बढ़ावा लो। तो आज सिद्धांत है इन्हें से पालन करे जैविक खेती है। जैविक खेती में घना तरीका है, जैम की इनमें अपने खेती में एक तो कंपोस्ट खाद नो उपयोग करो, जिनमें गोबर है, पत्ती है, अपने जो रसोई थी जो वेस्ट रहे इन थी तैयार करेलो खाद है एना खाद नो उपयोग करो। हाथे हाथी से हरी खाद है जिनकी ढीचा सनई इन उपयोग करवो, ये भी फसलों में उपयोग करवो जिनमें हरी खाद प्रचुर मात्रा में हो। इन हाथी आदि जैव उर्वरक है, जैव उर्वरक में राइजोबियम एजेटोबैक्टर आवे इन प्रयोग करवो। हाथे हाथी अपने फसल चक्र भी अपनावो पड़े कि फसल चक्र अपना बाकी की आप जो मिट्टी है इन्हें उर्वरकता है भी बनी ले जाए ने अपनी जो फसल है ये भी अपने अच्छी मात्रा मिले ने पर्यावरण नो संतुलन ने भी बनी रहे। इन्हें हाथे हाथे मल्चिंग नो ध्यान रखो कि मिट्टी ने जो नमी है इन्हें बना भी रखो। तो आने चीजों नो पालन करे आधा तरीका थी अपने जैविक खेती करी जो है। और जैविक खेती ना फायदा गणा है ने इन्हें अपने स्वास्थ्य बल्ले खूब लाभ है। तो इन्हें लाभ के बारे में अपने चर्चा करा कि एक तो था कि अंत की अपने रसायन मुक्त भोजन वाले जैविक खेती थी उत्पन्न जो फसल है इनमें कीटनाशकों रासायनिक अवशेषों एनो प्रयोग अपने नहीं करो एटले एना फसलों में रासायनिक अवशेष थी मुक्त रहे। एम थी अपने घनी प्रकार की बीमारियां है जेम की कैंसर है, एलर्जी है, ये नहीं थाय ने एनो खतरो कम थी जा। बीजो जो जैविक खेती थी अपने फसल करो तेमें जो पोषक तत्व है ये भी खूब मात्रा में रहे। अमे ऑर्गेनिक फल है सब्जी करो इनमें अपने विटामिन है, मिनरल्स है, एंटी ऑक्सीडेंट्स रहे ये प्रचुर मात्रा में रहे। तो आ फल है, आवी सब्जी है ये अपने स्वास्थ्य बल्ले खूब लाभदायक है। बीजू आनी तरीका थी कि अपने अगर फल सब्जी करो तो एना बजार में भी खूब मांग रहे आमने अपने मुनाफो भी खूब अच्छो था। बीजू जैविक फसलों ना उपयोग करवा थी कि अपने पाचन में सुधार था कि प्राकृतिक रूप थी कि जे खाद्य पदार्थ अपने उगाड़ो तो खाद्य पदार्थ ही अपने शरीर में आसान थी कि पची जाए ने अपने स्वास्थ्य ने अपने पाचन ही अच्छू रहे। रसायन ने अनुपस्थिति ने कारण अपने हार्मोनल जो समस्या है ये भी कम थी जाए। जैविक खेती द्वारा अपने कृषि करेगा तो रसायन इनमें कम रहेगा, हार्मोन अपने बराबर संतुलित मात्रा में रहेगा। आनो घणो फायदो पर्यावरण ऊपर भी है कि आनो पर्यावरण लाभ में था, हाथे हाथे मिट्टी की जो गुणवत्ता है इनमें भी सुधार था, जल प्रदूषण कम था, वायु प्रदूषण कम था, बीजी जैव विविधता है ये भी सुरक्षित रहे। जैविक खेती करवा कुछ अपने चुनौतियां है जिनका भी सामना करो पड़े, जिनकी शुरुआत में जैविक खेती थी उत्पादन कम था, लागत वधार लागे, मेहनत वधार लागे, शुरुआत में थई सके कि मूल्य भी कम मिले। तो आनी चुनौती नो सामना अपने करो तो फिर भी जैविक खेती करो तो धीरे धीरे ना लाभ ही वधारे है, नुकसान थी ज्यादा फायदा है। आना सब तक बड़ो फायदो ये है कि आप शरीर है ये अच्छू रहे, अपनी सेहत अच्छी रहे, पर्यावरण बल्ले भी अच्छू है। इन हाथे हाथी कृषि नो एक महत्वपूर्ण विकल्प है जिनते की अपने पीढ़ी अवधि से खाद्य उत्पादन है सुरक्षित रखी सको। इन अलावा अपने स्वास्थ्य ने बेहतर थी बेहतर बनाए। सोरा ऊपर अपने आना बारा में अजी बात करी थी पर सोरा नो समय आज पूरा थी गयो है। तो आस्ते गीता बेन ने आज्ञा आलो, राम राम राम राम।

श्रोताओं, अभी आपने सुना खेतरी बात कार्यक्रम। ये आकाशवाणी बांसवाड़ा का माही चैनल है। अब पेश है लोक संगीत देवकीनंदन जोशी व साथियों के स्वर में।

0: ये आकाशवाणी बांसवाड़ा का माही चैनल है। श्रोताओं, अभी आपने सुना देवकीनंदन जोशी व साथियों के स्वर में लोक संगीत। अब आप सुनेंगे कार्यक्रम वातायन, और वातायन के अंतर्गत आप सुनेंगे वार्ता, और वार्ताकार हैं रितेश जैन।
1: संस्कार निर्माण में माता पिता की भूमिका। कोमल वस्तु पर प्रभाव अत्यंत शीघ्र किंतु स्थायी पड़ता है। छोटे कोमल पौधे को माली जैसा चाहता है

वैसे झुका देता है। कच्चे मिट्टी के बर्तन को कुम्हार अपनी इच्छानुसार आकृति दे डालता है। ठीक यही दशा बालकों की है। उसकी प्रकृति, उसकी बुद्धि, उसका स्वभाव, मस्तिष्क, हृदय इतने सरल और कोमल होते हैं कि उन पर आप जो संस्कार डालना चाहें डाल दीजिए, आपको किसी प्रकार का श्रम नहीं करना पड़ेगा। बालकों का हृदय उस स्वच्छ एवं उज्जवल वस्त्र के समान है और उनका मानस पटल कोरे कागज सम है जिस पर किसी प्रकार का रंग नहीं चढ़ा है। इस अवस्था में जैसी क्रियाएं बालक देखेंगे, परिवेश की वे समस्त बातें, धारणाएं, विचार और तरीके संस्कार रूप में परिणत होकर मानस पर अंकित हो जाते हैं। वह उन समस्त क्रियाकलापों का बिना तुलनात्मक अध्ययन किए अपनी दिनचर्या का अंग बनाता चला जाता है और स्थायित्व प्रदान करता चला जाता है। प्राणियों में संस्कार दो तरह से आते हैं, एक तो जन्म जन्मांतरों से और दूसरे पीढ़ी दर पीढ़ियों से। दोनों प्रकार के संस्कारों से नई पीढ़ियां प्रभावित होती हैं। संस्कार है क्या? व्यक्तित्व का वास्तविक निर्माण संस्कारों के द्वारा ही होता है। मानव के लिए जिन सत्संकल्पों, सत प्रेरणाओं और सद्भावनाओं की आवश्यकता हुआ करती है, उन्हीं को मानव मन में संस्कारित करने का नाम संस्कार है। संस्कार शब्द स्वतः ही किसी कृत्य के सुयोग्य ढंग से संपादित होने करने का द्योतक है। संस्कारशीलता से अभिप्राय ऐसे वातावरण के निर्माण से है जिसमें बालक जीवन के मूल्यों, आदर्शों और मान्यताओं से भलीभांति अवगत हो सके और उन्हें पारिवारिक और सामाजिक जीवन में चरितार्थ कर सके। आज के भौतिकवादी युग में पाश्चात्य सभ्यता की अंधानुकरण की होड़ में सम्मिलित होती युवा पीढ़ी पर दृष्टिपात करें तो हम कुछ सोचने को बाध्य हो जाते हैं कि आखिर यह सभ्यता इस युवा पीढ़ी को किस मंजिल पर ले जाएगी। पश्चिम का जिसने भी अंधानुकरण किया है उसका अवसान ही हुआ है। प्रकृति में भी स्पष्ट उदाहरण है कि प्राची से उदित भास्कर जगत को प्रकाश ताप प्रदान करता है, पर वह धीरे धीरे पश्चिम का अनुकरण करता है तो अस्त हो जाता है, अंधकारमय हो जाता है। एक महातेजस्वी महाप्रतापी नक्षत्र की ऐसी दुर्दशा होती है तो फिर हमारी क्या बिसात। अस्तु, एक शिशु को गर्भ में और जन्म के पश्चात जैसे संस्कार प्राप्त होते हैं वैसे ही उसका निर्माण होता है। घड़ा तो कच्ची मिट्टी से बनता है, पक्की से नहीं। इसी प्रकार बचपन में ही बच्चों में संस्कार डाले जा सकते हैं, बड़े होने पर नहीं। यदि एक वृक्ष टेढ़ा उगा है तो वह इसलिए कि जब वह छोटा था उसे किसी ने सीधा नहीं किया। अच्छे संस्कार ग्रहण कर जब बालिका विवाह के बाद अपना घर संभालती है तो उसका घर सुख का सागर बनता है, वहां स्वर्ग का निवास होता है। इसलिए इस भौतिकवादी युग में सत संस्कारों की महती आवश्यकता है। बालक के संस्कारों में विभिन्न घटक प्रभावशाली होते हैं, इनके महत्व और दायित्व को स्वीकारा गया है। मां की गोद, पिता का संबल और सानिध्य, पारिवारिक परिवेश बालक को संस्कारित करते हैं। पड़ोस और समाज के पश्चात विद्यालय अति महत्वपूर्ण संस्था है। बालक को अबोध से सुबोध नागरिक बनाने में ये सभी घटक अपनी भूमिका निभाते हैं। इनमें से किसी घटक की कमजोरी या उत्साह बालक के भावी जीवन में परिलक्षित होते हैं। बच्चा सर्वप्रथम अपने परिवार, अपने माता पिता के संरक्षण में रहकर बहुत कुछ सीखता है। उसका अधिकांश समय परिवार के साथ ही व्यतीत होता है। माता को उसका पहला गुरु और पिता को उसका दूसरा गुरु माना गया है। हमारी भारतीय संस्कृति में माता को निर्माता अर्थात संस्कार का निर्माण करने वाली माना गया है। बच्चों को जन्म देने वाली माँ तो होती ही है, वही नवजात की प्रथम शिक्षिका और मित्र भी होती है। बच्चे के लिए पिता से कहीं अधिक महत्वपूर्ण स्थान माँ का है। माँ को प्रथम आचार्य, प्रथम विद्यापीठ और चरित्र की प्रधान शिल्पी

कहा गया है। विनोबा जी बचपन के संस्कारों को वज्र लेप मानते हैं, इन संस्कारों को माता ही बनाती है। हमारे शास्त्रकारों ने माता को एक सांचा माना है जिसमें इच्छानुसार संतान ढाली जा सकती है। इस संबंध में एक बौद्धिक वैज्ञानिक ने कहा भी है, जब तक संतान मां के गर्भ में रहती है तब तक उसके शरीर तथा मन को अपनी इच्छानुसार

0: तथा मन को अपनी इच्छा अनुसार ढाला जा सकता है। मां द्वारा बालक का सिर्फ पालन पोषण ही नहीं होता बल्कि उसके सर्वांगीण विकास में भी महत्वपूर्ण भूमिका है। माता के स्वभाव की बच्चे पर गहरी छाप पड़ती है। मां का स्वभाव न सिर्फ उसके दूध के साथ ही बच्चे में घुलने मिलने लगता है वरन गर्भावस्था में भी जननी के स्वभाव का शिशु पर प्रभाव पड़ता है। मां की मानसिक भावनाएं और विचार गर्भस्थ शिशु पर सुनिश्चित छाप छोड़ते हैं। प्रसवो उपरांत भी शिशु पर मां के स्वभाव का सहज असर पड़ता रहता है। सौम्य, मृदु, मधुर, शिष्ट, शालीन, गंभीर, प्रसन्न, सहनशील, प्राणवान, जागरूक, तेजस्विनी माताएं बच्चे पर अनजाने ही अच्छा प्रभाव डालती रहती हैं, जबकि चिड़चिड़ी, क्रोधी, झगड़ालू, स्वार्थी, छलपूर्ण स्वभाव वाली माताओं के शिशु इन्हीं अवगुणों को अपनाते हैं। शिशु मां के उपदेशों पर नहीं क्रियाकलापों पर ध्यान रखता है। मां शिशु के लिए आकर्षण, जिज्ञासा और अनुकरण का केंद्र है। शिशु मां के आचरण को अत्यधिक बारीकी से देखता, गहराई से समझता और तीव्रता से सीखता है। उसके उठने, बैठने, देखने, चलने फिरने और लेटने सोने का ढंग, हाव भाव, मुख मुद्रा, बोलने वाले शब्द और स्वर का उतार चढ़ाव, खाने पीने, भोजन चबाने आदि ढंग को बच्चे अपनी सूक्ष्म शक्ति के साथ सावधानी से देखते हुए आंकते और याद करते रहते हैं। यदि माँ बच्चे को सच बोलने का उपदेश देती नहीं अघाती पर स्वयं बेहिचक झूठ बोलती है तो बच्चे निश्चित ही झूठ बोलना सीखेंगे। हाँ, साथ ही वह सत्य बोलने का उपदेश देना भी सीख सकता है। यदि माँ अश्लील शब्द बोलती है, गालियां देती है अथवा चीख कर बोलती है तो बच्चों में भी ये आदतें विकसित होंगी। यहाँ माता की मुख्यता से वर्णन करने से पिता की भूमिका गौण नहीं हो गई है अभी तो वह और भी बढ़ गई है कि पिता अपने परिवार के वातावरण को इसके अनुरूप बनाए ताकि दोनों मिलकर बच्चों को संस्कारित कर सकें। माता पिता की बालक को दया, सेवा, निर्भीकता, परोपकार आदि अच्छे संस्कारों की भावनाओं से भर सकते हैं। बच्चा तो कोमल डाली के समान होता है जिसे माता पिता चाहें जैसा मोड़ दे सकते हैं। जो माता पिता संतान के बिगड़ जाने के कारण देखकर रोया करते हैं उन्हें समझ लेना चाहिए कि यह कष्ट उन्हें इसलिए झेलना पड़ता है क्योंकि जो वक्त बच्चों को ढालने का था उसे उन्होंने खो दिया। जब कोई वस्तु ढल रही हो तभी तो उसे पहले से बने सांचे में डालकर ढाला जा सकता है। माता पिता को अपने बच्चों के लिए थोड़ी सी समझदारी से काम लेने की आवश्यकता है। उन्हें थोड़ा समय निकालकर बच्चों में अच्छे संस्कार भरने होंगे। उन संस्कारों को समयानुकूल परिष्कृत करने का अवसर दिया जाकर उन्हें स्वतंत्रता, स्वच्छंदता और उच्चंकलता के मध्य भेद करने का भी मौका दिया जाना अपेक्षित होगा। बालक घर से बाहर निकलकर कई अच्छी बुरी बातें सीख जाता है, इसलिए माता पिता को चाहिए कि गलत बातों पर उन्हें समझाएं, यदि आवश्यकता पड़े तो दंड भी दें। निष्कर्ष रूप में हम कह सकते हैं कि बचपन में सर्वाधिक निकटता माता पिता की होती है, इसलिए सद संस्कार निर्माण में माता पिता की अहम भूमिका होती है।
1: श्रोताओं, अभी आपने सुना कार्यक्रम वातायन और वातायन के अंतर्गत आपने सुनी वार्ता और वार्ताकार थे रितेश जैन। ये आकाशवाणी बांसवाड़ा का माही चैनल है। प्रातः की 7:30 हुए हैं। अब पेश है विविध भारती के कार्यक्रम।

0: गीत रॉय और मोहम्मद रफी की आवाजों में सीआईडी फिल्म का ये गीत था। मुझे सुल्तानपुरी की बोल थी, संगीत ओपी नैयर का था।
1: अरे बम बम बम ऐसा कैसा होगा, तोबा काहे को करता, तोबा काहे को करता, प्यार से करता, ऐसा रहता नंबर कैसा होगा।

0: अरे बाबा बाबा ऐसा कैसा होगा, तोबा काय को करता, तोबा काय को करता, प्यार से करता, ऐसा रे सनम कैसा होगा।
1: अरे नन्ना नन्ना नन्ना।

0: अरे वाह वाह वाह वाह वाह,
1: अरे ना ना ना ना ना,
0: अरे वाह वाह वाह वाह।
2: मुझे सुल्तानपुरी के बोलते ओपी ने यर की तर्ज फिल्म का नाम था आरपार।

टूट के रह गए टंग उतर गए बिछुआ।

0: शैलेंद्र की बोल थे लता मंगेशकर और मन्ना डे की आवाजें सलील चौधरी की तर्ज। फिल्म का नाम था मधुमती। हिंदी सिनेमा की कुछ कल्ट फिल्में उनके नाम पर हैं, स्पर्श, कथा, निशा और चश्मे पर दूर।
1: उन्होंने कहा कि देखो अब सिर्फ हम नौजवान तीनों दिखा रहे हैं, सिर्फ कॉलेज के युवक नहीं, उनके माँ बाप भी आए, उनके चाचा चाची आए, एक दादी माँ डाली, बाप डाला, एक भाई डाला वगैरह वगैरह, एक पान वाला डाला। सईद को पकड़ा लिया और उसने कहा फिर मुझे वी हैव टू गो टू जामा मस्जिद, पुरानी दिल्ली जाना पड़ेगा। मैंने कहा पुरानी दिल्ली क्या करोगे जाके, पान वाले का अगर मुझे करना है रोल तो मुझे देखना नहीं चाहिए पान वाले वगैरह। तो मैंने कहा ये नसीर के बाद ये एक
2: और आ गया।
1: एक और आ गया।
3: जल्दी है बुलबुल, कोई और कर्जदार लग गया तेरे पीछे क्या?
4: अरे ललन मियां आप काट देना रास्ता, अब मेरा काम नहीं होगा।
0: दास्तान सई परांजपे की, उजाले उनकी यादों के, 19 जुलाई से 9 अगस्त शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
5: सुनिए
0: कार्यक्रम जारी रहेगा इस अंतराल के बाद।

0: इंजीनियरिंग और मेडिकल एंट्रेंस परीक्षा की पढ़ाई को कैसे बनाया जाए आसान, प्रभावी और तनाव मुक्त, इसके कुछ फॉर्मूले बताएंगे फिजिक्स के प्रोफेसर नयन वर्मा।
1: अगर आप कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए तैयारी कर रही है, आप अपना स्टडी टाइम डिवाइड कर लीजिए। 6 घंटा आप जो भी कोचिंग में जाते हैं, 7-8 घंटे की नींद, 1 घंटे का आपका स्पोर्ट्स, उसके बाद में आपके पास 6-7 घंटे जो बचते हैं वो टाइम डिवीजन आपके ऊपर डिपेंड करता है, बिकॉज दैट टाइम डिवीजन डिफर्स फ्रॉम स्टूडेंट टू स्टूडेंट। लेकिन आप MCQs रोज प्रैक्टिस करें, बिकॉज आपका जो भी एडमिशन आपके ऑब्जेक्टिव एग्जाम के रैंक के ऊपर डिसाइड होता है।
0: काउंसलर डॉक्टर सुमति ओझा साझा करेंगी तनाव और दबाव से कैसे निपटें,
2: हम किस तरह से पेरेंटिंग करते हैं जैसे हमारे माँ बाप ने हमारे साथ किया।

0: अब जमाना बदल गया है, वी आर इन डिजिटल ईरा और इन्फॉर्मेशन फ्री फ्लोटिंग अवेलेबल है। तो इसलिए इम्पोर्टेंट है कि बार बार वर्कशॉप्स रखना, रोल प्ले बताना, उन्हें कैसे कम्युनिकेट करना, ये सब बताना बहुत जरूरी है।
1: फिल्म लेखिका विभा सिंह करेंगी इस कार्यक्रम का विचार मंथन।
2: आजकल हम बहुत बातें सुनते हैं कि कितनी मेहनत सही है और कितनी नहीं सही है, वो एक अलग डिस्कशन है, पर हार्ड वर्क का कोई रिप्लेसमेंट नहीं है, ये बच्चों को जानना बहुत जरूरी है।
1: तो सुनिए विविधा में सृजन भारती 2 अगस्त दिन में 11 बजे सिर्फ विविध भारती पर।

0: क्या सोच रही हो?
1: मैं?
0: हाँ हाँ
1: कुछ भी तो नहीं।
0: बोलो ना कुछ तो।

0: लता मंगेशकर और किशोर कुमार की आवाजों में अजनबी फिल्म का ये गाना था। आनंद बख्शी की बोल थी, राहुल देव बर्मन की तर्ज थी।
1: कहीं दूर जब दिन ढल जाए,
0: मुकेश के गानों में है सादगी।
1: एक दिन बिक जाएगा माटी के मोल,
0: मुकेश के गानों में है रुमानिया।
1: कहीं करती होगी वो मेरा इंतजार,
0: हम सबके भीतर रहते हैं थोड़े थोड़े मुकेश।
1: जाऊं कहां बताए दिल।
0: पांच गायक मुकेश की याद में एक दिलचस्प महफिल, जिसमें शामिल हैं गायक मुख्तार शाह और गोविंद मिश्र।
1: जिस देश में गंगा बहती है, जिस देश में गंगा बहती है।
0: आज के मेहमान 29 जुलाई शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती।

अब सुन रहे कार्यक्रम हम हैं राही प्यार के। विविध भारती से बोल रहे हैं प्रतीक्षा समाचारों की।

0: घर खर्च के पैसे दो हस्बैंड जी,
1: ये राशन के 15,000, सब्जियों के 2,000
0: और लाइट बिल के,
1: अब 0 रुपए कैसे दूं?
0: ओहो, भूल ही गई थी, अब तो सोलर पैनल लग गए हैं ना, तो जो 4,000 बचे हैं उससे शॉपिंग हो जाए।
1: पक्का।
2: पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in।
3: हर घर सूर्य घर।
4: क्या आप परेशानियों से घिरे हैं? मन भारी है और कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा? याद रखें, समाधान आपके पास है। टेलीमानस के निशुल्क नंबर 14416 पर कॉल करें। कहीं से भी कभी भी 24 घंटे यह सुविधा उपलब्ध है। यहाँ आपकी बात सुनी जाती है, समझी जाती है और आपको सही दिशा दी जाती है। आप अकेले नहीं है, मदद बस एक कॉल दूर है।
5: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं मुनीश शर्मा। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सरकार के विभिन्न मंत्रालयों और विभागों से बेहतर तालमेल के साथ

0: काम करने का आह्वान किया। श्री मोदी ने उच्च अधिकारियों के साथ भावी कार्य योजना की समीक्षा की। लोकसभा में लोक परीक्षाओं में अनुचित साधनों के प्रयोग की रोकथाम संबंधी संशोधन विधेयक 2026 पर आज फिर चर्चा होगी। दिल्ली सरकार ने प्रत्येक पात्र महिला को 2500 रूपये प्रतिमाह की आर्थिक सहायता देने के लिए लक्ष्मी योजना को मंजूरी दी। पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में पाकिस्तानी सेना की बर्बर कार्रवाई में पिछले दो दिनों में मरने वालों की संख्या 30 हुई। ईरान ने पश्चिम एशिया में अमरीकी सेना पर बैलिस्टिक मिसाइलें दागी। अमरीका और सऊदी अरब की सेनाओं ने भी संयुक्त रूप से इराक में ईरान समर्थित समूहों के खिलाफ हमले किए। और राष्ट्रमंडल खेलों में गुलवीर सिंह 10,000 मीटर दौड़ में रजत पदक जीतने वाले पहले भारतीय बने। हरजिंदर कौर ने भी भारोत्तोलन में रजत पदक अपने नाम किया। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल अपने आवास पर सरकार के सचिवों के साथ दूसरी उच्च स्तरीय बैठक की। उन्होंने वित्त और अर्थव्यवस्था, वाणिज्य और उद्योग तथा प्रौद्योगिकी क्षेत्रों से संबंधित मंत्रालयों और विभागों की भावी कार्यसूची की समीक्षा की। बैठक का मुख्य उद्देश्य विकसित भारत के लक्ष्यों की दिशा में प्रगति को गति देना था। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
1: बैठक के दौरान श्री मोदी ने मंत्रालयों और विभागों के बीच एकजुटता की भावना के साथ काम करने का आग्रह किया। नागरिक केंद्रित शासन के महत्व का उल्लेख करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत की जनता शासन के केंद्र में रहनी चाहिए। उन्होंने याद दिलाया कि प्रत्येक निर्णय और नीति आम नागरिक के हितों और आकांक्षाओं के अनुरूप होना चाहिए। श्री मोदी ने कहा कि भारत बुनियादी ढांचे में महत्वपूर्ण निवेश कर रहा है, लेकिन स्वदेशी प्रौद्योगिकियों के विकास को भी समान प्राथमिकता दी जानी चाहिए। प्रधानमंत्री ने तकनीकी आत्मनिर्भरता और महत्वपूर्ण क्षेत्रों में घरेलू क्षमताओं के निर्माण के महत्व पर जोर दिया। श्री मोदी ने कहा कि ऊर्जा सुरक्षा, राष्ट्रीय सुरक्षा, आर्थिक स्थिरता और नागरिकों के कल्याण से घनिष्ठ रूप से जुड़ी हुई है। उन्होंने कहा कि देश को नवाचार, विविधीकरण और क्षमता निर्माण में तेजी लाकर ऊर्जा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता हासिल करनी चाहिए। उन्होंने यह भी कहा कि सरकार को हमेशा युवा, गतिशील और दूरदर्शी बने रहना चाहिए और नई चुनौतियों और अवसरों के अनुरूप फुर्ती और नवाचार के साथ लगातार अनुकूलन करना चाहिए। आदित्य प्रताप सिंह, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: लोकसभा में आज लोक परीक्षा अनुचित साधन रोकथाम संशोधन विधेयक 2026 पर फिर से चर्चा शुरू होगी। कार्मिक लोक शिकायत और पेंशन राज्य मंत्री डॉ जितेंद्र सिंह ने कल सदन में विधेयक को विचार और पारित कराने के लिए पेश किया था। ये विधेयक लोक परीक्षाओं में अनुचित साधन रोकथाम अधिनियम 2024 में संशोधन के लिए लाया गया है। विधेयक में कई महत्वपूर्ण प्रावधान हैं, जिनमें 10 वर्ष तक की कैद, 10 करोड़ रुपए तक का जुर्माना और अपराधियों की संपत्ति को जब्त करने जैसे कठोर दंड शामिल हैं। डॉ जितेंद्र सिंह ने विधेयक पेश करते हुए कहा कि यह नया कानून देश के छात्रों और युवाओं के कल्याण की रक्षा के लिए सरकार की गहरी प्रतिबद्धता का परिचायक है।
2: 2 महीने के भीतर सारी जांच मुकम्मल की जाएगी और उसके बाद जो भी ट्रायल कोर्ट होगा, फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट, उसमें ये 3 महीने, यानी जिस दिन वारदात रिपोर्ट हुई है उस दिन से लेकर के आखिरी निर्णय आने तक 5 महीने से ज्यादा अवधि काल नहीं रहा जाएगा।
0: श्री सिंह ने कहा कि ये विधेयक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संकल्प को भी दोहराता है कि देश के युवाओं के भविष्य से कोई समझौता नहीं होने दिया जाएगा। वहीं कांग्रेस के गौरव गोगोई ने कहा कि सरकार शिक्षा क्षेत्र के प्रति गंभीर नहीं है।
3: ये सरकार शिक्षा विभाग को लेकर गंभीर नहीं है, सुधार नहीं लाना चाहिए। ये सिर्फ एक दिखावा का बिल है, क्योंकि ये बिल एक संशोधन बिल है।
0: भाजपा सांसद बांसुरी स्वराज ने इस विधेयक को क्रांतिकारी कदम बताया।
4: ट्रांसफॉर्मेटिव अमेंडमेंट है, इसकी न केवल आवश्यकता है बल्कि ये आज के समय की मांग भी है। और इस अमेंडमेंट को लाना आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की संवेदनशीलता और उनकी जिम्मेदाराना सरकार का प्रमाण। जब एक कम्पेटिटिव एग्जामिनेशन कॉम्प्रोमाइज होता है तो उसका असर केवल उस कैंडिडेट पे नहीं होता जिसका भाग्य दाव पर लग जाता है, और ये बिल ये ज्यूरिसडिक्शन की उलझन को सुलझाता है, उसको समाप्त ही कर देता है।
0: समाजवादी पार्टी के सांसद अखिलेश यादव ने विभिन्न परीक्षाओं के प्रश्न पत्र लीक होने पर चिंता व्यक्त की। एआईटीसी के अभिषेक बनर्जी, तेलुगु देशम पार्टी के लावू श्री

0: कृष्णदेव रायलू और शिवसेना के डॉ श्रीकांत शिंदे ने विधेयक का समर्थन किया। तेलुगु देशम के सांसद ने प्रश्न पत्र तैयार करने वाली समितियों के विकेंद्रीकरण की भी मांग की। विधेयक पर अभी चर्चा पूरी नहीं हुई है। पीठासीन अधिकारी संध्या राय ने सदन को आज सुबह 11 बजे फिर से शुरू होने तक के लिए स्थगित कर दिया। पश्चिम बंगाल में सर्वोच्च न्यायालय के आदेश का पालन करते हुए और नीट परीक्षा के पेपर लीक से संबंधित विरोध प्रदर्शनों के सभी पहलुओं के मूल्यांकन के बाद राज्य सरकार ने विरोध प्रदर्शन में भाग लेने वाले छात्रों के खिलाफ कोई दंडात्मक कार्रवाई न करने का निर्णय लिया है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप और सोशल मीडिया हैंडल @AIR न्यूज हिंदी को फॉलो कर सकते हैं।
1: एक प्रकार से पीएम जय अब गरीबों की जय बन गई है।

0: आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत लगभग 60 करोड़ लोग बने हैं 5 लाख रुपए के मुफ्त उपचार के हकदार। अब तक 12 करोड़ से भी ज्यादा मुफ्त उपचार किए जा चुके हैं, जिससे गरीब परिवारों के चिकित्सा खर्च में लगभग 2 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई। आरजी आयुष्मान ऐप डाउनलोड कर आयुष्मान कार्ड बनाएं। ज्यादा जानकारी के लिए 1-4555 पर कॉल करें।
1: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। दिल्ली सरकार ने दिल्ली लक्ष्मी योजना को अपनी स्वीकृति दे दी है। दिल्ली सचिवालय में कल मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता की अध्यक्षता में हुई मंत्रिमंडल की बैठक में यह निर्णय लिया गया। इस योजना के अंतर्गत पात्र महिलाओं को हर महीने 2,500 रूपये की आर्थिक सहायता मिलेगी। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने बताया कि इस योजना में पंजीकरण के लिए रजिस्ट्रेशन पोर्टल 1 अगस्त से खुल जाएगा।
2: बहनों के अप्लाई करने के बाद, स्क्रूटनी होने के बाद जो भी अप्रूवल रहेगा उसके बाद मुझे लगता है कि राखी पे हम पहली किश्त पहले लॉट की बहनों को दे पाएंगे। ये दिल्ली की बहनों के लिए बहुत ही खुशी का अवसर है कि हमने अपनी सरकार के मात्र 1.25 साल के भीतर इसको कर दिया है दिल्ली की बहनों के लिए, जिसका लाभ अब उस श्रेणी में आने वाली सभी बहनें ले पाएंगी।
1: झारखंड में सुरक्षा बलों ने नक्सल विरोधी अभियान में एक बड़ी सफलता हासिल की है। प्रमुख माओवादी नेता और पोलित ब्यूरो सदस्य मिसिर बेसरा को धनबाद गिरिडीह सीमा से गिरफ्तार किया गया है। उस पर 1 करोड़ रुपए का इनाम था। क्षेत्रीय समिति सदस्य मेहनत उर्फ मोछू, माओवादी कार्यकर्ता गौरव और 2 ग्रामीणों को भी संयुक्त अभियान के दौरान गिरफ्तार किया गया। आध्यात्मिक और शैक्षणिक गुरुओं को समर्पित गुरु पूर्णिमा का पर्व आज मनाया जा रहा है, जिसे व्यास पूर्णिमा भी कहा जाता है। इस अवसर पर लोग अपने गुरुओं को याद करते हैं और उनके प्रति कृतज्ञता व्यक्त करते हैं। भारतीय जनता पार्टी आज गुरु पूर्णिमा के अवसर पर संत शिरोमणि गुरु रविदास महाराज की 650वीं जयंती के उपलक्ष्य में राष्ट्रव्यापी श्री गुरु रविदास महाराज समरसता संकल्प अभियान का शुभारंभ करेगी। इस अभियान का औपचारिक उद्घाटन आज वाराणसी के सीर गोवर्धनपुर स्थित संत रविदास के जन्म स्थान पर किया जाएगा। एक रिपोर्ट।
3: आज वाराणसी के सीर गोवर्धनपुर स्थित संत रविदास के जन्म स्थान पर इस अभियान का औपचारिक शुभारंभ किया जाएगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज शाम यहां संत रविदास के जन्म स्थान पर दर्शन करेंगे और उनका आशीर्वाद लेंगे। इस अभियान के तहत संत रविदास के पवित्र जन्म स्थान की मिट्टी को 131 कलशों में भरकर उत्तर प्रदेश के विभिन्न हिस्सों और देश भर के अन्य राज्यों में भेजा जाएगा। एक समरसता संकल्प सभा का भी आयोजन किया जाएगा, जिसमें लगभग 25,000 लोगों के शामिल होने की उम्मीद है। कार्यक्रमों की यह श्रृंखला माघी पूर्णिमा और संत रविदास की जयंती यानी अगले वर्ष 20 फरवरी तक चलेगी। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, राज्य भाजपा अध्यक्ष पंकज चौधरी, संगठन महासचिव धर्मपाल सिंह और अन्य प्रमुख नेताओं के इस कार्यक्रम में शामिल होने की उम्मीद है। पवित्र मिट्टी से भरे 131 कलशों की विधिवत पूजा की जाएगी और उन्हें विभिन्न राज्यों के प्रतिनिधियों को सौंप दिया जाएगा। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ।
1: मध्य प्रदेश में भी आज यह अभियान शुरू होगा। पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू और कश्मीर पीओजेके में बर्बर सरकारी कार्रवाई में मरने वालों की संख्या पिछले 2 दिनों में बढ़कर 30 हो गई है, जबकि कई अन्य घायल हुए हैं।

0: इस बीच एमनेस्टी इंटरनेशनल ने पाकिस्तानी सेना द्वारा पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर पीओजेके में प्रदर्शनकारियों के खिलाफ घातक बल के प्रयोग की खबरों की स्वतंत्र और पारदर्शी जांच की मांग की है। अमरीका ने कहा है कि ईरान के इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कोर ने कल रात पश्चिम एशिया क्षेत्र में तैनात अमरीकी बलों पर अचानक हमले के प्रयास में कई बैलिस्टिक मिसाइलें दागी। अमरीकी केंद्रीय कमान ने कहा कि सभी ईरानी मिसाइलों को रोक दिया गया और अमरीकी बल सतर्क और उच्च स्तर की तैयारी में हैं। अमरीका ने यह भी दावा किया कि पिछले 72 घंटों में 30 से ज्यादा हवाई ड्रोन हमलों के साथ ही अमरीका और सऊदी लड़ाकू विमानों ने पूर्वी इराक में कई रसद और हथियार स्थलों पर हमले किए। ग्लासगो राष्ट्रमंडल खेलों में गुलवीर सिंह ने पुरुषों की 10,000 मीटर दौड़ में रजत पदक जीतकर इतिहास रच दिया है। वो इस स्पर्धा में पदक जीतने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी बन गए हैं। हरजिंदर कौर ने महिलाओं की 69 किलोग्राम भारोत्तोलन स्पर्धा में रजत पदक जीता है। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं फरहत नाज।
1: धन्यवाद मनीष। देश की राजधानी से प्रकाशित सभी हिंदी समाचार पत्रों के पहले पन्ने पर पेपर लीक मुद्दे पर संसद में हुई बहस और पेपर लीक मामलों को रोकने के लिए बनाए गए नए कानून से संबंधित समाचार छाए हुए हैं। लोकसत्ता ने अपनी पहली खबर को शीर्षक दिया है पेपर लीक, मोदी सरकार ने बनाया विश्व का सबसे कठोर कानून। राजस्थान पत्रिका ने सरकार और विपक्ष दोनों के वक्तव्यों से अपनी खबरों की शुरुआत की है। पंजाब केसरी ने इस खबर को शीर्षक दिया है पूर्व सरकारों में भी हुए पेपर लीक। साथ ही प्रियंका गांधी की इस टिप्पणी को भी प्रमुखता से छापा है, प्रधानमंत्री को कैमरे का नहीं दिल का एंगल बदलना पड़ेगा। दैनिक भास्कर ने पाकिस्तानी कब्जे वाले कश्मीर के घटनाक्रम को पहले पन्ने पर सबसे ऊपर प्रकाशित करते हुए शीर्षक दिया है पीओके में सेना ने चुनाव का विरोध कर रहे लोगों पर गोलियां बरसाई, 30 मौतें। पत्र ने मारे गए नागरिकों की तस्वीर भी प्रकाशित की है। अमर उजाला ने राष्ट्रमंडल खेलों में भारत के शानदार प्रदर्शन को पहली खबर बनाते हुए शीर्षक दिया है एक दिन में 6 पदक। पत्र ने पदक विजेता खिलाड़ियों की तस्वीरें छापी हैं। जनसत्ता ने अपने संपादकीय को शीर्षक दिया है खतरे का तापमान। पत्र का कहना है कि जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए दुनिया भर में कई योजनाएं और कार्यक्रम बनाए गए हैं, लेकिन जमीनी स्तर पर उन्हें अमल में लाने की गंभीरता कहीं नजर नहीं आती। विडंबना यह है कि कार्बन उत्सर्जन में जिन देशों का योगदान सबसे कम है उन्हें ही जलवायु परिवर्तन के प्रभाव का खामियाजा सबसे ज्यादा भुगतना पड़ रहा है।
0: और अंत में लीजिए सुनिए इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सरकार के विभिन्न मंत्रालयों और विभागों से बेहतर तालमेल के साथ काम करने का आह्वान किया। श्री मोदी ने उच्च अधिकारियों के साथ भावी कार्य योजना की समीक्षा की। लोकसभा में लोक परीक्षाओं में अनुचित साधनों के प्रयोग की रोकथाम संबंधी संशोधन विधेयक 2026 पर आज फिर चर्चा होगी। दिल्ली सरकार ने प्रत्येक पात्र महिला को 2,500 रूपये प्रति माह की आर्थिक सहायता देने के लिए लक्ष्मी योजना को मंजूरी दी। पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में पाकिस्तानी सेना की बर्बर कार्रवाई में पिछले 2 दिनों में मरने वालों की संख्या हुई 30। ईरान ने पश्चिम एशिया में अमरीकी सेना पर बैलिस्टिक मिसाइलें दागी और राष्ट्रमंडल खेलों में गुलवीर सिंह 10,000 मीटर दौड़ में रजत पदक जीतने वाले पहले भारतीय हो गए हैं। और इसके साथ ही समाचार प्रभात का यह अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: FM बैंड 106.3 मेगाहर्ट्ज पर ये आकाशवाणी बांसवाड़ा का माही चैनल है। प्रातः के 8:15 हुए हैं। श्रोताओं पेश है कुछ दिल से कार्यक्रम।

अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाएं, जीवन को नई दिशा दिखाएं। ऐसे गुरु को शत शत नमन जो हमें इंसान बनाएं।

सभी कुछ दिल से कार्यक्रम सुनने वाले श्रोताओं को खुशबू जोशी का प्यार भरा नमस्कार। और श्रोताओं, आप सभी को गुरु पूर्णिमा की बहुत बहुत शुभकामनाएं।

श्रोताओं, आषाढ़ माह की पूर्णिमा को गुरु पूर्णिमा कहा जाता है। इस दिन महर्षि वेदव्यास का जन्म हुआ था, इसीलिए इसे व्यास पूर्णिमा भी कहते हैं। श्रोताओं, गुरु का अर्थ अंधकार से दूर करने वाला, जो हमारे जीवन के अंधकार को दूर करके ज्ञान का प्रकाश दे, वही गुरु है।

0: जी राम जी, जिसमें हर ग्रामीण को मिलेगी साल में 125 दिन रोजगार की गारंटी और काम वही जो ग्राम पंचायत का है। विकसित भारत जी राम जी, गांव बढ़ेगा तभी देश बढ़ेगा। ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी।
1: एक प्रकार
2: श्रोताओं, गुरु माँ बाप के बाद सबसे बड़ा स्थान रखते हैं। माँ जन्म देती है पर गुरु जीवन जीना सिखाता है। कबीर साहब ने भी कहा है, गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो मिलाए। गुरु के बिना ज्ञान अधूरा है। चाहे स्कूल का शिक्षक हो, जीवन का अनुभव हो या आध्यात्मिक मार्गदर्शक, सब गुरु ही हैं।

श्रोताओं, पहले गुरु शिष्य को अपने साथ रखकर संस्कार देते थे। आज गूगल, किताबें, यूट्यूब, ये सब भी गुरु बन गए हैं। पर सच्चा गुरु सिर्फ जानकारी नहीं, चरित्र भी बनाता है। एक शिक्षक कक्षा में 40 बच्चों को पढ़ाता है, पर हर बच्चे का भविष्य बना देता है।

श्रोताओं, भारत की पहचान ही गुरु शिष्य परंपरा है। अर्जुन, कृष्ण, एकलव्य, द्रोणाचार्य, विवेकानंद, रामकृष्ण, ये रिश्ते हमें सिखाते हैं कि समर्पण से ही ज्ञान मिलता है।

श्रोताओं, गुरु पूर्णिमा हमें याद दिलाती है कि जिन लोगों ने हमें बनाया उनका सम्मान करो। एक धन्यवाद बोलने से गुरु का आशीर्वाद मिलता है और जीवन सफल होता है। श्रोताओं, गुरु बिना ज्ञान नहीं, ज्ञान बिना मुक्ति नहीं। गुरु वह दीपक है जो खुद जलकर दूसरों के जीवन में उजाला करता है। गुरु वो माली है जो कांटों में से भी फूल चुनना सिखाता है।

ये आकाशवाणी बांसवाड़ा का माही चैनल है। श्रोताओं, अब आप सुनेंगे राजस्थानी लोक संगीत सीमा मिश्रा के स्वर में।

एफएम बैंड 101.3 मेगाहर्ट्ज पर ये आकाशवाणी बांसवाड़ा का माही चैनल है। श्रोताओं, अभी आपने सुना राजस्थानी लोक संगीत सीमा मिश्रा के स्वर में। प्रातः के 9 बजे हैं। अब आप सुनेंगे हिंदी में प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी के जयपुर केंद्र से। समाचार मुख्य समाचार। लोकसभा में आज लोक परीक्षा अनुचित साधनों की रोकथाम संशोधन विधेयक 2026 पर फिर से चर्चा शुरू होगी। गुरु पूर्णिमा के उपलक्ष्य में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा आज शिक्षा के क्षेत्र में 947 करोड़ रुपए से अधिक की सौगात देंगे। राज्य के प्रमुख विश्वविद्यालयों में राजस्थानी भाषा अध्ययन केंद्र बनाए जाएंगे और मॉनसून के एक बार फिर सक्रियता से प्रदेश में मौसम खुशनुमा। आज भी 24 जिलों के लिए बारिश का येलो अलर्ट। समाचारों के साथ मैं माधुरी वशिष्ठ और अब समाचार विस्तार से। लोकसभा में आज लोक परीक्षा अनुचित साधनों की रोकथाम संशोधन विधेयक 2026 पर फिर से चर्चा शुरू होगी। कार्मिक लोक शिकायत और पेंशन राज्य मंत्री डॉ जितेंद्र सिंह ने कल सदन में विधेयक को विचार और पारित कराने के लिए पेश किया था। ये विधेयक लोक परीक्षाओं में अनुचित साधनों की रोकथाम के अधिनियम 2024 में संशोधन के लिए लाया गया है। विधेयक में कई महत्वपूर्ण प्रावधान हैं, जिनमें 10 वर्ष तक की कैद, 10 करोड़ रुपए तक का जुर्माना और अपराधियों की संपत्ति जब्त करने जैसे कई कठोर दंड शामिल हैं। श्री सिंह ने कहा कि पेपर लीक से जुड़े मामलों का शीघ्र निपटारा सुनिश्चित करने के उद्देश्य से विधेयक में हर राज्य सरकार और केंद्र शासित प्रदेश में दैनिक सुनवाई के लिए विशेष फास्ट ट्रैक कोर्ट स्थापित करने का प्रावधान है।

0: महीने के भीतर सारी जांच मुकम्मल की जाएगी और उसके बाद जो भी ट्रायल कोर्ट होगा फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट, उसमें ये 3 महीने, यानी जिस दिन वारदात रिपोर्ट हुई है उस दिन से लेकर के आखिरी निर्णय आने तक 5 महीने से ज्यादा अवधि काल नहीं रहा जाएगा।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने आवास पर सरकार के सचिवों के साथ दूसरी उच्च स्तरीय बैठक की। उन्होंने वित्त एवं अर्थव्यवस्था, वाणिज्य एवं उद्योग तथा प्रौद्योगिकी क्षेत्र से संबंधित मंत्रालयों और विभागों की भावी कार्य सूची की समीक्षा की। कल हुई इस बैठक का मुख्य उद्देश्य विकसित भारत के लक्ष्यों की दिशा में प्रगति देना था। श्री मोदी ने मंत्रालयों और विभागों के बीच मजबूत टीम बनाने का आह्वान किया और अधिकारियों से साझा उद्देश्य की भावना के साथ काम करने का आग्रह किया। गुरु पूर्णिमा आज देश और प्रदेश में आस्था और उल्लास के साथ मनाई जा रही है। इस उपलक्ष्य में विभिन्न धार्मिक स्थलों पर कार्यक्रम रखे गए हैं। देवस्थान विभाग की ओर से प्रदेश भर में गुरु वंदन कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। प्रदेश के सभी जिलों में 516 संतों और महंतों के उनके आश्रम, मठ और मंदिरों में जाकर सम्मान किया जाएगा। इस दौरान मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा का गुरु वंदन संदेश भी भेंट किया जाएगा। संतों और महंतों को सम्मान स्वरूप श्रीफल, शॉल, दुपट्टा, मिठाई और 2100 रुपए की सम्मान राशि प्रदान की जाएगी। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा भरतपुर के लुधावई स्थित बड़ा हनुमान मंदिर पहुंचकर साधु संतों का सम्मान करेंगे। गुरु पूर्णिमा पर मुख्यमंत्री भरतपुर की वैर तहसील के खेड़ली गुजर गांव पहुंचकर शिक्षा के क्षेत्र को 947 करोड़ रुपए से अधिक की सौगात देंगे। मुख्यमंत्री मिशन पढ़ो राजस्थान अभियान की भी शुरुआत करेंगे। और ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
2: प्रदेश के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा आज एक दिवसीय दौरे पर भरतपुर पहुंचेंगे और वे बैर तहसील के खेड़ली गुजर पहुंचकर भरतपुर जिले में शिक्षा, स्वास्थ्य, पर्यटन, सड़क, ऊर्जा, नगरीय विकास एवं आधारभूत संरचना से जुड़ी परियोजनाओं को गति देने के उद्देश्य से 793.84 करोड़ रुपए की लागत से 21 कार्यों का शिलान्यास करेंगे तथा 268.40 करोड़ रुपए की लागत के 18 कार्यों का लोकार्पण करेंगे और प्रदेश के सरकारी स्कूलों के 8वीं तक के विद्यार्थियों को ड्रेस के लिए DET के माध्यम से राशि उनके बैंक खातों में ट्रांसफर करेंगे। शिव कुमार वशिष्ठ, आकाशवाणी समाचार, भरतपुर।
1: राजस्थान समान सिविल संहिता UCC के प्रारूप को लेकर उच्चतम न्यायालय की सेवानिवृत्त न्यायमूर्ति रंजना प्रकाश देसाई की अध्यक्षता में गठित राज्य स्तरीय परामर्श बैठक आयोजित की गई। जयपुर में स्थित शासन सचिवालय में हुई VC के माध्यम से इस बैठक में समिति के अध्यक्ष न्यायमूर्ति देसाई ने कहा कि समिति का एकमात्र उद्देश्य लैंगिक विषमताओं को दूर करना और समाज के संवेदनशील वर्गों को सामाजिक तथा वित्तीय सुरक्षा प्रदान करना है। प्रस्तावित प्रारूप में धार्मिक स्वतंत्रता, रीति रिवाजों और परंपराओं में कोई हस्तक्षेप नहीं किया जाएगा तथा संविधान के अनुच्छेद 25 के तहत सभी को प्राप्त धार्मिक स्वतंत्रता पूरी तरह सुरक्षित रहेगी। बैठक में विवाह, तलाक, उत्तराधिकार, गोद लेने और भरण पोषण से जुड़ी प्रक्रियाओं को सरल बनाने पर भी चर्चा हुई। आमजन से प्रारूप पर 5 अगस्त तक आधिकारिक पोर्टल या QR कोड के माध्यम से सुझाव मांगे गए हैं। ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। राज्य के प्रमुख विश्वविद्यालयों में राजस्थानी भाषा अध्ययन केंद्र स्थापित किए जाएंगे। राज्यपाल एवं कुलाधिपति हरिभाऊ बागड़े की पहल पर राज्य वित्त पोषित प्रमुख राजस्थान विश्वविद्यालय, जयनारायण मोहन व्यास विश्वविद्यालय, मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय तथा महर्षि दयानंद सरस्वती विश्वविद्यालय सहित 11 यूनिवर्सिटीज को इस संबंध में निर्देश दिए गए हैं। राजभवन की ओर से जारी पत्र में कहा गया है कि नई शिक्षा नीति में मातृभाषा में अध्ययन को प्राथमिकता दिए जाने के अनुरूप विश्वविद्यालयों में ये अध्ययन केंद्र स्थापित किए जाएंगे। पत्र के अनुसार राजस्थानी प्रदेश के बड़े भूभाग में बोले जाने वाली प्रमुख भाषा है और ये राज्य की संस्कृति का भी प्रतिनिधित्व करती है। विश्वविद्यालयों से कार्रवाई शुरू कर इसकी सूचना राजभवन को भेजने के लिए कहा गया है। आज अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस है। ये दिन बाघों और उनके प्राकृतिक आवासों के संरक्षण के उद्देश्य से हर वर्ष 29 जुलाई को मनाया जाता है। मुख्यमंत्री ने सोशल मीडिया संदेश के माध्यम से सभी से बाघों के संरक्षण, प्रकृति, वन्य जीव और भावी पीढ़ियों के सुरक्षित भविष्य के लिए

0: सामूहिक जिम्मेदारी निभाने की अपील की है। प्रदेश में बाघ संरक्षण के लिए विशेष प्रयासों के नतीजे सामने आ रहे हैं। जहां सरिस्का बाघ अभयारण्य में बाघों की दहाड़ गूंज रही है, वहीं करौली का कैला देवी अभयारण्य रणथंभौर से छोड़े गए बाघों के लिए सुरक्षित आशियाना बन गया है। रणथंभौर बाघ परियोजना बाघों के संरक्षण को लेकर देश भर में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। पेश है सवाई माधोपुर से हमारे संवाददाता की रिपोर्ट।
1: वर्ष 1973 में बाघ परियोजनाएं घोषित होने के बाद से रणथंभौर के राष्ट्रीय उद्यान घोषित होने और विश्व स्तर तक प्रसिद्धि के पीछे वन विभाग के अधिकारियों कर्मचारियों के कठिन परिश्रम मेहनत के साथ साथ स्थानीय ग्रामीणों की सहभागिता भी प्रमुख है। वर्तमान में यहां 1700 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में करीब 78 बाघ बाघिन और शावक विचरण कर रहे हैं। लाखों की संख्या में आने वाले देशी विदेशी सैलानियों फोटोग्राफर मूवी मेकर तथा रिसर्चर की पहली पसंद बन चुका है। वर्ष 2008 से राज्य के सरिस्का मुकंदरा रामगढ़ विषधारी तथा करौली धौलपुर वनों में भी बाघों को विस्थापित कर रणथंभौर के अलावा पूरे राज्य के अन्य क्षेत्रों में बाघ संरक्षण सहित पर्यटन तथा रोजगार के अवसर पैदा करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। सतीश वर्मा, आकाशवाणी समाचार, सवाई माधोपुर।
0: और अब मौसम। प्रदेश में मॉनसून की एक बार फिर सक्रिय वापसी से मौसम खुशनुमा हो गया है। कई जगहों पर बादल छाए हुए हैं, वहीं कई स्थानों पर झमाझम बरसात का दौर जारी है। सिरोही में रात भर से रुक रुक कर बारिश हो रही है। माउंट आबू में धुंध छाई हुई है और सुहावना मौसम पर्यटकों को आकर्षित कर रहा है। सवाईमाधोपुर में कल दिन भर चले बरसात के दौर से कई स्थानों पर नदी नालों में पानी की अच्छी आवक हुई। रणथंभौर वन क्षेत्र में हुई भारी बरसात के बाद त्रिनेत्र गणेश मार्ग बाधित हो गया। मंदिर जाने वाले श्रद्धालुओं का आवागमन आगामी आदेश तक बंद किया गया है। इस बीच मौसम विभाग ने आज 24 जिलों के लिए बारिश का येलो अलर्ट जारी किया है। यहां हल्की से मध्यम बरसात हो सकती है। वहीं आज से जोधपुर संभाग को छोड़कर बाकी सभी 6 संभागों के कुछ स्थानों पर बारिश की गतिविधियों में बढ़ोतरी की संभावना है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। लोकसभा में आज लोक परीक्षा अनुचित साधनों की रोकथाम संशोधन विधेयक 2026 पर फिर से चर्चा शुरू होगी। गुरु पूर्णिमा के उपलक्ष्य में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा आज शिक्षा के क्षेत्र के 947 करोड़ रुपए से अधिक की सौगात देंगे। राज्य के प्रमुख विश्वविद्यालयों में राजस्थानी भाषा अध्ययन केंद्र स्थापित किए जाएंगे। और मॉनसून की एक बार फिर सक्रियता से प्रदेश में मौसम खुशनुमा हुआ। आज भी 24 जिलों के लिए बारिश का येलो अलर्ट। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन दोपहर 1 बजे प्रसारित होगा। नमस्कार।
2: FM बैंड 106.3 मेगाहर्ट्ज़ पर ये आकाशवाणी बांसवाड़ा का माही चैनल है। प्रातः के 9:10 हुए हैं। श्रोताओं, अब आप सुनेंगे सुगम संगीत। और सुगम संगीत के अंतर्गत आप सुनेंगे जगजीत सिंह की आवाज में कुछ गजलें।

ये आकाशवाणी बांसवाड़ा का माही चैनल है और आप सुन रहे हैं सुगम संगीत। और सुगम संगीत के अंतर्गत आप सुन रहे हैं जगजीत सिंह की आवाज में कुछ गजलें।

ये आकाशवाणी बांसवाड़ा का माही चैनल है। श्रोताओं, अभी आपने सुना सुगम संगीत, और सुगम संगीत के अंतर्गत आपने सुना जगजीत सिंह की आवाज में कुछ गजलें। प्रातः के 9:30 हुए हैं। अब आप सुनेंगे एनसीईआरटी द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम उमंग।

0: IIT प्रस्तुत करता है
1: उमंग उमंग उमंग उमंग।
2: नमस्कार श्रोताओं, मैं हूँ विमलेश।
0: और मैं हूँ अजीत। तो आइए करते हैं शुरुआत हमेशा की तरह एक खूबसूरत विचार से, जिसे भेजा है पलारी छत्तीसगढ़ से नितेश कुमार देवांगन, दुर्गा प्रसाद देवांगन, पराग टेलर, पूना राम देवांगन और कृष्ण देवांगन जी ने। लिखते हैं,
2: तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत तुम्हारा धैर्य है, क्योंकि शांत रहने वाला इंसान हर तूफान पार कर जाता है।
0: बहुत बहुत धन्यवाद आप सबको इस सुंदर विचार के लिए। आइए सुनते हैं पिछले दिनों हमें संदेश भेजने वाले श्रोताओं के नाम और उनके संदेश। तो पहला संदेश हमें मिला है खुर्जा उत्तर प्रदेश से तिलक राज अरोड़ा, प्रकाश अरोड़ा, चंदन अरोड़ा और अंकुश अरोड़ा जी का। लिखते हैं,
2: सर अजीत जी, मैडम विमलेश जी, सप्रेम नमस्ते जी।
0: नमस्ते।
2: उमंग कार्यक्रम सुनकर दिल खुशी से झूम जाता है। ये कार्यक्रम नंबर 1 कार्यक्रम है। ऑस्ट्रेलिया के आदिवासी ये कार्यक्रम उमंग कार्यक्रम में सुना और बहुत पसंद आया। ये कार्यक्रम बेहतरीन अंदाज के साथ सुनवाया गया, जो कि हमें बहुत अच्छा लगा।
0: बहुत बहुत धन्यवाद आपका इस संदेश के लिए। अगला हमें मिला है संदेश छत्तीसगढ़ नगर पंचायत पलारी से प्रकाश वर्मा, प्रिंस वर्मा, निखिल वर्मा और यशस्वी वर्मा जी का। इसके साथ साथ
2: मोहम्मद सईद अब्बासी, निगहत परवीन, शाहनवाज सरफराज, फरदीन, सुहान अरजान और अबान अब्बासी।
0: आपने भेजा है हमें संदेश ऊपरकोट बुलंदशहर उत्तर प्रदेश से। अगला संदेश हमें मिला है संबलपुर कांकेर से फागुराम यादव, ज्योति यादव और ओजस्वी यादव का।
2: हिंगोली महाराष्ट्र से शाहजी बोड़खे, श्रीमती नंदा बोड़खे और हनुमान बोड़खे।
0: बहुत बहुत धन्यवाद श्रोताओं आप सबका संदेश भेजने के लिए। निवेदन है इसी प्रकार से संदेश भेजते रहें और हमारी प्रश्नोत्तरी में भी भाग लेते रहें। एक बार फिर से स्वागत है आप सबका हमारी लघु

0: प्रेरक कथाओं की श्रृंखला में
1: आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एक और प्रेरक प्रसंग। मित्रों, हम सब महान आविष्कारक थॉमस अल्वा एडिसन के नाम से परिचित हैं।
0: जी श्रोता, वे मुख्य रूप से बिजली के बल्ब और प्रारंभिक चलचित्र कैमरे के आविष्कार के लिए जाने जाते हैं।
1: जी
0: लेकिन सच तो ये है कि उन्होंने 1000 से भी अधिक पेटेंट लिए, जो अपने समय में एक असाधारण उपलब्धि थी।
1: जब एडिसन बिजली के बल्ब का आविष्कार कर रहे थे, तब उन्होंने उपयुक्त फिलामेंट खोजने के लिए हजारों प्रयोग किए। अधिकांश प्रयोग असफल रहे। कहते हैं कि वे लगभग 10,000 बार असफल हुए।
0: एक बार की बात है श्रोताओ, बिजली के बल्ब के आविष्कार के बाद एक पत्रकार ने जब उनसे पूछा कि आप हजारों बार असफल हो चुके हैं, क्या आपको कभी निराशा नहीं हुई?
1: एडिसन ने मुस्कुराकर उत्तर दिया,
0: मैं असफल नहीं हुआ हूँ, बल्कि मैंने केवल 10,000 ऐसे तरीकों को ढूंढने में सफलता पाई है जो काम नहीं करते।
1: इस कथन का मूल अंग्रेजी वाक्य है, आई हैव नॉट फेल्ड, आई हैव जस्ट फाउंड 10,000 वेज दैट वोंट वर्क।
0: श्रोताओं, असफलताओं को देखने का यह दृष्टिकोण सचमुच कितना सकारात्मक और श्लाघनीय है। इस सकारात्मक सोच ने उन्हें लगातार प्रयास करते रहने की प्रेरणा दी
1: और अंततः उन्होंने ऐसा फिलामेंट खोज लिया जिससे व्यवहारिक विद्युत बल्ब का निर्माण संभव हो सका।
0: तो श्रोताओं, इस प्रसंग से क्या प्रेरणा मिलती है? यही ना कि सफलता अंत नहीं बल्कि सीखने के अवसर का प्रारंभ है।
1: हर असफल प्रयास हमें सफलता के एक कदम और निकट ले जाता है यदि हम में निरंतरता बनी रहे और
0: धैर्य, निरंतर प्रयास और सकारात्मक सोच से बड़ी सफलता भी प्राप्त की जा सकती है। तो श्रोता मित्रों, जरूर बताइएगा कि आपको हमारा आज का प्रेरक प्रसंग कैसा लगा। हमें आपके संदेशों का इंतजार रहेगा।
1: श्रोताओं, आज आपने इस प्रसंग में हिंदी का एक शब्द सुना, शब्द था श्लाघनीय। आइए अब इसका अर्थ जान लेते हैं।
0: श्रोताओं, श्लाघनीय का अर्थ होता है प्रशंसा के योग्य या प्रशंसनीय। ये श्लाघा शब्द से आया है। श्लाघा का अर्थ है प्रशंसा।
1: और अब आज का प्रश्न, आज की ही जानकारी से।
0: तो आज का प्रश्न है श्रोताओं, थॉमस एडिसन अपने प्रयोगों में लगभग कितनी बार असफल हुए थे और श्लाघनीय शब्द का क्या अर्थ है?
1: जी प्रश्न एक बार फिर से सुन लेते हैं। थॉमस एडिसन अपने प्रयोगों में लगभग कितनी बार असफल हुए थे और श्लाघनीय शब्द का क्या अर्थ है?
0: भेज दीजिए अपना उत्तर हमारे IVRS नंबर यानी 8800-4405-559 पर। आप हमारे ईमेल पर यानी audio@cieet.nic.in पर भी अपने संदेश भेज सकते हैं।
1: इंस्टा, फेसबुक, एक्स और लिंक्डइन पर भी आप CIET NCERT को फॉलो कर सकते हैं। इसके द्वारा आपको हमारी शैक्षिक गतिविधियों की निरंतर जानकारी मिलती रहेगी। और हाँ, यदि आप NCERT की पाठ्य पुस्तकों का ध्वनि रूपांतरण यानी ऑडियो बुक सुनना चाहते हैं तो
0: यूट्यूब में जाकर टाइप कीजिए NCERT यूट्यूब ऑफिशियल चैनल। आपको वहाँ सर्च के अनेक विकल्प मिलेंगे, उन्हें फॉलो कीजिए और अपनी मनचाही पाठ्य पुस्तकों को सुनिए।
1: एक और जरूरी सूचना आपको दे दें, यदि आप NCERT की पाठ्य पुस्तकों के PDF डाउनलोड करना चाहते हैं तो सीधे किसी भी सर्च इंजन में जाकर टाइप कीजिए NCERT बुक्स PDF। सर्च के विकल्प पर जाकर आप यहां अपनी मनचाही पूरी पुस्तक डाउनलोड कर सकते हैं।
0: तो श्रोताओं, बारी है आज के शैक्षिक कार्यक्रमों की। तो हमारा पहला कार्यक्रम है मातृभूमि।
1: कक्षा 6 की हिंदी की पाठ्य पुस्तक की इस कविता के रचयिता सोहन लाल द्विवेदी हैं। कार्यक्रम में कविता को संगीत के रूप में प्रस्तुत किया गया है जो मातृभूमि के प्रति कवि के गहरे प्रेम को प्रकट करता है। कविता में भारत भूमि के सौंदर्य और विविधता का वर्णन किया गया है।

0: नव भारत साक्षरता कार्यक्रम के अंतर्गत सभी के लिए शिक्षा को बढ़ावा देते हुए एनसीईआरटी असाक्षर लोगों को साक्षर बनाने के क्रम में कार्य कर रहा है। और आइए सुनते हैं कार्यक्रम टेलीविजन की कहानी।
1: इस कार्यक्रम में टेलीविजन के आविष्कार की कहानी को एक रोचक नाटक द्वारा प्रस्तुत किया गया है तथा ये भी बताया गया है कि आविष्कार की प्रक्रिया में वैज्ञानिकों को किन किन तकनीकी समस्याओं को समझना और उन्हें हल करना पड़ा।
2: डायना डायना, आज तो फुटबॉल मैच देखने पर मजा ही आ गया। वाह, क्या शानदार मैच था। मैनचेस्टर की टीम ने तो कमाल ही कर दिखाया।
3: जॉन, मुझे भी बहुत इच्छा थी मैच देखने की। कितने दिनों से तैयारी कर रहे थी, मगर इस बुखार को भी इसी समय आना था। काश मैं भी देख पाती।
2: मैंने उस मैच की कुछ तस्वीरें खींची हैं। जब साफ होंगी तो मैं तुम्हें दिखा दूंगा।
3: मुझे पता था कि तुम तस्वीरें जरूर लोगे। फोटोग्राफी का शौक जो है तुम्हें।
2: मेरे मन में एक बात आ रही है।
3: वो क्या?
2: वो ये है कि जिस तरह हम रेडियो पर कुछ आवाजें सुन सकते हैं, उसी प्रकार क्या हम दूर के किसी दृश्य को किसी उपकरण के सहारे देख नहीं सकते?
3: वाह, क्या बात कही है। लेकिन क्या ऐसा हो सकता है?
2: हाँ, मुश्किल तो है लेकिन शायद असंभव नहीं।

दोस्तों, ये बालक था जॉन लोगी बेयर, जिसे टेलीविजन के जन्मदाता के रूप में हम जानते हैं। यूं तो टेलीविजन के विकास में अनेक लोगों का योगदान है, लेकिन जॉन लोगी बेयर ने पहली बार चलते फिरते दृश्यों के प्रसारण में सफलता पाई। जॉन का जन्म 14 अगस्त 1888 को स्कॉटलैंड के हेलेंसबर्ग में हुआ था। उसे फोटोग्राफी का बहुत शौक था। उन दिनों विद्यालय में फोटोग्राफी पर विशेष बल दिया जाता था। एक दिन की बात है, जब जॉन लगभग 11 साल के थे,

0: शांत हो जाओ बच्चों, शांत। बच्चों, इस साल की फोटोग्राफी प्रतियोगिता में सर्वश्रेष्ठ फोटोग्राफी का पुरस्कार दिया जाता है जॉन लोगी बेयर्ड को।
1: मुझे तो पता था।
0: जॉन मंच पर आकर पुरस्कार ग्रहण करें। और एक बात और, आपको ये जानकर आश्चर्य होगा कि जॉन की फोटोग्राफी इतनी उम्दा है कि उसे इस स्कूल के फोटोग्राफी डिपार्टमेंट का अध्यक्ष भी बनाया जाता है।

जॉन का बचपन एक माली के लड़के के साथ बीता जो उसके घर के बागीचे में काम किया करता था। वो अक्सर उसके साथ फोटोग्राफी करता। जॉन पढ़ने में बहुत तेज था। विद्यालय की पढ़ाई पूरी करने के बाद जॉन बेयर्ड ने ग्लासगो में रॉयल टेक्निकल कॉलेज में विज्ञान का अध्ययन आरंभ किया। 5 वर्ष की पढ़ाई के बाद वो सहायक इंजीनियर बन गए। एक बार वो अपने मित्र से मिलने त्रिनिदाद गए। यात्रा के दौरान जहाज के रेडियो ऑपरेटर से उनकी दोस्ती हो गई।

फिर तो दोनों ने विद्युत द्वारा हवा में तस्वीरें भेजने की समस्या पर गंभीरता से विचार किया। चौंतीस वर्ष की अवस्था में सन 1922 में वो इंग्लैंड लौट आए।

0: 1923 में वो लिंटन क्रिसेंट चले गए और एक जगह किराए पर ले ली, और यही जगह उनकी प्रयोगशाला बनी। उनके सहायक थे विलियम।
1: विलियम, इतने दिनों से हम प्रयोग कर रहे हैं, लेकिन लगता है कि अभी मंजिल दूर है।
2: हाँ जॉन, जॉन क्यों ना हम अपने प्रयोग को एक बार फिर नए सिरे से करें।
1: हाँ ठीक कहा तुमने। अच्छा सुनो, देखो मैं कुछ चीजें लेकर आया हूँ।
2: क्या?
1: ये है चाय रखने का पुराना डिब्बा, और ये है टोपी रखने वाला गत्ते का डिब्बा।
2: जॉन
1: हाँ,
2: मैं भी कबाड़ी की दुकान से एक बिजली की मोटर लेकर आया हूँ, जैसा तुमने कहा था।
1: अच्छा
2: ये देखो।
1: हेलो, अरे वाह, ये तो बहुत अच्छा है, बहुत बढ़िया है। हाँ ठीक है, ये तो कट गया। अब हम इस गोल गत्ते में ढेर सारे छोटे छोटे छेद बनाते हैं।
2: छोटे छोटे छेद?
1: हाँ,
2: उनसे क्या होगा?
1: मैं बनाता हूँ। इससे ये होगा विलियम कि इस गोल गत्ते को हम बिजली की मोटर में लगाकर घुमाएंगे।
2: अच्छा।
1: और इसके पीछे रहेगा ये प्रोजेक्शन लैंप।

0: भी।
1: वाह।
0: हाँ, और बीच में तस्वीरों के नेगेटिव रखेंगे। फिर देखते हैं क्या होता है।
1: चलो करके देखते हैं।
2: इसको इसमें जीत तो
0: हाँ
2: कर दी है। अब इस इसमें तस्वीरों के नेगेटिव लगाए।
1: ये प्रोजेक्शन लैब पे यहाँ रख देता हूँ।
2: हाँ हाँ ठीक है। अब इसको घुमा के देखते हैं। बात तो बनती नजर आ रही
1: है। देखो सामने दीवार पर देखो। जॉन लगता है आप सही दिशा में काम कर रहे हैं।
2: हाँ, और घुमाओ और घुमाओ। हाँ शाबाश शाबाश ऐसे ही। हाँ, लगता है हमें कामयाबी भी मिल रही है। हाँ, हम जरूर सफल होंगे विलियम, जरूर सफल होंगे।
1: हाँ, हमारी मेहनत रंग लाएगी।
2: हाँ।

दोस्तों, उन्होंने पाया कि चकत्ती घुमाकर प्रकाशित किए जाने वाले संपूर्ण दृश्य छिद्रों के माध्यम से तीव्र एवं मंद बिंदुओं में खंडित हो जाते थे। उत्साहित होकर उन्होंने सेलेनियम सेल और नियॉन लैंप रेडियो वॉल्व आदि उपकरणों के माध्यम से अपना काम शुरू किया। इस प्रयोग में उन्हें काफी समय लगा। कठोर परिश्रम से उनका पहला टेलीविजन ट्रांसमीटर और रिसीवर बन पाया। आखिरकार वो सन 1924 ईस्वी के वसंत में एक तस्वीर को 3 गज की दूरी तक भेजने में कामयाब हुए। लेकिन समस्या ये थी कि तस्वीर साफ नहीं थी और उसको पहचानना भी मुश्किल था। सन 1925 2 अक्टूबर उन्होंने अपने उपकरण में प्रकाश को विद्युत किरणों में परिवर्तित करने के लिए एक नई चीज लगाई।

0: эдний дүнөөс мэрэд гараал икэн камяби нэмэлт эсэлтэ кэби банцил баттур э
1: скоо
0: мэне ярак э скоо табая ха яата то ठीक है अब देखता हूं कि क्या होता है
2: विलियम
3: हां जॉन
2: कोलेक्शन लैंप ऑन करो
3: करता हूं
2: हां और सुनो
3: हां
2: आप कमरे में अंधेरा करो
3: एक मिनट
2: हां
3: मैं ये लाइट बंद कर देता हूं
2: हां ठीक है और सुनो स्क्रीन ऑन करो
3: हां ठीक है
4: अरे वाह जॉन
2: हां
4: देखो सामने
2: अरे हां
4: क्या बात है
2: ये तो कमाल हो गया मैंने कहा था मैं कहा था ना कि हमें कामयाबी जरूर मिलेगी
4: हाँ जॉन हमें कामयाबी मिल गई कितनी मेहनत की थी हमने
2: हाँ
4: जॉन बहुत बहुत बधाई हो बहुत बहुत
2: तुम्हें विलियम बहुत बहुत बधाई

0: स्विच दबाने पर वो आश्चर्यचकित रह गए। उनके उपकरण में दृश्य का पूरा चेहरा उभर आया था। उसे देखकर वो कुर्सी से उछल पड़े। इस प्रकार मानव आकृति के प्रसारण में ये सफलता उनकी पहली सफलता थी।
1: रॉयल इंस्टीट्यूट लंदन के इस विशेष समारोह में आपका स्वागत है। आज हमारे बीच एक विशिष्ट व्यक्ति उपस्थित है। इन्होंने एक खास उपकरण का आविष्कार किया है जो चलते फिरते दृश्यों का प्रसारण कर सकता है, ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार रेडियो आवाज को प्रसारित करता है। वो विशेष व्यक्ति है जॉन लोगी मेयर। आज ये अपने उपकरण का प्रदर्शन करेंगे। आइए।

0: मिस्टर जॉन लोगी बियर
1: जी। साथियों, मुझे यह बताते हुए खुशी हो रही है कि अब दृश्यों का प्रसारण संभव है। इस उपकरण के द्वारा आप दूर के दृश्यों को अपने घर में भी देख सकते हैं।
2: श्रीमान, मुझे तो यह बात असंभव लगती है।
1: संभव है श्रीमान, यह संभव है। आप इस कैमरे के सामने आएंगे?
2: हाँ आइए।
1: हाँ आइए इस तरफ।
2: इधर?
1: हाँ, अब आप इस कैमरे के सामने चलिए। हाँ इधर। हाँ, थोड़ा सा
2: इधर।
1: हाँ, अब ठीक है। हाँ, साथियों, मेरा आपसे निवेदन है कि कृपया सामने स्क्रीन पर देखिए।
3: ओह, ये तो कमाल हो गया। आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा। वेरी गुड। कांग्रेचुलेशन मिस्टर जॉन।
4: इट्स अ मिरेकल।
1: शुक्रिया।

0: 1928 ईस्वी में ही उन्होंने रंगीन टेलीविजन के प्रसारण पर भी कार्य करना शुरू कर दिया था। सन 1936 ईस्वी में बीबीसी ने अपनी टेलीविजन सेवा उनके विकसित उपकरण से शुरू कर दी। 14 जून सन 1946 में इस महान आविष्कारक का निधन हो गया। जब भी हम टेलीविजन देखते हैं, जॉन बेयर अक्सर याद आते हैं। विश्व उनके इस महान योगदान के लिए सदा उनका आभारी रहेगा।
1: तो श्रोताओ, अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम टेलीविजन की कहानी। आशा है कि यह कार्यक्रम आपने जरूर पसंद किया होगा।

0: तो अब हमारा आज का कार्यक्रम यहीं पर समाप्त होता है, इसलिए अपने मित्र अजीत और उमंग की तकनीकी टीम के साथ यानी कुसुम लता,
1: जगबंधु,
0: चेतना,
1: अर्शद,
0: सौम्या
1: और फैजान के साथ विमलेश को आज्ञा दीजिए।
0: नमस्कार।
2: उमंग उमंग उमंग उमंग।
1: FM बैंड 106.3 मेगाहर्ट्ज पर ये आकाशवाणी बांसवाड़ा का माही चैनल है। श्रोताओं, अभी आपने सुना NCERT द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम उमंग। दिन के 10 बजे हैं। अब आप सुनेंगे विविध भारती के कार्यक्रम।

पिछले हफ्ते आज ही के दिन आपने सुनी थी आनंद बख्शी के बेटे राकेश आनंद बख्शी से आपके इस दोस्त यूनुस खान की बातचीत। चलिए आज इस बातचीत को आगे बढ़ाते हैं।

0: नहीं।
1: पत्नी को फिर छोड़ के लखनऊ और बंबई जाना
2: पड़ा। अरे खूब वाली पड़ी।
1: अच्छा,
2: दिमाग खराब हो गया आपका, क्योंकि तू बीवी को छोड़ के जा रहा है। बुरी बात थी कि तुम सरकारी नौकरी छोड़ के जा रहे हो। क्योंकि सरकारी नौकरी में क्या मिलता है? सेफ्टी फॉर द फैमिली। पेंशन वाली नौकरी, आर्मी की नौकरी छोड़ के जा रहा है बेवकूफ, वो भी दूसरी बार। उनको हिम्मत नहीं थी, क्योंकि एक बार हार के आता ना आदमी तो हिम्मत नहीं होती। किसने हिम्मत दी? मेरी सिस्टर पैदा हुई, सुमन पप्पी,
1: उनकी पहली संतान, यानी आप लोगों की सबसे बड़ी बहन।
2: बड़ी बहन सुमन जब पैदा हुई तो 1956, उनको ये था कि मुझे बंबई जाना है। वो उनको आदत थी डायरी लिखने की, तो उन्होंने लिखा था कि मैं बंबई जाना चाहता हूँ, लेकिन बंशी वाले का इशारा नहीं आया। बंशी वाला इशारा करेगा तो मैं जाऊंगा, क्योंकि अभी मेरी हिम्मत नहीं हो रही। इस बार अगर मुझे नौकरी छोड़नी पड़ी तो ये वापस भी नहीं लेंगे, और शादी भी हो गई अभी, तो जिम्मेदारी आ गई है। तो बंशी वाले का इशारा

0: होगा मैं तब जाऊंगा।
1: ये इशारा कब हुआ?
0: ये इशारा हुआ 15 मई 1956 व्हेन सुमन वाज बॉर्न। उनको याद आया कि दादी कहती थी, क्योंकि दादी ने बड़ा किया ना, उनको याद आया कि दादी कहती थी कि कुड़िया पियो के लिए गुड़ लग लांदी है।
1: वाह वाह,
0: मतलब एक जो लड़की आती है ना घर में
1: पिताजी के लिए नसीब,
0: पिताजी के लिए नसीब लाती है, वो दुर्गा होती है, दुर्गा इज द फाइनल पावर।
1: ये इशारा
0: उनको याद आया, उन्होंने कहा ये इशारा मिल गया, अब तू वापस नहीं आएगा।
1: इस बार नौकरी पूरी छोड़ दी। द ईयर वॉज 1956।
0: फिर मुड़ के नहीं देखा पीछे।
1: गजब।
0: मैंने एक बार डैडी को पूछा कि डैड हम लोग चार हैं, दो भाई दो बहन, आपका फेवरेट चाइल्ड कौन सा है? ही सेड पप्पी,
1: सबसे बड़ी बेटी।
0: सबसे बड़ी बेटी। तो आई सेड क्यों क्यों, वो क्यों फेवरेट है, उसने क्या किया जो हमने नहीं किया? ही सेड उसने मेरी गरीबी देखी है। तुम तीनों मेरी अमीरी के बाद पैदा हुए थे, तुम्हें पता ही नहीं गुर्बत क्या होती है।
1: कमाल की बात कही है।
0: He said, मैं इसके लिए कंपस बॉक्स भी नहीं ले सकता था।
1: ये नौबत उस लड़की ने देखी है।
0: 13 साल 14 साल।
1: जी जी।
0: तो तुम कुछ भी कर लो, तुम मेरी सेवा करो जिंदगी भर, कुछ भी करो, लेकिन वो जो उसने जिंदगी देखी है तुम ख्वाब में नहीं देख सकते।
1: इतना प्यार था बड़ी बेटी से।
0: आप जिसको डिनाई करोगे ना उसको आप कभी भूलोगे नहीं।
1: बंबई में क्या हुआ जब वो यहाँ आए? कहाँ रहे? और वो
0: अलग अलग गेस्ट हाउस में अलग अलग,
1: बल्कि एक बार तो रेलवे वेटिंग रूम में लंबे समय तक रहे।
0: हाँ, वो वेटिंग, जब वो पहली बार बंबई आए थे उन्होंने कृष्ण भगवान को एक चिट्ठी लिखी थी, मेरे प्यारे बंसी वाले, उसमें उन्होंने कृष्ण भगवान को कहा था कि आप देखिए ये बहुत जरूरी है सुनना, आप जानते हो दादागिरी क्या होती है, चाहिए अपने को भाई। उन्होंने उस चिट्ठी में क्या लिखा है?
1: जी जी,
0: तो हमने छापी है, आपने ट्रांसलेट किया उसको?
1: बिल्कुल बिल्कुल।
0: लिखा है मेरे प्यारे बंसी वाले, ये जो सपना है ना, गीत लिखूं, गीत गाऊं, गीत को परफॉर्म करूं, गीत की धुन बनाऊं, ये तूने मेरे आंखों में डाले, अब तू इसको पूरा करेगा।
1: क्या प्यारी बात है यार। वाह वाह वाह वाह वाह।
0: मांगा नहीं है, आप सोचो पूरी दुनिया मांग रही है। अरे मेरे को ये दे दे भाई, मैं इतने ही दे दे तो मैं ये फास्टिंग करूंगा, ये दे दे तो मैं यहाँ चढ़ा। अच्छी बात है, वो भी अच्छी बात, वो भी चलता है, दैट इज ऑल्सो पार्ट ऑफ आवर कल्चर। लेकिन यहाँ एक आदमी है जो कृष्ण भगवान को बोल रहा है तूने ये सपना डाला ना मेरे आंख में, अब तू पूरा कर इसको।
1: तो कृष्ण पर उनका इतना ज्यादा विश्वास था, इतनी भक्ति थी कि पर्स में भी कृष्ण होते थे, और कई बार उन्होंने बंसी वाले को चिट्ठियां लिखी।
0: बड़ा नटखट है तू
1: कृष्ण का, नहीं क्या बात है। ये गाना भी बख्शी साहब का।
0: सर वो गाने में एक जो मेरा जो फेवरेट वर्स है ना, मेरे जीवन का तू एक ही सपना, जो कोई देखे सोचे समझे वो अपना।
1: वाह,
0: लाइन है यार, आप सोचो।
1: वाह वाह,
0: क्या कहनी चाहते लोगों से कि मुझे गाड़ी मिल जाए ऐसे, या मुझे ऐसे धंधा मिल जाए, लेकिन यहाँ ये बोल रही है कि मेरा बच्चे का एक, मेरे लिए मेरे बच्चे के लिए एक ही सपना है, इसको जो मिले ना, सोचा यार इसका मेरा होता।
1: क्या
0: इससे बड़ी दुआ है क्या दुनिया में?
1: नहीं, नहीं। क्या गजब का ख्याल है।
0: वो गाने में कहीं कहा कि मेरा बेटा राजा बन जाए, या मेरा बेटा गाड़ी ले ले बड़ी, जो देखे समझे अपना, यार तो मेरे जैसा है, अपना ही जैसा यार।
1: वाह वाह वाह।

0: बख्शी साहब को माय सीनियर, ही वाज माय सीनियर इन माय जॉब, आई वाज एन असिस्टेंट डायरेक्टर, ही वाज द चीफ असिस्टेंट डायरेक्टर, शाकिर खान. शाकिर खान ने बख्शी साहब का इंटरव्यू लिया सुभाष जी के लिए. क्वेश्चन सुभाष ने पूछा था बख्शी साहब को कि बख्शी जी आपको कब लगता है कि आप फेल हो गए हो एज अ राइटर. ही सर मुझे जब भी मुझे कोई बोलता है ना कि ये गाना मैंने सुना मुझे लगा ये बख्शी साहब ने लिखा है, मुझे लगा मैं फेल हो गया हूँ.
1: गजब.
0: क्योंकि एज अ लिरिसिस्ट माय वॉइस हैज टू बी हिडन. अगर मेरी आवाज लग रही है आपको इस गाने में कि ये लव्स बख्शी साहब के हैं तो ये वो मेरा फेलियर है.
1: क्योंकि वो कैरेक्टर का गाना नहीं लग रहा है.
0: कैरेक्टर गाना नहीं लग रहा.
1: बहुत गहरी बात है.
0: इसलिए वो मिलन फिल्म में वो गाना डिलीट करवाया बख्शी साहब ने. मिलन फिल्म में गाना है नूतन का जो डिलीट किया, लता जी का गाना है. यूट्यूब में आपको उसका वीडियो नहीं मिलेगा कहीं भी. तो मिलन फिल्म लगी, देखी उन्होंने, आज दिल पे कोई जोर चलता नहीं,
1: मुस्कुराने चले थे मगर रो पड़े.
0: तो जब फिल्म देखी प्रीमियर में, बख्शी साहब घबरा गए. गिवन एंड टोल्ड द प्रोड्यूसर, डायरेक्टर को बोला कि ये गाना निकाल दो फिल्म से. फिल्म रिलीज हो गई है, क्यों निकालूं, ये गाना मैंने गलत लिख दिया. कैसे गलत लिख दिया, कितना अच्छा गाना है सर, दैट कैरेक्टर इज अनएजुकेटेड, शी कैन नॉट स्पीक सच हाई लिटरेचर वर्ड्स. प्रोड्यूसर को बोला है सर लिसन टू हिम, ही इज टॉकिंग सेंस. वो सब इंग्लिश में बात करते थे साउथ वाले.
1: साउथ की फिल्म थी.
0: ही वांट्स टू रिमूव द सॉन्ग, ही इज द राइटर ऑफ द फिल्म. व्हाई यू वांट टू रिमूव द सॉन्ग, दिस आर नॉट माय वर्ड्स, दिस आर माय वर्ड्स, दे आर नॉट द वर्ड्स ऑफ द कैरेक्टर. उसका जो कल्चरल बैकग्राउंड है ये वर्ड्स बोल ही नहीं सकती वो.
1: क्या
0: आज दिल पे कोई
1: जोर चलता नहीं,
0: मुस्कुराने लगे थे मगर रो पड़े.

0: एक बार हमारे घर में पार्टी हुई थी, डैडी के दोस्त का बर्थडे था, मिस्टर वीके मेहता, तो बख्श साहब ने गाना गाना शुरू किया, तो एक लाइन गाए और वीके मेहता साहब ने बोला बख्श साहब ये बहुत सैड गाना है, इसको मत बजाइए, खुशी का माहौल है। तो बख्शी साहब ने रविंद्र टैगोर को कोट किया, और हमारे घर में डैडी जब तक थे रविंद्र टैगोर की फोटो
1: जी
0: हमारे हॉल में थी, रविंद्र टैगोर की फोटो। ही सेड टैगोर ने कहा है द हैप्पीएस्ट सॉन्ग्स आर द सैड सॉन्ग्स, क्योंकि जब तक आपके आंख से आंसू नहीं निकलेगा यू विल नॉट स्माइल, टियर कम्स फॉर यू टू स्माइल।
1: आंसू जो है वो मुस्कानों के लिए रास्ता बनाते हैं,
0: आंसू मुस्कान के लिए रास्ता बनाते हैं। तो आपने बहुत अच्छा कहा कि आंसू मुस्कान का रास्ता है।
1: जब बंबई आए और अलग अलग जगह स्ट्रगल कर रहे थे तो एक टिकट चेकर ने उन्हें पकड़ लिया।
0: अरे कमाल है वो तो,
1: वो कहानी बताइए।
0: जय हो, मैं सुबह जब उठता हूँ तो मैं भूमि अग्नि वायु आकाश जल ईश्वर का नाम लेता हूँ, साथ में चित्रमल जी का नाम लेता हूँ, हमारे पितरों का नाम लेता हूँ, एंसेस्टर्स और चित्रमल जी का। चित्रमल जी कौन है? वेस्टर्न रेलवे टिकट कलेक्टर थे। जब 6 महीने में वो हार गए सेकंड टाइम, पैसे खत्म हो गए, तो वापस उन्होंने सोचा अभी तो वापस जाना पड़ेगा, तो वो मरीन ड्राइव स्टेशन में जाके बैठ गए कि यहां से ट्रेन पकड़ूंगा, दादर जाऊंगा, फिर दादर से सीधा डायरेक्ट फ्रंटियर मेल या पंजाब मेल पकड़ के वापस लखनऊ जाऊंगा। लखनऊ में मैके छोड़ के आए थे मम्मी को और बेटी को, तो वहां पर एक टिकट कलेक्टर आया, उन्होंने पकड़ा बख्शी साहब को, बोला टिकट दिखाओ, बोला टिकट नहीं है, फाइन भरो, तो बोला फाइन के लिए पैसे नहीं है, बोला भाई टिकट के पैसे नहीं है, फाइन के भी पैसे नहीं है, कौन हो तुम, क्या करते हो, क्या लिख रहे हो इधर बैठ के, मैं देख रहा हूं तुमको, मैं 4-5 चक्कर लगाया तुम इधर बैठ के कुछ लिख रहे हो, क्या लिख रहे हो, बस सुनाओ, बोले मैं कविता लिख रहा हूँ। अच्छा कविता लिख रहे हो, वो कविता का शौकीन था, फिल्मों का शौकीन था, हर गाना मालूम था, आप देखो क्या चमत्कार ईश्वर का। अपना आगरे के रहने वाले, क्या कर रहे हो, बोले मैं गीतकार बनने आया था, वापस जा रहा हूँ। क्यों वापस जा रहे हो, काम नहीं मिला। अच्छा क्या लिख रहे हो उधर, आज क्या लिखा है, सुनाओ, सुनाया। अच्छा कुछ और सुनाओ।

0: वो सुनाया, तीन चार उसने कविता सुनी बख्शी साहब की। मैंने, तुम वापस मत जाओ। तो बोला, मेरे पास तो पैसे नहीं है रहने के लिए बम्बई में। तुमने जो लिखा है वो जो आज के बड़े बड़े गीतकार है उसके लेवल का है। मैं तो बचपन से सुनते आ रहा हूँ गाने, मुझे पता है कि आप तुमने ये तुम्हारी बहुत अच्छी लिखा है, मेरे को लगता है कि तुम्हारा हो जाएगा इस शहर में, लेकिन मैं रहूंगा कहाँ, ये तुम मेरे साथ रहो। घर ले गया उनको, तीन साल रखा उसने घर पे
1: बुरीवली में।
0: हाँ, पैसे भी नहीं लिए।
1: तो
0: जिंदगी भर मरते तक दम तक पैसे नहीं मांगे बख्शी साहब से।
1: चित्रमल स्वरूप जी बख्शी साहब को अपने घर लेके आए।
0: हाँ,
1: अब एक आसरा हो गया।
0: हाँ,
1: यहाँ से स्ट्रगल किया जा सकता था।
0: हाँ,
1: मैंने सुना है कि वो उनको जेब खर्च भी दिया करते थे।
0: हाँ, कभी कभी कुछ 5-10 पैसे या 50 पैसे 25 पैसे देते थे, या आज स्ट्रगल करके आके इधर नौकरी काम ढूंढ के आया, वो हिसाब से। तो उनका एक बड़ा अच्छी पॉलिसी थी, उनको था कि मैं रोज जब तक 5 लोगों को नहीं मिलूंगा घर नहीं जाऊंगा वापस। पर वो फिल्मिस्तान स्टूडियो में उनको मिले, रोशन साहब को। बहुत कोशिश की, रोशन साहब को नहीं, रोशन साहब नहीं मिलते थे। यू वेरी बिग स्टार एट दैट टाइम रोशन साहब।
1: बिल्कुल बिल्कुल।
0: 1956 रोशन साहब ने ऐसे ही बोला, अच्छा अच्छा ठीक है, तुम कल सुबह आ जाओ मेरे घर पे। साहब कहाँ रहते हैं? तो उन्होंने लिख के दिया, लिंकिंग रोड सांता क्रूज, लिख के एड्रेस लिख के दिया, तुम कल सुबह 10 बजे आ जाओ, जो तुमने कविता लिखी मैं सुन लूंगा। तो चले गए वापस बोरीवली और ज्वालानगर। तो वहां चले गए और जबरदस्त बारिश हुई, जैसे बम्बई में बारिश हुई 2 दिन वैसे, और पूरा पानी भर गया। इतना पानी भर गया कि ट्रेन तो बंद हो जाती थी तब, बहुत जल्दी ट्रेन बंद हो गई और बीएसटी बस भी बंद हो गई। अब बोले, यार ये तो 10 बजे का टाइम दिया इसने, अभी आर्मी में थे तो उनको आर्मी में जब सुबह ले जाते थे ना मार्चिंग या रनिंग, तुमको पता रहता था कि इतने हमको इतने किलोमीटर इतने टाइम में कवर करने के लिए हमको इतने स्टेप लेने पड़ेंगे। तो उन्होंने कैलकुलेट किया, अगर मैं बोरीवली से सांता क्रूज लिंकिंग रोड वेस्ट चल के जाऊं तो कितने घंटे लगेंगे। तो वो हिसाब से उन्होंने चलना शुरू किया बरसात में, और रास्ते में छतरी भी टूट गई। बिल्कुल 10 बजे उन्होंने घंटी बजाई, उनकी बीवी ने दरवाजा खोला तो बोले, भाई कौन हो तुम? पूरे अजीब सा आदमी है, पूरा गीला, कपड़े गीले, किताब गीली, ऐसे खड़ा है। बोले, मुझे साहब ने, सर ने बुलाया, रोशन सर ने बुलाया। अच्छा ठीक है, रोशन दबाए। बोले, अरे भाई क्या हो गया, आपने मुझे बुलाया था?
1: पागल हो गया,
0: बरसात में क्यों आए तुम? इसे आपने मुझे बोला था ना आने के लिए, आप मेरा गाना सुनेंगे। इसे हाँ, लेकिन इतना जरूरी नहीं था।
1: हाँ, उन्होंने कहा, बख्शी तुम पागल हो क्या?
0: हाँ, तुम पागल हो क्या तुम? इसे सर, आपके लिए जरूरी नहीं था, मेरे लिए जरूरी था।
1: क्या बात है,
0: एकदम चौंक गया हुआ आदमी। उसको लगा कि सारे ये तो अलग ही आदमी है। उसने टोलिया दिया, पहले सुखा किया, चाय पिलाई, बोला अच्छे सुनाओ।
1: हाँ।
0: तो उन्होंने उनको बेदाग फिल्म में गाने दिए।
1: वाह वाह वाह वाह, यहाँ से शुरू
0: होता है कि गाने क्यों जरूरी हैं।
1: जी,
0: ये जो किस्सा है क्यों जरूरी है उनकी जिंदगी के लिए, क्योंकि उनकी भला आदमी फिल्म फ्लॉप हो गई थी। फ्लॉप आदमी को काम नहीं मिलता हमारी इंडस्ट्री में, चढ़ते सूरज को सलाम है। रोशन साहब ने उनको जो लिया ना फिल्म में, सबको पता चल गया इंडस्ट्री में कि यार ये कौन है, तो उनको काम मिलना शुरू हुआ।
1: सोचिए कि शकील के नगमे थे, तो उसमें बख्शी साहब को बीच में मौका मिला।
0: राजेश रोशन हमारे घर आए 1970 में जूली फिल्म के गाने लिखवाने, तो राजेश रोशन की ये लव्स हैं, कभी आप उनको मिलेंगे तो पूछना कि तुम्हारे डैडी ने मुझे बोला था कि तेरे लिए तो एक्स्ट्राऑर्डिनरी काम देना पड़ेगा, करना पड़ेगा। तो रोशन का बेटा है, तेरे फादर ने मुझे सेकेंड चांस दिया था इंडस्ट्री में।
1: वाह वाह।
0: और उन्होंने मुझे कहा था कि उन्होंने भूल गया सब कुछ, कुछ 2-3 हफ्ते लिए गाने लिखने में, लिखते और फाड़ देते, लिखते और फाड़ देते, लिखते और फाड़ देते। बोला मैं पक गया, मेरे को लगा बख्शी साहब गाने लिखने में भूल गए, लेकिन जब बख्शी साहब ने मुझे गाने दिए, अनफॉरगेटेबल सॉन्ग दिए मुझे जूली में, और इतनी मेहनत की बख्शी साहब ने मेरे लिए कि मैं जिंदगी भर नहीं भूल सकता, कि बिकॉज आई वॉज रोशन सन।
1: कितनी
0: इतना बड़ा काम किया होगा रोशन साहब ने ये आदमी के लिए, कि ये 15-15 दिन ले रहा है गाना लिखने के लिए, जो तो आधे घंटे में लिख देता है।
1: रोशन साहब के लिए बख्शी साहब ने लिखा, आया है मुझे फिर याद वो जालिम, गुजरा जमाना बचपन का।
0: दे वर द लास्ट फिल्म टुगेदर।
1: जी,
2: आया है मुझे फिर याद वो जालिम।

0: ये अलग ही मिट्टी के लोग थे।
1: बिल्कुल,
0: ये वो मिट्टी है जो बाढ़ में बहती नहीं है, नदी को पकड़ के रखती है, ये वो मिट्टी के लोग हैं।
1: जो पहला गाना था भला आदमी का, वो कैसे मिला था?
0: टोलिनो बक्शा का क्या था, मैं जब तक 5 लोगों को अपना ऑफर नहीं दूंगा, मैं कौन हूँ क्या हूँ, इंट्रोडक्शन करूंगा, काम नहीं मांगूंगा, मैं घर नहीं जाऊंगा, तो वो रंजित स्टूडियो चले गए। उस दिनों में सारी फिल्में स्टूडियो में बनती थी, आउटडोर बहुत कम लोग जाते थे, वो गाने के लिए आउटडोर जाते थे। महाबलेश्वर चले गए या किधर इधर नेशनल पार्क चले गए, बोरीवली नेशनल पार्क, रंजित स्टूडियो गए और वहां पर उनका जो चौकीदार था ना बख्शी साहब, वॉज वेरी क्लेवर। अच्छा, उनको पता था कि फिल्मिस्तान में ऐसे जाओ तो भरा देते हैं, तो क्या करते थे, फिल्मिस्तान के बाहर जाते थे और वहां से टैक्सी लेते थे
1: साहब की तरह।
0: तो सीधा अगर पहले लिया होगा सारा स्ट्रगल आ गया, स्ट्रगल आया था निकाल साले स्ट्रगलर को। तो ही वॉज वेरी इंटेलिजेंट, उनको पता चला कि अंदर साहब बैठे हैं और बहुत परेशान है क्योंकि उनका लिरिसिस्ट नहीं आया। तो बोला अच्छा नहीं आया, घुस गए अंदर, भगवंत दादा के रूम में चले गए, कौन है भाई तुम, क्या कर रहा है इधर तुम? इसे मैं फौजी हूँ और मैं गाने लिखता हूँ। फौजी की बहुत इज्जत थी, फौजी हो गाने लिखते हो, अच्छा क्या लिखते हो बताओ, सुना कुछ? कुछ सुनाया तो बोला अच्छा ठीक है, मेरे को 4 गाने चाहिए, गानी सुन लो और तुम 8-10 दिन में वापस आ जाओ, एक गाना लिख के ले आओ, चाहिए मुझे 4 गाने, एक गाना लिख के ले आओ। बख्शी साहब अगले दिन पहुंच गए वापस, बोला क्या हुआ भाई? बोला सब रेडी है, आपने बोला था ना गाना लिखने के लिए। हाँ लिख के ले, हाँ लिख के ले, सुनाओ। सुनाया धरती के लाल ना कर इतना मलाल, पता ऐसे कोई जो लव वर्ड्स हैं उसके गाने के, को बहुत पसंद आया। बोले वाह तो बाकी के 3 गाने लिखो, इसी का लिख के लाया। तीनों का चारों लिख के लाया, चारों गाने लिख दिए तुमने
1: जी।
0: हाँ सुनाओ, सुने रिकॉर्डिंग होगी उसकी,
1: बाबा
0: 1 महीने में 4 गानों की। इसलिए मैं बोल रहा हूँ ये वो मिट्टी है जो बाढ़ भी आए ना तो नदी को बाहर ही निकल लेंगे, ये वो मिट्टी के लोग।
1: इस तरह उनको पहला चांस मिला था।
0: हम क्यों करें चिंता, उनको चिंता हमारी है।
1: और यही हुआ कि उन्होंने भला आदमी के गाने लिखे, फिर रोशन साहब से मिले, बेदाग के गाने लिखे, और उसके बाद कल्याण जी आनंद जी से उनकी मुलाकात हुई और मेहंदी लगी मेरे हाथ फिल्म मिली,
0: उनकी पहली हिट थी
1: जी,
0: पहली हिट फिल्म जिसमें सारे गाने उनके थे। उससे पहले एक और हिट थी चांसी महबूबा, उसमें सारे गाने बख्शी आपके नहीं थे, लेकिन
1: 1-2 गाने थे हिमालय की गोद में।
0: हाँ लेकिन ये गाना बहुत चला था
1: जी,
0: जबरदस्त चला था ये गाना। मनोज कुमार जी टोल्ड मी ये मेरा फेवरेट गाना है मेरी जिंदगी का।

0: लेकिन जो पहली फिल्म जिसमें सारे गाने आनंद बख्शी के थे, जो चली थी, वो थी मेहंदी लगी मेरे हाथ,
1: और वो भी कल्याण जी आनंद जी भाई ने उनको मौका दिया था।
0: और उसके बाद उनकी एक फिल्म चली थी जब जब फूल खिले, सुपर हिट। उसके बाद मिलन आई
1: जी,
0: सुपर डुपर हिट। के बाद आराधना आई, आराधना ने बख्शी साहब को ब्रह्म लोक में पहुंचा दिया जिसमें वो 2002 से उतरे।

0: होटल में गोवा भेज दो, रिजॉर्ट में भेज दो।
1: अरे मेरे प्रोड्यूसर मेरे से बहुत खुश हैं। ऐसा क्यों खुश हैं? आपकी फिल्में चलती है नहीं, उनका पैसा बचता है। ऐसा क्यों पैसा बचता है? इसे क्योंकि मैं होटल रूम नहीं मांगता ना, तो मैं बोलता हूँ मुझे लोनावला ले चलो, तुम लोग सब लड़ रहे हो, मैं तो इस लड़ाई के बीच में बैठ के
0: गाने लिख रहा
1: हूँ। कोकर की सीटी बज रही है, पोस्टमैन आ गया है उसका पैसा देना है, बनिया आ गया है उसका सामान लेना है, उसके बीच में मैं गाने लिख रहा हूँ, प्रोड्यूसर का पैसा बचता है। आई एम वेरी एफिशिएंट फॉर माय प्रोड्यूसर, क्योंकि उनका एक बहुत सिंपल फिलॉसफी था कि बेटा ये धंधा है, मेरे लिए मेरा शौक है, वो मेरा घर चलता है इससे, लेकिन प्रोड्यूसर के लिए धंधा है। इफ आई डू नॉट सेटिस्फाई द बायर ऑफ माई गुड्स, वाई विल ही बाय माई गुड्स अगेन? मैं 50 अंतर लिख के देता हूँ, क्योंकि कोई और नहीं करता ये सब। तो वो जब मेरे पास आते हैं, उनको पता है कि पैसे उतने ही लेगा, लेकिन बाकी उनसे ज्यादा लिख के देता है, इतने पैसों में इतना ही मिलेगा नहीं बोलता है। सो ही वॉज अ फैंटास्टिक मार्केटिंग एजेंट फॉर हिमसेल्फ, बट नॉट मार्केटिंग बाय सेइंग आई एम ग्रेट, बाय गिविंग यू मोर देन यू आस्क फॉर।
0: बहुत काम करते थे,
1: हाँ
0: मेहनत बहुत।
1: तुमने 3 मांगा ना, ये 30 लेके जा भाई।
0: मेरी बहुत सारे संगीतकारों से बात हुई जिन्होंने ये कंफर्म किया है कि बख्शी साहब को कोई गाना लिखने को कहा जाए तो जहां दूसरे गीतकार 3-4-5 अंतरे लिखते थे, वहां बख्शी साहब 30-30 अंतरे लिख के देते थे।
1: जब होंगे जाने कहां होंगे 59 अंतरस,
0: अरे बाप रे 59।
1: इसे कि ये सरस्वती है, ये बहर ही है, इसको बहने दो, रोको मत, क्योंकि इसके पैसे इतने मिलेंगे। तो नाराज हो जाएगी कि तुमने मुझे बहने नहीं दिया। हम सोचते हैं हमारे घर में लक्ष्मी आई है, उसको दबा के रख देते हैं कबर के अंदर, वो घूमने आई है, उसको निकालना पड़ेगा, घुमाने लेकर जाना पड़ेगा आपको। धरती से जुड़ा हुआ कॉमन सेंस जो आपको हार्वर्ड में नहीं सिखाया गया है।
0: जी जी, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल की बात की जाए कि उनसे बहुत लंबा रिश्ता रहा।
1: मुझे के नैयर साहब ने बताया था
0: जी,
1: जर्नलिस्ट, कि उन्होंने इंटरव्यू लिया था बख्शी साहब का, और उसमें कहा था कि मेरे ख्याल में लक्ष्मी जी का इंटरव्यू लिया था, तो लक्ष्मी ने कहा था कि बख्शी साहब मुझे काफी बार फोन करते थे कि सुन मैंने क्या लिखा है मुखड़ा, तो मुझे जब भी मुखड़ा पसंद आता था मैं कहता था बख्शी जी अच्छा लिखा है, लॉन्ग ड्राइव पे चले, तो आ जाओ। लॉन्ग ड्राइव क्या था? वो जू से निकलते थे पारसवाणी से, 10th रोड बैंटर आते थे पेरीक्रॉस रोड, अपनी गाड़ी में बख्शी साहब को पेरीक्रॉस रोड से लेते थे और ये लोग जाते थे बर्ली सीफेस।
0: अच्छा, और आगे निकल जाते थे?
1: हाँ, बर्ली सीफेस में जाके वहां बैठ के गाना पूरा कम्प्लीट करके वापस आते थे।
0: अरे
1: उसका कोड वर्ड था लॉन्ग ड्राइव, लॉन्ग ड्राइव फॉर हनबख्शी वर्स, इसको मेरा मुखड़ा पसंद आ गया है और इसको धुन दिख रही है इसमें।
0: हाँ, तो सब लोग समंदर के किनारे बैठेंगे और उस गाने पर काम करेंगे
1: गाड़ी के अंदर ही बैठ के।
0: जी,
1: वो अपना पान खाएंगे और गाना कंप्लीट करके आ जाते, उसको कहते थे लॉन्ग ड्राइव।
0: ये बड़ी पुरानी दोस्ती रही लक्ष्मी प्यारे और आनंद बख्शी की।
1: यस यस,
0: जब वो स्ट्रगल कर रहे थे,
1: जब उन्होंने मिलन की कहानी सुनी, साउथ इंडियन फिल्म की कहानी सुनी, तो एक पान वाले के बाहर खड़े थे फिल्म सेंटर, बहुत एकदम सीरियस हो गए थे बख्शी साहब। प्यारे जी ने पूछा, प्यारे जी ने मुझे एक कहानी बताई थी कि बख्शी जी क्या हो गया आपको, तो सीरियस हो गए आप? बोले हाँ यार, तब इमोशनल हो गया हूं कहानी सुन के। और उन्हें ये लाइन कही थी प्यारे जी को, समा ये सुहाना मैं खुश हूं मेरे पास, क्या वो गाना मिलन का,
0: मैं खुश हूं मेरे आंसुओं पे ना जाना, मुबारक हो तुमको समा ये सुहाना।
1: ही सेड मुबारक हो, मुझे बड़ी खुशी है कि इतनी इमोशनल फिल्म में हम तीनों साथ काम कर रहे हैं। आई एम ग्लैड दैट माई पार्टनर्स इन द सॉन्ग्स आर यू टू बोथ, क्योंकि यू विल अंडरस्टैंड द इमोशन दैट वी हैव जस्ट एक्सपीरियंस एंड कम। तो उन्होंने ये लाइन कही थी कि मुबारक हो सबको समा ये सुहाना, मैं खुश हूं मेरे आंसू पे ना जाना, मैं तो दीवाना दीवाना दीवाना। और ये इट वॉज अ कॉम्प्लीमेंट टू LP, ये मुझे प्यारे जी ने बताया था कि ये हमारे लिए बख्शी साहब ने हमको कॉम्प्लीमेंट दिया था कि देखो ये इतनी जरूरी फिल्म, इतनी इमोशनल फिल्म में तुम दोनों मेरे साथ हो, कमाल करेंगे हम साथ।
2: मुबारक हो सबको समाये सुहाना।

0: 6 बजे 7 बजे उठ जाते थे लिखते लिखते। हम स्कूल जाते थे और गाने लिख रहे हैं, वापस और गाने लिख रहे हैं
1: सोफे के सामने जमीन पे बैठ के।
0: जमीन पे बैठ के कोई नखरा नहीं।
1: कहीं कभी कोई

0: क्योंकि बख्शी साहब के जबान से उन्होंने कहा है, उनकी मेरे पास कोट है मैगजीन के मैंने जिंदगी में काम हमेशा मांगा, जिसको भी मिला मैंने काम मांगा, आराधना तक। आराधना के बाद मुझे ईश्वर ने ऐसे जगह पहुंचा दिया, मैंने कभी किसी से काम मांगा नहीं, क्योंकि जब मुझे मौका मिला काम मांगने का, मुझे लगा अगर मैं किसी से काम मांगूंगा वो मेरे नाम पे काम दे देगा तो मैं किसी और का काम छीन लूंगा।
1: बिल्कुल,
0: क्योंकि मैं एक 70 रुपए का सिपाही था, आज एक फिल्म के 70,000 मिलते हैं मुझे। मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि मुझे एक फिल्म का 70,000 रुपए मिलेगा, तो मैं क्यों मांगू किसी से काम, किसी और की घर की लक्ष्मी मैं कितनी छीनना नहीं चाहता, मुझे जो है बहुत दिया मुझे ईश्वर ने।
1: मिलन फिल्म के गानों की बात हो रही है, एक रेल यात्रा वाला किस्सा है जिसमें बख्शी साहब दिल्ली जा रहे हैं और
0: तो उनको लोग बोलते थे अरे बख्शी साहब क्या फैंटास्टिक, आप तो यू हैव अराइव्ड, यू नो जो इंग्लिश में बोलते हैं यू हैव अराइव्ड, हिंदी में क्या उसका मुहावरा है
1: कि कामयाब हो गए भाई आपका, तो
0: कामयाब हो गए आप तो यार, फिल्म पे फिल्म मिल रही है, गानों पे गाने मिल रहे हैं, तो टू रमेश शेट्टी नो के नहीं नहीं, क्योंकि क्या है कि एक बार वो सिर में चढ़ जाए ना तो आप गीत लिखना भूल जाएंगे, क्योंकि अभी आपको है कि अभी मैं तो बड़ा कामयाब हो गया हूं यार, मुझे क्या मेहनत करने की क्या जरूरत है। तो वो हमेशा हर तारीफ को डिफ्लेक्ट करते थे कि साला ये मेरे को, ये अगर तारीफ चिटक गई तो मैं गया खत्म हो जाऊंगा, उनको उनको ये था सरस्वती नाराज हो जाएगी अगर मैंने ये सब क्रेडिट लेना शुरू कर लिया ना तो ये भाग जाएगी सरस्वती। चुप बैठो रिफ्लेक्ट करो, आरडी पे डाल दो, एलपी पे डाल दो, राजेश खन्ना पे डाल दो, राजेश खन्ना ने गाया इसलिए हुआ, हमेशा करते थे वो, डायरेक्टर पर डाल दो, राइटर पर डाल दो, अच्छी कहानी सुनाए तो हुआ। तो वो ही वॉज ट्रेवलिंग बाय फ्रंटियर मेल और पंजाब मेल, वो रात का वक्त था और एक अनशेड्यूल्ड स्टॉप में गाड़ी रुक गई क्योंकि सिग्नल नहीं था रेड का, तो बड़ा अजीब सा एक स्टॉप था जहां इलेक्ट्रिसिटी भी नहीं थी, पूरा स्टेशन काला था और एक फकीर लेट राइट, उसने आग जलाई हुई थी छोटी सी आग, और उस आग के रोशनी से अपना वो तानपुरा बजा रहा था और ये गाना गा रहा था, ये मिलन फिल्म का आई थिंक सावन का महीना पवन करे सोर, वो फकीर गा रहा था
1: जी।
0: और तब बख्शी आपको लगा यार ये ऐसा जगह है, ये ऐसी जगह ट्रेन रुकी है जहां इलेक्ट्रिसिटी नहीं है, मतलब यहां गाना सुनने के लिए आपको बैटरी खरीदनी पड़ेगी, लाइट नहीं है, आपको बाहर जाके दुकान से बैटरी खरीदनी पड़ेगी, आप उसको डालोगे तब वो चलेगा। और इस गांव में अगर मेरा गाना एक गरीब से गरीब फकीर गा रहा है, यानी कि जहां इलेक्ट्रिसिटी नहीं है वहां भी मेरा गाना पहुंच गया है।
1: वाह
0: बख्शी, बस जो लोग कह रहे ना वो सच है,
1: इसको कहते हैं कामयाबी।
0: तो कामयाब हो गया है।
2: सावन का महीना पवन करे सोर,
3: सावन का महीना पवन करे शोर,
2: पवन करे शोर,
3: पवन करे शोर,
4: अरे बाबा शोर नहीं, शोर शोर शोर,
3: पवन

0: चीज आप सक्सेस है ना, और यार सिंपल वर्ड में कितनी बड़ी बड़ी बातें कह जाते हैं। इसका जो क्रेडिट है ना, इट गोज टू शैलेंद्र, क्योंकि शैलेंद्र ने जब बख्शी साहब को सुना, शुरू से सुनते रहे थे, तो उनको लगा कि बख्शी साहब वो तो उर्दू ज्यादा यूज कर रहे हैं, क्योंकि उर्दू पढ़ के आए थे। और क्या होता है, आप एक फील्ड में जाते हो, तो अगर यूनुस खान अगर वहां का टॉप जॉकी है, तो आप ट्राई एंड कॉपी यूनुस खान, और इफ अमीन सयानी इज योर गुरु, यू विल ट्राई एंड कॉपी अमीन सयानी। तो शैलेंद्र बोला देखो बख्शी साहब, क्योंकि बख्शी साहब जब आए थे तो बजरू साहब, साहिर साहब, ये सब बड़े बड़े लोग थे, उर्दू में लिखते थे काफी वर्ड्स।
1: बिल्कुल बिल्कुल।
0: तो उनको तो उर्दू वाज़ सेकंड लैंग्वेज फॉर हिम, फर्स्ट लैंग्वेज पढ़ाई की थी उन्होंने, तो वो भी उर्दू डाल देते थे गानों में। तो शैलेंद्र ने कहा कि बख्शी, अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारे गाने पूरे भारत में बजे और लोग आपके गानों को सिर्फ पसंद ना करें, उसको गाएं भी, तो उर्दू में मत लिखा करो, तुम सरल हिंदुस्तानी में लिखा करो, जैसे मैं लिखता हूं। एंड द फर्स्ट एक्सपेरिमेंट वॉज फर्ज। मस्त बहारों का मैं आशिक, जो मैं चाहे यार करूं।
2: मस्त बहारों का मैं आशिक, मैं जो चाहे यार करूं। चाहे फूलों के साए से खेलूं, चाहे कली से।

का मैं आशिक, मैं जो चाहे यार करूं, चाहे गुलों के साए से खेलो, चाहे कली से प्यार करूं।

बहारों का मैं आशिक, मैं जो चाहे यार करूं, चाहे फूलों के साए से खेलूं, चाहे कली से प्यार करूं।

0: ये स्टाइल यार चंद्र ने सही बोला था, अब तो मैं ये स्टाइल से लिखूंगा। उसके बाद गाने आए, अच्छा तो हम चलते हैं। वो गाने कहां से आए? शैलेंद्र की एडवाइस थी कि सरल हिंदुस्तानी में बातचीत की भाषा में लिखो। सो लॉट ऑफ क्रेडिट फॉर हंसबख्शी सक्सेस गोज टू शैलेंद्र जी।
1: कामयाबी का एक पक्का रास्ता।

0: अच्छा तो हम चलते हैं।
1: बहुत बहुत शुक्रिया कि आप आए और यादें आपने बांटी। शुक्रिया,
2: थैंक यू।
1: गीतकार आनंद बख्शी की याद में उनके बेटे राकेश आनंद बख्शी से आपके इस दोस्त यूनुस खान की बातचीत का दूसरा भाग अभी आपने सुना। रिकॉर्डिंग इंजीनियर भावना सिंदल, प्रस्तुतकर्ता जुबैर खान। अब अपने दोस्त यूनुस खान को दीजिए इजाजत। नमस्कार।

0: हिंदी सिनेमा की कुछ कल्ट फिल्में उनके नाम पर हैं, स्पर्श, कथा, दिशा और चश्मे बदूर।
1: उन्होंने कहा कि देखो, अब सिर्फ हम नौजवान तीनों दिखा रहे हैं, सिर्फ कॉलेज के युवक नहीं, उनके माँ बाप भी आए, उनके चाचा चाची आए, एक दादी माँ डाली, बाप डाला, एक भाई डाला, वगैरह वगैरह, एक पान वाला डाला। सईद को पकड़ा लिया और उसने कहा फिर मुझे, वी हैव टू गो टू जामा मस्जिद, पुरानी दिल्ली जाना पड़ेगा। मैंने कहा पुरानी दिल्ली क्या करोगे जाके, पान वाले का अगर मुझे करना है रोल तो मुझे देखना नहीं चाहिए पान वाले वगैरह। तो मैंने कहा ये नसीर के बाद ये एक
2: और आ गया।
1: एक और आ गया।
3: जल्दी बुलबुल, कोई और कर्जदार लग गया तेरे पीछे क्या?
4: अरे ललन मियां, आप काट देना रास्ता, अब मेरा काम नहीं होगा।
0: दास्तान सई परांजपे की, उजाले उनकी यादों के, 19 जुलाई से 9 अगस्त शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
5: सुनिए,
6: FM बैंड 31.3 मेगाहर्ट्ज पर ये आकाशवाणी बांसवाड़ा का माही चैनल है। दिन के 11 बजे हैं। श्रोताओं, अब आप सुनेंगे सुगम संगीत और सुगम संगीत के अंतर्गत आप सुनेंगे अभिजीत भट्टाचार्य के स्वर में कुछ गैर फिल्मी गीत।

ये आकाशवाणी बांसवाड़ा का माही चैनल है और आप सुन रहे हैं सुगम संगीत। और सुगम संगीत के अंतर्गत आप सुन रहे हैं अभिजीत भट्टाचार्य के स्वर में कुछ गैर फिल्मी गीत।

ये आकाशवाणी बांसवाड़ा का माही चैनल है। श्रोताओं, अभी आपने सुना सुगम संगीत, और सुगम संगीत के अंतर्गत आपने सुना अभिजीत भट्टाचार्य के स्वर में कुछ गैर फिल्मी गीत। दिन के 11:30 हुए हैं। अब आप सुनेंगे फिल्म संगीत। श्रोताओं, फिल्म संगीत का आगाज करते हैं बेफिक्रे फिल्म से, बेनी दयाल की आवाज में गीत। शब्द रचना है जयदीप साहनी की और संगीतकार हैं विशाल शेखर।

श्रोताओं, फिल्म संगीत की अगली पेशकश ये जवानी है दीवानी फिल्म से बेनी दयाल और शेफाली की आवाज में गीत, बोल हैं अमिताभ भट्टाचार्य के और संगीतकार हैं प्रीतम।

प्रसार भारती के पास है भारतीय संस्कृति की अनमोल धरोहर। इसमें शामिल है शास्त्रीय संगीत, नृत्य, साहित्य, नाट्य विधाएं, धारावाहिक, वृत्त चित्र और अन्य दुर्लभ रिकॉर्डिंग। और अब आप आकाशवाणी और दूरदर्शन के खजाने की डीवीडीज और सीडीज हासिल कर सकते हैं भारत में अपने संग्रह के लिए। प्रसार भारती के कार्यक्रमों का खजाना अगर है आपको पाना, तो लॉग ऑन कीजिए www.prasarbhartiarchives.co.in। याद रहे www.prasarbhartiarchives.co.in।

श्रोतों आइए सुनते हैं ए दिले मुश्किल फिल्म से नक्श अजीज की आवाज में गीत। संगीतकार हैं प्रीतम।

0: is...
1: श्रोताओं आइए सुनते हैं पटियाला हाउस फिल्म से जज्बीर जस्सी हरद कौर और महालक्ष्मी अय्यर की आवाज में। बोल हैं अमिता दत्त के और संगीतकार हैं शंकर एहसान लॉय।

दोस्तों, आकाशवाणी बांसवाड़ा का FM माही चैनल सुनने के लिए अब आपको कहीं जाने की दरकार नहीं, दुनिया के किसी भी कोने में सुन सकते हो आकाशवाणी बांसवाड़ा का अपना FM माही चैनल। आपको करना बस इतना सा है, अपने मोबाइल फोन में प्ले स्टोर में जाइए, टाइप कीजिए न्यूज ऑन AIR बिना किसी स्पेस के, NEWSONAIR न्यूज ऑन AIR। आप जैसे ही टाइप करेंगे, यही है वो ऐप जिसके जरिए आप सुन सकते हैं आकाशवाणी बांसवाड़ा का माई चैनल। याद रखिएगा, प्ले स्टोर में जाकर आपको सर्च करना है न्यूज ऑन AIR। हमें रहेगा आपके फीडबैक का इंतजार। नमस्कार।

श्रोताओं लीजिए सुनते हैं सनम पुरी और शिप्रा गोयल की आवाज में फिल्म हसी तो फसी से ये गीत। शब्द रचना है अमिताभ भट्टाचार्य की और संगीतकार हैं विशाल शेखर।

श्रोताओं, आइए सुनते हैं फिल्म संगीत की अंतिम पेशकश आतिफ असलम की आवाज में फिल्म हिंदी मीडियम से।

0: एफएम बैंड 1.3 मेगाहर्ट्ज पर ये आकाशवाणी बांसवाड़ा का माही चैनल है। श्रोताओं, अभी आपने सुना फिल्म संगीत। दिन के 12 बजने को है। अब पेश है विविध भारती के कार्यक्रम।
1: आप सुनेंगे समाचार हमारे दिल्ली केंद्र से। नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं प्रियंका अरोड़ा। संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही नीट मुद्दे पर विद्यार्थियों के विरोध प्रदर्शन के दौरान पुलिस की कथित कार्रवाई को लेकर विपक्ष के हंगामे के कारण दोपहर 12 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई। आज सवेरे लोकसभा की कार्यवाही शुरू होने पर अध्यक्ष ओम बिरला ने ग्लासगो में 23वें राष्ट्रमंडल खेलों में रजत पदक जीतने पर भारोत्तोलक हरजिंदर कौर और धावक गुलवीर सिंह को बधाई दी। बाद में अध्यक्ष ने प्रश्नकाल चलाने की कोशिश की तो विपक्षी सदस्यों ने विद्यार्थियों के विरोध प्रदर्शन के दौरान पुलिस की कथित कार्रवाई को लेकर नारेबाजी शुरू कर दी। उन्होंने कहा कि प्रश्नकाल सदस्यों का होता है और सरकार से जवाब मांगना सदस्यों के लिए सबसे महत्वपूर्ण काम है। श्री बिरला ने आरोप लगाया कि कुछ विपक्षी सदस्य जानबूझकर प्रश्नकाल में बाधा डाल रहे हैं, जो उचित नहीं है।
2: प्रश्नकाल के बाद इस चर्चा में भाग लीजिए। आप माननीय सदस्यों के हक को नहीं मार सकते, ये तरीका उचित नहीं है। आप अगर सदन को व्यवधान करना चाहते हैं, नियोजित तरीके से गतिरोध पैदा करना चाहते हैं, ये संसदीय परंपराओं के अनुरूप नहीं है।
1: उधर राज्यसभा में भी ऐसी ही स्थिति देखने को मिली। आज सवेरे सदन की बैठक शुरू होते ही कई केंद्रीय मंत्रियों ने सदन के पटल पर दस्तावेज रखे। कोयला, खान और इस्पात पर विभाग संबंधी संसदीय स्थायी समिति की रिपोर्ट भी पेश की गई। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने संसद में चर्चा के दौरान कांग्रेस के सांसदों पर लोक परीक्षा अनुचित साधन निवारण संशोधन विधेयक 2026 के प्रावधानों पर चर्चा न करने और सदन में विभिन्न राजनीतिक मुद्दे उठाने का आरोप लगाया है।
3: आज हम उम्मीद करते हैं राहुल गांधी जी और बाकी लोग बिल पे बोले। इतना महत्वपूर्ण बिल पे चर्चा हो रहे हैं और वो इधर उधर का बात करके भटकाने के लिए और राजनीतिकरण करके वो ध्यान भटकाना चाहते हैं। इतना अच्छा बिल लाया है और एग्जामिनेशन को लेकर के कोई और सजेशन है तो सजेशन दे सकते हैं कांग्रेस पार्टी। इतना महत्वपूर्ण बिल है और बिल पे नहीं बोलते हैं, ये ठीक बात नहीं है।
1: भारतीय खाद्य सुरक्षा तथा मानक प्राधिकरण ने दिल्ली स्थित एक निजी होटल का लाइसेंस खाद्य नियमों का उल्लंघन करने के कारण निलंबित कर दिया है। इनमें खराब हो चुके खाना पकाने के तेल का उपयोग करना और भोजन की खराब गुणवत्ता शामिल है। सोशल मीडिया पोस्ट में खाद्य सुरक्षा नियामक ने कहा कि जन स्वास्थ्य के हित में लाइसेंस तत्काल प्रभाव से 15 दिन के लिए निलंबित किया जाता है और खाद्य व्यवसाय संचालक को सभी खाद्य संबंधी गतिविधियां तुरंत बंद करनी होगी। खाद्य सुरक्षा नियामक ने सभी नियमों का पालन करने के लिए 15 दिन का समय भी दिया है, अन्यथा लाइसेंस रद्द कर दिया जाएगा। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने दक्षिण पश्चिमी जापान के कुमामोतो इलाके में कल आए जबरदस्त भूकंप पर दुख व्यक्त किया है। सोशल मीडिया पोस्ट में डॉ जयशंकर ने वहां के लोगों और सरकार के प्रति भारत का समर्थन और एकजुटता जाहिर की। भूकंप से मरने वालों की संख्या बढ़कर 13 हो गई है। जापान के प्रधानमंत्री सनाए तकाइची ने कहा है कि प्रभावित इलाकों में बचाव कार्य चल रहा है। यूक्रेन के कीव स्थित भारतीय दूतावास ने कहा है कि एमवी अमीर 1 जहाज पर सवार भारतीय नाविकों से संबंधित स्थिति उनकी सर्वोच्च प्राथमिकता है और वे जहाज पर सवार सभी भारतीयों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए संबंधित पक्षों के साथ निरंतर संपर्क में हैं। दूतावास ने यह जानकारी सोशल मीडिया पोस्ट के माध्यम से दी। आज वैश्विक बाघ दिवस है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस अवसर पर वन्य जीव प्रेमियों को शुभकामनाएं दी हैं। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि वैश्विक बाघ आबादी का 70% से अधिक हिस्सा भारत में स्थित है। उन्होंने कहा कि भारत के बाघ संरक्षण प्रयास प्रकृति के साथ सामंजस्य स्थापित करने की सदियों पुरानी संस्कृति से प्रेरित हैं और जनता की सामूहिक इच्छा शक्ति से संचालित हैं। ग्लासगो में राष्ट्रमंडल खेलों में गुलवीर सिंह ने पुरुष

0: की 10,000 मीटर दौड़ में रजत पदक जीतकर इतिहास रच दिया है। वे स्पर्धा में पदक जीतने वाले पहले भारतीय एथलीट बन गए हैं। राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति ने पदक जीतने पर गुलवीर सिंह को बधाई दी है। घरेलू शेयर बाजार के प्रमुख सूचकांकों में आज लगभग 1% की वृद्धि दर्ज की गई। अंतिम समाचार मिलने तक सेंसेक्स 849 अंक बढ़कर 77,615 पर कारोबार कर रहा था। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: हम विविध भारती से बोल रहे हैं, ये है राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। यादों की महफिल, ये कार्यक्रम आप सुनेंगे बस कुछ ही पलों में।

लीजिए सुनिए कार्यक्रम यादों की महफिल। इस कार्यक्रम में आप सभी सुनने वालों का एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, आज जाने माने अभिनेता संजय दत्त का जन्मदिन है। विविध भारती परिवार की ओर से हम उन्हें देते हैं ढेरों ढेरों शुभकामनाएं। और यादों की महफिल कार्यक्रम में आज हमने संजय दत्त की फिल्मों से ही कुछ गीत आपके लिए चुने हैं। यह इस कार्यक्रम का पहला गीत। फिल्म का नाम है रॉकी। आवाजें लता मंगेशकर और किशोर कुमार की, गीतकार आनंद बख्शी हैं, संगीत राहुल देव बर्मन का है।

0: लता मंगेशकर को अभी आपने सुना फिल्म का नाम था विधाता। गीत रचना आनंद बख्शी की थी और धुन बनाई थी कल्याण जी आनंद जी ने।
1: कहीं दूर जब दिन ढल जाए,
2: मुकेश के गानों में है सादगी।
3: एक दिन बिक जाएगा माटी के मोल,
2: मुकेश के गानों में है रुमानिया।
3: कहीं करती होगी ओ मेरा इंतजार।
2: हम सबके भीतर रहते हैं थोड़े थोड़े मुकेश।
3: जाऊं कहां बताए दिल।
2: पार्श्व गायक मुकेश की याद में एक दिलचस्प महफिल जिसमें शामिल हैं गायक मुख्तार शाह और गोविंद मिश्र।
4: जिस देश में गंगा बहती है, जिस देश में गंगा बहती है।
2: आज की मेहमान 29 जुलाई शाम 4 बजे सिर्फ विविध

यादों की महफिल कार्यक्रम में अब सुनिए नदीम श्रवण का संगीत, समीर की बोल, एसपी बालसुब्रमण्यम, कुमार सानू, पंकज उदास और अनुराधा पौडवाल की आवाजें फिल्म साजन के लिए।

0: यादों की महफिल कार्यक्रम आप सुन रहे हैं विविध भारती से।
1: हिंदी सिनेमा की कुछ कल्ट फिल्में उनके नाम पर हैं, स्पर्श, कथा, दिशा और चश्मे बदूर।
2: उन्होंने कहा कि देखो, अब सिर्फ हम नौजवान तीनों दिखा रहे हैं, सिर्फ कॉलेज के युवक नहीं, उनके माँ बाप भी आए, उनके चाचा चाची आए, एक दादी माँ डाली, बाप डाला, एक भाई डाला, वगैरह वगैरह, एक पान वाला डाला। सईद को पकड़ा लिया और उसने कहा फिर मुझे, वी हैव टू गो टू जामा मस्जिद, पुरानी दिल्ली जाना पड़ेगा। मैंने कहा पुरानी दिल्ली क्या करोगे जाके, पान वाले का अगर मुझे करना है रोल तो मुझे देखना नहीं चाहिए पान वाले वगैरह। तो मैंने कहा ये नसीर के बाद ये एक
3: और आ गया।
2: एक और आ गया।
4: जल्दी बुलबुल, कोई और कर्जेदार लग गया तेरे पीछे क्या?
5: अरे ललन मियां, आप काट देना रास्ता, अब मेरा काम नहीं होगा।
1: दास्तान सई परांजपे की, उजाले उनकी यादों के, 19 जुलाई से 9 अगस्त शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
6: सुनिए
0: राहत इंदौरी का लिखा गीत हम आपको सुनवा रहे हैं। इसे संगीत में ढाला है अनु मलिक ने, आवाजें श्रेया घोषाल और विनोद राठौड़ की। फिल्म का नाम है मुन्ना भाई MBBS।

और आइए अब सुनते हैं पंकज उदास और साथियों की आवाजों में फिल्म नाम का ये गीत, रचना आनंद बख्शी की और तर्ज लक्ष्मीकांत प्यारेलाल की है।

यादों की महफिल कार्यक्रम में अब हम आपको सुनवा रहे हैं मनहर उदास अलका याग्निक और साथियों की आवाजें। ये फिल्म है खलनायक। गीत रचना आनंद बख्शी की है और धुन बनाई है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने।

0: हिंदी सिनेमा की कुछ कल्ट फिल्में उनके नाम पर हैं, स्पर्श, कथा, दिशा और चश्मे पर दूर।
1: उन्होंने कहा कि देखो, अब सिर्फ हम नौजवान तीनों दिखा रहे हैं, सिर्फ कॉलेज के युवक नहीं, उनके माँ बाप भी आए, उनके चाचा चाची आए, एक दादी माँ डाली, बाप डाला, एक भाई डाला, वगैरह वगैरह, एक पान वाला डाला। सईद को पकड़ा लिया और उसने कहा फिर मुझे, वी हैव टू गो टू जामा मस्जिद, पुरानी दिल्ली जाना पड़ेगा। मैंने कहा पुरानी दिल्ली क्या करोगे जाके, पान वाले का अगर मुझे करना है रोल तो मुझे देखना नहीं चाहिए पान वाले वगैरह। तो मैंने कहा ये नसीर के बाद ये एक
2: और आ गया।
1: एक और आ गया।
3: जल्दी है बुलबुल, कोई और कर्जेदार लग गया तेरे पीछे क्या?
4: अरे ललन मियां आप काट देना रास्ता, अब मेरा काम नहीं होगा।
0: दास्तान सई परांजपे की, उजाले उनकी यादों के, 19 जुलाई से 9 अगस्त शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर। सुनिए
5: फिल्म वास्तव

तब का गीत सुनिए। गाने वाले कलाकार कुमार सानू और साथी, गीत रचना समीर की है और संगीत जतिन ललित का है।

कार्यक्रम का आखिरी गीत शांतनु मोहित्रा का संगीत है, स्वानंद किरकिरे की बोल, युगल स्वर सोनू निगम और श्रेया घोषाल की, फिल्म का नाम लगे रहो मुन्ना भाई।

इस दो गाने के साथ ही आज का यादों की महफिल कार्यक्रम अब समाप्त होता है। आज इस कार्यक्रम में हमने संजय दत्त की फिल्मों से कुछ गीत आपके लिए चुने थे।

प्रस्तुत है आपका अपना कार्यक्रम सुरीला सफर। कार्यक्रम सुनने वाले सभी श्रोताओं को मंदाकिनी जोशी का प्यार भरा नमस्कार। जी तो कहिए दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? हम उम्मीद करते हैं कि आप सभी बहुत अच्छे हैं और सुरीला सफर के लिए तैयार हो गए हैं। क्यों, है ना भाई? आज का दिन भी कुछ खास है। हमारे बहुत सारे श्रोताओं ने आज गुरु पूर्णिमा की हमें बहुत ज्यादा बधाइयां भेजी हैं, शुभकामनाएं भेजी हैं। एक श्रोता लिखते हैं कि जिंदगी में जिस किसी से हम सीखते हैं वो भी गुरु होता है। विविध भारती हमारे ज्ञान में वृद्धि करती है, तो बहुत कुछ सीखने को हमें इससे मिलता भी है। तो ये भी गुरु हुई हमारी, इसलिए गुरु पूर्णिमा के मौके पर हम अपने अपने गुरुओं को आज प्रणाम कर रहे हैं। जी तो दोस्तों, संगीत हमारी जिंदगी और धड़कन का एक अमिट हिस्सा है, या यूं कहें कि एक अभिन्न हिस्सा बन गई है ये संगीत हमारी जीवन यात्रा में। और हम अक्सर फिल्मी गानों को खासतौर से हम गुनगुनाने लगते हैं। ये गीत हमारी जिंदगी से जुड़ गए हैं मानो, है ना? विवाह हो, उत्सव हो, सुख हो, दुख हो, हम इन गीतों को अपने जीवन में उतार कर जैसे उन्हीं पर आश्रित से हो गए हैं। खुशी है तो हैप्पी सॉन्ग गुनगुनाते हैं, दुख है तो सैड सॉन्ग हम गाने लगते हैं। और मजे की बात ये है कि इनमें से कुछ गीत ऐसे हैं जो फिल्मी पर्दे पर फिल्माकन के रूप में तो हमें नहीं दिख पाए, यानी उनका फिल्मी पर्दे पर तो हमें दृश्य नजर नहीं आया, वो फिल्माए नहीं गए, लेकिन इन गीतों में इतनी ताकत रही कि रेडियो के जरिए, एलपी या ग्राफोन रिकॉर्ड्स के जरिए ये किसी न किसी माध्यम से हमारे जीवन में घर कर गए, हमारे दिल में अपनी जगह बना गए। कुछ गाने ऐसे थे जो फिल्मांकन तो किए गए, जिनका फिल्मांकन हुआ, पर्दे पर दिखाई भी गई, लेकिन कुछ समय बाद शायद फिल्म की लंबाई ज्यादा होने के कारण उन्हें हटा लिया गया, यानी कुछ न कुछ कारण रहा इन गीतों को उस फिल्म से हटाने का, लेकिन ये गीत हमारे दिलो दिमाग से कभी नहीं हट पाए। तो आज का ये कार्यक्रम उन्हीं गीतों के लिए हम लेकर आए हैं खास। जो श्रोता हमारे फेसबुक पेज से जुड़े हैं उन्हें तो पता है कि आज की इबारत हमने क्या लिखी है, लेकिन जो श्रोता हमारे फेसबुक पेज से नहीं जुड़े हैं उनके लिए हम बता दें आज की इबारत है बिल्कुल हल्की फुल्की। रात भर जागते हैं आपकी याद में, हंसी खो गई है इस दिल की फरियाद में, दिल वहीं छोड़ आए थे जब आपको देखा था, अब अंधेरा है इस सोने से जहां में, जमुना किनारे यादों की महफिल सजी है, सजन बिना जहान सूना लग रहा है, दिल का चिराग बुझने लगा है अब तो, हमने तो उसी दिन से दिल को आपके कदमों में रख दिया था, जिस दिन से आपको देखा था नींद और चैन सब खो गया है उस दिन से, न आसमां अच्छा लग रहा है न जमीन भा रही है, ये कैसी बेखुदी है, कैसी ये तन्हाई है, देख ली तेरी खुदाई ऐ ऊपर वाले, बता कितना और तड़पना अभी बाकी है। जी हाँ, यह इबारत और इनमें कुछ चीजें

कुछ शब्द आपको ऐसे मिलेंगे जो आज के गीतों से जुड़े हैं। हालांकि हमने कुछ शब्दों का जिक्र आपसे नहीं किया है, इस इबारत को पढ़ने के बाद आपको कुछ गीत अपने आप पता चल जाएंगे कि कुछ कुन किन गीतों को आज इस कार्यक्रम में हमने शामिल किया है। तो आज कुछ ऐसे बेहतरीन गाने, जैसा कि हमने आपको बताया, जो रिकॉर्डिंग्स और ऑडियो में बहुत लोकप्रिय हुए, लेकिन फिल्म की लंबाई या अन्य कारणों से उन्हें फिल्मी पर्दे पर नहीं दिखाया गया था। और बॉलीवुड में ऐसे कई बेहतरीन गाने बने जो सेंसर बोर्ड की आपत्तियों या फिल्म की लंबाई कम करने के लिए हटा लिए गए, लेकिन ग्रामोफोन्स रिकॉर्ड या एलपी और रेडियो के जरिए हम लोगों के दिलों में हमेशा के लिए बस गए। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये प्यारा सा सफर। मोहम्मद रफी और आशा भोसले की आवाजें, फिल्म का नाम परवाना, गीतकार कैफी आजमी, संगीतकार मदन मोहन।

ये आवाजें थी मोहम्मद रफी और आशा भोंसले की। फिल्म का नाम था परवाना। हमारे श्रोता लिखते हैं कि आज सबसे खास ऐसे गीतों की बारी है जो किसी कारणवश फिल्मी पर्दे पर नहीं दिखाई दिए पर ऑडियो हमेशा सुनाई पड़ा। जैसे एक गीत जिसका प्रिंट जल गया था लेकिन उसी फिल्म का गीत ये दिल और ये उनकी निगाहों के साए हमेशा सुनाई पड़ता है। वहीं श्रोता लिखते हैं कि आज की इबारत से तो लगता है कि सभी गीत एक से बढ़कर एक होंगे और ये गीत अगर आपकी लिस्ट में मिल भी जाते हैं तो कहना ही क्या। बहुत सारे गीतों का जिक्र आपने भी किया है। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि शब्दों से जहां प्यार है वहीं गमों की शाम की पीड़ा भी है, इंतजार के लम्हे हैं तो सूनापन भी है। हर पलों में इन शब्दों से भावनात्मक रूप से हम जीवंत हो उठते हैं। प्रकृति की खूबसूरती भी आज बेमानी लग रही है, आज दिल पे कोई जोर चलता नहीं। ये सभी गीत उन्होंने लिख भेजे हैं और कहा है कि शायद इन गीतों को फिल्मों से हटाया गया था। आप लिखते हैं कि आज इबारत में बहुत ही खूबसूरत शब्दों के मोती हैं और गीत बड़े ही मनमोहक लगने वाले हैं, ऐसा आपका सोचना है। वहीं श्रोता लिखते हैं कि फिल्म की लंबाई की वजह से कई ऐसे मशहूर गाने पर्दे पर नहीं आ सके लेकिन उन्हें आज भी बड़े ही चाव से सुना जाता है। इस संदर्भ में कहीं और चल नाम से एक फिल्म बनी थी जिसमें एक गीत था डूबते हुए दिल को तिनके का सहारा भी नहीं, बाद में ये फिल्म से जो है गाना हटा लिया गया था। इसी तरह से बहुत सारे गाने हैं जिनका जिक्र आज के इस कार्यक्रम में होने वाला है। वहीं श्रोता लिखते हैं कि कुछ गीत बिछड़ने के कुछ यादों में आने की दुनिया जहां से निराश होने की एक ऐसी फिल्म है जो कोर्ट के आदेश से हटा दी गई थी लेकिन उसके भी कुछ गाने ऐसे थे जो बाद में काफी लोगों को पसंद आए। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि मैं कब से चाह रही थी कि आज आप खास इस टॉपिक पर एक इबारत ऐसी बनाएं जहां पर इस तरह के गानों का जिक्र हो। लगता है आज आपने बिना कही मेरे कहे बगैर ही मेरे दिल की बात सुन ली है। आज इस प्रोग्राम में नई जानकारी के साथ कुछ खास गाने सुनने को मिलने वाले हैं। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि जी हाँ, बहुत सारे ऐसे गीत हैं जिन्हें फिल्मों में नहीं फिल्माया गया या नहीं दिखाए गए वो गीत, लेकिन उन्हें आज भी हम याद करते हैं और विभिन्न कारणों से अपने कालखंड में वो गीत नहीं बच पाए या नहीं सुनाए गए, लेकिन हमने उन गीतों को आज भी अपने दिलों में बसा रखा है। पूरी संभावना है कि इबारत के माध्यम से आज उन गीतों का जिक्र होने वाला है क्योंकि ऐसे बहुत सारे शब्द हैं, बहुत सारे गीत हैं जिनका चयन फिल्मों से निकाल दिया गया था लेकिन उनको आज भी हम सुना करते हैं और पसंद किया करते हैं। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि बहुत सारे ऐसे गीत हैं जिन्हें बेहतरीन हिंदी फिल्में हैं जिनके गाने ऑडियो और रेडियो पर रिकॉर्डिंग के बाद सुपर डुपर हिट हुए लेकिन फिल्म की लंबाई कम करने या अन्य कारणों से उन्हें पर्दे पर नहीं दिखाया गया था। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि जिंदगी में जिस किसी से भी हम सीखते हैं वो भी गुरु होता है और आज गुरु पूर्णिमा के अवसर पर खास कुछ गाने हम विविध भारती से सुनने वाले हैं। एक श्रोता ने लिखा है कि आज के सुरीला सफर कार्यक्रम की थीम बहुत ही अच्छी है, ऐसे गाने सुनने को बहुत ही कम मिलते हैं। आज इस कार्यक्रम में ऐसे कुछ गीतों का जिक्र होगा जिन्हें हमने पर्दे पर नहीं देखा लेकिन उन्हें सुना जरूर है। चलिए आगे बढ़ते हैं और सुनते हैं फिल्म महबूबा का ये गीत, लता मंगेशकर की आवाज में। क्लासिक गीत है ये, आनंद बख्शी के बोल हैं, राहुल देव बर्मन की धुन है।

ग्यावासी लता मंगेशकर की और फिल्म का नाम था महबूबा। और अब आपसे करते हैं दो सवाल हमेशा की तरह। आज का विषय क्या है तो आपको पता चल ही गया है और हमारे सभी श्रोताओं ने, लगभग सभी श्रोताओं ने लिख भी दिए हैं कि कौन कौन से ऐसे गाने हैं जिन्हें फिल्मों में नहीं रखा गया है। लेकिन हाँ, इसके लिए आपको बहुत ज्यादा ढूंढना भी पड़ेगा क्योंकि कई बार क्या होता है हमें गलत जानकारी भी मिल जाती है। बहुत सारी खोज के बाद ही पता चलेगा कि कौन से गाने फिल्मों में रखे गए और कौन से हटा लिए गए। जैसे कि फिल्म महबूबा का गीत अभी आपने सुना था, इसके लिए जब हम पढ़ रहे थे, इसके बारे में खोजबीन कर रहे थे, तो पता चला था कि इस गाने को जो है फिल्म की लंबाई या कहानी की जरूरत के कारण, मतलब कहानी की जरूरत में ये गीत नहीं फिट हो रहा था, तो वहां थिएटर में प्रदर्शित अंतिम कट से इस फिल्म गाने को हटा लिया गया था। तो ऐसे बहुत सारे गाने हैं जिन्हें किसी न किसी कारण से हटाया गया। हम आपसे ये जानना

चाहते हैं कि ऐसा कौन सा गीत, किसी एक गीत का नाम आपको लेना है, फिल्म का नाम, गाने के बोल आपको बताने हैं जो आपको पसंद है और वो गीत फिल्मी पर्दे पर नहीं फिल्माया गया या नहीं दिखाया गया था। वैसे हमारे श्रोताओं ने हमारे कहे बगैर भी बहुत सारे ऐसे गीतों का जिक्र कर दिया है, लेकिन आपको ये बताना है आपकी पसंद का कौन सा ऐसा गीत है जो आपको बेहद पसंद है, लेकिन आपको ये भी पता है कि वो गीत फिल्मांकन में या फिल्मों में नहीं दिखाया गया था। और हाँ, हमारा दूसरा सवाल ये है कि ऐसा कोई गीत जो आपको बेहद पसंद है, जिसे देखने के लिए आप उस फिल्म को देखने गए थे थिएटर तक और वहां जाकर आपको पता चला कि अरे ये गीत तो फिल्म में रखा ही नहीं गया है, तब तो आपको कैसा लगा होगा, क्या मनस्थिति आपकी रही होगी, ना वो फीलिंग्स आपको हमारे साथ शेयर करनी है। तो सवाल एक बार फिर से हम दोहरा देते हैं, ऐसा कौन सा गीत जो आपको पसंद है और फिल्मी पर्दे पर वो गीत आज भी जब हम उन फिल्मों को देखते हैं कहीं न कहीं तो वो फिल्म में हमें नहीं दिखाई देता है, किसी एक गीत का जिक्र आपको करना है। और हाँ, ऐसा कोई गीत जिसे देखने के लिए आप थिएटर तक गए और उस फिल्म को देखने आपने पूरा देखा, लेकिन पता चला कि अंत तक वो गीत उस फिल्म में कहीं भी नजर नहीं आया, उसके बाद आपकी मनस्थिति क्या हुई, उस फिल्म का, उस गाने का जिक्र हमारे साथ आपको करना है कम से कम शब्दों में। आइए बढ़ते हैं आगे और सुनते हैं ओपी नैयर के संगीत निर्देशन में SH बिहारी का लिखा गीत, आवाजें मोहम्मद रफी और आशा भोसले की, फिल्म का नाम है सावन की घटा।

दोस्तों 1966 की फिल्म है ये सावन की घटा और मोहम्मद रफी और आशा भोसले की आवाजें थी। ओपी नैयर का संगीत था। कहते हैं कि इसे साउंडट्रैक एल्बम में तो जारी किया गया था लेकिन संपादन या अन्य कारणों से ये पर्दे पर फिल्माए गए दृश्यों में ये गीत नहीं आ पाया था।

हमारे श्रोता का कहना है कि आज की सुंदर सी इबारत में विरह, याद, तड़प, बिछड़न और अधूरे प्रेम की गहरी अनुभूति है। भाव भी यही है कि प्रेम में बिछड़ने के बाद हर पल याद, तन्हाई और इंतजार का एहसास बना रहता है, फिर भी दिल तो दिल है। ये हर पल किसी न किसी की याद में धड़कता है, किसी की खुशी में मुस्कुराता है और किसी की कमी में चुपचाप भीग जाता है। यही तो दिल की सबसे खूबसूरत पहचान है। और आपने कुछ गानों का जिक्र भी किया है। हमारे श्रोता ने लिखा है कि आज काव्यांश का मूल भाव शायद ये है कि याद, तड़प, इंतजार और विरह ये चार शब्द नहीं बल्कि प्रेम के वे चार महाद्वीप हैं जिनसे निकलकर हर सच्चा अनुराग अपनी पूर्णता को प्राप्त करता है। याद वर्तमान में अतीत की सजीव उपस्थिति है, ये हृदय के वीराने में चुपके से जलने वाला दिया है। तड़प बिना धुएं के लगातार सुलगती हुई प्राणों की आग है। इंतजार प्रेम की पराकाष्ठा है जो चौखट पर टंगी आंखों की मुख प्रार्थना है। विरह को विप्लव श्रृंगार कहा गया है जिसे मिलन से भी स्थान प्राप्त है। ये मिलन की आनंदमयी सुबह से ठीक पहले की घनी रात है। यानी याद अगर बीज है तो तड़प उसकी अंकुरण की चटपटाहट है, इंतजार उस पौधे को सींचना है और विरह वो मौसम है जो अंततः मिलन के अमर फल को जन्म देता है। आपने आगे लिखा है कि गाने पर्दे पर जीवंत नहीं हुए लेकिन कानों को सुकून जरूर देते हैं, वही गाने आज इस कार्यक्रम में शामिल हैं। बहुत सुंदर इबारत आपने लिखी है। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि कई बार फिल्म 3 घंटे से ज्यादा लंबी हो जाती है जिस कारण निर्देशक को मजबूत गानों को भी हटाना पड़ता है। कहानी का ट्रैक बदलना, अगर किसी गाने के आने से फिल्म की कहानी की मुख्य धारा प्रभावित होती है या भटकाव महसूस होता है तो संपादन के दौरान यानी एडिटिंग के दौरान उसे हटा दिया जाता है। ऑडियो की लोकप्रियता फिल्म से हटने के बावजूद संगीत प्रेमियों के बीच ये ट्रैक कैसेट और एल्बम के माध्यम से अमर हो जाते हैं। वहीं एक श्रोता ने लिखा है कि आज की इबारत यानी विरह व्यथा की आह है, याद, तड़प और इंतजार की राह है। सुनी है राहें, सुना है डगर, तुम्हारे बिना थम सा गया है सफर। खिलते हैं फूल पर खुशबू नहीं है, पास है सब कुछ मगर वो एहसास नहीं है। कहने को तो सारा जहां साथ है मेरे, पर सच कहूं तो हर तरफ घने अंधेरे। तुम ही हो मेरी दुनिया का उजाला, बिन तुम्हारे सुना है इस जीवन का प्याला। बहुत सुंदर।

आइए सुनते हैं कार्यक्रम का ये अगला गीत। आवाज लता मंगेशकर की, फिल्म का नाम है मुनीम जी, गीतकार साहिर लुधियानवी हैं, संगीतकार हैं सचिन देव बर्मन।

लता मंगेशकर को अभी आपने सुना, फिल्म का नाम था मुनीम जी। गीतकार थे साहिर लुधियानवी और संगीत दिया था सचिन देव बर्मन ने। तो सवाल आज के जो हमने आपसे पूछे हैं, एक बार फिर आपको दोहराई देते हैं। किसी एक गीत का नाम बताइए, फिल्म का नाम बताइए, गाने के बोल बताइए, कलाकार का नाम बताइए, जो गीत आपको बेहद पसंद है और वो फिल्मी पर्दे पर नहीं दिखाया गया लेकिन रेडियो के जरिए आपके दिलों तक पहुंचा और आज भी अपने दिलों में अपना घर बनाए हुए है। बस किसी एक गीत का जिक्र। और हाँ, हमारा दूसरा सवाल ये है कि ऐसा कोई गीत जब आप उसे देखने के लिए, उसका फिल्मांकन देखने के लिए किसी थिएटर में गए हो उस फिल्म को देखने के लिए और वहां जाकर आपको पता लगा कि अरे इस गीत को तो फिल्म में रखा ही नहीं गया, तो आपकी मनस्थिति क्या थी, कौन सा था वो गीत और आपको उस फिल्म को देखने के बाद फिर कैसा लगा, वो अनुभव कम से कम शब्दों में आपको साझा करना है।

हमारी श्रोता ने लिखा है कि विरह केवल बिछड़ने का नाम नहीं बल्कि उस प्रेम का दूसरा रूप है जो मिलन से भी ज्यादा अधिक गहरा होता है। अधूरे प्रेम की सबसे बड़ी विडंबना यही है कि उसमें शिकायत कम और प्रतीक्षा अधिक होती है। किसी की याद आज भी आपकी मुस्कान और आपकी आंखों की नमी दोनों की वजह हो सकती है और वो प्रेम कभी अधूरा नहीं होता। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि आज कुछ ऐसे गाने आप सुनाने को बेताब लग रही हैं और हम भी जो गाने फिल्मों से हटा दिए गए लेकिन वो बेहतरीन नगमे हैं, जब आप प्ले करेंगे तब हमें पता लगेगा कि ये गाने कभी हमने सुने थे या नहीं। तो अब तो आपको पता लग गया होगा, लगभग आधा कार्यक्रम निकल चुका है, आपने काफी गीत सुन लिए हैं, अब बताइएगा कि ये गीत आपने सुने थे या नहीं। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि मेरे अपने फिल्म के लिए गुलजार साहब ने मीना कुमारी को जहन में रखकर गीत लिखा, रोज अकेली आए बेचारी जाए चांद कटोरा लिए भिखारन रात। लेकिन गीत शूट होने से पहले ही मीना जी नहीं रही, सुमनताई कल्याणपुर की आवाज में ये गीत कभी कभी रेडियो पर सुनने को मिलता है, आज भी आप सुनाइए। नहीं, आज तो ये गीत हम आपको नहीं सुनवा पाएंगे, लेकिन हाँ, जब भी इसी तरह का कार्यक्रम या कभी कोई खास गाने हम लेकर आएंगे तो इस गीत को जरूर अपने कार्यक्रम में शामिल करेंगे। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि आज की इबारत भी बहुत अच्छी है, इस प्रकार के गीत तो बहुत सारे हैं पर एक कव्वाली शोले फिल्म की थी जिसे मन्ना डे, शैलेंद्र और किशोर कुमार जी ने गाया था। बिल्कुल सही कहा। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि ये गाने जो है मन को रोशन कर देते हैं। मंदाकिनी जी, एक श्रोता लिखते हैं कि जिंदगी में जिस किसी से भी हम सीखते हैं वो भी गुरु होता है। आज हम कार्यक्रम के जरिए सीख रहे हैं कि ऐसे कौन से गीत हैं जो फिल्मों में शामिल नहीं किए गए थे। वहीं हमारे श्रोताओं ने लिखा है कि इस तरह के कार्यक्रम अगर अलग अलग तरीके से पेश किए जाए तो अच्छा लगता है। एक श्रोता लिखते हैं कि फिल्म प्राण जाए पर वचन न जाए का प्रसिद्ध गीत है, चैन से हमको कभी आपने जीने न दिया फिल्मों में नहीं रखा गया था और

संगीतकार ओपी नैयर और गायिका आशा भोंसले के बीच व्यक्तिगत कारणों से, लेकिन फिल्म में ये गाना न होने पर फिल्में पर्दे पर फिल्माया नहीं गया, इसके बावजूद गाना बहुत बड़ा हिट साबित हुआ और इसी गाने के लिए आशा भोंसले को वर्ष 1975 में सर्वश्रेष्ठ पार्श्व गायिका का फिल्म फेयर पुरस्कार भी दिया गया था। वो गीत भी हम आपके लिए लेकर आए हैं, जरूर आपको सुनवाएंगे इस कार्यक्रम में। एक श्रोता लिखते हैं कि रात की तन्हाई में जब आपकी याद आती है तो दिल की फरियाद और भी गहरी हो जाती है, नींद और चैन कहीं खो जाते हैं और तब लगता है कि जमुना किनारे सजी यादों की महफिल में ये जहां सुना सुना लग रहा है। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि आज का ये कार्यक्रम सुनने के लिए हम तैयार हैं, आपके साथ सुरीला सफर तय कर चुके हैं और आगे आप तक बने रहेंगे, यही हम उम्मीद करते हैं। जी तो हमें बिल्कुल यकीन है कि सुरीला सफर में आप हमारे साथ हैं और उन गीतों के साथ हैं जो हमने अक्सर सुने हैं और ये गीत हमारी जिंदगी में रच बस गए हैं। आइए आगे बढ़ते हैं और सुनते हैं मजरूह सुल्तानपुरी का लिखा गीत, ओपी नैयर का संगीत है, युगल स्वर मोहम्मद रफी और आशा भोंसले की, फिल्म का नाम मेरे सनम।

हमने जो दो सवाल आपसे किए हमारे श्रोताओं ने जवाब देने शुरू कर दिए हैं। एक श्रोता लिखते हैं कि आम्रपाली का एक गीत जो लता जी ने गाया था लेकिन फिल्म में नहीं दिखाई पड़ा, जाओ रे जोगी तुम जाओ रे, ये गीत इन्हें बेहद पसंद आता है।

वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि आज कार्यक्रम सुनने का आनंद ही अलग है, दुर्लभ मधुर गीत सुनकर मजा आ रहा है। एक श्रोता लिखते हैं कि प्राण जाए पर वचन ना जाए फिल्म का गीत, चैन से हमको कभी आपने जीने ना दिया, ये गाना मुझे बहुत पसंद है। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि मुनीम जी का गीत जो आपने सुनवाया था इसे लता मंगेशकर ने गाया था, एस डी बर्मन ने संगीतबद्ध किया था, साहिर लुधियानवी ने लिखा था। हालांकि ये गाना अपने आप में एक बेहतरीन रचना थी, लेकिन फिल्म की पटकथा और गति को ध्यान में रखते हुए इसे थिएटर से पहले हटा लिया गया था, रिलीज होने से पहले हटा लिया गया था, जो बाद में ऑडियो रिकॉर्ड के रूप में लोकप्रिय हुआ। बिल्कुल वो गीत बहुत ही खूबसूरत था। और वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि आज तो दीदी आप एक ऐसे कार्यक्रम को गूंथ कर लाई हैं, ऐसे गाने सुनने को मिल रहे हैं जो सिर्फ विविध भारती राष्ट्रीय सेवा पर ही सुनने को मिलते हैं, शुक्रिया आप इस कार्यक्रम को सुन रहे हैं। और वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि चैन से हमको कभी आपने जीने ना दिया, ये मेरे सबसे प्रिय गानों में से एक है। आशा भोसले की दर्द भरी भीगी भीगी आवाज, ओपी नैयर का अद्भुत संगीत और एस एच बिहारी के भावपूर्ण शब्द इस गीत को एक नया अनुपम ऊंचाई दे देते हैं। इस गीत को सुन सुनकर मेरे मन में इसे बड़े पर्दे पर देखने की तीव्र इच्छा थी। इसी उत्सुकता के साथ में प्राण जाए पर वचन न जाए फिल्म देखने गया। पूरी फिल्म समाप्त हो गई लेकिन ये गीत कहीं दिखाई नहीं दिया। उस क्षण जो निराशा हुई उसे शब्दों में बांधना कठिन है। हिंदी फिल्म संगीत के इतिहास में ये गीत एक विशिष्ट और अमर पहचान रखता है। बिल्कुल सही कहा आपने, ये गीत सुनने के बाद तो वाकई दिल में एक अलग ही किस्म का दर्द उठता है। तो चलिए इसी गाने को सुन लिया जाए। आपने जैसा कि बता ही दिया है कि ओपी नैयर का संगीत है, एस एच बिहारी के बोल हैं, आशा भोसले की आवाज है और फिल्म का नाम है प्राण जाए पर वचन न जाए।

हमारे श्रोता लिखते हैं कि जिस दौर में कलात्मक फिल्में बना करती थी वो दौर तो स्वर्णिम काल था। वहीं श्रोता लिखते हैं कि फिल्म प्राण जाए पर वचन न जाए, फिल्म का ये गीत चैन से हमको कभी आपने जीने न दिया। ये फिल्म देखने बार बार हम इस गीत को याद करते हैं। मल्टी स्टारर और डाकुओं की पृष्ठभूमि पर बनी फिल्म की कहानी तो अच्छी थी लेकिन ये गीत पूरी फिल्म में कहीं भी दिखाई नहीं पड़ा। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि हम आपके हैं कौन का फिल्म छत्रपति संभाजी नगर में प्रदर्शित हुई, तब थिएटर मालिक ने माधुरी दीक्षित पर फिल्माया गया चॉकलेट लाइम जूस गीत काट दिया था, फिर कुछ सप्ताह बाद फिल्म में से दिखाया भी गया था। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि फिल्म प्राण जाए पर वचन न जाए का गाना चैन से हमको कभी, ये गाना कई बार रेडियो पर सुना है। 1972 में यानी 1972 में, फिर जब 1974 में मेरी शादी हुई तो मैं पत्नी के साथ देखने गया था फिल्म, परंतु इस गाने को फिल्म में नहीं देखकर बहुत ही निराशा हुई। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि मैं तो आज जो जानकारी बटोर रही हूं कि इतने सुपरहिट गीत हैं जिन्हें हम सुनते रहते हैं और ये फिल्मी पर्दे पर कहीं दिखाई नहीं गए थे, ये जानकर मुझे आश्चर्य हो रहा है। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि संजय दत्त और सलमान खान अभिनीत फिल्म 10 जिसमें एक गाना था 10 बहाने करके ले गई दिल, ये फिल्म में नहीं दिखाया गया। वहीं श्रोता लिखते हैं कि फिल्म सावन की घटा जिसका गीत अभी आपने सुनवाया, होठों पे हंसी आंखों में नशा संगीतकार ओपी नैयर की एक बेहतरीन और मधुर रचना थी जिसे मोहम्मद रफी और आशा भोसले ने गाया था, ये बात सही है कि ये गाना फिल्म के सिनेमाई प्रदर्शन स्क्रीन पर फिल्मांकन में से हटा लिया गया था और केवल ऑडियो रिकॉर्डिंग या एल्बम में ही उपलब्ध रहा। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि होठों पे हंसी जो गीत आपने सुनवाया आशाताई और रफी साहब की आवाजों में, इस दिलकश गीत के लिए मैं आपका यानी मेरा मंदाकिनी जी का बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि आपने इतने खूबसूरत गीत को आज हमें सुनवाया है। क्या बात है, आप इस कार्यक्रम को सुन रहे हैं हमारे लिए सबसे खुशी की बात है। लिखते हैं कि वाह क्या बात है, दिल खुश हो गया है, बहुत खुशी की बात है। और अगर हमारे श्रोता खुश हो जाते हैं तो इससे बड़ी खुशी हमारे लिए और कोई होती ही नहीं है, यकीन करिए हमारा। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि यूपी नैयर साहब अपनी खास तांगा लय और फुट टैपिंग संगीत के लिए जाने जाते थे, इस गाने में भी उन्होंने अपनी उसी सिग्नेचर शैली का इस्तेमाल किया है। गाने का संगीत बेहद चुलबुला ऊर्जावान और रोमांटिक है। एकोस्टिक गिटार ढोलक और सैक्सोफोन का जो मिश्रण नैयर साहब ने तैयार किया सुनते ही श्रोता तो झूमने पर मजबूर हो जाते हैं। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि फिल्म 5 राइफल्स का झूम बराबर झूम शराबी जो गाना है वो फिल्म देखने जब हम गए तो पता चला कि ये गाना काट लिया गया है, तो हमें बेहद निराशा हुई। जी तो आज इस कार्यक्रम में हमने कोशिश की है उन 10 गीतों को लाने की। वैसे तो बहुत सारे गीत हैं ऐसे जिन पर अगर हम चर्चा करें तो शायद कई सारे कार्यक्रम हमें देने पड़े, लेकिन आज जो गीत हम आपके लिए लेकर आए हैं वो फिल्मों में किसी न किसी वजह से हटा लिए गए थे। और जब कोई श्रोता या हम में से कोई एक उस फिल्म को देखने गया होगा उस गीत को खास सुनने के लिए तो उसे बेहद अफसोस भी हुआ होगा या निराशा हाथ लगी होगी। ऐसा ही एक गीत है फिल्म कश्मीर की कली का, आशा भोसले की आवाज है, SH बिहारी के बोल हैं, ओपी नैयर साहब की धुन है। आइए सुनते हैं ये गीत। कहते ही गीत दिखाया गया था इस फिल्म में लेकिन बाद में इस गीत को हटा लिया गया था।

हमारे श्रोता लिख रहे हैं कि आज की इबारत शानदार है, उन गीतों को न चाहते हुए भी जब फिल्म में नहीं देखा गया तो बहुत उदासी सी छा जाती है। मैं बात कर रहा हूँ फिल्म रोटी के गीत की, फूलों के साथ दिल भी, ये लता मंगेशकर की आवाज में गीत है और जब मैं फिल्म देखने गया तो ये गीत उस फिल्म में नहीं था। संगीतकार लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने बिल्कुल आपने सही कहा। और जब हम अपनी पसंद का कोई गीत फिल्मी पर्दे पर नहीं देखते हैं या वो निकल जाता है तो हमें बेहद अफसोस होता है। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि सुना है कि फिल्म शोले की शुरुआत में कव्वाली रखी गई थी अमजद खान पर फिल्माया गया था, क्या वो गीत आज सुनने को मिलेगा? जी नहीं, आज इस कार्यक्रम में तो हमने उसे शामिल नहीं किया है। हाँ, आगे कभी हम उस गीत को ढूंढकर जरूर आपके लिए लेकर आएंगे। एक श्रोता लिखते हैं कि फिल्म सुनहरा संसार का गीत किशोर कुमार और आशा भोसले का गाया हुआ हेलो हेलो जो राजेंद्र कुमार और हेमा मालिनी पर फिल्माया जाने वाला था, वो नौशाद के किशोरदा के प्रति पूर्वाग्रह के कारण फिल्म के निर्देशक तक नहीं पहुंच पाया, पर ग्रामोफोन रिकॉर्ड पर वो गाना चढ़ गया था। वो गीत इन्हें बेहद पसंद आता है। एक श्रोता लिखते हैं कि फिल्म बाजीगर का एक गीत मुझे बहुत पसंद है, जब मैं उसे एक कैसेट या टेप खरीद कर लाया तो मैंने इस गीत को कई बार सुना और मैं फिल्म देखने गया बड़े चाव से इस गीत को सुनने के लिए, लेकिन वो फिल्म में मुझे लास्ट तक वो गीत सुनाई नहीं दिया तो मुझे बेहद दुख हुआ। गुट है समझकर चांद जिसको आसमान ने, अच्छा कोई गाना जो विनोद राठौर और अलका याग्निक की आवाज में है वो आपको बेहद पसंद आता है। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि मंदाकिनी जी कुछ याद तो नहीं आ रहा मगर फिर भी कुछ फिल्में हमने देखी हैं, जिनमें से कुछ चुनिंदा गीत को तो फिल्म से हटा दिया गया था मगर आकाशवाणी और ऑडियो कैसेट के जरिए हमने उन्हें कई बार सुना है। एक श्रोता लिखते हैं कि फिल्म हकीकत का गाना, खेलो ना मेरे दिल से और ऐसे बहुत सारे गीत हैं जिन्हें हटा लिया गया था। और वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि मेरी पसंद का गीत फिल्म राम और श्याम का है जो फिल्म में नहीं रखा गया, वो है मैंने कब तुमसे कहा था कि मुझे प्यार करो, इसमें दिलीप कुमार और वहीदा रहमान है, ये गाना भी मुझे बेहद पसंद आता है। और कई श्रोताओं ने अपनी पसंद हम तक पहुंचाई है, लेकिन अब कार्यक्रम के आखिरी सोपान तक हम पहुंच चुके हैं और इस वक्त हम आपको सुनवा रहे हैं एक ऐसा गाना, फिल्म नीला आकाश से हमने लिया है, लता मंगेशकर की आवाज में। इस गीत को आपने बहुत कम सुना होगा, बेहद ही खूबसूरत गीत है, राजा मैदेली खान की बोल है और मदन मोहन की धुन है।

लता मंगेशकर की आवाज में अभी आपने फिल्म नीला आकाश का ये गीत सुना। हमारे श्रोता लिखते हैं कि सिर्फ लंबी होने की वजह से जो गीत काट दिए गए, लगता है उनमें से कुछ गीत तो ऐतिहासिक गीत बन गए। जी हाँ बिल्कुल, और ये गीत हमारे दिलो दिमाग पर आज भी असर किए हुए हैं, ये बात क्या कम है। तो अब कार्यक्रम का वक्त खत्म हो चला है। इस कार्यक्रम से मंदाकिनी जोशी को दें इजाजत, फिर मिलेंगे। नमस्कार।

श्रोताओं नमस्कार। त्रिवेणी में आज बातें बाघों की। एक इंसान के तौर पर हम सभी जीवों की सुरक्षा का दायित्व रखते हैं, क्योंकि हम ऐसा करने में सक्षम हैं और हमारा कर्तव्य भी बनता है कि हम वन्य जीवों की देखभाल करें। बात भारत की हो तो हमारा देश कई वन्य जीवों के संरक्षण में अग्रणी रहा है। इनमें ही शामिल है बाघ।

आपको जानकर खुशी होगी कि भारत में विश्व के कुल बाघों में से तकरीबन 75% बाघ वास करते हैं। लेकिन एक समय ऐसा भी आया था जब बाघों की घटती संख्या चिंता का विषय बन गई थी। ऐसे में उसे बचाने और उसकी संख्या बढ़ाने की कवायद शुरू हुई और आज बाघों की संख्या दिन प्रतिदिन बढ़ रही है। बाघ एक प्रमुख शिकारी जानवर माना जाता है, इसलिए उससे हम इंसानों का डरना स्वाभाविक है। उस पर न जाने बाघों को लेकर कितने किस्से कहानियां भी तो हमने सुन रखी हैं। वैसे बच्चों को तो वन्य जीवों के कई गीत भाते हैं, जैसे कि ये।

0: हालांकि शेर, चीते और बाघ जैसे वन्य प्राणियों के हमलों को लेकर कई किस्से कहानियां तो हमने सुनी हैं, लेकिन क्या आपको ये पता है कि जिस तरह हम उनसे डरते हैं, वो भी हमसे बिल्कुल उसी तरह डरते हैं। कई बार मानव बस्तियों में शेर, चीते या बाघों का आना तो हमने सुना है, किंतु क्या वाकई वो हमारी बस्ती में आते हैं, या हमने ही उनकी रहने की जगह पर कब्जा करते करते उनके लिए स्वतंत्र रहने की जगह ही बाकी नहीं रखी है। फिर भी शेर, चीते और बाघ जैसे प्राणी दुनिया के सबसे खतरनाक प्राणी यानी मानव से दूर ही रहना चाहते हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि मानव उनसे भी ज्यादा हिंसा प्रेमी रहा है। अगर वो गलती से भी मानव बस्ती में आ जाएं, तो उन्हें बचकर जाने के लिए जी जान लगाना पड़ता है, और मानवों के पास बाघ, शेर, चीतों को भगाने के न जाने कितने किस्से हैं।
1: मेरे पास आओ मेरे दोस्तों, एक किस्सा सुनो। कई साल पहले की ये बात है,

0: नहीं भूलती उफ वो जंगल की रात, मुझे याद है वो थी मंगल की रात। चला जा रहा था मैं डरता हुआ, हनुमान चालीसा पढ़ता हुआ।
1: बोलो हनुमान की जय, जय जय बजरंग बली की जय। हाँ बोलो हनुमान की जय, जय हो बजरंग बली की जय।
0: खड़ी थी अंधेरा मगर सख्त था, कोई दस सवा दस का बस वक्त था।

0: लरजता था कोयल की भी कूक से, बुरा हाल हुआ उस पे भूख से, लगा तोड़ने एक बेरी से बेर, मेरे सामने आ गया एक शेर।
1: कोई खिड़की बन के नजर फिर गई तो बंदूक भी हाथ से गिर गई। मैं लपका, वो छपका, मैं ऊपर, वो नीचे, वो आगे, मैं पीछे, मैं पेड़ पे, वो पीछे, अरे बचाओ, अरे बचाओ, मैं डाल डाल, वो पान पान, मैं पसीना, वो दाद दाद, मैं चूर में, वो ताल में, ये जंगल पाताल में, बचाओ बचाओ, अरे भागो, अरे भागो, अरे भागो।

0: खा गया, लेकिन आप तो जिंदा है।
1: अरे ये जीना भी कोई जीना है लल्लू? हाँ,
2: वन्य जीवों के संरक्षण में तो हम अपना दायित्व निभा ही रहे हैं, लेकिन क्या उनकी सुरक्षा में हम अपना हिस्सा निभाते हैं? वन्य अभयारण्य या जू आदि में जब हम शेर, चीते या बाघों को देखने जाते हैं तो उन्हें तरह तरह की चीजें फेंक कर परेशान करने की कोशिश करते हैं। हम चाहते हैं कि वो हमारी ओर देखें। उनके साथ फोटो लेने की होड़ भी इन दिनों हावी रहती है। इसके लिए तरह तरह की फ्लैश लाइट्स भी उनके मुंह पर चमकाने से हम नहीं चूकते, जबकि इससे उनकी आंखों को नुकसान हो सकता है। जंगल सफारी के दौरान भी हम उन्हें परेशान करने का कोई ना कोई मौका तलाश ही लेते हैं। अब जब हम उनके आधे से ज्यादा निवास स्थान पर अपना आधिपत्य जमा ही चुके हैं, तो कम से कम उनके संरक्षित स्थलों पर तो उनकी सुविधा का ख्याल रख ही सकते हैं। एक मनुष्य के तौर पर सभी जीवों का सम्मान करना भी तो हमारा ही फर्ज है, ताकि वो भी अपने स्थान पर उसी सुकून से रहें जैसा हम अपने घर में रहते हैं।

आज ही कीजिए ये फैसला कि अब से अपनी ही तरह हर जीव की देखभाल का भी करेंगे ख्याल। इसी संदेश के साथ आज की त्रिवेणी यही समाप्त होती है। दीजिए अपनी दोस्त निहार शर्मा को इजाजत। नमस्कार।

नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं प्रियंका अरोड़ा। मुख्य समाचार। लोकसभा में आज लोक परीक्षा अनुचित साधन निवारण संशोधन विधेयक 2026 पर फिर चर्चा। सरकार ने कहा, विधेयक का उद्देश्य परीक्षा प्रणाली में विद्यार्थियों का विश्वास बढ़ाना है। गृह मंत्री अमित शाह ने असम में बाढ़ राहत कार्यों की समीक्षा की। उन्होंने कहा, सरकार इस कठिन समय में असम को हर संभव सहायता प्रदान करेगी। भारत ने हुर्मुज जलडमरू मध्य में हाल में हुए कई समुद्री जहाजों पर हमले की कड़ी निंदा की। कहा, अंतर्राष्ट्रीय समुद्री मार्गों से व्यापार बहाल होना चाहिए। पाकिस्तानी सेना की बर्बर कार्रवाई के बाद पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में मरने वालों की संख्या 40 हुई। और आज अंतर्राष्ट्रीय

0: बाघ दिवस है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, विश्व में बाघों की कुल संख्या का 70% भारत में। अब समाचार विस्तार से। लोकसभा में आज लोक परीक्षा अनुचित साधन निवारण संशोधन विधेयक 2026 पर विचार और पारित करने के लिए चर्चा फिर शुरू हुई। ये विधेयक लोक परीक्षा अनुचित साधन निवारण अधिनियम 2024 में संशोधन का प्रावधान करता है। विधेयक में कई महत्वपूर्ण प्रावधान शामिल किए गए हैं। इसके तहत दोषी पाए जाने वालों के लिए अधिकतम 10 वर्ष के कारावास, 10 करोड़ रूपये तक के जुर्माने और दोष सिद्ध अपराधियों की संपत्ति जब्त करने का प्रावधान है। मामलों के शीघ्र निपटारे के लिए विधेयक में प्रत्येक राज्य सरकार और केंद्र शासित प्रदेश प्रशासन को विशेष फास्ट ट्रैक अदालतें स्थापित करने का प्रावधान किया गया है, ताकि मामलों की दैनिक आधार पर सुनवाई हो सके। इसके अतिरिक्त पुलिस थाने में मामला दर्ज होने की तिथि से 2 महीने के भीतर जांच पूरी करना अनिवार्य होगा, जबकि आरोप पत्र दाखिल होने के 3 महीने के भीतर मुकदमे का निपटारा करना होगा। केंद्रीय कार्मिक लोक शिकायत और पेंशन राज्य मंत्री डॉ जितेंद्र सिंह ने यह विधेयक लोकसभा में प्रस्तुत किया था। चर्चा में भाग लेते हुए जनता दल यूनाइटेड के सांसद दिलेश्वर कामत ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि यह विधेयक विद्यार्थियों के उज्जवल भविष्य को सुनिश्चित करेगा और शिक्षा व्यवस्था में पारदर्शिता बढ़ाएगा। उन्होंने कहा कि यह विधेयक विद्यार्थियों के हित में लाया गया है। वहीं विधेयक का विरोध करते हुए आरएसपी सांसद एनके प्रेमचंद्रन ने कहा कि विधेयक अपने घोषित उद्देश्य को पूरा करने के लिए पर्याप्त नहीं है। विधेयक पर चर्चा के दौरान लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने कहा कि देश की शिक्षा व्यवस्था अब बहुत महंगी हो गई है। इस दौरान संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने गृह मंत्री अमित शाह पर राहुल गांधी की टिप्पणियों पर कड़ी आपत्ति व्यक्त की। श्री रिजिजू ने श्री गांधी से सदन में अपनी टिप्पणी के लिए माफी मांगने की मांग की।
1: कौन सा ऑर्डर है, वो ऑर्डर पे आप निकाल के बताइए। आपने कहा होम मिनिस्टर ने ऑर्डर दिया है फायरिंग के लिए, आप वो ऑर्डर को कॉपी निकालिए। आप बताइए किसने आपको बताया, कौन सा ऑर्डर नंबर, किस व्यक्ति को कहा है, कौन सा अधिकारी। आप कॉपी निकाल करके सदन में रखिए। ऐसा नहीं हो सकता है, चर्चा ऐसा नहीं हो सकता है। कुछ भी मन में चाहेगा बोल करके आप भाग जाएंगे हेडलाइन बतौड़ने के लिए। ऐसा नहीं हो सकता, ये भारत का संसद है, यहाँ जिम्मेदारी के साथ बोलना चाहिए।
0: श्री राहुल गांधी की टिप्पणियों पर हंगामे के बीच लोकसभा की कार्यवाही दोपहर 2:30 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई। राज्यसभा में भी ऐसी ही स्थिति देखने को मिली है। सभापति सीपी राधाकृष्णन ने शून्यकाल शुरू किया। मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी सांसद जॉन ब्रिटास ने जेएनयू छात्र संघ की पूर्व अध्यक्ष आयशी घोष के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए दिल्ली पुलिस द्वारा पार्टी मुख्यालय में कथित तौर पर घुसने का मुद्दा उठाया। इस पर सदन के नेता जेपी नड्डा ने कहा कि यह कानून व्यवस्था का एक सामान्य मामला है। हालांकि विपक्षी सदस्यों ने अपनी मांग पर जोर देते हुए विरोध जारी रखा, जिसके कारण सभापति ने सदन की कार्यवाही दोपहर 2 बजे तक स्थगित कर दी। राज्यसभा की कार्यवाही जारी है। भाजपा सांसद डॉ सतीश पूनिया ने संसद में कांग्रेस के आचरण की आलोचना करते हुए आरोप लगाया है कि पार्टी रचनात्मक विपक्ष की भूमिका निभाने में विफल रही है। भाजपा सांसद संजय जायसवाल ने भी विपक्ष पर परीक्षा सुधारों पर हुई चर्चा में रचनात्मक रूप से भाग न लेने का आरोप लगाते हुए कहा कि विपक्ष ने प्रस्तावित कानून में कोई कमी नहीं बताई और न ही सुधार के लिए कोई सुझाव दिया। भाजपा सांसद शशांक मणि ने लोक परीक्षा संशोधन विधेयक 2026 को प्रतियोगी परीक्षाओं में पारदर्शिता और निष्पक्षता सुनिश्चित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम बताया। झारखंड लोक सेवा आयोग परीक्षा के कथित पेपर लीक मामले के विरोध में झारखंड समेत कई भाजपा सांसदों ने आज संसद परिसर में प्रदर्शन किया। उन्होंने मामले की केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई जांच और झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के इस्तीफे की मांग की। केंद्रीय मंत्री और भाजपा नेता संजय सेठ ने भी मामले की सीबीआई जांच की मांग की।
2: झारखंड के अंदर एक टीडीपीएल एजेंसी है जो परीक्षा कराती है, उत्तर प्रदेश सरकार ने उसको ब्लैकलिस्टेड किया, यहाँ तक कि जेपीएससी ने ब्लैकलिस्टेड किया, फिर उसको बुलाकर पिछले 4 सालों से उसी को जिम्मा दे दिया। जो ब्लैकलिस्टेड है आपने भी किया, थालियां परोस के दे दिया, अब आप कहाँ से न्याय दे पाओगे। तभी तो आज झारखंड के लाखों युवा मांग कर रहे हैं कि सीबीआई जांच कराओ। हम तो इंतजार कर रहे हैं कांग्रेस पार्टी राहुल गांधी जी का, कब वो झारखंड आएंगे, कब मुख्यमंत्री

0: मुख्यमंत्री आवास के सामने धरने बैठे, कब वो मुख्यमंत्री से इस्तीफा मांगेंगे, क्योंकि मुख्यमंत्री शिक्षा मंत्री हैं।
1: भाजपा सांसद विद्युत बरन महतो ने झारखंड में झारखंड मुक्ति मोर्चा कांग्रेस सरकार पर गहरे भ्रष्टाचार में लिप्त होने का आरोप लगाया है।
2: यूपीएससी बहाली में पेपर लीक हुआ है और आए दिन झारखंड में इस तरह कुछ न कुछ होता है। लॉ एंड ऑर्डर एकदम खत्म है, हर विभाग में भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है। इसके लिए हम लोग यहाँ पर धरना दिए हैं। हम लोग चाहते हैं कि जो जेपीएससी में धांधली हुआ इसको सीबीआई जांच करे।
1: लोकसभा ने एक राष्ट्र एक चुनाव से संबंधित विधेयकों की जांच कर रही संयुक्त संसदीय समिति का कार्यकाल इस वर्ष संसद के शीतकालीन सत्र के अंतिम सप्ताह के पहले दिन तक बढ़ा दिया है। समिति के अध्यक्ष और भारतीय जनता पार्टी सांसद पीपी चौधरी ने संविधान 129वां संशोधन विधेयक 2024 तथा केंद्र शासित प्रदेश कानून संशोधन विधेयक 2024 की समीक्षा कर रही संयुक्त संसदीय समिति का कार्यकाल बढ़ाने का प्रस्ताव सदन में पेश किया। इन विधेयकों का उद्देश्य लोकसभा और राज्य विधानसभाओं के चुनाव एक साथ कराने की व्यवस्था लागू करना है। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने इस प्रस्ताव को ध्वनिमत से पारित कर दिया।
3: प्रश्न है कि श्री पीपी चौधरी द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव को स्वीकृत किया जाए। जो सदस्य प्रस्ताव के पक्ष में हाँके हैं, जो सदस्य प्रस्ताव के पक्ष में नाके हैं, मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष हुआ, हाँ वालों पक्ष हुआ, प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।
1: ये समाचार हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप और हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। गृह मंत्री अमित शाह ने असम के मुख्यमंत्री डॉ हिमंत बिस्व शर्मा से बात की और ऊपरी असम में आई भीषण बाढ़ के मद्देनजर जारी राहत कार्यों की समीक्षा की। सोशल मीडिया पोस्ट में डॉ शर्मा ने बताया कि श्री शाह ने जमीनी स्थिति का जायजा लिया और आश्वासन दिया कि केंद्र सरकार बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में राहत, पुनर्स्थापन और पुनर्निर्माण के लिए सभी आवश्यक सहायता प्रदान करती रहेगी। इस बीच असम में बाढ़ की स्थिति में और सुधार हुआ है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि राहत और बचाव अभियान युद्ध स्तर पर जारी है।
4: असम में शिवसागर, गोलाघाट, सोराइदेव और जोरहाट जैसे सर्वाधिक बाढ़ प्रभावित जिलों में राहत और पुनर्वास कार्य युद्ध स्तर पर जारी है। स्थिति धीरे धीरे सामान्य हो रही है। असम सरकार ने हाल की बाढ़ में प्रभावित लोगों के लिए राहत और पुनर्वास उपायों की घोषणा की है। इनमें बाढ़ में जान गंवाने वाले लोगों के परिजनों को अनुग्रह राशि, प्रभावित परिवारों को वित्तीय सहायता तथा विद्यार्थियों के लिए शैक्षणिक सहायता शामिल है। राकेश दोले, आकाशवाणी समाचार, गुवाहाटी।
1: ओडिशा से हमारे संवाददाता ने खबर दी है कि राज्य में गंभीर होती बाढ़ की स्थिति से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है।
5: उड़ीसा में बाढ़ की स्थिति गंभीर हो गई है। इसमें 4 लोगों की मौत हुई है और 6 जिले में 2,00,000 से ज्यादा लोग प्रभावित हुए हैं, जबकि लगभग 28,000 लोगों को सुरक्षित जगहों पर पहुंचाया गया है। जाजपुर, भद्रक, बालेश्वर और केंदुझर सबसे ज्यादा प्रभावित जिलों में शामिल है। बैतरणी नदी आखवापदा में खतरे के निशान से काफी ऊपर बह रही है और सालंदी नदी में अभी भी उफान है। जाजपुर के दशरथपुर में तटबंध टूटने से सैकड़ों परिवार फंस गए हैं। बचाव और राहत कार्यों के लिए एनडीआरएफ और ओडीएफ के 17 टीम तैनात की गई है। प्रकाश दास, आकाशवाणी समाचार, भुवनेश्वर।
1: भारत ने होर्मुज जलडमरू मध्य में हाल में हुए कई समुद्री जहाजों पर हमलों की कड़ी निंदा की है। भारत ने कहा है कि इस क्षेत्र में वाणिज्यिक जहाजों और नागरिक बुनियादी ढांचे को निशाना बनाए जाने की घटनाएं तुरंत बंद होनी चाहिए। संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधि पी हरीश ने कहा कि पश्चिम एशिया में हमले फिर से शुरू होना चिंता का विषय है।
6: पश्चिम एशिया भारत के लिए बहुत अहम इलाका है। इस इलाके की सुरक्षा और स्थिरता में हमारे बड़े हित जुड़े हैं। भारत का व्यापार और ऊर्जा सप्लाई चेन इस इलाके से मजबूती से जुड़े हैं। खाड़ी इलाके में लगभग 1 करोड़ भारतीय रहते हैं और काम करते हैं। उनकी सुरक्षा और भलाई हमारे लिए सबसे आवश्यक है। इस इलाके में चल रहे टकराव में कुछ समय के लिए रुकावट के बाद हमलों का फिर से शुरू होना और तनाव का बढ़ना चिंता की बात है। ये बहुत चिंताजनक है और भारत तनाव को तुरंत कम करने की अपील करता है।
7: कॉल्स फॉर एन इमीडिएट डीएस्केलेशन ऑफ टेंशंस।
1: श्री हरीश ने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय समुद्री मार्गों पर आवाजाही और व्यापारिक स्वतंत्रता शीघ्र बहाल की जानी चाहिए। यूक्रेन के कीव स्थित भारतीय दूतावास ने कहा है कि एमवी अमीर 1 जहाज पर सवार भारतीय नाविकों से संबंधित स्थिति

0: उनकी सर्वोच्च प्राथमिकता है और वे जहाज पर सवार सभी भारतीयों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए संबंधित पक्षों के साथ निरंतर संपर्क में हैं। दूतावास ने ये जानकारी सोशल मीडिया पोस्ट के माध्यम से दी। पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में अशांति लगातार बढ़ती जा रही है। जम्मू कश्मीर मानवाधिकार निगरानी संस्था ने संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार उच्चायुक्त के कार्यालय से हस्तक्षेप करने की अपील की है। ये अपील उन खबरों के बाद की गई है जिनमें आरोप लगाया गया है कि पाकिस्तानी सुरक्षा बलों द्वारा की गई गोलीबारी में 40 से अधिक प्रदर्शनकारियों की मौत हो गई है और कई घायल हुए हैं। जम्मू कश्मीर मानवाधिकार निगरानी संस्था ने संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार उच्चायुक्त वोल्कर तुर्क को भेजी अपनी अपील में कहा है कि यह घटना 27 जुलाई को ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी द्वारा शांतिपूर्ण मार्च के रावलकोट से मुजफ्फराबाद की ओर दोबारा शुरू होने के बाद हुई। उधर संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार उच्चायुक्त के प्रवक्ता जेरेमी लॉरेंस ने जारी एक बयान में कहा है कि किसी नागरिक समाज संगठन को अपराधी घोषित करना और शांतिपूर्ण सभाओं पर कड़े प्रतिबंध लगाना अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, शांतिपूर्ण सभा और संगठन बनाने के अधिकार के उल्लंघन को लेकर गंभीर चिंताएं पैदा करता है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप और सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। आज वैश्विक बाघ दिवस है। उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस अवसर पर वन्य जीव प्रेमियों को शुभकामनाएं दी हैं। सोशल मीडिया पोस्ट में प्रधानमंत्री ने कहा कि विश्व में बाघों की कुल संख्या का 70% भारत में है। भारत के बाघ संरक्षण प्रयास प्रकृति के साथ सामंजस्य स्थापित करने की सदियों पुरानी संस्कृति से प्रेरित हैं और जनता की सामूहिक इच्छा शक्ति से संचालित हैं। वन और पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ने कहा कि भारत ने बाघों के संरक्षण में शानदार सफलता हासिल की है।
1: हमारी जो टाइगर पॉपुलेशन 2226 थी वो बढ़कर 3600 से ज्यादा हुई। 2014 में 47 टाइगर रिजर्व्स होते थे, उनकी संख्या बढ़कर भी 58 हुई है। एलिफेंट रिजर्व्स की संख्या जो 28 होती थी वो भी पिछले 10 वर्षों में बढ़कर के 32 हुई है। डेजिग्नेटेड रामसर साइट्स की संख्या 26 थी जो बढ़कर के अब 100 हो गई है।
0: इस दौरान श्री यादव ने राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण द्वारा विकसित इको टूरिज्म वेब पोर्टल का भी शुभारंभ किया। इस पोर्टल पर सभी बाघ अभयारण्यों की जानकारी उपलब्ध है। ग्लासगो में राष्ट्रमंडल खेल 2026 में गुलवीर सिंह ने पुरुषों की 10,000 मीटर दौड़ में रजत पदक जीतकर इतिहास रच दिया है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन ने रजत पदक जीतने पर गुलवीर सिंह को बधाई दी है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। लोकसभा में आज लोक परीक्षा अनुचित साधन निवारण संशोधन विधेयक 2026 पर फिर चर्चा। सरकार ने कहा विधेयक का उद्देश्य परीक्षा प्रणाली में विद्यार्थियों का विश्वास बढ़ाना है। गृहमंत्री अमित शाह ने असम में बाढ़ राहत कार्यों की समीक्षा की। भारत ने होर्मुज जलडमरू मध्य में हाल में हुए कई समुद्री जहाजों पर हमलों की कड़ी निंदा की। पाकिस्तानी सेना की बर्बर कार्रवाई के बाद पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में मरने वालों की संख्या 40 हुई और आज अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस है। इसके साथ ही दोपहर समाचार का यंग समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: आप सुन रहे हैं विविध भारती, राष्ट्रीय सेवा, देश की सुरीली धड़कन।

प्रस्तुत है कार्यक्रम सदाबहार नगमे। इस कार्यक्रम में आप सभी सुनने वालों का एक बार फिर से स्वागत है। लता मंगेशकर की आवाज, फिल्म का नाम है सुहाग रात, गीतकार इंदिवर, संगीतकार कल्याण जी आनंद जी।

लता मंगेशकर और साथियों को अभी आपने सुना फिल्म का नाम था सुहाग रात। गीतकार थी इंतिवर और संगीतकार कल्याण जी आनंद जी थे।

0: इंजीनियरिंग और मेडिकल एंट्रेंस परीक्षा की पढ़ाई को कैसे बनाया जाए आसान, प्रभावी और तनाव मुक्त, इसके कुछ फॉर्मूले बताएंगे फिजिक्स के प्रोफेसर नयन वर्मा।
1: अगर आप कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए तैयारी कर रही हैं, आप अपना स्टडी टाइम डिवाइड कर लीजिए। 6 घंटा आप जो भी कोचिंग में जाते हैं, 7-8 घंटे की नींद, 1 घंटे का आपका स्पोर्ट्स, उसके बाद में आपके पास 6-7 घंटे जो बचते हैं वो टाइम डिवीजन आपके ऊपर डिपेंड करता है, बिकॉज दैट टाइम डिवीजन डिफर्स फ्रॉम स्टूडेंट टू स्टूडेंट। लेकिन आप एमसीक्यूज रोज प्रैक्टिस करें, बिकॉज आपका जो भी एडमिशन आपके ऑब्जेक्टिव एग्जाम के रैंक के ऊपर डिसाइड होता है।
0: काउंसलर डॉक्टर सुमति ओझा साझा करेंगी तनाव और दबाव से कैसे निपटें,
2: हम किस तरह से पेरेंटिंग करते हैं जैसे हमारे माँ बाप ने हमारे साथ किया। अब जमाना बदल गया है, वी आर इन डिजिटल एरा और इन्फॉर्मेशन फ्री फ्लोटिंग अवेलेबल है, तो इसलिए इम्पोर्टेंट है कि बार बार वर्कशॉप्स रखना, रोल प्ले बताना, उन्हें कैसे कम्युनिकेट करना, ये सब बताना बहुत जरूरी है।
0: फिल्म लेखिका विभा सिंह करेंगी इस कार्यक्रम का विचार मंथन।
3: आजकल हम बहुत बातें सुनते हैं कि कितनी मेहनत सही है और कितनी नहीं सही है, वो एक अलग डिस्कशन है, पर हार्ड वर्क का कोई रिप्लेसमेंट नहीं है, ये बच्चों को जानना बहुत जरूरी है।
0: तो सुनिए विविधा में सृजन भारती 2 अगस्त दिन में 11 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
4: लता मंगेशकर और आशा भोसले की आवाज़ें, फिल्म का नाम शिकार, गीत रचना हसरत जयपुरी की है और धुन बनाई है शंकर जयकिशन ने।

0: दूर जब दिन ढल जाए।
1: मुकेश के गानों में है सादगी।
2: एक दिन बिक जाएगा माटी के मोल।
1: मुकेश के गानों में है रुमानिया।
2: कहीं करती होगी ओ मेरा इंतजार।
1: हम सब के भीतर रहते हैं थोड़े थोड़े मुकेश।
2: जाऊं कहां बताए दिल।
1: पार्श्व गायक मुकेश की याद में एक दिलचस्प महफिल जिसमें शामिल हैं गायक मुख्तार शाह और गोविंद मिश्र।
3: जिस देश में गंगा बहती है, जिस देश में गंगा बहती है।
1: आज के मेहमान 29 जुलाई शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: सुनो जी सुनो हमारी भी सुनो।
4: सदाबहार नगमे कार्यक्रम का अगला गीत लता मंगेशकर और साथियों की आवाजों में, फिल्म का नाम है सरस्वती चंद्र। गीत इंदिवर ने लिखा है और तर्ज कल्याण जी आनंद जी ने बनाई है।

फिल्म साथी का गीत हम आपको सुनवा रहे हैं। बोल मजरू सुल्तानपुरी के हैं, धुन नौशाद साहब की और आवाज लता मंगेशकर की है।

0: सिनेमा की कुछ कल्ट फिल्में उनके नाम पर हैं, स्पर्श, कथा, निशा और चश्मे पर दूर।
1: उन्होंने कहा कि देखो, अब सिर्फ हम नौजवान तीनों दिखा रहे हैं, सिर्फ कॉलेज के युवक नहीं, उनके माँ बाप भी आए, उनके चाचा चाची आए, एक दादी माँ डाली, बाप डाला, एक भाई डाला, वगैरह वगैरह, एक पान वाला डाला। सईद को पकड़ा लिया और उसने कहा फिर मुझे, वी हैव टू गो टू जामा मस्जिद, पुरानी दिल्ली जाना पड़ेगा। मैंने कहा पुरानी दिल्ली क्या करोगे जाके, पान वाले का अगर मुझे करना है रोल तो मुझे देखना नहीं चाहिए पान वाले वगैरह। तो मैंने कहा ये नसीर के बाद ये
2: एक और आ गया।
3: जल्दी है बुलबुल, कोई और कर्जदार लग गया तेरे पीछे क्या?
4: अरे ललन मियां, आप काट देना रास्ता, अब मेरा काम नहीं होगा।
0: दास्तान सई परांजपे की, उजाले उनकी यादों के, 19 जुलाई से 9 अगस्त शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
5: सुनिए,
6: इस कार्यक्रम के आखिर में हम आपको सुनवा रहे हैं मोहम्मद रफी की आवाज में फिल्म मेरे हुजूर का गीत, गीत हसरत जयपुरी का और संगीत शंकर जयकिशन का है।

अब आज का सदाबहार नगमे प्रोग्राम खत्म होता है। आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। सखी सहेली कार्यक्रम के लिए कीजिए बस थोड़ा सा इंतजार।

0: सभी सखियों सहेलियों और सखाओं को रेडियो सखी ममता सिंह का नमस्कार और गुरु पूर्णिमा की बहुत सारी शुभकामनाएं सभी श्रोताओं को, सभी गुरु को जिनसे हमने बहुत कुछ सीखा उन्हें प्रणाम। सोनाली आपको भी नमस्कार।
1: ममता जी आपको और सभी सखियों सहेलियों को, श्रोताओं को सोनाली पाठक का सब प्रेम नमस्कार और गुरु पूर्णिमा की बहुत सारी बधाइयां और शुभकामनाएं।
0: आज गुरु पूर्णिमा के दिन सभी अपने गुरु को याद कर रहे हैं और बधाई दे रहे हैं, प्रणाम कर रहे हैं, चरण स्पर्श कर रहे हैं। सच में अगर गुरु न होते तो हम इतना सब कुछ कैसे सीख पाते लगता है। हालांकि सबसे पहली गुरु तो माँ होती है, माँ के बाद सबसे पहली गुरु या पहला गुरु जो होते हैं वो स्कूल में टीचर होते हैं। तो कई बार ये स्थिति आ जाती है कि गुरु गोविंद दो खड़े काके लागो पाए,
1: बलिहारी गुरु आपकी गोविंद देव बताए।
0: हाँ, तो ऐसी नौबत भी आती है तो हमें लगता है कि बस जिनसे आपने सब कुछ सीखा है, बहुत कुछ सीखा है, उन्हें प्रणाम कर लें। आज
1: हमारे एक साथी ने लिखा है, ममता जी हमने विविध भारती से बहुत कुछ सीखा है, इसलिए आज गुरु पूर्णिमा के अवसर पर विविध भारती को भी बहुत बहुत धन्यवाद और आभार।
0: बिल्कुल, तो हम सभी विविध भारती को प्रणाम करते हैं क्योंकि हमने भी तो सीखा है
1: जी, और हमने बहुत सारे हमारे जो साथियों से भी बहुत कुछ सीखा है। वो जो इतने अच्छे अच्छे कमेंट्स लिखकर भेजते हैं तो उससे भी हमें बहुत कुछ सीखने को
0: बिल्कुल
1: मिलता।
0: और श्रोताओं का से तो हमें बहुत बड़ा मार्गदर्शन मिलता है
1: जी,
0: जब वो कोई समीक्षात्मक टिप्पणी लिखते हैं, कोई आलोचना लिखते हैं, तो उससे हमें हमारा विकास होता है, परिष्कार होता है हमारी भाषा का, शब्दों का जो हम बोलते हैं और विषयों का। अब बात विषयों की चली है तो हम बता देते हैं कि आज हम किन मुद्दों पर बात करने वाले हैं। एक तो आज अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस है और बाघ के नाम से डरी तो नहीं ना डर तो लगता है,
1: डर तो लगता है,
0: लेकिन देख जाते हैं हम लोग, घूमने भी जाते हैं,
1: बस हमें थोड़ी सावधानी बरतना चाहिए जब हम देखने जाते हैं, जब हम जंगल सफारी पे जाते हैं तो उस वक्त हमें थोड़ी सावधानी बरतना चाहिए क्योंकि हम जोश में आके ऐसी कुछ हरकतें कर देते हैं हम सभी कि उसके कारण जो है बाघ जो है वो हमारे ऊपर हिंसक रूप से हमला वगैरह
0: करते हैं। और उसमें सबसे बड़ी सावधानी तो ये रखनी चाहिए कि जो सबकी बोलने की आदत होती है, समूह में जाते हैं और एक दूसरे से हंसी मजाक करते हैं, तो जब वहां जंगल सफारी की सैर पर जब जाएं तो एकदम जैसे मोबाइल में म्यूट बटन होता है, म्यूट टच, तो वैसे ही म्यूट हो जाए वहां पर, क्योंकि जरा से भी बातचीत से उनका असंतुलन होता है, ध्यान विचलित होता है और फिर हमला कर सकते हैं। तो ये ख्याल रखना चाहिए। हालांकि जो जंगल विभाग के अधिकारी या कर्मचारी होते हैं वो बाकायदा इसका ख्याल रखते हैं और
1: रखते हैं।
0: हाँ, और वो बताते भी हैं, हमें समझाइश भी देते हैं इस बात की
1: जी।
0: और
1: आज क्रेडिट कार्ड का माया जाल जिसमें हम लोग उलझते जा रहे हैं, खासकर युवा पीढ़ी।
0: बिल्कुल,
1: तो इस बारे में भी आप लिखकर भेजिए कि आप के क्या अनुभव रहे हैं और किस तरह से इन्हें, क्रेडिट कार्ड का हमें उपयोग तो करना ही है पर उसे किस सावधानी के साथ उसका उपयोग करना है, यानी उसके माया जाल में हमें फंसना नहीं है।
0: बिल्कुल सही कह रहे हैं। सोनाली एक बात बताइए कि जब कहीं घूमने जाते हैं किसी पार्टी फंक्शन में तो क्या पहनना पसंद करती हैं आप, जो रोजमर्रा की जिंदगी में शामिल है ड्रेस या फिर और कुछ?
1: साड़ी पहनना बहुत पसंद है

0: हमें लगता है हर भारतीय स्त्री को साड़ी पहनना पसंद आता होगा। हमने तो सुन रखा है कि जो सुन क्या बातें होती रहती हैं, अब तो मोबाइल का जमाना है, व्हाट्सएप के जरिए बातचीत होती है, तो जो विदेशों में जो भारतीय महिलाएं हैं वो यहां से बाकायदा साड़ियां मंगवाया करती हैं
1: और पहनती भी हैं बड़े
0: मौकों पर, शौक से पहनती हैं। तो साड़ी के बारे में बहुत सारी जानकारी हम देंगे क्योंकि साड़ियों का
1: साड़ी केरल
0: साड़ियों का संसार क्योंकि बहुत समृद्ध है
1: जी।
0: तो साड़ी के बारे में जानकारी देंगे और शब्द बहुत अहम होते हैं
1: कि अहम होते हैं।
0: हाँ, वो एक तीर की तरह है। कहा जाता है ना कि बंदूक से निकली गोली और मुंह से निकली बोली दोनों वापस नहीं आते
1: नहीं आते।
0: तो इसलिए जो भी बोलें तो सोच विचार कर बोलें, शब्द हमारा और विचार आपके।
1: इसमें आदर को हमने चुना है तो आदर भी वैसे ही ममता जी कि आदर जब हम देते हैं तो हमें आदर मिलता है। तो हमारी कोशिश होनी चाहिए कि हम बच्चे हो, बड़े हो, बुजुर्ग हो या हम उम्र हो, सभी से आदर के साथ पेश आए तो हमें भी आदर ही मिलेगा।
0: बिल्कुल सही कह रही हैं।
1: और व्यंजन
0: उसके बिना तो अधूरा लगता है।
1: और व्रत के व्यंजन, अब व्रत के व्यंजन की बात चलती है तो वही बात चलती है, लोग वही मूंगफली दाने, वही साबूदाना, पर हम उसमें भी अगर कुछ पौष्टिक खाएं, जैसे मखाने खा सकते हैं, फिर कच्चा पपीता है उसके व्यंजन बना सकते हैं, फिर उसके अंदर रामदाना है जिसे राजगीरा भी कहते हैं या सामा के चावल, तो उसमें कुछ पौष्टिक हो तो उस तरह के व्यंजन में हमें लिखकर भेजिए।
0: बिल्कुल। और मखाने के लड्डू भी बनते हैं,
1: मखाने की खीर बनती है,
0: जो खाने के बाद अक्सर मीठा खाने के जो शौकीन होते हैं
1: जी,
0: तो अगर इस तरह खाएं, व्रत में खाएं या ऐसे भी खाएं, बहरहाल अब क्या करें,
1: अब गीत सुनते हैं
0: ये गाना।

0: ममता जी, हमारे बहुत सारे साथियों ने गुरु पूर्णिमा की बहुत सारी बधाइयां और शुभकामनाएं दी है। जैसे गुरु पूर्णिमा केवल एक पर्व नहीं बल्कि गुरु के प्रति श्रद्धा, समर्पण और कृतज्ञता का पावन उत्सव है। यह हमें याद दिलाती है कि जीवन में सफलता, संस्कार और आत्मिक उन्नति का मार्ग गुरु के मार्गदर्शन से ही प्रशस्त होता है। इसलिए हमें सदैव अपने गुरु का सम्मान करना चाहिए, उनके उपकारों को स्मरण रखना चाहिए और उनके आदर्शों को अपने जीवन में उतारने का प्रयास करना चाहिए।
1: बिल्कुल सही बात है। और जब चाहिए आपने कहा ना, तो हमें लगता है कि और भी बहुत कुछ चाहिए, जैसे कि पर्यावरण की सुरक्षा करनी चाहिए
0: जी।
1: उसके लिए हमें खुद निजी स्तर पर जूझना चाहिए। एक कहावत याद आ रही है, जब बाघ की बात चली है, आज हमारा विषय भी है, आज बाघ दिवस है, तो ऐसे में लोग कहते हैं ना कि जंगल की शान है बाघ, प्रकृति की पहचान है बाघ। जिस दिन जंगल से बाघ चले जाएंगे उस दिन जंगल भी वीरान हो जाएंगे। तो कहने का तात्पर्य ये है कि ये केवल एक वन्य जीव नहीं है बाघ, बल्कि ये पर्यावरण के प्रहरी के रूप में हम इन्हें जानते हैं। और अगर हम जंगलों की जो कटाई होती है, क्षरण हो रहा है, जंगलों की कटाई को रोकेंगे तो हम बाघ की सुरक्षा कर सकते हैं। जो लोग शिकार करने जाते हैं और बड़े मजे से शिकार करके लौटते हैं और कहते हैं कि हम बाघ का शिकार करके आए, वो ठीक नहीं है। तो उन्हें भी ये सोचना चाहिए कि अगर ये वन्य जीव हमारे साथ नहीं रहेंगे, जंगलों में नहीं रहेंगे, तो हम जंगल से धीरे धीरे वंचित होते जाएंगे
0: जी। और बाघ खाद्य श्रृंखला में सबसे शीर्ष पर होते हैं संतुलन में। ये शाकाहारी जीवों की आबादी को नियंत्रित कर वन पारिस्थितिक तंत्र का संतुलन बनाए रखते हैं। और एक स्वस्थ बाघ आबादी, समृद्ध जंगलों और बेहतर जल प्रणालियों को का संकेत देती है। ये बात हमारे एक साथी ने लिखकर भेजी है।
1: तो इनका हम शुक्रिया अदा कर रहे हैं। और बता दें अपने श्रोताओं को कि प्रत्येक वर्ष 29 जुलाई को ये दिन मनाया जाता है और इसकी शुरुआत हुई थी 2010 में रूस के सेंट पीटर्सबर्ग में आयोजित एक टाइगर समिट के दौरान ये हुई थी।
0: और इस दिवस का उद्देश्य बाघों के संरक्षण के प्रति वैश्विक जागरूकता बढ़ाना, उनके प्राकृतिक आवास की रक्षा करना, जंगलों की कटाई को रोकना इत्यादि बातें शामिल है। और भारत को विश्व के बाघ संरक्षण में अग्रणी देशों में माना जाता है। दुनिया के अधिकांश बाघ भारत में पाए जाते हैं। प्रोजेक्ट टाइगर 1973 ने 1973 और बाघ अभयारण्यों की स्थापना जैसे प्रयासों ने बाघों की संख्या बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है।
1: तो अब एक काम करते हैं, ऐसा ही एक गाना है जिसमें जंगल आता है और पूरा जंगल की कहानी है
0: और बाघ की दहाड़ भी सुनाई देती है,
1: तो सुने वही गाना
0: जी।

आओ बच्चों, आज तुम्हें एक कहानी सुनाता हूं मैं। शेर की कहानी सुनोगे? कई साल पहले की ये बात है, भयानक अंधेरी सिया रात में लिए अपनी बंदूक में हाथ में

0: जा रहा था, नहीं आ रहा था, नहीं नहीं जा रहा था।
1: उफ़, आगे भी तो बोलो ना।
0: बताता हूँ बताता हूँ। नहीं भूलती उफ वो जंगल की रात, मुझे याद है वो थी मंगल की रात। चला जा रहा था मैं डरता हुआ, हनुमान चालीसा पढ़ता हुआ। बोलो हनुमान की जय, जय जय बजरंग बली की जय। हाँ बोलो हनुमान की जय, जय हो बजरंग बली की जय। खड़ी थी अंधेरा मगर सख्त था, कोई दस सवा दस का बस वक्त था।

0: लरजता था कोयल की भी कूक से, बुरा हाल हुआ उस पे भूख से, लगा तोड़ने एक बेरी से बेर, मेरे सामने आ गया एक शेर।
1: कोई खिड़की बन के नजर फिर गई तो बंदूक भी हाथ से गिर गई। मैं लपका, वो झपका, मैं ऊपर, वो नीचे, वो आगे, मैं पीछे, मैं पेड़ से, वो पीछे, अरे बचाओ, अरे बचाओ, मैं डाल डाल, वो पास पास, मैं पसीना, वो दाद दाद, मैं सुर में, वो ताल में, ये जंगल पाताल में, बचाओ, बचाओ, अरे भागो, अरे भागो, अरे भागो।
2: फिर क्या हुआ?
0: खुदा की कसम मजा आ गया मुझे मार कर, बेशरम खा गया।
2: खा गया? लेकिन आप तो जिंदा है।
0: अरे ये जीना भी कोई जीना है लल्लू? हाँ,

0: हाँ तो भी, अरे एक साथ
1: हमारे एक साथी ने लिखा है, एक बाघिन तो मेरे घर में ही है, मेरी हाँ। वाइफ
0: अच्छा
1: अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस की शुभकामनाएं
0: लेकिन भाई अगर वो सुन रही हैं तो हम तो चाहते हैं कि ये बात उनकी सुन ली जाए और

0: कि उनको ये दोबारा कहने के लिए प्रतिबंध लगा दिया जाए कि कैसे कह सकते बाघिन।
1: और एक सखी ने और लिखा है कि बेंगलुरु के बन्नेरघट्टा पार्क में हम बंद गाड़ियों में घूमने गए थे और जो दो बाघ अगल बगल से आ गए जबकि हम सुरक्षित थे, पर डर के मारे मुंह से आवाज ही नहीं निकली और हम एकदम बुद्ध बनकर गाड़ी में बैठे रहे।
0: क्या बात है भाई। तो ये मतलब बाघ से डरना भी जरूरी है लेकिन बाघ से प्रेम करना भी जरूरी है
1: और बाघिन से भी डरना जरूरी है।
0: बिल्कुल।
1: और डर में उपस्थित
0: हाँ वो डर प्रेम वाला डर होना चाहिए क्योंकि बहुत ज्यादा डर अगर लगी तो फिर घर में दिक्कतें पैदा हो जाएगी।
1: वैसे आज साड़ियों का संसार, इसमें हम कसाऊ साड़ी के बारे में हम बातचीत करने वाले हैं। तो कसाऊ साड़ी भारत की सबसे प्राचीन गरिमामयी और सांस्कृतिक रूप से समृद्ध पारंपरिक साड़ियों में से एक है। ये मुख्य रूप से केरल राज्य की पारंपरिक वेशभूषा है। अपनी सादगी, शालीनता और सुनहरे किनारे ने सुनहरी जरी के कारण कसाऊ साड़ी भारतीय हस्तकरघा कला का अनुपम उदाहरण मानी जाती है।
0: और कसाऊ का मतलब ही है कि गोल्डन बॉर्डर किनारा ना, यही सुनहरी जरी साड़ी की सबसे बड़ी पहचान भी है, विशिष्टता भी है। पारंपरिक रूप से इसमें असली सोने और चांदी की जरी का प्रयोग किया जाता था जबकि आजकल उच्च गुणवत्ता वाली जरी का भी उपयोग होता है। अब सोने चांदी का उपयोग कहाँ कोई कर सकता है,
1: बहुत महंगी हो जाएगी,
0: बहुत ज्यादा महंगी हो जाएगी और पहनने के बाद भी दिक्कतें पैदा हो जाएंगी। तो इसलिए कि वो नहीं लगे तो अच्छा है
1: जी। और कसाऊ साड़ी का इतिहास कई सौ वर्ष पुराना माना जाता है। ये केरल की सांस्कृतिक पहचान का अभिन्न अंग रही है। प्राचीन समय से इसे विशेष अवसरों और धार्मिक अनुष्ठानों में पहना जाता था। समय के साथ ये साड़ी देश विदेश में अपने विशिष्ट सुंदरता के कारण लोकप्रिय हो गई है।
0: और अमूमन इसका मूल रंग सफेद या ऑफ व्हाइट होता है। चौड़े सुनहरे जरी बॉर्डर इसकी मुख्य पहचान है। ये हल्की और आरामदायक होती है, साथ में आकर्षक भी। पारंपरिक होने के साथ साथ आधुनिक डिजाइनों में भी ये उपलब्ध है।
1: यानी आजकल इसमें सुनहरे बॉर्डर के साथ साथ लाल, हरे, नीले और मैरून रंगों की सजावट भी देखने को मिलती है। और कसाऊ साड़ियों का निर्माण मुख्यतः हथकरघा यानी हैंडलूम पर किया जाता है। पहले सूती धागों से साड़ी बुनी जाती है, फिर उसके किनारों पर सुनहरी जरी जोड़ी जाती है। इसी पूरी प्रक्रिया में बुनकरों की महीन कारीगरी और धैर्य का विशेष योगदान होता है। और केरल के बलरामपुरम, चेंदमंगलम, कुथमपुल्ली और कन्नूर जैसे क्षेत्र कसाऊ साड़ियों की उत्कृष्ट बुनाई के लिए प्रसिद्ध हैं। यहाँ अनेक परिवार पीढ़ियों से इस परंपरा को जीवित रखे हुए हैं।
0: और ये भी बता दें कि कसाऊ साड़ी विशेष रूप से ओणम, विशु, विवाह, मंदिरों के धार्मिक समारोहों, सांस्कृतिक आयोजनों और शास्त्रीय नृत्य प्रस्तुतियों में पहनी जाती है। केरल की दुल्हन भी विवाह के अवसर पर पारंपरिक कसाऊ साड़ी पहन लेती है। और कसाऊ साड़ी केवल एक परिधान ही नहीं है, पहनावा ही नहीं है, बल्कि केरल की बाकायदा संस्कृति है, परंपरा है और हस्तशिल्प की पहचान भी है। इसके निर्माण से हजारों बुनकर परिवारों को आजीविका मिलती है। ये भारतीय हस्तकरघा उद्योग को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर गौरव दिलाने में बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है।
1: कसाऊ साड़ी सादगी, शालीनता और भारतीय संस्कृति का अद्भुत संगम है। इसकी सुनहरी आभा केवल वस्त्र की शोभा नहीं बढ़ाती बल्कि केरल की समृद्ध विरासत, बुनकरों की कला और भारतीय परंपरा की चमक को भी दुनिया के सामने प्रस्तुत करती है। इसलिए कसाऊ साड़ी को भारतीय संस्कृति का एक अनमोल धरोहर माना जाता है।
0: अब एक गाना सुनते हैं और फिर और चर्चा करते हैं अन्य विषयों पर भी।

0: ममता जी एक हमारे साथी कहते हैं कि लेडीज के लिए कपड़े जितने हो उतने कम ही होते हैं। साड़ी तो अलग अलग जगहों से लेना बहुत ही अच्छा लगता है, क्योंकि उस साड़ी को जब हम पहनते हैं तो उस जगह की, उस शहर की यादें ताजा हो जाती है।
1: क्या बात है। और कुछ लोगों को साड़ियों का इतना ज्यादा शौक होता है कि पहले साड़ी के बारे में रिसर्च करते हैं और उस साड़ी की विशेषता के बारे में जानकारी हासिल करती हैं महिलाएं, फिर वो साड़ी खरीदती हैं। और फिर आजकल तो सोशल मीडिया का जमाना है और वहां पर
0: पहन के पोस्ट करना
1: हाँ। फोटो डालना और उसके बारे में लिखना, ये भी आजकल चलन में है
0: जी।
1: तो जिनको रुचि है, ये अच्छी बात है। अगर आप कोई विशेष साड़ी पहन रही हैं और उसके बारे में जानकारी है तो आप सोशल मीडिया पे बातें अपनी लिखती हैं और लोग लाभान्वित होते हैं, तो अच्छी बात है। अब
0: लोगों
1: जैसे
0: के ज्ञान में भी बढ़ोतरी होती है।
1: जैसे सखी सहेली कार्यक्रम के माध्यम से हम बहुत सारी बातें अपनी सखियों तक पहुंचा रहे हैं कि जब कोई नई साड़ी खरीदती हैं और उसके बारे में आपको लगता है कि बताना चाहिए, तो आप लिख सकती हैं विविध भारती के फेसबुक पेज पर और हम आपकी बात आप तक पहुंचाएंगे। मतलब उससे नए श्रोता भी जानेंगे कि अन्य साड़ियों की अन्य क्या क्या विशेषताएं होती हैं, है ना
0: जी।
1: तो अब क्या करें हम,
0: ब्रेक लेते हैं।
1: ठीक है, एक ब्रेक लेते हैं, उसके बाद फिर और भी हम बातें करते हैं।

0: विविध भारती से ये है कार्यक्रम सखी सहेली। इंजीनियरिंग और मेडिकल एंट्रेंस परीक्षा की पढ़ाई को कैसे बनाया जाए आसान, प्रभावी और तनाव मुक्त, इसके कुछ फॉर्मूले बताएंगे फिजिक्स के प्रोफेसर नयन वर्मा।
1: अगर आप कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए तैयारी कर रही है, आप अपना स्टडी टाइम डिवाइड कर लीजिए। 6 घंटा आप जो भी कोचिंग में जाते हैं, 7-8 घंटे की नींद, 1 घंटे का आपका स्पोर्ट्स, उसके बाद में आपके पास 6-7

0: परसेंटेज जो बचते हैं वो टाइम डिवीजन आपके ऊपर डिपेंड करता है, बिकॉज दैट टाइम डिवीजन डिफर्स फ्रॉम स्टूडेंट टू स्टूडेंट. लेकिन आप एमसीक्यूज रोज प्रैक्टिस करें, बिकॉज आपका जो भी एडमिशन आपके ऑब्जेक्टिव एग्जाम के रैंक के ऊपर डिसाइड होता है.
1: काउंसलर डॉक्टर सुमति ओझा साझा करेंगी तनाव और दबाव से कैसे निपटें.
2: हम किस तरह से पेरेंटिंग करते हैं जैसे हमारे माँ बाप ने हमारे साथ किया. अब जमाना बदल गया है, वी आर इन डिजिटल ईरा और इन्फॉर्मेशन फ्री फ्लोटिंग अवेलेबल है. तो इसलिए इम्पोर्टेंट है कि बार बार वर्कशॉप्स रखना, रोल प्ले बताना, उन्हें कैसे कम्युनिकेट करना, ये सब बताना बहुत जरूरी है.
1: फिल्म लेखिका विभा सिंह करेंगी इस कार्यक्रम का विचार मंथन.
3: आजकल हम बहुत बातें सुनते हैं कि कितनी मेहनत सही है और कितनी नहीं सही है, वो एक अलग डिस्कशन है, पर हार्ड वर्क का कोई रिप्लेस

0: वो एक अलग डिस्कशन है, पर हार्ड वर्क का कोई रिप्लेसमेंट नहीं है, ये बच्चों को जानना बहुत जरूरी है।
1: तो सुनिए विविधा में सृजन भारती 2 अगस्त दिन में 11 बजे सिर्फ विविध भारती पर। विविध भारती पर यह कार्यक्रम सखी सहेली और सोनाली जी, आज का जो आधुनिक युग है इसमें क्रेडिट कार्ड केवल एक प्लास्टिक कार्ड नहीं होता है, बल्कि सुविधाओं, आकर्षक ऑफरों और तात्कालिक इच्छाओं का ऐसा संसार बन चुका है जो देखते ही देखते व्यक्ति को आर्थिक भ्रमजाल में उलझा सकता है और हम सब कहीं न कहीं कभी न कभी उलझ जरूर जाते हैं,
2: इस माया जाल में उलझ जाते हैं।
1: और बिना जेब में पैसे रखे खर्च करने की शक्ति देता है भाई, लेकिन यही शक्ति संयम से न बरता जाए तो आर्थिक स्वतंत्रता को बंधन में ये बदल सकती है।
2: और क्रेडिट कार्ड की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि आज हमें आज खरीदो बाद में भुगतान करो का अवसर देता है। शुरुआत में यह सुविधा बहुत आकर्षक लगती है ना ममता जी, महंगे मोबाइल है भाई, फिर कपड़े हैं, इलेक्ट्रॉनिक सामान है, छुट्टियां हैं या रेस्टोरेंट का खर्च है, सब कुछ एक छोटी सी स्वाइप में संभव हो जाता है। लेकिन धीरे धीरे व्यक्ति को यह एहसास ही नहीं रहता कि वो अपनी वर्तमान आय नहीं बल्कि भविष्य की कमाई खर्च कर रहे हैं।
1: बिल्कुल सही कह रही हैं आप, और कैश रखने की जहमत भी नहीं उठाना है, और क्योंकि कैश रखो, गिनो, खर्च करो, कई बार गिरने का भी खतरा रहता है, तो ये फायदेमंद भी है लेकिन कई बार नुकसानदेह भी होता है। बाजार इस मनोविज्ञान को भली भांति समझ जाता है, कैशबैक, रिवॉर्ड पॉइंट्स, जीरो डाउन पेमेंट और विशेष छूट जैसे आकर्षक प्रस्ताव उपभोक्ताओं को ज्यादा से ज्यादा खर्च करने के लिए प्रेरित करते हैं।
2: यानी हमें जो लालच मिल जाता है तो हम भी लालची बन जाते हैं, और कई बार लोग केवल ऑफर का लाभ लेने के लिए ऐसी वस्तुएं खरीद लेते हैं ममता जी जिनकी वास्तव में आवश्यकता ही नहीं होती है। क्रेडिट कार्ड का सबसे खतरनाक पहलू तब सामने आता है जब व्यक्ति केवल न्यूनतम भुगतान यानी मिनिमम पेमेंट करता है, उसे लगता है कि उसने बिल भर दिया, लेकिन जब शेष राशि पर ऊंचा ब्याज जुड़ता है तब समझ में आता है।
1: बिल्कुल सही कह रहे हैं, तो हम सब इस माया जाल में कभी न कभी तो फंसे। साड़ियों की बात कर रहे थे तो आप भी साड़ी खरीदने गई होंगी निश्चित रूप से कि चलो आज ये साड़ी खरीद ही लेते हैं,
2: तो मन बहुत है, भले हमारे अकाउंट में नहीं है पर क्रेडिट कार्ड तो है हमारे पास में,
1: तो ये हम सब कभी न कभी करते ही है, इससे बचना
2: चाहिए। समय के साथ ब्याज इतना बढ़ जाता है ममता जी कि मूल खर्च से कहीं अधिक राशि हमें चुकानी पड़ सकती है और धीरे धीरे कर्ज का बोझ बढ़ता जाता है और आर्थिक तनाव भी आ जाता है।
1: जाहिर सी बात है, अगर ब्याज होगा, बढ़ेगा, कर्ज बढ़ेगा तो तनाव तो होगा ही। ये मायाजाल केवल पैसों तक सीमित नहीं रहता है बल्कि लगातार बढ़ते बिल, भुगतान की चिंता और कर्ज का दबाव मानसिक शांति भी छीन लेता है। कई परिवारों में तो आर्थिक असंतुलन के कारण तनाव, विवाद, लड़ाई झगड़े, भविष्य की योजनाओं पर भी प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है, बचत घटने लगती है और आकस्मिक परिस्थितियों से निपटना कठिन होने लगता है।
2: हालांकि क्रेडिट कार्ड स्वयं में बुरा नहीं है, ये एक उपयोगी वित्तीय साधन है, इसका उपयोग समझदारी से किया जाए, समय पर पूरा बिल चुकाना, अपनी आय के अनुसार ही खर्च करना, अनावश्यक खरीदारी से बचना, एक साथ अनेक क्रेडिट कार्ड ना रखना और ऑफरों के मोह में ना फंसना, ये आदतें व्यक्ति को आर्थिक रूप से सुरक्षित रखती है।
1: बिल्कुल सही सोनाली जी, आपको याद होगा बचपन में अपने माता पिता को, दादी को, नानी को बजट का हिसाब करते हुए देखा था, कागज पर पन्ने पर लिखा जाता था खर्च कितना हुआ और कितने पैसे आए, कितनी है और कितने खर्च करने हैं, महीने के बाकायदा सामान की लिस्ट बनती थी। अब वो सब है ही नहीं, वो जमाना ही नहीं रहा, अब तो आप सीधे मॉल में चले जाइए, शॉप पर चले जाइए और चीजें खरीदते रहिए और हाँ कितना हुआ बिल, वो पेमेंट आप सीधे कर देते हैं, तो ये एक नुकसान हो गया है क्रेडिट कार्ड का, फायदे भी है।
2: बिल्कुल सही बात कही कि पुराने जमाने में यानी 2-3 महीने बाद में बड़ा त्यौहार आने वाला है जैसे दिवाली आने वाली, तो उसकी तैयारियां 2-3 महीने पहले से की जाती थी कि हमें ज्यादा बचत करना है तो फिर त्यौहारों के वक्त हमारा खर्च ज्यादा होगा। आजकल हम इन बारे में कुछ सोचते ही नहीं।
1: और बुजुर्ग कहा करते थे चादर जितनी हो उतनी ही पांव पसारें, और अब चादर की ओर कोई ध्यान नहीं देता तो कई बार जो कर्ज तले भी फंस जाते हैं। हमें ये समझना चाहिए कि क्रेडिट कार्ड सुविधा देता है, आय नहीं बढ़ाता है, वास्तविक समृद्धि अधिक खर्च करने में नहीं बल्कि संतुलित खर्च, नियमित बचत और विवेकपूर्ण वित्तीय निर्णय लेने में है।
2: और जिस प्रकार क्रेडिट कार्ड का आकर्षण भी यदि नियंत्रण से बाहर हो जाए तो आर्थिक जीवन को उलझा सकता है, और क्रेडिट कार्ड का सही उपयोग जीवन को सरल बना सकता है, लेकिन लापरवाही इसे आर्थिक संकट का कारण बना सकती है। इसलिए खरीदारी से पहले स्वयं से एक प्रश्न अवश्य पूछे, क्या मेरी यह आवश्यकता है या केवल एक क्षणिक इच्छा।

0: है। यदि इस प्रश्न का उत्तर ईमानदारी से दिया जाए तो क्रेडिट कार्ड कभी मायाजाल नहीं बनेगा बल्कि एक उपयोगी वित्तीय साथी सिद्ध होगा।
1: बिल्कुल सही कह रही। क्रेडिट कार्ड की चमक क्षणिक होती है लेकिन कर्ज का बोझ वर्षों तक चलता है, तो इसलिए इसका ध्यान रखें और हमें ध्यान रखना है कि सुनवा दे एक गाना इस वक्त।

0: सोनाली जी कहाँ खोई हुई हैं, मोबाइल के स्क्रीन पर बस टिप्पणियां ही देखती रहेंगी या कुछ कहेंगी भी?
1: हाँ, कहेंगे ममता जी। श्रोताओं ने इतने सुंदर सुंदर हमें कमेंट्स लिखकर भेजे हैं, तो चलिए उन्हीं के कमेंट्स पढ़ रहे हैं।
0: वो तो हम समझ गए कि आप ढूंढ रही हैं लगातार, लेकिन पढ़ के भी सुना दीजिए कुछ कमेंट, हम भी तो सुन लें क्या आपने अभी क्या पढ़ा।
1: जी, हमारे एक साथी ने क्रेडिट कार्ड को लेकर बहुत अच्छी बात लिखी है। ये कहते हैं कि क्रेडिट कार्ड का मायाजाले मैं बताना चाहूंगा। जब क्रेडिट कार्ड का चलन जब शुरू हुआ था, उस समय प्राइवेट बैंक के कर्मचारियों ने चिकनी चुपड़ी बातों में आकर मैंने क्रेडिट कार्ड बनवाया था, लेकिन बिल में ऐसे चार्जेस लगाना शुरू हो गए थे जिनके विषय में मुझे बताया ही नहीं गया, और बहुत जल्दी मैंने अपना क्रेडिट कार्ड सरेंडर कर दिया। उस समय से आज तक मैंने तौबा कर ली है, और अभी भी मोबाइल पर क्रेडिट कार्ड का कोई ऑफर आता है तो मैं मना कर देता हूँ, और मैं सोचता हूँ कि जान बची लाख उपाय।
0: और हमने अपने श्रोताओं से ये भी आवाहन किया था कि शब्द हमारे विचार

0: आपके
1: जी
0: तो अभी तक कोई टिप्पणी तो दिख नहीं रही है
1: जी।
0: तो शब्दों का प्रयोग कैसे करें ये लगता है श्रोता समझ नहीं पाए क्या
1: नहीं।
0: और हमें तो इंतजार रहता है उनकी टिप्पणियों का और उन्हें इंतजार रहता है कि हम उनकी टिप्पणी उन तक पहुंचाएं तो तब तक एक काम करते हैं हम व्यंजनों की बात करते हैं और ये जो व्यंजन व्रत में खाए जाने वाले व्यंजनों की हमने चर्चा की थी तो हमारी एक सखी है जिन्होंने लिखा है कि व्रत की शाही नमकीन कच्ची मूंगफली 100 ग्राम। अब यहां पर एक मिनट हम अपने श्रोताओं से फिर कह दें कि अगर आप चाहते हैं कि आपकी टिप्पणी शामिल हो क्योंकि ये जो सेगमेंट हम श्रोताओं के नाम रखते हैं कि हम एक विषय देते हैं और आपको अपनी टिप्पणी लिखनी होती है
1: जी।
0: तो आदर शब्द हमने दिया है आज तो आदर पर वो उनके क्या विचार हैं वो भेजें तब तक हम ये टिप्पणी पढ़ रहे हैं
1: जी।
0: व्रत की शाही नमकीन बनाने के लिए कच्ची मूंगफली 100 ग्राम ले लें और मोटा वाला साबूदाना ले लें 100 ग्राम, 100 ग्राम काजू, 10 ग्राम किशमिश, 50 ग्राम चारोली, चारोली यानी चिरौंजी दाने
1: जी।
0: और बादाम गिरी 100 ग्राम, मखाने 50 ग्राम, खरबूजा और कद्दू के बीज 50-50 ग्राम शुद्ध घी तलने के लिए। अगर आप तलना नहीं चाहती हैं तो सिर्फ मूंगफली को भून ले, सेक ले, सारी चीजों को मिक्स करके ऊपर से 2 चम्मच घी डालकर काली मिर्च, सेंधा नमक और पुदीने का चूर्ण डालकर एयर फ्रायर में 160 डिग्री पर 10-15 मिनट के लिए लगा दें। आपकी हेल्दी नमकीन तैयार हो जाएगी और अगर घर में एयर फ्रायर न हो तो कढ़ाई में घी डालकर तल भी सकती हैं या कम घी में भी भून कर बना सकती हैं। यहां एक बात ध्यान देना है कि एयर फ्रायर में साबूदाना न डालें, साबूदाने को अलग से कढ़ाई में भूनकर फिर इस मिश्रण को मिक्स करें।
1: एक हमारे साथी ने मखाने या साबूदाने की खीर की रेसिपी लिखकर भेजी है कि दूध को गाढ़ा करके मखाने, मेवे और चीनी डालकर बनाई जाने वाली एक पारंपरिक मिठाई, फलों का रायता, ताजे दही में अनार, सेब और केला मिलाकर बनाया गया एक ताजा सेहतमंद विकल्प है। साथ ही एक साथी ने लिखा है कुट्टू का आटा, इससे स्वादिष्ट और कुरकुरी कुट्टू की पूड़ी, पकौड़ी या पराठे बनाए जाते हैं जो शरीर को तुरंत एनर्जी देते हैं। सिंघाड़े का आटा, इसका उपयोग मुख्य रूप से मीठे सिंघाड़े का शीरा यानी हलवा या नमकीन सिंघाड़े की कड़ी बनाने के लिए किया जाता है। राजगिरा का आटा, इसकी रोटियां और पूरी स्वास्थ्य के लिए बेहद पौष्टिक है। और एक हमारे साथी ने तो व्रत वाले दही वड़े लिखकर भेजे हैं।
0: अरे वाह, तब तो आप जरूर बताइए कैसे बनाते हैं।
1: 1 कप सामा के चावल, 1/4 कप साबूदानों को अच्छे से धोकर 3-4 घंटे के लिए पानी में भिगो दे, फिर पानी छान कर दोनों को मिक्सी में डाले, साथ में हरी मिर्च, अदरक, थोड़ा सेंधा नमक और 2 चम्मच पानी डालकर चिकना पेस्ट कर ले। अब इस पेस्ट को एक पैन में डाल के मध्यम आंच पर लगातार चलाते हुए तब तक पकाएं जब तक ये गाढ़ा होकर आटे जैसा ना बन जाए। मिश्रण को थोड़ा ठंडा होने के बाद इसमें कद्दूकस किया हुआ एक उबला आलू, हरा धनिया डालकर अच्छी तरह से गूंथ ले और हाथों में थोड़ा थोड़ा तेल लगाए और मिश्रण से गोल गोल बड़े बनाए और गर्म तेल या घी में मध्यम आंच पर सुनहरा होने तक तल ले और तले हुए गर्म वड़ों को हल्के गुनगुने पानी जिसमें थोड़ा सेंधा नमक मिला लो 5 मिनट के रख दे, फिर हल्के हाथों से निचोड़ कर निकाल ले। अब आवश्यकता अनुसार दही ले, इसमें चीनी और थोड़ा सेंधा नमक डालकर अच्छी तरह फेंट ले। एक प्लेट में वड़े रखे, ऊपर से गाढ़ा फेटा हुआ दही डाले। इसके बाद व्रत वाली खट्टी मीठी चटनी, अमचूर या खजूर की हरी चटनी, भुना जीरा पाउडर, काली मिर्च और अनार दानों के साथ साथ ठंडा ठंडा परोसे।
0: क्या बात है। और हमारी एक सखी लिख रही है कि व्रत में भिन्न भिन्न प्रकार के व्यंजन बनाए जाते हैं पर मेरी समझ से व्रत का मतलब शरीर को डिटॉक्स करना है जिसमें हमें तरल पदार्थ और वो पदार्थ जो आसानी से पच जाने जाए लेने चाहिए, जैसे कि कम घी में भुने मखाने, ऐसे ही भगर यानी कि सामा के चावल की खिचड़ी और खीर, फल मिक्स, कच्चे सलाद, खीरा, गाजर, चुकंदर का रायता, दही, नींबू, पानी, छाछ और खूब सारा पानी, इससे शरीर भी थोड़ा रिलैक्स हो जाता है। ये बात भी सही है कि जब हम व्रत करते हैं कि हमें मतलब शरीर को थोड़ा आराम मिले, पेट को आराम मिले, तो ये तरीका भी सही है। व्रत का मतलब ये नहीं होता है कि रोज की तुलना में खूब सारा तला भुना खा लें और इतना ज्यादा खा लें कि आपकी तबीयत बिगड़ जाए
1: जी।
0: और इस समय हम एक गाना सुनवा लेते हैं, तब तक हमें इंतजार रहेगा कि हमारे श्रोता लिख भेजेंगे, कुछ टिप्पणियां आई हैं शब्दों के लिए
1: जी।
0: लेकिन अभी और बाकी हैं, सुनते हैं गाना।

0: सोनाली, रात के कली एक ख्वाब में आई। हम रात को तो ख्वाब देखते ही हैं, कई बार दिन में भी लोग ख्वाब देखते हैं
1: जी।
0: और ख्वाब देखने के बाद उसकी चर्चा भी करते हैं, बताते भी हैं, लेकिन कई बार कुछ बताने का अंदाज बड़ा अलग होता है, अनोखा होता है, जो आपको अलग जुदा करता है लोगों से, मतलब अच्छा लगता है। और कुछ लोगों के बोलने का अंदाज बहुत ही रफ होता है, रूखा होता है, रूखा होता है तो बहुत खराब लगता है। तो कहने का तात्पर्य ये है यहाँ पर कि

0: जब भी बोले तो किसी के साथ सम्मान के साथ बोले, आदर के साथ, रिस्पेक्ट के साथ, तो कितना अच्छा लगता है ना।
1: फिर कई वो बार बड़े हो, छोटे हो, बुजुर्ग हो या फिर वो हम उम्र हो, है ना।
0: तो आप छोटों से आदर के साथ बोलते हैं?
1: जी, बोलना ही पड़ता है आज नहीं तो छोटे भी
0: सीखेंगे कैसे।
1: जी जी,
0: अगर
1: जी।
0: हम उन्हें सिखाएंगे कि आप आदर के साथ बोलो और उन्हें आदर नहीं देंगे तो कहाँ से सीखेंगे, है ना।
1: ये तो बात बिल्कुल सही कही आपने। वैसे आदर केवल एक शब्द नहीं बल्कि मानवीय रिश्तों की पवित्र बुनियाद है। दिखावा बनाम वास्तविकता, ये झुककर प्रणाम करने से ज्यादा मन में सद्भाव रखने की भावना है। समानता का प्रतीक है आदर, सिर्फ बड़ों के लिए नहीं बल्कि हर छोटे बड़े व्यक्ति के अस्तित्व के लिए जरूरी है। ये बात हमारे एक साथी ने लिखकर भेजी है।
0: हमारे एक श्रोता ने ये भी लिखा है कि शब्द होठों से निकलते हैं, विचार मन से जन्म लेते हैं, लेकिन आदर दिल से आता है और जिस बात में दिल का आदर जुड़ जाए वो हमेशा याद रह जाती है। और एक श्रोता ने और लिखा है कि आपके लिए एक छोटी सी बात शब्दों की मिठास कानों तक पहुंचती है, विचारों की गहराई मन तक, लेकिन आदर सीधे दिल में उतर जाता है। इसलिए जीवन में सबसे सुंदर भाषण हमेशा सम्मान वाले होते हैं।
1: एक साथ ही लिखते हैं, आप दूसरों को जो आदर देते हैं वो असल में आपके अपने संस्कार को दर्शाता है। अधिकार नहीं, उपहार, आदर कभी भी ताकत या पद के बल पर नहीं मांगा जा सकता। इसे अपने आचरण से कमाया जाता है। आत्म सम्मान से जुड़ाव, जो व्यक्ति खुद का आदर नहीं करता वो दूसरों का सच्चा आदर कभी नहीं कर सकता।
0: कई बार तो सम्मान लोग मांग के लेते हैं, कहते हैं कि देखो अरे आपने हमसे ऐसे बोला, हम तो इतने बड़े ओहदे पर काम करते हैं और ये हम इतने बड़े हैं आपसे उम्र में। तो मुझे लगता है कि ऐसे लोग आदर नहीं मांगते हैं, वो जैसे भिक्षा मांगते हैं। और आदर मांग के नहीं लिया जा सकता है
1: जी,
0: आदर के लायक
1: कमाया जाता है,
0: कमाया जाता है, उसके लायक बनना पड़ता है। आपके भीतर, आपके अंदर कुछ ऐसा हो, आपके व्यक्तित्व में ऐसा कुछ हो कि लोग अपने आप विनम्रता से झुक जाए आपके सामने।
1: एक साथी ने लिखा है कि आदर वो सुगंध है जो शब्दों से नहीं बल्कि व्यवहार से फैलती है। जिस घर में आदर का दीपक जलता है वहां प्रेम की रोशनी भी कम नहीं होती है।
0: और एक श्रोता ने लिखा है कि आदर वो खामोश भाषा है जिसे हर दिल बिना किसी अनुवाद के समझ लेता है। इसमें ऊंची आवाज की नहीं बड़े दिल की जरूरत होती है। जहां आदर हो वहां रिश्ते अपने आप खूबसूरत हो जाते हैं।
1: एक साथी ने और भी लिखा, आप पढ़ रही हैं? और
0: नहीं, आप पढ़िए, आपके हाथ में मोबाइल है और स्क्रीन पर आप लगातार देख रहे हैं।
1: जी, एक साथ ही लिखते, आदर ऐसी चीज है जिसे पाने की इच्छा हर इंसान के मन में होती है। बड़े हो या छोटे, हर किसी को अच्छा लगता है जब उसकी बात सुनी जाए और उसे महत्व दिया जाए। मेरा मानना है सम्मान देने से कोई छोटा नहीं होता और रिश्ते, बल्कि रिश्ते बड़े हो जाते हैं। जब जहां आदर होता है वहां प्यार, अपनापन और विश्वास अपने आप आ जाते हैं।
0: बिल्कुल, जैसे आपने हमें आदर दिया अभी कि आप पढ़ेंगे, तो मैंने कहा नहीं आप पढ़िए। तो ये एक शब्दों में आदर कहीं छिपा होता है
1: जी,
0: हमें बताने की जताने की जरूरत नहीं होती। ये तो हम श्रोताओं को बता रहे हैं, वरना हम आपस में कहां कभी बताते हैं कि हम आपको आदर दे रहे हैं। एक श्रोता ने लिखा है कि आदर वो धन है जो बांटने से बढ़ता है। क्या बात है भाई, जिस व्यक्ति के व्यवहार में सम्मान होता है उसके रिश्तों में विश्वास और अपनापन बना रहता है। बड़े हो या छोटे, हर इंसान सम्मान का अधिकारी होता है। मीठे शब्द, विनम्र व्यवहार ही सच्चे संस्कार की पहचान है। हमने तो कई घरों में देखा है कि वो छोटे बच्चों से, 3-4 साल के बच्चों को भी आप कहकर बात करते हैं
1: जी।
0: तो कई बार ये भी लगता है इतने छोटे बच्चे को आप क्या कहना, लेकिन वहीं से सीखते हैं बच्चे
1: जी। और फिर बच्चे हम जैसा जैसा सुनते हैं वैसा ही वे पेश आते हैं।
0: अब आदर की बातें हो गई हैं, अब घड़ी की ओर जरा देखिए।
1: तो गाना सुनते हैं
0: ये गाना, प्रोग्राम का आखिरी गीत।

0: भाई दिल तो हमारा भी अभी नहीं भरा है, लग रहा है कि अभी और थोड़ा बोल लें बतिया लें, लेकिन बिल्कुल
1: रुकना पड़ेगा।
0: तो अब सभी श्रोताओं से लेते हैं इजाजत, आप सभी को ममता सिंह
1: और सोनाली पाठक का नमस्कार, नमस्कार।
0: सखी सहेली कार्यक्रम की प्रोड्यूसर अनुश्री पाठक,
2: सखी सहेली।

इस कार्यक्रम में हमारे साथ थे गायक मुख्तार शाह और गोविंद मिश्र। और इन दोनों गायकों ने न केवल मुकेश के बहुत सारे गाने गाए, बल्कि ये भी बताया कि मुकेश की गायकी की क्या खासियत थी और मुकेश उनकी जिंदगी

0: अच्छा ये बताइए, अपने परिवार वालों में किसके लिए कौन सा गाना गाते हैं आप लोग?
1: पर्टिकुलरली ऐसा तो घर के अंदर वो बोलते ना कि जो बाहर अपना प्रोफेशन होता है, घर के अंदर इंसान की आखिर पूरी पर्सनैलिटी अलग होती है।
0: बिल्कुल
1: तो वैसा तो होता नहीं है। हाँ। कभी घर के अंदर तो उल्टा शायद अगर गा रहे हो तो घर वाले बोलते होंगे कि भाई अभी यहाँ बंद।
0: आपके साथ भी ऐसा होता है?
2: मेरे साथ तो क्या है कि अगर रिहर्सल है और शाम को शो है तो मुझे पता है कि मैं सुबह निकल रहा हूँ, रात को घर वापस आऊंगा। तो वाइफ का थोड़ा सा मूड उखड़ा रहता है, क्या खूब लगती हो, बड़ी सुंदर दिखती हो, गा के चला आता हूँ। उसके बाद ना कोई फोन आता है ना कोई मैसेज आता है, घर में शांति बनी रहती है।
0: ये देखो गाना जो है एक जरिया बन गया खुश करने का। तो ये गाना सुनाइए।

0: तो मतलब ये गाना काम कर जाता है।
1: कभी कभी कर जाता है।
0: अच्छा ये बताइए, रेडियो का आप लोगों की जिंदगी में क्या इम्पोर्टेंस रहा है बचपन से अब तक? विविध भारती एक ऐसी संस्कृति है, मैं इसको रेडियो चैनल के बजाय कल्चर कहना ज्यादा पसंद करता हूँ।
2: मैं समझता हूँ इतने खुश नसीब लोग हैं कि हमने अपने दौर में रेडियो का वो सुनहरा दौर भी देखा है कि जब एक किसी के पास एक रेडियो हुआ करता था और हम उसके घर पे इकट्ठा होके 8-10 घर के अड़ोस पड़ोस के लोग, क्योंकि सबके रेडियो भी नहीं होता था, तो जैसे रेडियो सिलोन सुनते थे अमीन साहनी साहब को, तो वो दौर भी देखा। हवा महल एक प्रोग्राम आता था आपका, मेरा बहुत फेवरेट था वो, मैं 9:15 बजे वो हमें सुनता था।
0: क्या बात,
2: तो आपको इतना हमने सुना है इन दिनों आप जो काम कर रहे हैं, तो ये चीजें संगीत से जुड़े रहने के लिए और उस दौर के दिलचस्प बातें और किस्से सुनने के लिए बहुत अच्छा जरिया रहा है हमारी जिंदगी में, इसने बहुत अहम किरदार निभाया हमारे जिंदगी।
0: क्या बात है गोविंद, आप तो इलाहाबाद से आते हैं और बहुत पॉपुलर है वहां पर भी
1: बहुत बहुत। और मैं तो मतलब इलाहाबाद जहां पे गांव में पला बड़ा हूं, वहां पे तो अक्सर लाइट्स की बहुत प्रॉब्लम होती थी रात में।
0: हाँ,
1: तो हमारे घर के बाहर के हिस्से में सब चारपाई लेके बैठ जाते थे, मेरे बाबू जी, चाचा जी, मेरी दादी, मेरी अम्मा, मेरे बुआ, वो सब बैठ जाते थे और रेडियो बीच पे रख देते थे। तो वो दौर छोटा था लेकिन सुनता रहता था उनके साथ कि वो क्या सुन रहे हैं, मैं भी उनके पंखे आते रहता था और सुनता रहता था।
0: बाबा
1: वो दौर, लेकिन मैं आज भी याद करता हूँ, मतलब अब वापस नहीं आया।
2: सच सच बात, सच बात,
1: बहुत मजा आता
0: तब
1: था
0: उस टाइम पे, एक सादगी थी और सब लोगों का साथ था,
1: सच में सच में,
2: और बहुत खुशी थी,
1: बहुत खुशी।
2: अभी बाकी की सारी चीजें बहुत सारी जिंदगी में आशाएं बहुत सारी, लेकिन वो खुशी जो दिल की थी वो कहीं ना कहीं लेकिन गए।
0: अब कौन सा गाना सुनाने वाले हैं आप लोग?
2: अभी हमारी चॉइस की बात है।
0: बिल्कुल बिल्कुल,
2: गाने तो मुकेश जी के गाए तो सारे ही हमको पसंद हैं। ये ऐसी बात होती है कि मतलब इतने सारे गानों के बीच में कभी कोई बोल देगा, चाहे कोई अपनी पसंद का गाना सुना
0: दे, बड़ा मुश्किल हो जाता है
2: कौन सा मेरे को कौन सा पसंद है।
0: बिल्कुल सही है। देखिए ऐसा करते हैं, म्यूजिक डायरेक्टर चुनते हैं रोशन।
2: तुम अगर मुझको ना चाहो तो कोई बात नहीं।
0: और एक बहुत प्यारा गाना मुझे याद आ रहा है शैलेंद्र का, बहुत दिया देने वाले ने।
2: हाँ क्या बात है, आप क्या फ्लूट उसमें बजाइए,
0: क्या बात है।

0: ये एस एन त्रिपाठी का संगीत है और वो भी एक ऐसे संगीतकार और फिल्मकार भी थे, फिल्में भी बनाते थे, जिन्होंने बहुत क्लासिकल टच के गाने बनाए।
1: आपने अच्छा हुआ फिल्म का नाम लिया, म्यूजिक डायरेक्टर बोलते तो मैं नहीं गा पाता।
0: मेरी वो तो हमारी जिम्मेदारी है। मुख्तार भाई, मुकेश को हमेशा ये कहा जाता है कि वो सादगी भरे गाने, सीधे चलन के गाने गाते थे, लेकिन उनके बहुत सारे गाने हैं जिनमें प्रॉपर शास्त्रीयता है, क्लासिकल टच है। इसकी बात करते हैं और कुछ गानों की मिसाल के साथ करते हैं।
2: थोड़ा सा लाइट वो उन्होंने गाया है, मतवाली नार ठुमक ठुमक चली जाए, मतवाली नार ठुमक ठुमक चली जाए,
1: इन कदमों पे
2: किस का जिया ना झुक जाए, मतवाली नार ठुमक ठुमक चली जाए।
0: एक फूल चार कांटे फिल्म का ये गाना है, है ना? आपको याद था?
1: नहीं।
0: क्या प्यारा गाना याद दिया। वाह वाह। और कौन से क्लासिकल गाने याद आ रहे हैं?
1: चंदन सावधान ने
0: आप गाओ।

0: वन।
1: क्या बात, क्या बात है। देखिए आज हम मुकेश जी को याद कर रहे हैं और उन्हें याद करते हुए न केवल उनके गानों की, उनकी शख्सियत की बात कर रहे हैं और अभी उनके क्लासिकल टच वाले गानों की बातों से बात करते हुए हम यहां तक आ गए। मुझे पंडित रविशंकर के म्यूजिक डायरेक्शन वाली एक फिल्म याद आ गई, गोदान।
2: गोदान राजकुमार,
1: हाँ। और इस गाने की कितनी कम चर्चा होती है।
2: वाह, सही बात, सही।
1: जो भोजपुरी शैली का गाना है।

0: देखिए क्लासिकल मुकेश जो है ना, ये एक पूरा अध्याय है जहां पर एक से बढ़ के एक गाने आते हैं, और बल्कि मजाहिया गानों का भी एक पूरा मामला है ना। जैसे मुझे कहते हैं कल्लू का बाल जैसा गाना भी उन्होंने गाया,
1: लेकिन यस यस यस,
0: मैं हूं ठुमरी तू है ख्याल, मतलब ये कमाल है ना। ये देखिए राजेंद्र किशन क्या लिखते हैं इस गाने का मुखड़ा।
2: मुझे कहते हैं, मुझे

0: केवल सैड सॉन्ग्स की बादशाह नहीं कहा जा सकता। एक तरफ उनके गानों में रूमानियत है, दर्शन है, दूसरी तरफ जो है बहुत खिलंदर किस्म के, बहुत शरारती किस्म के गाने भी उनकी पूरी फिल्मोग्राफी में, उनकी डिस्कोग्राफी में बाकायदा आते हैं। लेकिन शोज में अमूमन बहुत पॉपुलर गाने ही चलते हैं, तो मुझे तौबा ये मतवाली चाल जैसा गाना याद आता है। मजूर साहब का ये गाना,
1: तौबा ये मतवाली चाल झुक जाए फूलों की डाल, तौबा ये मतवाली चाल।

0: गोविंद, ये बताइए कि वो क्या बात है कि आज के जमाने के गाने इतना नहीं ठहर पाते हैं जितने अभी हम जितनी देर से बातें कर रहे हैं। मुझे लगता है हमने दर्जनों गानों की बात की और न जाने कितने गाने आपसे तो मैंने गवा लिए हैं। वो क्या बात है कि आज के गानों की शेल्फ लाइफ इतनी ज्यादा नहीं है?
1: एक बात जो मैं, जैसा मुख्तार भाई ने कुछ समय पहले बोला था, और मैं 2020 की बात करूं, 2020 में मैंने प्यारे लाल जी के साथ गुजरात टूर किया और रेफरेंस देने वाले भी यही हैं।
0: अच्छा,
1: थ्रू ही मैं गया था उनके साथ, हार्ट शो किया। जैसा इन्होंने बोला कि वो रिहर्सल में सीखने को मिलता है, वैसा वो एक्सपीरियंस मेरे साथ भी हुआ कि आठ के आठ शो में हम उनके साथ रहे, लेकिन शो से 2 घंटे पहले वो मीटिंग करते थे, डिस्कस करते थे गाने को कैसे क्या करना है, कैसे करना है, किसके बाद क्या, किसके बाद वो पूरा होता था। तो उस चीज को जब मैंने फील किया तो मुझे ऐसा लगा उस टाइम पे भी ऐसे होते होंगे कि लिरिसिस बैठते होंगे, कंपोजर बैठते होंगे, सब बैठते होंगे, फिर वो गाना बनता होगा। आज के दौर पर ऐसा नहीं है। आज के दौर पर मैंने भी भजन बहुत सारे रिकॉर्ड किए, तो कंपोजर आता है, वो ट्यून देकर चला गया, लिरिक्स देकर चला गया, मैं खाली गा लिया, रिकॉर्डिंग बोला मैं मिक्सिंग कर लूंगा। तो आज जैसा चल रहा है उस हिसाब से वो सोल जो होता है ना, वो कनेक्ट नहीं हो रहा है। शायद यही रीजन है कि गाने आज जो है वो आ रहे और जा रहे, लोगों के मन में नहीं बैठ रहे।
0: आपका क्या कहना है मुख्तार भाई?
2: बिल्कुल, गोविंद भाई ने जो बात कही वो बिल्कुल सही बात है। और ये पुराने गानों पे एक तो लिरिसिस्ट ने इतने खूबसूरत अल्फाज लिखे
0: जी, जी।
2: और म्यूजिक डायरेक्टर्स ने उतनी खूबसूरत ट्यून बनाई, गाने वालों ने, गुलूकारों ने इतनी सहजता के साथ, इतनी खूबसूरती के साथ उनको अदायगी की, और स्टोरी के साथ, फिल्म की स्टोरी के साथ कहीं ना कहीं रिलेटेड रहते थे। और वो फिल्मों का जो दौर था वो एक आम इंसान की जिंदगी से कहीं ना कहीं रिलेट करता था, तो इसलिए वो सारे गाने इतने मीनिंगफुल थे कि आज भी अगर खुशी के गाने सुनो तो आपको खुशी महसूस होती है, गम के गाने सुनो तो गम महसूस होता है
0: जी।
2: और आजकल के, सच बात है कि फिल्मों में अमूमन ज्यादातर गाने ऐसे होते हैं कि जिसको शायद वो इस तरीके से काम नहीं किया जाता। गोविंद भाई ने बताया कि अगर सिंगर आ रहे हैं तो उनको एक लाइन बताई और उसने एक लाइन गाया और उसके बाद दूसरी लाइन उसको बताया, पूरा गाना भी शायद उनको नहीं पता हो क्या होना, एक एक लाइन पंच कर करके। और डिजिटल टाइम में ये सब शायद हो सकता है, उनके वक्त की रिक्वायरमेंट ऐसी हो
0: जी, और इसीलिए आज के संगीत में उस तरह से ठहराव ज्यादातर गानों में आत्मा नहीं है।
2: नहीं,
0: अब मैं आप लोगों को एक मुश्किल चैलेंज देने जा रहा हूं और वो चैलेंज ये है कि कोई एक फीमेल गाना चुनिए जिसको आपको मुकेश की आवाज में गाना है।
2: अच्छा,
0: लेकिन उसका मुकेश वर्जन नहीं होना चाहिए।
2: मुझे स्ट्रेट यही याद आ गया कि चलो मुझको इस रात की तनाई में यहाँ लौट गया। मजेदार बात तो है ये कि अगर मुकेश जी गाते तो कैसे गाते हैं ना।
0: ये सुनने वालों को भी एक अंदाजा लगेगा।
2: देखिए, एक मुझे लता मंगेशकर जी का गाना बहुत पसंद है, लग जा गले के फिर यहाँ

0: तो यही सुनते हैं। लेकिन एक मजेदार बात बताऊं, जैसे मैं आपसे कोई सवाल पूछता हूं ना, तो गोविंद ऐसे बैठ जाते हैं, मेरी बारी आने वाली है।
1: मैं सीरियस जाता हूँ। एक्चुअली मुख्तार भाई जो सोच रहे थे ना, भाई मैं भी सोच रहा था
0: तब तक ये सोच,
1: उनको ये गाना है
0: ये, लेकिन मजेदार होगा। लग जा गले मुकेश की आवाज में,
2: लग जा गले के फिर ये हंसी रात हो न हो, शायद फिर इस जन्म में मुलाकात हो न हो। लग जा गले से हे।
0: क्या बात है, कितना अच्छा लग रहा है इसको मुकेश जी की आवाज में सुनना।

0: क्या बात है, क्या बात है, देखो क्या मजेदार है कि मुख्तार भाई ने मदन मोहन का गाना चुना और इन्होंने शंकर जयकिशन का दिल अपना और प्रीत पर आई फिल्म का गाना।
1: देखिए लोगों को लगना चाहिए हम वर्सटाइल हैं।
0: क्या बात है, सकते वाह वाह वाह, ये बहुत मजेदार बात थी। आपके परिवार की नई पीढ़ी नए गानों को सुनती है या पुराने गानों को सुनती है?
2: मेरी बेटी जो है वो पुराने गाने सुनती है, बेटा जो है वो नए गाने।
1: मैं देखिए मेरी रोजी रोटी मुकेश से चलती है।
0: हाँ।
1: लेकिन मेरे घर में मेरी वाइफ मुकेश जी को छोड़कर सबको सुनती है।
0: तो आपको जबरदस्ती
1: और एकदम रेयर नंबर सुनती है, मतलब वो जो हम रेगुलर गाते हैं ना।
0: हाँ, हाँ।
1: वो नहीं सुनती वो, इसलिए शोज में भी नहीं आती, बोलती तुम वही तो गाओगे, कुछ नया तो गाओगे नहीं। इसलिए वो आती भी नहीं है और एकदम रेयर सुनेगी वो। अच्छा। अनरिकॉर्डेड किशोर जी का, आशा जी का, लता जी का एकदम वो सुनेगी, क्योंकि बंगाली है तो वो अलग सुनेगी और मुझे भी सुनाती है।
0: अच्छा।
1: भी सुनो सुनो सुनो
0: बिठा के
1: सुनना पड़ता। हाँ, घर में खाना मिलेगा तो सुनना ही पड़ता।
0: ये मजेदार है। अच्छा, कभी ऐसा लगता है कि जिस गाने की चलित ट्यून जो बनी हुई ट्यून है उससे इतर किसी और ट्यून पर उसको गाया जाना चाहिए, मुकेश जी का गाना हो कोई?
2: ये सोचने के लिए तो हम बहुत छोटे हैं। हमको तो वो जो गाने जैसे बने हुए हैं वैसा लगता है कि ये बिल्कुल परफेक्ट बने हुए और इसको अगर गा लें तो वही बहुत बड़ी बात है।
0: लेकिन आजकल बहुत रीमिक्सेस हो रहे हैं तमाम तरह के गानों के और मुखड़े उठा के कई बार ये होता है कि पूरे गाने को वैसा का वैसा रीमिक्स कर दिया, कई बार ये होता है कि सिर्फ मुखड़ा उठा लिया और आगे के अंतरे नए तरीके से लिख लिए और गाने डाल दिए। इधर के सालों में ये प्रयोग बहुत ज्यादा हो रहा है।
2: एग्जैक्टली,
0: आप लोगों की क्या राय है इस बारे में?
2: मैं समझता हूँ कि जो अभी ये कंटेम्प्रेरी जो सिंगर्स प्रोग्राम या वो करने लगे हैं या थोड़ा बहुत अगर फिल्मों में कर रहे हैं तो वो रिमिक्स का जो बीच में थोड़ा सा एक दौर आया जिसमें कुछ एक एडिशनल रिदम उन लोगों ने ऐड करके थोड़ा उसको डांसिंग मूड बनाने की कोशिश की कोई भी गानों के अंदर। मैं जैसे नेदरलैंड भी जाता हूं तो शो के बाद वो लोग एक सक्सेस

0: पार्टी करते हैं, शो खत्म हो गया पूरा ही पुराने गानों का जैसा था वैसा, फिर वहां के वो गोरे म्यूजिशियन हमारे साथ ये पुराने गाने गा रहे हैं। अब अगर वो तेरे प्यार का गम, तो अब उसमें वो लोगों को डांस करना है, तो वो उसके अंदर वो थोड़ा सा बेस गिटार वो ऐड करके तो उसको वो रिदम दे दिया जाता है कि उन लोगों को वैसे उसमें मजा आ रहा हो डांस करने में।
1: क्या मजेदार बात है, मतलब ये सोचना ही मजेदार है कि वो तेरे प्यार का गम जो है वो जैज हो जाए, रॉक हो जाए, उसमें वायलिन आ जाए, उसमें बेस गिटार आ जाए, ये तो अलग ही बात हो गई पूरी तरह से।
0: तो शायद नए लोगों ने इस वजह से, यंगस्टर्स की वजह से शायद ये किया हो कि भाई थोड़ा लोगों को लिरिक्स से उनको मतलब नहीं, जो शायद ये नई पीढ़ी है ज्यादातर लोगों को, और डांसिंग बीट अगर चल रहा है तो वो दे एंजॉय।
1: गोविंद आपका क्या कहना है रिमिक्सेस के बारे में, गानों को नई शक्ल देने के बारे में?
2: मैं तो इसके खिलाफ हूँ, मैं मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है, क्योंकि पुराने जमाने में जो गाने बने हैं वो कुछ सोच के ही बने होंगे। आप आपके पास उनसे कुछ बेहतर है तो आप लेकर आइए, उनसे कुछ बेहतर नहीं है तो आप मत कीजिए, छेड़खानी मत कीजिए। और आप अभी का जनरेशन की बात करो तो मतलब मेरा ऐसा मानना है, या मैंने देखा भी है बहुत जगहों पर, कि आजकल छोटे बच्चे भी जो हैं, जो 10 12 15 साल के, जो जनरेशन आजकल तो चल रही है, वो पुराने गानों की ही ट्यून सीख रहे हैं।
1: बिल्कुल।
2: और वो गा भी रहे हैं, मैंने कई जगह पर बहुत से लोग मेरे साथ गाते भी हैं पुराने गानों को, जैसे भाई अजीब दास्ता मैंने गाया, इन्होंने लग जा गले गाया, वो सब सब गाते हैं, किसी की मुस्कुराहटों पे गाते हैं, जीना यहाँ गाते हैं, जाने कहाँ गए, ये सब गाते हैं, तो बड़ा अच्छा लगता है सुन के।
1: बिल्कुल बिल्कुल
2: भाई,
1: आज इतने बरस बाद भी, और हम तो विविध भारती में बैठे हैं जिसने संगीत को, पुराने संगीत को बाकायदा बचा कर रखा है, और दिन रात हम वही गाने तो प्ले करते हैं।
0: बिल्कुल, और शायद यही वजह क्या, अभी जितने ये बड़े सिंगर्स जो स्टेज प्रोग्राम भी करते हैं, तो मैंने इनको लाइव शोज में भी देखा है कि वो अपने गाने या डांसिंग और उसके बाद भी एक एक अपना एक पार्ट ऐसा रखते हैं जिसमें वो पुराने गाने गाते हैं, और वो लोगों को वो भी बहुत अच्छे लगते हैं।
2: बहुत अच्छे।
1: बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, मुकेश के गाने गाते हुए लाइव शोज में आपने देखा कि लोग जज्बाती हो रहे हैं, आंखों से आंसू आ रहे हैं, ये जो है कहीं ना कहीं वो गाने कनेक्ट करते हैं।
0: Exactly.
1: किसकी जिंदगी में क्या चल रहा है, तो जाने कौन सा दर्द उभर के आ जाता है।
0: एग्जैक्टली Exactly. सही बात है।
1: अब आप दोनों से ये रिक्वेस्ट है कि एक एक दर्द भरा गाना आप लोग कहिए।
0: मैंने अक्सर ये देखा है कि जैसे जाने कहां गए वो दिन ये गाना हुआ, या दोस्त दोस्त ना रहा, या एक दिन बिक जाएगा, ये गानों में कभी शो खत्म होने के बाद कोई ऐसा ऑडियंस में से कोई आता है और वो बोलता है कि आप वो गा रहे थे तो मेरे आंख में आंसू आ गए। क्योंकि ये गानों का फील इतना जबरदस्त है,
1: बिल्कुल,
0: इसको बनाया गया है, ऐसे ट्यून इतनी खूबसूरत है, तो शायद कहीं ना कहीं अगर इंसान की अपनी जिंदगी के साथ कोई ऐसा हादसा हुआ या रिलेट कर रहा है वो,
1: जी जी,
0: तो जज्बात उसके उभर आते हैं।
1: बिल्कुल।
0: तो जाने कहां गए वो दिन।

0: दबावों और दबावों में हमें थामते हैं। अब एक बात बताइए कि अगर फिल्म इंडस्ट्री में बाकी तमाम गायक होते और मुकेश न होते तो कितनी सुनी होती ये दुनिया।
1: मतलब अब हमारे हिसाब से अगर आप देखें तो हमको तो बहुत सारा वैक्यूम दिखाई देता अगर मुकेश जी नहीं होते तो
0: जी।
1: क्योंकि मुकेश जी ने गाने कम गाए हैं बनिस्बत और प्लेबैक सिंगर्स के, लेकिन आप भी जानते हैं

0: लेकिन आप भी जानते हैं कि उनका जो पॉपुलैरिटी का रेट है, ग्राफ है, वो अगर कंपैरिजन किया जाए जितने नंबर ऑफ सॉन्ग्स दूसरों ने गाए हैं वो सबसे ज्यादा है।
1: आम जनता की बहुत चहेते गायक,
0: बहुत चहेते गायक थे। यस यस
1: गोविंद, आप क्या कहेंगे?
2: बिल्कुल ये बात तो सही है मुख्तार भाई, मैं एकदम बहुत सहमत हूँ कि एकदम अगर वो नहीं होते तो एक खालीपन होता। और गाने भले बहुत कम गाए हैं और हाँ। मैंने बहुत लोगों के मुंह से सुना है कि नंबर ऑफ सोलो जितने हुए डुएट्स सब ज्यादा हिट्स उनके पास ही हैं। और गुजरात के तो बाप रे बादशाह ही माने जाते हैं वो। गुजरात में हर घर में हर गली गली में उनके गाने बजते हैं।
1: तो दामाद थे वो गुजरात। उनकी जो पत्नी है उनका नाम था सरल वेन, है ना, उनसे उनकी शादी हुई थी। और ये शादी जो है ये कांदीवली के एक मंदिर में की गई थी। उन्होंने घर वालों की मर्जी के खिलाफ ये शादी की थी सरल बेन के साथ।
0: जी जी जी जी।
2: देखिए ना क्या रंग आ गया था, गुजराती बोलने लगे थे।
1: गुजराती गाने भी गाए,
2: गुजराती गाने भी।
0: और आज इनफेक्ट जो 22 जुलाई है जिस दिन जो उनका जन्मदिन है वही उनकी शादी का दिन।
1: हाँ बिल्कुल, ये भी बहुत दिलचस्प बात है।
0: और शायद पर्पजली उन्होंने उसी दिन किया होगा।
1: हाँ मेरा ख्याल शायद कितनी
0: 46 में।
1: हाँ और तब उनकी उम्र थी 23 साल।
0: 23 साल।
1: कुछ गुजराती गाने गाए उन्होंने,
0: 49 सॉन्ग्स है मुकेश जी के।
1: तो फिर हम कुछ सुनना चाहेंगे आपसे, क्योंकि आप अहमदाबाद से आते हैं तो गुजराती तो गाएंगे।
0: बहुत मशहूर गाना जो कल्याण जी आनंद जी के म्यूजिक में है, नजर ना जाम छलकावी ने चाल्या क्या तमे,

0: में।
1: क्या बात है, क्या बात है, कितनी मिठास है इस गाने में। बल्कि वो जाया भी करते थे गुजरात रेगुलर, है ना, वहां
0: बिल्कुल
1: शोज भी उन्होंने काफी सारे
0: काफी
1: किए।
0: सारे किए।
1: कई लोग किशोर वर्सेस मुकेश करते हैं और कहते हैं कि एक कंपटीशन थी, जबकि ऐसा नहीं था। किशोर, मुकेश, रफी एक दूसरे को बहुत ज्यादा पसंद किया करते थे। इन तीनों महान
0: एग्जैक्टली
1: गायकों की अपनी अपनी जगह है।
0: बिल्कुल यस।
1: अब कौन सा गाना सुनाने वाले हो गोविंद आप?
2: मुख्तार भाई ने गुजराती गाना गाया, मैं भी गुजराती गा लेता हूँ।
1: अरे बाबा क्या बात है, जरूर।

0: दिलों।
1: वाह वाह वाह, एक बिल्कुल अलग रंग आ गया। जी, गुजराती गाने हमने सुने। ये जो आखिरी दौर था मुकेश जी की गायकी का, उसमें उन्होंने बहुत अलग अलग तरह के गाने गाए, चाहे वो धर्मात्मा हो, धर्म कर्म हो, कभी कभी हो।
2: जी,
1: ये बाद के दौर के जो गाने हैं उनके, उनमें से कुछ गानों को याद कीजिए।
2: जैसे मुक्ति।
1: हाँ हाँ, अरे वाह वाह वाह वाह, क्या बात है।
2: आर डी बर्मन जी,
1: आर डी बर्मन के साथ बहुत कम गाने हैं ना।
2: हाँ, 16 गाने हैं।
1: हाँ, एक फिर कब मिलोगी भी है।
2: हाँ, लेकिन आमतौर से लोगों को जो पता है वैसे 5 ही गाने हैं।
1: अच्छा,
2: जो 16 गाने कुल गाए उनके साथ वैसे उन्होंने।
1: हाँ, हाँ, हाँ।
2: लेकिन
1: मुक्ति, सुहानी चांदनी रातें।
0: हाँ।

0: क्या बात है, क्या प्यारा आलाप है इस गाने में लता जी का, और क्या रंग आता है। मुख्तार भाई मेला और अंदाज जैसी फिल्मों में मुकेश नौशाद के लिए गाते हैं, फिर एक बहुत लंबा गैप आता है,
1: गैप आ गया, हाँ।
0: और उसके बाद कहां वापस आते हैं, साथी में,
1: साथी
0: साथी की तरफ मैं आना चाहता हूं। क्या प्यारे गाने हैं, हालांकि एक दो गाने हैं जिनकी चर्चा होती है, आप मेरा इशारा समझ रहे हैं कि मैं किस गाने का जिक्र करने जा रहा हूं।
1: हाँ, हुस्ने जाना है,
0: एग्जैक्टली इसी गाने की बात करनी है।
1: हुस्ने जाना इधरा आईना हूं मैं तेरा,

0: क्या बात है, क्या बात है। यहाँ कुछ बातें जो ये जो गानों के बीच में जो जानकारी की पुड़ियाएं मैं छोड़ता रहता हूँ, वो जरूरी है बताना कि मजरू साहब अंदाज में लिखते हैं नौशाद साहब के लिए, और उसके बाद एक पूरा लंबा गैप आता है। कई दशक के बाद साथी में फिर से नौशाद और मजरू आते हैं, मुकेश और नौशाद आते हैं, और ये पूरा वेस्टर्न नोटेशन वाला मामला था जो कि नौशाद की फितरत नहीं थी। तो ये एक बड़ी बात है। केर्सी लॉर्ड जो है उन्होंने सारा अरेंजमेंट इन गानों का किया था। बारिश का मौसम है और मुकेश जी की याद जो है जुलाई और अगस्त ये वो महीने हैं जो जब पानी जम के बरसता है, और मुकेश जी का जन्मदिन आता है और उनकी याद का दिन 27 अगस्त भी आता है। बारिश के कुछ गानों की बात करते हैं। पहले शोर नहीं बाबा, शोर
1: सावन।

0: और अब बारिश का दूसरा गाना,
1: उषा खन्ना जी।
0: बिल्कुल बिल्कुल,
2: मैं कहने वाला था
0: इशारों में बात हो रही है। सबक
1: बर

0: वाह, जिस तरह से इस साल गर्मी पड़ी है हाँ। मुझे लगता है ये गाना बिल्कुल मुफीद है कि बरखा रानी जरा जम के बरसो, उतना ज्यादा जम के ना बरसो,
1: आना जाना मुश्किल हो जाए
0: लेकिन फिर भी बरसो, है ना। बारिश के दिनों में या कभी भी ऐसा हुआ है कि कभी किसी शो के लिए बहुत लेट हो गए हो और एकदम से सीधे स्टेज पर जाना पड़ा हो?
1: हाँ हाँ, ऐसा कई मरतबा ऐसा मौके आए हैं कि बारिश के दिनों में, क्योंकि आमतौर से अपने का थोड़ा सा सिस्टम जो है रोड पे पानी भर जाना या हाँ, हाँ। कभी गाड़ी अगर जा रही और गाड़ी खराब हो गई, कहीं ट्रैफिक जैम है तो कभी थोड़ी सी देरी हो गई, एक दो मरतबा ऐसा मेरे साथ भी हुआ है
0: और सीधे स्टेज पर जाना पड़ा, तो कैसी कैफियत होती है उस वक्त?
1: थोड़ा सा वो होता है अनकम्फर्ट, लेकिन ठीक है, वो थोड़ा सा एक एक्सपीरियंस और वो रहता है तो प्रैक्टिकली इसको निभा लेते हैं।
0: अब गोविंद, आपके साथ कभी ऐसा हुआ है कि एकदम से डिलेज हो गए और भागते दौड़ते हाफते हुए?
2: मैं तो एक बार प्रबोधन ठाकरे में ऐसा हो गया था, एकदम अटक गया था और ब्लेजर पहनने का मौका नहीं मिला था ऐसे ही जाके पहला गाना गाया, उसके बाद आके चेंज किया।
0: क्या बात है,
2: कर्टन ओपन हो चुका था, अनाउंस एंकर ने अनाउंस कर दिया सब है, अब इंस्ट्रूमेंट दो दो बार बज गए।
0: अरे बाप रे बाप,
2: सिंगर आया, माइक भी चेक नहीं किया, जैसे मिला वैसे गाया।
0: और उसमें ये है कि आपको अपना एक तो बैलेंस प्रॉपर रखना है ना, और उसके बाद गाने को पूरी तरह से निभाना है क्योंकि लोग सीधे मुकेश जी से तुलना कर रहे हैं।
2: आप कितने भी टेंशन रहे बैक स्टेज, आपको टेंशन छोड़ के स्टेज पे रिलैक्स होकर जाना है।
0: बिल्कुल,
2: हजार लोग सुनने के लिए आए हैं तो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, हमको बेस्ट देना है।
0: बिल्कुल बिल्कुल। तो कभी ऐसा होता है कि सफर करते हुए लोगों ने पहचान लिया और कहा कि भाई आपके गाने बहुत अच्छे लगते हैं, हमने आपके फला शो में आपको देखा था?
1: हाँ, ऐसा तो बहुत मरतबा होता है।
0: और लोग गाने वाने की फरमाइश भी कर देते हैं?
1: कभी कुछ लोग होते हैं ऐसे कि हाँ, कि बोल देते, कह रहे यार दो लाइन गा ही दो।
0: मतलब मूड है कि नहीं
1: वो नहीं, वो लोगों का तो, लोग इतने वो स्पॉन्टेनियस होते हैं, तो शायद वो एक जज्बात में आ जाते हैं शायद हाँ, देखने के बाद के उनको ऐसा लगता है कि शायद ये हर जगह यही काम करते रहे।
0: मतलब स्विच ऑन स्विच ऑफ मामला गोविंद आपके साथ भी होता है?
2: बहुत बार हुआ है, अभी तो एक रिसेंट में भी हुआ था, मैं आरसीटी गया था वाइफ के साथ कुछ कपड़े लेने के लिए हाँ। तो वाइफ तो लेडीज सेक्शन चली गई, मैं जेंट्स में, तो मेरे पीछे पीछे एक आदमी घूम रहा है।
0: अच्छा,
2: मुझे समझ नहीं आ रहा है क्यों घूम क्यों रहा है मेरे पीछे पीछे। मैं मेरी वाइफ को इशारा किया, देखो कोई घूम रहा है, तो फिर पीछे से किया, मैं कहा मिश्रा भाई तमें सिंगर छो अरे वाह, मैं आपको सुनता हूँ, बड़ा मजा आता है, ऐसा वैसा एक सेल्फी ले लें फोटो, ठीक है कुछ गा दीजिए, किसी की मुस्कुराहट पे गा दीजिए।
0: अरे बाप रे बाप, मतलब आप
2: यहाँ पे कैसे, हाँ यहाँ पे कैसे गाओ, फिर गाया दो लाइन धीरे से उसके लिए मैंने।
0: देखिए ये होता है,
2: क्या करें, किसी को नाराज नहीं कर सकते,
0: जो संगीत के दीवाने उनको खुश करने के लिए क्या क्या करना पड़ता है। अच्छा ये बताइए, आज की इस बहुत शोर भरे, भाग दौड़ भरे, व्यस्तताओं से भरे जमाने में मुकेश को सच्ची श्रद्धांजलि क्या हो सकती है?
1: थोड़ा सा वैसे तो मुश्किल सवाल है ये, लेकिन यही है कि मैं पर्टिकुलरली मानता हूं कि इंसान अपनी भाग दौड़ भरी जिंदगी के अंदर, खासतौर से पुराने गाने, चाहे वो मुकेश जी के हैं और सेंटिमेंटल सॉन्ग्स, चाहे वो किशोर कुमार साहब के आप सुन लो या रफी साहब के, अगर ये पुराने गानों के अंदर इतना ठहराव और सुकून है कि अगर आप वो सुन लो तो दिमाग डेफिनेटली आपका खुश हो जाता है या शांत हो जाता है। और इसी वजह से मैं हमेशा स्टेज पर कहता हूं कि ये पुराने गानों के अंदर जो

0: बात है, जो मेलेडीज है, अगर ये पुराने गाने आपने 2.5-3 घंटे सुन लिए तो अगले 1 साल तक यकीन मानिए कि नो कार्डियोग्राम, नो ECG, नो ब्लड टेस्ट।
1: बड़ी प्यारी बात बोली गोविंद, आप बताइए।
2: बिल्कुल बिल्कुल, और मैं तो बहुत लोगों के मुंह से सुन भी लिया हूँ कि बोलते हैं कि म्यूजिक से अच्छा मेडिसिन कुछ नहीं है। और आज के टाइम पे इतना दौड़ भाग वाली जिंदगी में सबको रिलैक्स चाहिए, और जो 2.5-3 घंटे का 4 घंटे का समय लोग निकाल के आते हैं हमें सुनने के लिए, वो उस समय मतलब मैं तो कितने लोगों को सुनते हुए ऐसा बोलते हैं मुझे कि ये 3-4 घंटे हम उस एरा में चले जाते हैं, अब एकदम भूल जाते हैं सब कुछ, सारी दिमागी टेंशन एकदम खत्म हो जाती है। वो 3 घंटे का रिलैक्स हमको अगले 1 हफ्ते तक का एनर्जी देता है।
1: एग्जैक्टली। अच्छा, ये जो आजकल इंस्टाग्राम का और ये जो 60 सेकंड की और 30 सेकंड की रीलों का जमाना आ गया है, क्या उससे लोगों का फोकस खत्म हुआ है? क्या आपको ये लगता है कि ऑडियंस में कोई बंदा फोन पे लगा हुआ है या हम गा रहे हैं?
0: हाँ, कुछ लोग होते हैं ऑडियंस में, डेफिनेटली ऐसे इस दौर में भी मैंने देखा कि हमारे पुराने गानों का प्रोग्राम चल रहा है, कुछ लोग ऐसे होते हैं, शायद हो सकता है कि वो लोग हों जो किसी के बुलाने की वजह से शर्म में आए हों या जबरदस्ती, या शायद वो चीज को लाइक नहीं करते हों, क्योंकि जिसको खुदा ने संगीत दिया ही नहीं है दिल में, और उसको अगर वो जगह पर लाके बिठा दो तो शायद उसके लिए टाइम पास कैसे करके और यहां से मैं अपना खत्म करके जाए, ऐसे शायद वो लोग होते होंगे। बाकी आम तौर से अमूमन मैंने देखा है कि जो लोग हमारे पुराने गीतों को सुनने आते हैं प्रोग्राम में, वो फुल्ली एंजॉय करते हैं। और मेरा बिल्कुल मानना यह है कि जो दिल से जुड़ा हुआ पुराने गीतों के साथ, मेलेडीज के साथ है, अगर वो दिल से इसको एंजॉय करेगा तो उसकी डेफिनेटली पॉजिटिव इफेक्ट वो इंसान के दिल और जहन पे होगी।
1: बिल्कुल, बहुत ही प्यारी बात है। गोविंद, आप क्या कहेंगे कि जो भी लोग लाइव म्यूजिक सुनने आते हैं, चाहे वो फिल्म म्यूजिक हो या इंस्ट्रूमेंटल हो या क्लासिकल म्यूजिक हो, मोबाइल एटिकेट क्या होने चाहिए, लोग किस तरह का न्यूसेंस करते हैं?
2: इसका जवाब तो मैं मुख्तार भाई से ही चाहूंगा, वो भी दें, क्योंकि सीनियर यही है, ये ज्यादा देते हैं।
1: सबसे पहले तो अपना मोबाइल म्यूट
0: रखना चाहिए, डेफिनेटली
2: वो तो जरूरी।
0: और अगर आपका एटलीस्ट कभी कोई इंसान ऐसा है कि प्रोग्राम में आया और उसको कोई ऐसा इमरजेंसी कॉल वो एक्सपेक्ट कर रहा है, तो एटलीस्ट वो वाइब्रेशन पे रख दे ताकि उसको पता चल जाए। लेकिन आप जो जिसको एंजॉय करना है उसको दिल से एंजॉय करना चाहिए,
1: बाकी लोगों को डिस्टर्ब नहीं करना।
0: एग्जैक्टली।
1: मुझे लगता है कि हम अपनी इस बातचीत की लगभग आखिरी दौर में आ गए हैं, और अब अपनी अपनी पसंद के कुछ गाने आप लोग जो हैं उनका जिक्र करेंगे और उनमें से कुछ गाएंगे, और उसके बाद फिर हम अपने श्रोताओं से इजाजत लेंगे।
0: जहां तक ताल्लुक यूनुस भाई हमारा पसंद का है, तो हमको तो मुकेश जी के सारे गाने पसंद हैं, लेकिन अब पर्टिकुलरली जैसा मैंने बताया कि कलाकार होता है तो इमोशंस के साथ जुड़ा हुआ होता है, तो हमको थोड़े वैसे गाने अच्छे लगते हैं। कोई जब तुम्हारा हृदय तोड़ दे हुआ है, जिस गली में तेरा घर ना हो, बालमा हो।

0: अब मैं आपको ऐसे फंसाने वाला हूँ जैसा किसी ने नहीं फंसाया होगा।
1: ऑलरेडी आप कर चुके हो वैसे।
2: कब से सोच रहा हूँ मैं।
0: अब मैं चाहता हूँ कि आप लोग अंताक्षरी खेलें। आप एक गाना गाएं और अब जाहिर है कि इनको जवाब देना पड़ेगा, तो ये करते हैं 5 मिनट तक।
1: एक चलिए मेरा पसंदीदा गाना।
0: हाँ।

0: उमंग भरी ये किसने फूल फूल पे, ये किसने फूल फूल पे किया सिंगार है, ये कौन चित्रकार है, ये कौन चित्रकार, ये कौन चित्रकार है, ये कौन चित्रकार है, ये कौन चित्रकार।
1: राव पर लाकर छोड़ा है इन्होंने।

0: क्या प्यारी बात है। इसी स्टूडियो में जहां हम बात कर रहे हैं, योगेश जी आए थे और उन्होंने अपने गानों की कितनी सारी कहानियां मुझे सुनाई थी। बहुत प्यारे शानदार गीतकार, कितना प्यारा गाना उन्होंने ये लिखा है। और देखिए, मुकेश के गानों से भी अंताक्षरी खेली जा सकती है। ये हमने अपने सुनने वालों को बताया कि केवल मुकेश के गानों की अंताक्षरी हुई। एक आइडिया हमने लिसनर्स को दिया है कि वो मुकेश को सच्ची श्रद्धांजलि ये होगी कि उनकी अंताक्षरी भी खेले अपने घरों की महफिलों में, अपने आयोजनों में, तो कितना मजा आएगा। अब बस श्रोताओं से इजाजत लेने की बारी है, तो मुकेश को श्रद्धांजलि देते हुए आप दोनों मिलकर कौन सा गाना पेश करेंगे?
1: जीना है मरना है कल के।

0: क्या बात है, बहुत बहुत शुक्रिया मुख्तार शाह और गोविंद मिश्र भाई, आप दोनों ने वक्त निकाला मुकेश जी की याद के लिए, ये महफिल विविध भारती में सजाई, बहुत बहुत शुक्रिया।
1: बहुत बहुत शुक्रिया यूनुस भाई, आपका भी, विविध भारती का भी, और उम्मीद करते हैं कि सुनने वालों को बहुत मजा आएगा इसको सुनकर, और बहुत दिल से हम सभी सुनने वालों का आपका शुक्रिया अदा करते हैं।
2: हाँ बिल्कुल, विविध भारती का और यूनुस भाई आपका बहुत शुक्रिया अदा करते हैं, और उम्मीद करते हैं कि मुकेश जी के गानों को और घर घरों में गुनगुनाया जाएगा और गाया जाएगा।
0: बहुत शुक्रिया,
2: थैंक यू।
0: ये था पार्श्व गायक मुकेश की याद में एक विशेष कार्यक्रम। आज आपने इस कार्यक्रम की दूसरी कड़ी सुनी। इस कार्यक्रम में हमारे मेहमान थे गायक मुख्तार।

0: शाह और उनके साथ गोविंद मिश्र, इन दोनों से बातचीत की आपके इस दोस्त यूनुस खान ने। रिकॉर्डिंग इंजीनियर किरण बंग, प्रस्तुतकर्ता जुबैर खान।
1: आज पिटारा लाया था आज के मेहमान। आप और हम अब मिलेंगे अगले हफ्ते आज ही के दिन, मगर पिटारा तो भाई हर रोज खोला जाता है। कल भी खोलिए, रोज खोलिए और सुनिए पिटारा पिटारा पिटारा।

अभी आप सुन रहे थे आकाशवाणी के मुंबई केंद्र से अनुप्रसारित विविध भारती के कार्यक्रम। हम आकाशवाणी बांसवाड़ा के माही चैनल से बोल रहे हैं एफएम बैंडिक 1.3 मेगाहर्ट्ज पर। शाम के 5 बजे हैं। पेश है कार्यक्रम विवरण।

आइए आपको जानकारी दे दें, हमारी आज की सभा में शेष रहे और कल की पहली सभा में प्रसारित और अनुप्रसारित होने वाले मुख्य कार्यक्रमों की संक्षिप्त रूपरेखा की। पहले आज की सभा में शेष रहे कार्यक्रम। आकाशवाणी के मुंबई केंद्र से अनुप्रसारित विविध भारती के कार्यक्रम आपको सुनवाएंगे आज शाम 5:30 पर और दोबारा रात 9 बजे से। आकाशवाणी के जयपुर केंद्र से अनुप्रसारित होने वाले कार्यक्रमों का समय रहेगा शाम 7:30 पर। हमारे केंद्र से कार्यक्रम युववाणी प्रसारित करेंगे अब से कुछ ही पलों में यानी शाम 5:05 पर, जिसके अंतर्गत सुनिएगा आज की बात पर चर्चा विषय रहेंगे गुरु पूर्णिमा, विश्व बाघ दिवस और अरुणा आसफ अली की पुण्यतिथि। साथ ही सुनवाएंगे फिल्म संगीत।

कार्यक्रम बैरानीवाद प्रस्तुत करेंगे शाम 7 बजे, जिसके अंतर्गत होंगी कामकाज की बातें, बातचीत, लोक भजन और साथ ही अन्य जानकारी। हमारे केंद्र से फिल्म संगीत का मजा आप ले पाएंगे रात 10 बजे से।

और अब एक नजर हमारी कल की पहली सभा के कार्यक्रमों पर। हमारी प्रातःकालीन सभा की शुरुआत होगी रोजाना की तरह सुबह 5:53 पर। आकाशवाणी के मुंबई केंद्र से अनुप्रसारित विविध भारती के कार्यक्रम आप सुनेंगे सुबह 7:30 पर, सुबह 10 बजे और एक बार फिर से दोपहर 12 बजे से लेकर शाम

5 बजे तक। आकाशवाणी के जयपुर केंद्र से अनुप्रसारित चिंतन सुनिएगा सुबह 6:05 पर, यहीं से 6:10 पर होगी वंदना।

हमारे केंद्र से रामचरितमानस गान का अंक प्रसारित किया जाएगा सुबह 6:30 पर। कार्यक्रम के तिनिवाद सुनिएगा 6:45 पर। आदिवासी लोक संगीत का आनंद लीजिएगा 6:50 पर और वातायन का समय रहेगा सुबह 7:20 पर।

दिल के जज्बातों से लबरेज फिल्मी गीतों का कार्यक्रम कुछ दिल से लेकर हाजिर होंगे सुबह 8:15 पर। राजस्थानी लोक संगीत प्रसारित करेंगे 8:45 पर। सुगम संगीत आपके लिए पेश करेंगे सुबह 9:10 पर और दोबारा सुबह 11:00। सुबह 9:15 पर सुनिएगा कस्टमाइज प्रायोजित कार्यक्रम डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस एनसीईआरटी द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम उमंग सुनिएगा सुबह 9:30 पर और हमारे केंद्र से फिल्म संगीत का मजा आप ले पाएंगे सुबह 11:30 पर।

अभी आप कार्यक्रम विवरण सुन रहे थे। हम आकाशवाणी बांसवाड़ा के माही चैनल से बोल रहे हैं एफएम बैंड 101.3 मेगाहर्ट्ज पर। 5:05 हुए हैं। पेश है कार्यक्रम युववाणी।

परं गुर साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। कार्यक्रम युवाणी सुन रहे सभी मेरे प्यारे दोस्तों को आपकी रेडियो साथी शेफाली कलाल का प्यार भरा नमस्कार। दोस्तों, आज के इस विशेष कार्यक्रम में हम भारतीय संस्कृति के एक ऐसे पावन पर्व की चर्चा करेंगे जो ज्ञान, श्रद्धा, संस्कार और कृतज्ञता का प्रतीक है। यह पर्व है आषाढ़ पूर्णिमा, जिसे हम गुरु पूर्णिमा और व्यास पूर्णिमा के नाम से भी जानते हैं। दोस्तों, भारतीय पंचांग के अनुसार आषाढ़ मास की पूर्णिमा का विशेष महत्व है। वर्षा ऋतु के आगमन के साथ प्रकृति नवजीवन का संदेश देती है। धरती हरियाली से आच्छादित हो जाती है। वातावरण में ताजगी और नई ऊर्जा का संचार होता है। ठीक उसी प्रकार गुरु का ज्ञान भी हमारे जीवन को नई दिशा, नई चेतना और नई प्रेरणा प्रदान करता है। इसलिए इस दिन को गुरु के प्रति श्रद्धा और कृतज्ञता व्यक्त करने का पर्व मनाया गया है। दोस्तों, इस दिन महर्षि वेदव्यास का जन्मोत्सव भी मनाया जाता है। उन्होंने वेदों का संकलन किया, महाभारत और विश्व विख्यात महाकाव्य की रचना की तथा पुराणों के माध्यम से भारतीय संस्कृति और दर्शन को जन जन तक पहुंचाया। उनके महान योगदान के कारण उन्हें आदि गुरु कहा जाता है और इस दिन को व्यास पूर्णिमा के रूप में भी मनाया जाता है। दोस्तों, भारतीय संस्कृति में गुरु का स्थान अत्यंत ऊंचा माना गया है।

ब्रह्म गुरु विष्णु गुरु देवो महेश्वर गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अर्थात गुरु ही सृजन पालन और अज्ञान के नाश करने का मार्ग दिखाने वाले हैं। वे केवल ज्ञान ही नहीं देते बल्कि जीवन जीने का सही दिशा भी प्रदान करते हैं। दोस्तों हमारे जीवन के प्रथम गुरु हमारे माता पिता होते हैं। वे हमें बोलना चलना संस्कार और जीवन के मूल्यों का ज्ञान देते हैं। इसके बाद हमारे शिक्षक हमें शिक्षा अनुशासन और व्यक्तित्व निर्माण का मार्ग दिखाते हैं। वास्तव में जो भी व्यक्ति हमें अंधकार से प्रकाश की ओर अज्ञान से ज्ञान की ओर और निराशा से आशा की ओर ले जाए वही हमारा गुरु है। दोस्तों अंत में संत कबीरदास जी की अमर वाणी स्मरण करना चाहूंगी। गुरु गोविंद दोई खड़े काके लागू पाए बलहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। अर्थात यदि गुरु और भगवान दोनों सामने हो तो पहले गुरु को प्रणाम करना चाहिए क्योंकि गुरु ही हमें ईश्वर और सत्य मार्ग को बताते हैं। इन्हीं प्रेरणादायी विचारों के साथ आप सभी को आषाढ़ पूर्णिमा गुरु पूर्णिमा एवं व्यास पूर्णिमा की हार्दिक शुभकामनाएं। दोस्तों आगे और भी चर्चा करेंगे इससे पहले सुनते हैं ये गीत।

दोस्तों, इस प्यारे से गीत के साथ कार्यक्रम में हम अगली चर्चा को जारी करते हैं। दोस्तों, अगली चर्चा है अरुणा आसफ अली की पुण्यतिथि। दोस्तों, आज 29 जुलाई को हम भारत के महान स्वतंत्रता सेनानी अरुणा आसफ अली की पुण्यतिथि पर उन्हें श्रद्धा पूर्वक नमन करते हैं। उनका जीवन साहस, त्याग और देशभक्ति का अनुपम उदाहरण है। अरुणा आसफ अली का जन्म 16 जुलाई 1909 को हुआ था। वे भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के अग्रणी सेनानियों में से एक थी। वर्ष 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन में उन्होंने मुंबई के गोवालिया टैंक मैदान, जिसे आज अगस्त क्रांति मैदान के नाम से जानते हैं, वे अंग्रेजी शासन की कड़ी निगरानी के बावजूद तिरंगा फहराकर पूरे देश में स्वतंत्रता की नई चेतना जगाई। इस साहसिक कार्य के कारण उन्हें भारत छोड़ो आंदोलन की वीरांगना कहा जाता है। स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान उन्होंने अनेक कठिनाइयों का सामना किया, जेल यातनाएं की सही और लंबे समय तक भूमिगत रहकर देश की सेवा करती रही। स्वतंत्रता के बाद भी उन्होंने सामाजिक सेवा, लोकतांत्रिक मूल्यों के लिए महत्वपूर्ण योगदान दिया। उनके अतुलनीय योगदान के सम्मान में भारत सरकार ने उन्हें वर्ष 1997 में मरणोपरांत भारत रत्न से सम्मानित किया। दोस्तों, अरुणा आसफ अली का जीवन हमें यह प्रेरणा देता है कि राष्ट्र प्रेम केवल शब्दों में से नहीं बल्कि साहस, कर्मनिष्ठा और सेवा से सिद्ध होता है। आइए उनकी पुण्यतिथि पर हम संकल्प ले कि हम अपने कर्तव्यों का ईमानदारी से पालना करेंगे और राष्ट्र निर्माण में अपना सक्रिय योगदान देंगे। इन्हीं प्रेरक विचारों के साथ महान स्वतंत्रता सेनानी अरुणा आसफ अली को शत शत नमन। दोस्तों, इसी के साथ कार्यक्रम में सुनते हैं गीत।

दोस्तों, इसी गीत के साथ कार्यक्रम में हम एक और चर्चा को जारी करते हैं। दोस्तों, हमारी अगली चर्चा है अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस। आज 29 जुलाई को विश्व भर में अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस मनाया जा रहा है। इस दिवस का उद्देश्य लोगों को बाघों के संरक्षण के प्रति जागरूक करना और प्रकृति के प्रति अपनी जिम्मेदारियों का स्मरण कराना है। दोस्तों, बाघ केवल भारत का राष्ट्रीय पशु ही नहीं बल्कि हमारे जंगल की शक्ति, समृद्धि और जैव विविधता का प्रतीक भी है। जिस जंगल में बाघ सुरक्षित रहता है वहां का पूरा पारिस्थितिकी तंत्र संतुलित रहता है। इसलिए कहा जाता है कि बाघ बचेंगे तो जंगल बचेंगे और जंगल बचेंगे तो हमारा भविष्य सुरक्षित रहेगा। अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस मनाने की शुरुआत वर्ष 2010 में हुई, जब विश्व के कई देशों ने मिलकर बाघों की घटती संख्या को रोकने और उनके प्राकृतिक आवास की रक्षा का संकल्प लिया। आज यह दिवस हमें याद दिलाता है कि विकास के साथ साथ प्रकृति का संरक्षण भी उतना ही आवश्यक है। भारत को इस बात का गर्व है कि विश्व के अधिकांश जंगली बाघ हमारे देश में पाए जाते हैं। वर्ष 1977 में शुरू किए गए प्रोजेक्ट टाइगर ने बाघ संरक्षण की दिशा में एक नई शुरुआत की। आज देश के अनेक टाइगर रिजर्व बाघों के सुरक्षित आवास के रूप में कार्य कर रहे हैं। इन संरक्षित क्षेत्रों में बाघों के साथ साथ अनेक दुर्लभ वन्यजीव और वनस्पतियों का भी सुरक्षित है। राजस्थान का रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान और सरिस्का का टाइगर रिजर्व बाघ संरक्षण के उत्कृष्ट की संख्या का संरक्षण में उत्कृष्ट उदाहरण है। इन अभयारण्यों ने न केवल बाघों की संख्या बढ़ाने में योगदान दिया है बल्कि वन्य पर्यटन और स्थानीय लोगों की आजीविका को भी नई दिशा दी है। दोस्तों, बाघों के सामने आज कई चुनौतियां हैं। अवैध शिकार, जंगलों की कटाई, बढ़ता शहरीकरण, प्राकृतिक आवास का सिकुड़ना और मानव वन्यजीव संघर्ष

के अस्तित्व के लिए गंभीर खतरा बन चुके हैं। यदि समय रहते इन चुनौतियों का समाधान नहीं किया गया तो आने वाली पीढ़ियां शायद बाघों को केवल पुस्तकों और चित्रों में ही देख पाएंगी। बाघों का संरक्षण केवल सरकार या वन्य जीव का दायित्व नहीं है, यह हम सभी नागरिकों की साझा जिम्मेदारी है। हमें पर्यावरण संरक्षण के प्रति जागरूक होना होगा, अधिक से अधिक वृक्ष लगाने होंगे, जंगलों को सुरक्षित रखना होगा और वन्य जीवों के प्रति संवेदनशील व्यवहार अपनाना होगा। यदि कहीं वन्य जीवों के अवैध शिकार या तस्करी की जानकारी मिले तो उसकी सूचना संबंधित अधिकारियों तक पहुंचाना भी हमारा कर्तव्य है। दोस्तों, प्रकृति और मानव का संबंध एक दूसरे से गहराई से जुड़ा हुआ है। स्वस्थ हवा, शुद्ध जल, संतुलित जलवायु और स्वस्थ पर्यावरण हमें तभी मिल सकेंगे जब हमारे जंगल सुरक्षित होंगे, और जंगल तभी सुरक्षित रहेंगे जब उनमें रहने वाले बाघ और अन्य वन्य जीव सुरक्षित रहेंगे। अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस हमें केवल बाघों की रक्षा का संदेश नहीं देता बल्कि यह प्रकृति के साथ संतुलित जीवन जीने की प्रेरणा भी देता है। आइए इस अवसर पर हम सभी यह संकल्प लें कि हम पर्यावरण संरक्षण में अपना योगदान देंगे, वन्य जीवों का सम्मान करेंगे और आने वाली पीढ़ियों के लिए हरे भरे जंगलों और समृद्ध जैव विविधता की विरासत सुरक्षित रखेंगे। इन्हीं प्रेरणादायक विचारों के साथ मैं कार्यक्रम में अंतिम कड़ी में सुनते हैं ये गीत।

दोस्तों इस गीत के साथ समय हो चला है कार्यक्रम युवाणी समाप्त करने का। इजाजत दीजिए आपके दोस्त शिवाली कलाल को कार्यक्रम युवाणी समाप्त करने के। नमस्कार।

अभी युववाणी कार्यक्रम प्रसारित किया गया। हम आकाशवाणी बांसवाड़ा के माही चैनल से बोल रहे हैं एफएम बैंड 101.3 मेगाहर्ट्ज़ पर। शाम के 5:30 होने को हैं। अब आप सुनेंगे विविध भारती के कार्यक्रम मुंबई केंद्र से। कृपया प्रतीक्षा करें।

0: प्रस्तुत है कार्यक्रम तराने नए पुराने।
1: तराने नए पुराने।
0: सभी सुनने वालों को प्रीति मिश्रा का नमस्कार। इस कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। कार्यक्रम की पहली पेशकश फिल्म कश्मीर की कली से SH बिहारी के लिखे गीत की धुन बनाई है ओपी नैयर ने। आवाज दे रहे मोहम्मद रफी और आशा भोसले।

जीना तेरी गली में। अब सुनिए इस फिल्म का गीत अनुराधा पौडवाल और मोहम्मद अजीज के स्वर में। गीतकार रविंदर रावल, संगीतकार बाबुल बोस।

Lightning.

0: जाने माने फिल्मी संगीतकार दिलीप सेन हमसे साझा करेंगे अपनी फिल्मी संगीत यात्रा।
1: फोक कहते हैं आमद को। हमारी जो माताएं बहनें आज से 100-200 साल पहले दामाद आते थे तो उनके लिए गाने बनाती थी, क्योंकि उस वक्त कोई राइटर तो होता नहीं था। तो गडरण भवन सुयो विनायक करो नीति मारा दिलीप सेन जीव धारी।
0: कार्यक्रम बॉम्बे टॉकीज में 1 अगस्त दोपहर बाद 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर। तो सुनना न भूलिएगा विविध भारती, देश की सुरीली धड़कन।
2: इंजीनियरिंग और मेडिकल एंट्रेंस परीक्षा की पढ़ाई को कैसे बनाया जाए आसान, प्रभावी और तनाव मुक्त, इसके कुछ फॉर्मूले बताएंगे फिजिक्स के प्रोफेसर नयन वर्मा।
3: अगर आप कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए तैयारी कर रही हैं, आप अपना स्टडी टाइम डिवाइड कर लीजिए। 6 घंटा आप जो भी कोचिंग में जाते हैं, 7-8 घंटे की नींद, 1 घंटे का आपका स्पोर्ट्स, उसके बाद में आपके पास 6-7 घंटे जो बचते हैं वो टाइम डिवीजन आपके ऊपर डिपेंड करता है, बिकॉज दैट टाइम डिवीजन डिफर्स फ्रॉम स्टूडेंट टू स्टूडेंट। लेकिन आप एमसीक्यूज रोज प्रैक्टिस करें, बिकॉज आपका जो भी एडमिशन आपके ऑब्जेक्टिव एग्जाम के रैंक के ऊपर डिसाइड होता है।
2: काउंसलर डॉक्टर सुमति ओझा साझा करेंगी तनाव और दबाव से कैसे निपटें।
4: हम किस तरह से पेरेंटिंग करते हैं जैसे हमारे माँ बाप ने हमारे साथ किया। अब जमाना बदल गया है, वी आर इन डिजिटल एरा और इन्फॉर्मेशन फ्री फ्लोटिंग अवेलेबल है, तो इसलिए इम्पोर्टेंट है कि बार बार वर्कशॉप्स रखना, रोल प्ले बताना, उन्हें कैसे कम्युनिकेट करना, ये सब बताना बहुत जरूरी है।
2: फिल्म लेखिका विभा सिंह करेंगी इस कार्यक्रम का विचार मंथन।
5: आजकल हम बहुत बातें सुनते हैं कि कितनी मेहनत सही है और कितनी नहीं सही है, वो एक अलग डिस्कशन है, पर हार्ड वर्क का कोई रिप्लेसमेंट नहीं है, ये बच्चों को जानना बहुत जरूरी है।
2: तो सुनिए विविधा में सृजन भारती 2 अगस्त दिन में 11 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
0: तराने में पुराने कार्यक्रम में अब सुनिए लता मंगेशकर का गाया और मजरू सुल्तानपुरी का लिखा गीत, तर्ज बनाए है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने, फिल्म का नाम धरती कहे पुकार के।

सिद्ध कर दी आपने। अब सुनिए इस फिल्म का गीत। गायक है आनंद राज आनंद। इन्हीं के संगीत निर्देशन में गीत को लिखा है आनंद बख्शी ने।

0: अभी आपने कारवां फिल्म में आशा भोसले और आरडी बर्मन को सुना।
1: इंजीनियरिंग और मेडिकल एंट्रेंस परीक्षा की पढ़ाई को कैसे बनाया जाए आसान, प्रभावी और तनाव मुक्त, इसके कुछ फॉर्मूले बताएंगे फिजिक्स के प्रोफेसर नयन वर्मा।
2: अगर आप कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए तैयारी कर रही है, आप अपना स्टडी टाइम डिवाइड कर लीजिए। 6 घंटा आप जो भी कोचिंग में जाते हैं, 7-8 घंटे की नींद, 1 घंटे का आपका स्पोर्ट्स, उसके बाद में आपके पास 6-7 घंटे जो बचते हैं वो टाइम डिवीजन आपके ऊपर डिपेंड करता है, बिकॉज दैट टाइम डिवीजन डिफर्स फ्रॉम स्टूडेंट टू स्टूडेंट। लेकिन आप एमसीक्यूज रोज प्रैक्टिस करें, बिकॉज आपका जो भी एडमिशन आपके ऑब्जेक्टिव एग्जाम के रैंक के ऊपर डिसाइड होता है।
1: काउंसलर डॉक्टर सुमति ओझा साझा करेंगी तनाव और दबाव से कैसे निपटें,
3: हम किस तरह से पेरेंटिंग करते हैं जैसे हमारे माँ बाप ने हमारे साथ किया। अब जमाना बदल गया है, वी आर इन डिजिटल एरा और इन्फॉर्मेशन फ्री फ्लोटिंग अवेलेबल है, तो इसलिए इम्पोर्टेंट है कि बार बार वर्कशॉप्स रखना, रोल प्ले बताना, उन्हें कैसे कम्युनिकेट कर

0: करना, ये सब बताना बहुत जरूरी है।
1: फिल्म लेखिका विभा सिंह करेंगी इस कार्यक्रम का विचार मंथन।
2: आजकल हम बहुत बातें सुनते हैं कि कितनी मेहनत सही है और कितनी नहीं सही है, वो एक अलग डिस्कशन है, पर हार्ड वर्क का कोई रिप्लेसमेंट नहीं है, ये बच्चों को जानना बहुत जरूरी है।
1: तो सुनिए विविधा में सृजन भारती 2 अगस्त दिन में 11 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
3: तराने में पुराने कार्यक्रम के शेष गाने हम आपको सुनवाएंगे 6:05 से। हम विविध भारती से बोल रहे हैं, शाम के 6 बजने को है। कुछ ही पलों में आप दिल्ली केंद्र से हिंदी में समाचार सुनेंगे।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं जागृति शर्मा। लोकसभा ने लोक परीक्षा अनुचित साधन रोकथाम संशोधन विधेयक 2026 पारित कर दिया है। इस विधेयक से लोक परीक्षा अनुचित साधन रोकथाम अधिनियम 2024 में संशोधन किया गया है। विधेयक में 10 वर्ष तक के कारावास, 10 करोड़ रुपए तक का जुर्माना और अपराधियों की संपत्ति जब्त करने का प्रावधान है। मामलों के शीघ्र निपटारे के लिए प्रत्येक राज्य सरकार और केन्द्र शासित प्रदेश को दैनिक सुनवाई के लिए विशेष फास्ट ट्रैक न्यायालय स्थापित करने का आदेश दिया गया है। अपराधों की जांच पुलिस थाने में सूचना दर्ज होने की तारीख से 2 महीने के भीतर पूरी की जानी चाहिए। मुकदमे की सुनवाई आरोप पत्र दाखिल होने की तारीख से 3 महीने के भीतर पूरी होनी चाहिए। कार्मिक लोक शिकायत और पेंशन राज्य मंत्री डॉ जितेंद्र सिंह ने कहा कि ये संशोधन कानून को और अधिक सख्त बनाने तथा त्वरित न्याय दिलाने के लिए किया गया है।
1: सरकार की प्रतिबद्धता का आप इसी बात से अनुमान लगा सकते हैं कि इसी विधेयक के लाने के साथ ही साथ हमारे लॉ मिनिस्टर्स की ओर से भी एक प्रस्ताव जारी कर दिया गया। स्पेशल फास्ट ट्रैक कोर्ट्स है, इनको स्थापित करने का भी क्रम प्रारंभ किया जाए। उसमें दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, मध्य प्रदेश, बिहार, उत्तराखंड में पहले ही इन्होंने गठित कर दिया और आने वाले दिनों में बाकी स्थानों पर।
0: नया विधेयक छात्रों और युवाओं के कल्याण के लिए सरकार की प्रतिबद्धता की पुष्टि करता है। डॉ सिंह ने कहा कि विभिन्न दलों द्वारा शासित राज्यों में पेपर लीक होने की घटनाएं हुई हैं। विपक्ष के आचरण पर डॉ सिंह ने कहा कि जब एक महत्वपूर्ण विधेयक पर चर्चा हो रही है तो विपक्ष सुझाव देने की बजाय राजनीति कर रहा है। उन्होंने विपक्ष के नेता राहुल गांधी के असंसदीय भाषा का इस्तेमाल करने की भी आलोचना करते हुए इसे अनुचित और दुर्भाग्यपूर्ण बताया। उधर राज्यसभा ने राष्ट्रीय सम्मान की रक्षा के लिए राष्ट्रीय गौरव अपमान निवारण संशोधन विधेयक 2026 पारित कर दिया है। विधेयक वंदे मातरम को राष्ट्रीय गान के समान वैधानिक संरक्षण प्रदान करेगा। वंदे मातरम के अपमान के लिए अब 3 वर्ष तक की कैद, जुर्माना या दोनों की सजा हो सकती है। गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने कहा कि विधेयक में संशोधन केवल एक विधायी परिवर्तन नहीं है। उन्होंने कहा कि वंदे मातरम का विरोध तुष्टिकरण की राजनीति को दर्शाता है, जो राष्ट्र के गौरव को ठेस पहुंचाता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 अगस्त को नशा मुक्त युवा फॉर विकसित भारत संकल्प अभियान का शुभारंभ करेंगे। ये नशाखोरी के खिलाफ 100 सप्ताह का राष्ट्रव्यापी जनभागीदारी आंदोलन है। इस पहल का लक्ष्य जागरूकता, सामुदायिक सहभागिता और निरंतर जनभागीदारी को बढ़ावा देकर नशा मुक्त भारत के निर्माण के लिए युवाओं को सामूहिक राष्ट्रीय मिशन में एकजुट करना है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज राष्ट्रपति भवन में भारतीय पारंपरिक कला रूपों के कलाकारों से मुलाकात की और उनके कार्यों का अवलोकन किया। बनारस भित्तिचित्र, थंका, नायका, केरल भित्तिचित्र, बसोहली, सुरपुर और मैसूर जैसी कला शैलियों का प्रतिनिधित्व करने वाले 12 कलाकार कलाकार निवास कार्यक्रम के अंतर्गत राष्ट्रपति भवन में रह रहे हैं। कलाकार निवास कार्यक्रम भारत की कलात्मक परम्पराओं की भावना का उत्सव है। उत्तर प्रदेश के वाराणसी जिले के एक निजी स्कूल में 5 वर्षीय बच्चे के साथ शिक्षक द्वारा कथित यातना और अमानवीय व्यवहार के मामले में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव और वाराणसी पुलिस आयुक्त को नोटिस जारी किया है।

0: मीडिया रिपोर्ट का स्वतः संज्ञान लेते हुए एनएचआरसी ने 2 सप्ताह के भीतर इस मामले पर विस्तृत रिपोर्ट मांगी है। बम्बई शेयर बाजार का सूचकांक आज 889 अंक बढ़कर 77,655 पर पहुंच गया। निफ्टी 265 अंक की तेजी के साथ 24,250 पर बंद हुआ। ग्लासगो में राष्ट्रमंडल खेलों में तजिंदर पाल सिंह तूर और समरदीप सिंह गिल ने शॉटपुट फाइनल में जगह बना ली है। अनिमेश कुजुर 200 मीटर दौड़ के सेमीफाइनल में पहुंच गए हैं। आज रात मनप्रीत कौर महिला शॉटपुट फाइनल में खेलेंगी। श्री शंकर मुरली और लोकेश सत्यनाथन ऊंची कूद के फाइनल में और पारुल चौधरी 3000 मीटर स्टीपल चेज के फाइनल में चुनौती पेश करेंगी। पदक तालिका में भारत 2 स्वर्ण 7 रजत और 3 कांस्य पदकों के साथ 9वें स्थान पर है। मौसम विभाग ने छत्तीसगढ़, पूर्वी मध्य प्रदेश और विदर्भ में आज मूसलाधार बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, दिल्ली, कोंकण, गोवा, केरल, माहे में कल तक तेज बारिश हो सकती है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: ये विविध भारती है, देश की सुरीली धड़कन। तराना में पुराने कार्यक्रम में एक बार फिर से आप सभी श्रोताओं का स्वागत है। लीजिए सुनिए अरिजीत सिंह और हर्षदीप कौर को रईस फिल्म में, बोल अमिताभ भट्टाचार्य के, संगीत जामेट का।

0: जाने माने फिल्मी संगीतकार दिलीप सेन हमसे साझा करेंगे अपनी फिल्मी संगीत यात्रा।
1: फोक कहते हैं आमद को। हमारी जो माताएं बहनें आज से 100-200 साल पहले दामाद आते थे तो उनके लिए गाने बनाती थी, उनको उस वक्त कोई राइटर तो होता नहीं था, तो गडरणत भवन सुं आयो विनायक करो ये नसीती विने धरी मारा दिलीप सेन जीव धारिया।
0: कार्यक्रम बॉम्बे टॉकीज में 1 अगस्त दोपहर बाद 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर। तो सुनना न भूलिएगा विविध भारती, देश की सुरीली धड़कन।
2: हिंदी सिनेमा की कुछ कल्ट फिल्में उनके नाम पर हैं, स्पर्श, कथा, दिशा और चश्मे पर दूर।
3: उन्होंने कहा कि देखो अब सिर्फ हम नौजवान तीनों दिखा रहे हैं, सिर्फ कॉलेज के युवक नहीं, उनके माँ बाप भी आए, उनके चाचा चाची आए, एक दादी माँ डाली, बाप डाला, एक भाई डाला वगैरह वगैरह, एक पान वाला डाला। सईद को पकड़ा लिया और उसने कहा फिर मुझे वी हैव टू गो टू जामा मस्जिद, पुरानी दिल्ली जाना पड़ेगा। मैंने कहा पुरानी दिल्ली क्या करोगे जाके, पान वाले का अगर मुझे करना है रोल तो मुझे देखना नहीं चाहिए पान वाले वगैरह। तो मैंने कहा ये नसीर के बाद ये
4: एक और
3: आ गया।
4: जल्दी है बुलबुल, कोई और कर्जेदार लग गया तेरे पीछे क्या?
5: अरे ललन मीना आप काट दे रास्ता, अब मेरा काम नहीं होगा।
2: दास्तान सई परांजपे की, उजाले उनकी यादों के, 19 जुलाई से 9 अगस्त शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
6: सुनिए
7: अब सुनिए किशोर कुमार का गाया और अमित खन्ना का लिखा गीत, तर्ज बनाई है बप्पी लहरी ने, फिल्म का नाम दिल से मिले दिल।

0: अब आपको सुना रहे हैं उदित नारायण का गाया मन फिल्म का गीत, बोल समीर के संगीत संजीव दर्शन का।
1: प्यार का नशा है ये मेरी बात यार मानो, नशे में यार डूब जाओ, रहो न होश में।

0: एक आवाज जो आप सभी के जहन में ताजा है और जिससे जुड़ी हैं आपकी ढेर सारी रेडियो की यादें।
1: मैंने ये सोचा कि भारत में तो बहुत ज्यादा भावुक हैं लोग, करोड़ों की संख्या में सुन रहे हैं रेडियो से कान लगाए, तो मैंने तब अपनी आवाज में कंपन लाते हुए कहा था कि ये मैच अब कमजोर दिल के इंसानों के लिए नहीं रह गया है।
0: जानी मानी क्रिकेट कमेंटेटर सुशील दोषी की जिंदगी की कहानी, मैटिनी शो 1 अगस्त दिन में 11 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: आए हाय।
3: और ये है कार्यक्रम की अंतिम पेशकश प्रेम रोग फिल्म से। गीतकार संतोष आनंद, संगीतकार लक्ष्मीकांत प्यारेलाल, आवाजी सुधा मल्होत्रा और

0: प्राप्त होता है।
1: तराने नए पुराने
0: अभी आप सुन रहे थे मुंबई केंद्र से अनुप्रसारित विविध भारती के कार्यक्रम। हम आकाशवाणी बांसवाड़ा के माही चैनल से बोल रहे हैं एफएम बैंड 101.3 मेगाहर्ट्ज पर। शाम के 6:30 होने को है। अब आप सुनेंगे आकाशवाणी के जयपुर अजमेर केंद्र से अनुप्रसारित हिंदी में प्रादेशिक समाचार, साथ ही सुनिएगा जिले की चिट्ठी और 6:45 पर आप सुनेंगे राजस्थानी में प्रादेशिक समाचार। कृपया समाचारों के लिए कुछ पल प्रतीक्षा करें।

मुख्य समाचार। लोक परीक्षा अनुचित साधन रोकथाम संशोधन विधेयक 2026 लोकसभा में पारित हुआ। प्रदेश के सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले 40 लाख पात्र विद्यार्थियों के बैंक खातों में यूनिफॉर्म के लिए 250 करोड़ रुपए की राशि डीबीटी की गई। देश भर में नशा मुक्ति के लिए 2 अगस्त से 100 सप्ताह का विशेष अभियान चलाया जाएगा। और गुरु पूर्णिमा के पावन पर्व पर आस्था का माहौल, गुरुजनों संतों और महंतों का श्रद्धा से अभिनंदन।

0: समाचारों के साथ मैं रितिका गुप्ता और अब समाचार विस्तार से। लोक परीक्षा अनुचित साधन रोकथाम संशोधन विधेयक 2026 आज लोकसभा में पारित कर दिया गया। इस नए संशोधन विधेयक में पेपर लीक के लिए 10 साल तक की जेल और भारी जुर्माने का कड़ा प्रावधान किया गया है। विधेयक पर सदन में कल से चर्चा की शुरुआत की गई थी। कार्मिक लोक शिकायत और पेंशन राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने कहा कि विधेयक में संशोधन कानून को और अधिक सख्त बनाने और त्वरित न्याय दिलाने के लिए प्रावधान किया गया है। चर्चा के दौरान हुए हंगामे के कारण सदन को दो बार स्थगित भी किया गया। इसके बाद विधेयक पारित कर दिया गया। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने इसके पारित होने की घोषणा की।
1: मंत्री जी अब प्रस्ताव करें कि विधेयक को पारित किया जाए।
2: मैं प्रस्ताव करता हूं कि विधेयक को पारित किया जाए।
1: प्रश्न ये कि विधेयक को पारित किया जाए, जो सदस्य के पक्ष में आ गए, जो सदस्य विरोध में आ गए, मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में प्रस्ताव स्वीकृत हुआ और विधेयक पारित हुआ।
0: अब ये विधेयक ऊपरी सदन यानी राज्यसभा में पेश किया जाएगा। एक राष्ट्र एक चुनाव से संबंधित विधेयकों की जांच करने वाली संयुक्त संसदीय समिति जेपीसी का कार्यकाल संसद के इस साल के शीतकालीन सत्र के अंतिम सप्ताह तक बढ़ा दिया गया है। लोकसभा में आज इस बारे में प्रस्ताव पेश किया गया। सदन ने इस प्रस्ताव को ध्वनिमत से

पारित कर दिया। गौरतलब है कि एक राष्ट्र एक चुनाव विधेयकों का उद्देश्य लोकसभा और राज्य विधानसभाओं के चुनाव एक साथ कराने की व्यवस्था लागू करना है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने आज भरतपुर जिले के खेडली गुर्जर गांव से करीब 940 करोड़ रुपए के विकास कार्यों का लोकार्पण और शिलान्यास किया। बालिका सैनिक विद्यालय में हुए इस कार्यक्रम में श्री शर्मा ने सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले 40 लाख पात्र विद्यार्थियों के बैंक खातों में यूनिफॉर्म के लिए 250 करोड़ रुपए की राशि डीबीटी की। उन्होंने दिव्यांग बच्चों को टैबलेट दिए और बेहतर परीक्षा परिणाम देने वाले शिक्षकों को सम्मानित किया। इस राज्यस्तरीय समारोह से मुख्यमंत्री ने मिशन पढ़ो अभियान के तहत रीडिंग प्रमोशन कैंपेन की शुरुआत की। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने कहा

0: रीडिंग प्रमोशन कैंपेन की शुरुआत की। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने कहा कि बच्चों को दिए गए संस्कार से ही उनका व्यक्तित्व बनता है। श्री शर्मा ने वीसी के जरिए प्रदेश के स्कूली बच्चों से संवाद भी किया। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार का ये प्रयास है कि स्कूलों में बेहतरीन इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार हो और कोई भी बच्चा शिक्षा से वंचित न रहे।
1: बच्चों की शिक्षा उन्हें मिलने वाले सही संस्कार काफी हद तक तय करते हैं कि वे भविष्य में क्या बनेंगे और उनका व्यक्तित्व कैसा होगा। इस दृष्टि के साथ राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 लागू की है। माननीय प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा से हम बच्चों को गुणवत्तापूर्ण और सुलभ शिक्षा दे रहे हैं, उपलब्ध कराने के लिए अनेक स्तर पर प्रयास कर रहे हैं। इस बार के बजट में हमने संकल्प लिया था कि हम प्रदेश के कक्षा 1 से 8 तक के 40 लाख से अधिक जरूरतमंद विद्यार्थियों को निःशुल्क यूनिफॉर्म उपलब्ध कराएंगे। मुझे प्रसन्नता है कि आज गुरु पूर्णिमा के पावन अवसर पर और वैर की धरती से भरतपुर जिले से उस संकल्प को धरातल पर उतारा जा रहा है।
0: राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े ने नशा मुक्त भारत अभियान के तहत राज्य में प्रभावी प्रयास करने पर जोर दिया है। उन्होंने प्रदेश में व्यापक अभियान चलाने और विश्वविद्यालयों की ओर से गोद लिए गांवों को नशा मुक्त करने के लिए ठोस कदम उठाने के निर्देश दिए हैं। राज्यपाल ने लोकभवन से आज वीसी के जरिए विश्वविद्यालयों के कुलगुरुओं से बातचीत की। श्री बागड़े ने कहा कि विश्वविद्यालयों के आसपास मादक पदार्थ बेचने वालों की पहचान कर ऐसे लोगों को पकड़ा जाए। राज्यपाल ने बताया कि नशाखोरी के खिलाफ 2 अगस्त से 100 सप्ताह का एक देशव्यापी जन भागीदारी अभियान शुरू होने जा रहा है। युवा कार्य और खेल मंत्रालय की ओर से नशा मुक्त युवा फॉर विकसित भारत संकल्प अभियान चलाया जाएगा। इसमें हर रविवार को स्वस्थ जीवन शैली को बढ़ावा देने के लिए खेल प्रतियोगिताएं, पैदल मार्च, ध्यान सत्र, नुक्कड़ नाटक और अन्य कार्यक्रम होंगे। सतत विकास लक्ष्यों के तहत राज्य ने पोषण और पीने के पानी सहित कई क्षेत्रों में प्रगति की है। मुख्य सचिव वी श्रीनिवास ने आज एसडीजी के राज्य स्तरीय क्रियान्वयन और मॉनिटरिंग समिति की बैठक ली। उन्होंने विभिन्न विभागों को नीति आयोग और राज्य संकेतकों के अनुसार काम करने के निर्देश दिए। मुख्य सचिव ने वास्तविक और प्रमाणिक नवीनतम आंकड़ों को पोर्टल पर अपलोड करने को कहा। उन्होंने कहा कि वर्ष 2030 तक निर्धारित 17 एसडीजी और 248 संकेतकों पर राजस्थान को लगातार काम करना है। मुख्य सचिव ने दूरस्थ और जनजातीय बहुल क्षेत्रों के विकास के लिए राज्य स्तरीय कार्यकारी समिति की भी बैठक ली। इसमें चालू वित्तीय वर्ष के लिए 196 करोड़ रुपए से अधिक के बजट प्रस्तावों का अनुमोदन किया गया। ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। प्रादेशिक समाचार बुलेटिन आप हमारे एक्स हैंडल @AIRNews_Jaipur, यूट्यूब चैनल राजस्थान AIR न्यूज और फेसबुक AIR न्यूज राजस्थान पर भी सुन सकते हैं। इसके साथ ही आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर भी समाचार सुन सकते हैं और संबंधित फोटो तथा वीडियो देख सकते हैं। देश की पहली वंदे भारत गुड्स ट्रेन का आज कोटा में ट्रायल किया गया। 16 कोच वाली इस सुपर फास्ट ट्रेन की रफ्तार करीब 145 किलोमीटर प्रति घंटा रही। कोटा नागदा सवाई मधुपुर रेलखंड पर इसका परीक्षण किया गया। इसने फायर डिटेक्शन, ऑटो लॉक, रेफ्रिजरेटर पार्सल सहित कई तरह की सुविधाएं शामिल है। अपनी उच्च ट्रैक गुणवत्ता और आधुनिक सिग्नलिंग तथा सुरक्षित हाई स्पीड कॉरिडोर के कारण कोटा मंडल एक बार फिर रेल तकनीक की परीक्षण प्रयोगशाला साबित हुआ है। इस फ्रेट ईएमयू के सफल ट्रायल से माल परिवहन को आने वाले समय में तेज, सुरक्षित और विश्वसनीय बनाया जा सकेगा। गुरु पूर्णिमा के पावन पर्व पर आज प्रदेश भर में श्रद्धा और आस्था का माहौल है। धार्मिक स्थलों पर लोगों की भीड़ उमड़ रही है। वहीं श्रद्धालुओं ने गुरुजनों, संतों, महंतों का अभिनंदन कर आशीर्वाद लिया। जयपुर में आयोजित गुरु पूर्णिमा महोत्सव में केंद्रीय संस्कृति और पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत शामिल हुए। उन्होंने कहा कि भारतीय संस्कृति में गुरु का स्थान सबसे ऊपर माना गया है। गुरु पूर्णिमा गुरुओं के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करने का पर्व होने के साथ साथ गुरु शिष्य परंपरा को आगे

0: बढ़ाने का भी अवसर देती है। वहीं देवस्थान मंत्री जोराराम कुमावत ने पाली जिले के भूसी और बालरई में संतों का सम्मान किया। इस मौके पर शोभा यात्रा निकाली गई। विभिन्न मंदिरों और आश्रमों में महाप्रसादी का आयोजन किया गया। डूंगरपुर के साबला में संत मावजी महाराज की जन्म स्थली हरि मंदिर पर भी श्रद्धालुओं का तांता लगा रहा। झुंझुनू के चंचलनाथ टेला में गुरु पूर्णिमा महोत्सव श्रद्धा भाव से मनाया गया। इस मौके पर टेला परिसर में आकर्षक सजावट की गई। सलंबर जिले के सभी डाकघरों में सावन के महीने में गंगा जल उपलब्ध करवाया जाएगा। शिव भक्तों की सुविधा के लिए ये पहल की गई है। इसके तहत श्रद्धालु 30 रुपए में गंगा जल की बोतल खरीद सकेंगे। मांग अधिक होने पर डाकिये घर घर गंगा जल पहुंचाएंगे। इससे दूर दराज के क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को फायदा मिलेगा। अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस के मौके पर आज इको टूरिज्म वेब पोर्टल की शुरुआत की गई है। इस पर देश के सभी बाघ अभयारण्यों की जानकारी उपलब्ध है। केंद्रीय वन मंत्री भूपेंद्र यादव ने नई दिल्ली में आयोजित एक कार्यक्रम में राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण की ओर से विकसित इस पोर्टल का शुभारंभ किया। इधर प्रदेश में भी अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस के अवसर पर जागरूकता संबंधी कार्यक्रम रखे गए। राज्य के अभयारण्यों में बाघों पर पेश है हमारे संवाददाता की रिपोर्ट।
1: राजस्थान में रणथंभौर, सरिस्का, मुकुंद्रा हिल्स, रामगढ़ विषधारी के साथ ही एक नया टाइगर रिजर्व धौलपुर करौली है। वन विभाग के अनुसार इन पांचों अभयारण्यों में बाघों की संख्या 150 है। इनमें बाघ, बाघिन और शावक शामिल हैं। इस साल सबसे ज्यादा 28 शावकों का जन्म सरिस्का अभयारण्य में हुआ। हाईटेक मॉनिटरिंग और एंटी पोचिंग अभियान से बाघों की सुरक्षा व्यवस्था बेहतर हुई है। साथ ही वन विभाग वन्य जीव कॉरिडोर मजबूत करने पर भी खास ध्यान दे रहा है। रामगढ़ विषधारी और मुकुंदरा में ट्रांस लोकेशन से भी बाघों के कुनबे में बढ़ोतरी की उम्मीद जगी है। समाचार कक्ष से सुदर्शन नाहर।
0: और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। लोक परीक्षा अनुचित साधन रोकथाम संशोधन विधेयक 2026 लोकसभा में पारित हुआ। प्रदेश के सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले 40 लाख पात्र विद्यार्थियों के बैंक खातों में यूनिफॉर्म के लिए 250 करोड़ रुपए की राशि डीबीटी की गई। देशभर में नशा मुक्ति के लिए 2 अगस्त से 100 सप्ताह का विशेष अभियान चलाया जाएगा। और गुरु पूर्णिमा के पावन पर्व पर आस्था का माहौल, गुरुजनों, संतों और महंतों का श्रद्धा से अभिनंदन। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार। ये आकाशवाणी जयपुर अजमेर है। अब आप माधुरी वशिष्ठ से बाड़मेर जिले की चिट्ठी सुनिए। इसके लेखक हैं जसवंत सिंह डूडी। सरहदी जिले बाड़मेर में आज गुरु पूर्णिमा श्रद्धा और आस्था के साथ मनाई जा रही है। नीलसर स्थित जसनाथ धाम, चौहटन में डूंगरीपुरी जी के मठ, बाड़मेर के चंचल प्राग मठ और गंगागिरी जी के मठ में गुरु पूर्णिमा महोत्सव आयोजित किए जा रहे हैं। इस अवसर पर जिले में विभिन्न शिक्षण संस्थानों में गुरु वंदन के कार्यक्रम आयोजित हुए। इस दौरान गुरुजन का सम्मान किया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पिछले दिनों पुनर्विकसित बाड़मेर रेलवे स्टेशन का वर्चुअल माध्यम से लोकार्पण किया। अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत बाड़मेर रेलवे स्टेशन को 16 करोड़ रुपए से अधिक की लागत से विकसित किया गया है। रेलवे स्टेशन का ये कायाकल्प भारतीय रेल की आधुनिक, सुरक्षित, पर्यावरण अनुकूल और यात्री केंद्रित रेलवे प्रणाली के विकास के प्रति उसकी प्रतिबद्धता को दर्शाता है। ये क्षेत्रीय इंफ्रास्ट्रक्चर को सशक्त बनाने के अलावा भारत के पर्यटन मानचित्र पर थार नगरी की पहचान को और अधिक प्रभावी बनाएगा। आधुनिक सुविधाओं से सुसज्जित ये रेलवे स्टेशन मरुस्थलीय इलाके में सामाजिक और आर्थिक विकास में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। 27वें करगिल विजय दिवस के अवसर पर बाड़मेर में पुलिस लाइन स्थित शहीद स्मारक पर विशेष कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस दौरान शहीदों को गार्ड ऑफ ऑनर देकर श्रद्धांजलि अर्पित की गई। इस मौके पर शहीदों की वीरांगनाओं और परिजनों को सम्मानित किया गया। वहीं शहीदों की याद में पौधरोपण कर पर्यावरण संरक्षण का संदेश दिया गया। इस अवसर पर स्थानीय जनप्रतिनिधियों के अलावा प्रशासन, सेना, वायुसेना, बीएसएफ और पुलिस

0: के अधिकारी तथा बड़ी संख्या में आम लोग मौजूद थे। संसदीय कार्य मंत्री जोगाराम पटेल बीते दिनों जिले के दौरे पर रहे। इस दौरान उन्होंने वीरात्रा स्थित वांकल माता के मंदिर में पूजा अर्चना कर प्रदेश की सुख समृद्धि और खुशहाली की कामना की। श्री पटेल ने बाड़मेर में सर्किट हाउस में आयोजित जनसुनवाई में आमजन की समस्याएं सुनी और संबंधित अधिकारियों को इनके तुरंत निस्तारण के निर्देश दिए। जिला कलेक्टर चिन्मय गोपाल ने कल धनाऊ इलाके में ओजिया गांव का दौरा किया। इस दौरान उन्होंने स्थानीय शिल्पकार खेताराम के घर पहुंचकर पारंपरिक पट्टू बुनाई कला का अवलोकन किया। इस अवसर पर जिला कलेक्टर ने कहा कि पारंपरिक पट्टू बुनाई बाड़मेर की अनोखी पहचान है। इस कला को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाने के लिए प्रभावी ब्रांडिंग, बेहतर पैकेजिंग, डिजिटल मार्केटिंग और व्यापक प्रचार प्रसार पर बल दिया जाएगा। उन्होंने स्थानीय हस्तशिल्प को GI टैग और ट्रेडमार्क दिलाने की दिशा में प्रयास करने और इस प्रक्रिया में जिला प्रशासन की ओर से हर संभव सहयोग तथा मार्गदर्शन का भरोसा दिलाया। पिछले दिनों ग्राम पंचायत विशाला में आयोजित जिला स्तरीय कार्यक्रम में विकसित भारत जी राम जी योजना का शुभारंभ किया गया। इस दौरान राष्ट्रीय कार्यक्रम का वर्चुअल माध्यम से सजीव प्रसारण किया गया। इस अवसर पर पौधरोपण के जरिए पर्यावरण संरक्षण का संदेश दिया गया। मरुस्थलीय जिले बाड़मेर में पर्यावरण संरक्षण अभियान के तहत सीमा सुरक्षा बल की 28वीं बटालियन की ओर से पौधरोपण किया गया। इस अभियान के तहत सरहदी गांव, सरूपे का तला, मिये का तला और केलनोर समेत BSF की विभिन्न सीमा चौकियों और सरकारी स्कूलों में भी बड़े पैमाने पर पौधरोपण करते हुए आमजन को पर्यावरण संरक्षण के प्रति जागरूक किया गया। दूसरी तरफ जिले में मॉनसून की बारिश के चलते इन दिनों विद्यालयों में एक पेड़ माँ के नाम और हरियालो राजस्थान अभियान के तहत पौधरोपण किया जा रहा है और विद्यार्थियों को पौधे भेंट कर पर्यावरण संरक्षण का संदेश दिया जा रहा है। वहीं मॉनसून की बारिश के मद्देनजर इन दिनों बाजरा, ग्वार, मूंग, मोठ और तिल जैसी खरीफ की फसलों की बुआई की जा रही है और किसानों तथा पशुपालकों में खुशी का माहौल है। बाड़मेर के सरकारी जिला अस्पताल में पिछले दिनों प्रसव सखी हेल्प डेस्क का शुभारम्भ किया गया। इस पहल का उद्देश्य गर्भवती महिलाओं को अस्पताल में प्रवेश से लेकर डिस्चार्ज होने तक एक ही स्थान पर मार्गदर्शन, सहायता और समन्वित सेवाएं मुहैया कराना है। इसके साथ ही बाड़मेर जिले की चिट्ठी समाप्त हुई।
1: नमस्कार, आकाशवाणी जयपुर अजमेर में पेश है प्रादेशिक समाचार। समाचार। लोक परीक्षा अनुचित साधन रोकथाम संशोधन बिल 2026 लोकसभा में पास भयो। प्रदेश के सरकारी स्कूलों रा 40 लाख पात्र विद्यार्थियों रा बैंक खाता में स्कूल ड्रेस सारू 250 करोड़ रुपया री रकम भेजी जी। देश में नशा मुक्ति सारू 2 अगस्त तो 100 सप्ताह रो खास अभियान चलायो जावेला और गुरु पूर्णिमा रा पावन पर्व रे मौके आस्था रो माहौल गुरुजन संता और महंता रो सिद्ध भाव मान करीचियो। समाचार सगे मैं सुदर्शन नाहर। अरब समाचार विगतवार। लोक परीक्षा अनुचित साधन रोकथाम संशोधन बिल 2026 ने आज लोकसभा पास कर दिनो। ये बिल में पेपर लीक रा दोषियों ने 10 साल ताहिरी कैद और भारी जुर्माना रो प्रावधान करी चियो है। बिल माथा सदन में काल नो चर्चा करी जा रही है। कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह कहो कि बिल में बदलाव कानून ने और करड़ो बनावन और तुरंत न्याय दिरावन सारू करी चियो है। चर्चा रे दौरान फिर हंगामा रे कारण सदन री कार्रवाई 2 दफा टालनी पड़ी। ये पाछे लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ओ बिल पास वेवन रो ऐलान करती नो।
2: मंत्री जी अब प्रस्ताव करें कि विधेयक को पारित किया जाए।
3: मैं प्रस्ताव करता हूँ कि विधेयक को पारित किया जाए।
2: प्रश्न ये कि विधेयक को पारित किया जाए जो सदस्य के पक्ष में आ गए, जो सदस्य विरोध में आ गए, मेरे विचार में निर्णय हवालों के पक्ष में प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

0: और विधेयक पारित हुआ।
1: अब वो बिल संसद रा ऊपरी सदन राज्यसभा में विचार सारू पेश करो चावेला। एक राष्ट्र एक चुनाव जुड़ी संयुक्त संसदीय समिति जेपीसी रो कार्यकाल संसद रा शीतकालीन सत्र रा आखिरी सप्ताह ताई बधाती उचियो है। लोकसभा में आज इन बारा में प्रस्ताव पास करी चियो जिन्हें सदन ध्वनिमत पास की नो। ध्यान जोग है कि एक राष्ट्र एक चुनाव विधेयक रो मकसद लोकसभा राज्य विधानसभा में चुनाव एक सागे करावन रे व्यवस्था लागू करनो है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा आज भरतपुर जिला रा खेड़नी गुर्जर गांव करीब 940 करोड़ रुपया खर्च वाला विकास रा काम री शुरुआत कीनी और पूरा फिया काम जनता ने सौंपया। लड़कियां रे सैनिक स्कूल में राखी जा कार्यक्रम में श्री शर्मा सरकारी स्कूल रा 40 लाख पात्र विद्यार्थियों रा बैंक खाता में स्कूल ड्रेस सारो 250 करोड़ रुपया भेजा। वह दिव्यांग बच्चा ने टैबलेट दीना और चोखा नतीजा देवन वाला अध्यापका रो मान कीनो। इन जलसाओ मुख्यमंत्री मिशन पढ़ो अभियान रातेत रीडिंग प्रमोशन कैंपेन री शुरुआत कीनी। इस मौके वे कहो कि बच्चा ने दिया जावन वाला संस्कार ही मारो व्यक्तित्व बनावे है। श्री शर्मा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग रे जरिए प्रदेश रा स्कूली बच्चा सागे बातचीत कीनी। वह कहो कि राज्य सरकार स्कूलों में बेहतरीन बुनियादी ढांचो तैयार करावनो और हर बच्चा ने पढ़ाई लिखाई रो मौको मुहैया करावनो तय कीनो है।
2: बच्चों की शिक्षा उन्हें मिलने वाले सही संस्कार काफी हद तक तय करते हैं कि वे भविष्य में क्या बनेंगे और उनका व्यक्तित्व तो कैसा होगा। इस दृष्टि के साथ राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 लागू की है। माननीय प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा से हम बच्चों को गुणवत्तापूर्ण और सुलभ शिक्षा दे रहे हैं, उपलब्ध कराने के लिए अनेक स्तर पर प्रयास कर रहे हैं। इस बार के बजट में हमने संकल्प लिया था कि हम प्रदेश के कक्षा 1 से 8 तक के 40 लाख से अधिक जरूरतमंद विद्यार्थियों को निःशुल्क यूनिफॉर्म उपलब्ध कराएंगे। मुझे प्रसन्नता है कि आज गुरु पूर्णिमा के पावन अवसर पर और वैर की धरती से भरतपुर जिले से उस संकल्प को धरातल पर उतारा जा रहा है।
1: राज्यपाल हरिभाव बागड़े नशा मुक्त भारत अभियान रातेत प्रदेश में आई असरदार कोशिशों करण मत जोर तीनो है। श्री बागड़े आज लोक भवन वीडियो कॉन्फ्रेंस रे जरिए विश्वविद्यालय रा कुल गुरुओं सागे बातचीत कर रहा है। वह राज्य में मोटा पैमाना माथे अभियान चलार विश्वविद्यालय कानियों गोद लिया जा गांव में नशारी लत जड़ खत्म करण सारू ठोस जतन करण रा हुकम तीना। राज्यपाल कहो कि विश्वविद्यालय रे आरे सारे नशीली चीजा बेचण वाला ने पकड़वा सारू अभियान चलायो चाहनो चाहिए। वे बतायो कि नशाखोरी रे खिलाफ आखा देश में 2 अगस्त तो 1 साल 1 सप्ताह रो जन भागीदारी अभियान चलायो जावेला। युवा कार्य और खेल मंत्रालय रे ओर नशा मुक्त युवा फॉर विकसित भारत संकल्प अभियान चलायो जावेला। इनमाय हर दीतवार ने जीवन का स्वस्थ तरीका ने बधावो देवन सारू खेलना रे होना पैदल मार्च ध्यान सत्र और नुक्कड़ नाचक समेत भांत भांत रा कार्यक्रम रख्या जावेला। लगातार विकास रा लक्ष्य रा तेत राज्य में पोषण और पीवन रा पानी समेत कई हल्का माय प्रगति भी है। मुख्य सचिव वी श्रीनिवास आज SDG री राज्य स्तरीय क्रियान्वयन और निगरानी समिति री मीटिंग लीनी। वह न्यारा न्यारा महकमा ने नीति आयोग और राज्य संकेतकार मुजब काम करण रा हुकम दीना। मुख्य सचिव असली और प्रामाणिक आंकड़ा पोर्टल माथे अपलोड करण बाबत कहो। वह दूरस्थ और जनजातीय बहुल हलका रा विकास सारू बनाई ची राज्य स्तरीय कार्यकारी समिति री मीटिंग लीनी। इनमाय चालू माली साल सारू 196 करोड़ रुपयों बत्ती रकम रा बजट प्रस्ताव मंजूर करी चिया। समाचार आप आकाशवाणी जयपुर अजमेर सुन रहा हो। देश की पहली वंदे भारत मालगाड़ी री आज कोटा माए कोटा नागदा सवाई माधोपुर रेलखंड माथे परख करी ची। इस दौरान 16 डिब्बा वाली इन सुपरफास्ट रेल री रफ्तार करीब 145 किलोमीटर प्रति घंटा नापी ची। इमाए लाई लागण री ठाकरण दरूजा आपू आप बंद वेवण और रेफ्रिजरेटेड पार्सल समेत कई भांतरा सुविधा मुहैया।

0: கிரைச்சியா ஹே ஈ ஃப்ரெட் ஈஎம் யூரி காமியாபி சக பரக்கு மால் லவம் லிஜாவம் நே ஆவதா வகத் மை தீஸ் சுரக்ஷித் ஹர் பரோசேமந்த் பனாயும் சா சகேலா ஆஜ் குரு பூர்ணிமா ரே மொகே आखा राज्य माय जात्रु सिद्धा भाव सागे गुरुजना संता और महंता रो आशीर्वाद लीनो जयपुर माय राखी जया गुरु पूर्णिमा महोत्सव माय केंद्रीय संस्कृति और पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावती शामिल भिया ई मौके वे कहो के भारत री संस्कृति माय गुरु रिठौड़ सब ऊंची मानी ची है गुरु पूर्णिमा गुरुवारा प्रति कृतज्ञता जतावन रो पर्व भेवन सागे गुरु चेलारी रीत न आगे बधावन रोई मौको देवे है देवस्थान मंत्री जोरा राम कुमावत पाली जिलारा बूसी और बाल राय माए संता रो मान किन्नो डूंगरपुर जिलारा साबला माए संत मावजी महाराज री जन्मस्थली हरि मंदिर माई मोटी तादाद माए जात्रु पूग्या झुंझुनू जिलारा चंचल नाथ टीला माए गुरु पूर्णिमा महोत्सव मनाईचियो और टीला परिसर माए सोमनी सजावट करी जी चूरू रा स्कूल कॉलेज माए गुरु पूर्णिमा रे मौके सम्मान समारोह राखी चिया सलूम्बर जिलारा सगा डाक घरा माए सावन माए गंगा जल मुहैया कराय चावेला जात्रु 30 रुपया माए गंगा जल री बोतल खरीद सकेला मांग बत्ती वेवंदी सूरत माए डाकिया घर घर गंगा जल पुगावेला अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस रे मौके आज इको टूरिज्म वेब पोर्टल री शुरुआत करी ची इमाथे देश रा सगला बाघ अभयारण्य री जानकारी मुहैया कराई ची है राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण री ओर विकसित करी चिया ई पोर्टल री केंद्रीय वन मंत्री भूपेंद्र यादव ने दिल्ली माए राखी जाए कार्यक्रम माए शुरुआत कीनी प्रदेश माए अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस रे मौके भात भात रा कार्यक्रम राखी चिया राज्य रा अभयारण्य माए बाघा रा बारा माए पेश है एक रपट
1: राजस्थान में रणथंबोर सरिस्का मुकुंद्रा हिल्स रामगढ़ विस्तारी के साथ ही एक नया टाइगर रिजर्व धौलपुर करौली है वन विभाग के अनुसार इन पांचों अभयारण्यों में बाघों की संख्या 150 है इनमें बाघ बाघिन और शावक शामिल हैं इस साल सबसे ज्यादा 28 शावकों का जन्म सरिस्का अभयारण्य में हुआ है हाईटेक मॉनिटरिंग और एंटी पोचिंग अभियान से बाघों की सुरक्षा व्यवस्था बेहतर हुई है साथ ही वन विभाग वन्य जीव कॉरिडोर मजबूत करने पर भी खास ध्यान दे रहा है रामगढ़ विस्तारी और मुकुंद्रा में ट्रांस लोकेशन से भी बाघों के कुनबी में बढ़ोतरी की उम्मीद जगी है जितेंद्र द्विवेदी आकाशवाणी समाचार जयपुर
0: स्कॉटलैंड में ग्लास्गो में राष्ट्रमंडल खेल 2026 चल रहा है 23 जुलाई सरोवेर 2 अगस्त तक चलने वाला खेलना में 74 देशों का एथलीट शामिल हो रहा है कुल 16 खेल कार्यक्रम में दिव्यांग खिलाड़ियां सारू पैरा स्पोर्ट्स से शामिल है और ब्यूरो समाचार डेस्क को
2: हर चार साल माए वेवण वाला राष्ट्रमंडल खेला रा 23वां संस्करण माए भारत री नुमाइंदगी 124 सदस्यां वाला दल कर रयो है आमाए 78 पुरुष और 46 महिला एथलीट शामिल है जो न्यारा न्यारा खेला माए प्रतिभा रो दर्शाव कर रया है झंडू कुमार पैरा पावर लिफ्टिंग माए कांसा रो तमगो जीतर भारत रो खातो खोल्यो मीराबाई चानू ई होड़ माए सोना रो पहलो तमगो जीतर पूरा देश ने माथू उचोण करण रा लम्हा दीना थोड़ा हाल ही चल रही है और भारत रा एथलीट खुद माथे भरोसे सागे मुकाबला माए बनेवड़ा है खास बात आ है कि आवती दफा आ खेल गुजरात रा अहमदाबाद माए करिया जावन रो प्रस्ताव है और समापन समारोह माए भारत ने साल 2030 रा राष्ट्रमंडल खेलारी मेजबानी रो जिम्मो सौंपियो जावेला समाचार कक्ष सालेहा गाजी
0: राज्य में घनघोर हल्का माए आवता 5-6 दिन तक चौमासारी बिरखा चालते रेवन रा आसार है मौसम विभाग 2 अगस्त ताई भरतपुर अजमेर जयपुर और उदयपुर संभाग माए बरसात वेवन रा आसार जताया है जोधपुर और बीकानेर संभाग रा कुछ हल्का माए काल और बिरखा छाटा माए बढ़ोतरी रा आसार है जोधपुर संभाग माए कठे कठे जोरदार बारिश री संभावना है काल 5 जिला माए बरसात रो ऑरेंज और 33 जिला माए येलो अलर्ट जारी करी चियो है आखिर माए खास समाचार एक और फिर सुन ले रहो लोक परीक्षा अनुचित साधन रोकथाम संशोधन बिल 2026 लोकसभा माए पास फियो प्रदेश री सरकारी स्कूल रा 40

हम आकाशवाणी बांसवाड़ा के माही चैनल से बोल रहे हैं एफएम मैंडिक 103.3 मेगाहर्ट्ज़ पर। इस वक्त शाम के 7 बजे ही प्रस्तुत है कार्यक्रम बैरानी बात।

आ गया है विकसित भारत जी राम जी, जिसमें हर ग्रामीण को मिलेगी साल में 125 दिन रोजगार की गारंटी और काम वही जो ग्राम पंचायत कहे। विकसित भारत जी राम जी, गांव बढ़ेगा तभी देश बढ़ेगा। ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी।

0: दोस्तों, आकाशवाणी बांसवाड़ा का FM माहिर चैनल सुनने के लिए अब आपको कहीं जाने की दरकार नहीं। दुनिया के किसी भी कोने में सुन सकते हो आकाशवाणी बांसवाड़ा का अपना FM माहिर चैनल। आपको करना बस इतना सा है, अपने मोबाइल फोन में प्ले स्टोर में जाइए, टाइप कीजिए न्यूज ऑन AIR बिना किसी स्पेस के, NEWSONAIR न्यूज ऑन AIR। आप जैसे ही टाइप करेंगे, यही है वो ऐप जिसके जरिए आप सुन सकते हैं आकाशवाणी बांसवाड़ा का माई चैनल। याद रखिएगा, प्ले स्टोर में जाकर आपको सर्च करना है न्यूज ऑन AIR। हमें रहेगा आपके फीडबैक का इंतजार। नमस्कार।
1: देखो देखो, आज नातू भाई ने बात थी कि जी खेती बाड़ी ने हाथे नातू भाई ही आम घेरे बाय इन वक्त हुतार घरी नो जी काम है ही करे। भाई देखो, सुधार नो काम करवो ये तो घणो अच्छो है, क्योंकि सुधार घरी में जी काम है इनो में जी अपने इनो रुपयो है ये अच्छो खासो इन इनकम अच्छी खासी मिली जाए। तो बेना देखो, मोटे भाई भी करी रहा था का है वो काम, बेने हैं तो ये भी खेती बाड़ी ने हाथी हाथी का एक धंधा है, उद्योग धंधा है, ये वा करी सके। क्योंकि अपने जी बेने हैं, किसान बेने हैं, किसान भाई है, ये बेरोजगार बेटा था का है, आम घरे बेटा था का है। देखो, अपने हर रोज तो खेती बाड़ी नो काम रहतु नहीं, तो किमनी बहनो अपने खेती बाड़ी हंबारे ने जी अमेश बेटा घर है, तो इन वक्त जी के अपने कहो के फूल की खेती है, या बसे बेने है सिलाई मशीन है, इन्हें बाद आचार है, पापड़ है, मोमबत्ती उद्योग है, एवं घना खारा काम है जी भणी लिखी बेने है, कृषि कार्य संबंधी जी काम है, एवं काम भी कर सके। दुकान है, ये भी अपने स्टोर खोल सके, ताकि इन्हें में भी अपनो जी आए ही ये अच्छी खासी अपने मिली जाए। नहीं जी, दैनिक आवश्यकता की पूर्ति ये अपने समय माते अपने कर सके, क्योंकि बहनों अपने बहनों खुद नो अपने कहो के इतनी अपनी आवश्यकता रहे कि पूछो नहीं, कि हर रोज तो वो थातु नहीं कि अपने भाई कने रूपया मांग, जी कड़े मांग भाई आली भी दे, जी भाई कमाई रहे थका है अपने आली भी दे, पण एक दाड़े भाई अपने से वो थी जाए कि भाई हूँ कार्य तक इन्हें पाए हाथ फैलावी करूंगा, किमने मैं खुद अपने पोग माते भी थी सको। देखो बहनो, हर बहने ने आत्मनिर्भर ने थोड़ो काम में प्रगति के तरीके उत्साह ने साहस लेव जरूरी है, ताकि कई काम अपने कर सक, एवं नहीं कि ना भाई मैंने तो आ तो काम नहीं था, मैं नहीं कर सकू, ने आने में तो आ करव पड़े है, बाहर जाऊ पड़े है, कई लेवा जाऊ पड़े रू है। बेनो देखो, आज ने बेने तो भाई के थे कि जाई रहे, आपने भाई आए घर में थके नगरे ने बाजार में नहीं जाई सक, तो पसे आप कही सक। एटले हरू बहनो, आत्मनिर्भर बनवो ने सशक्त बनवो, बेने खुद बनी सके अने खुद ने पोगमाते उभी थई शके, ताकि आपणी दैनिक आवश्यकता ने पूर्ति करी शके। बेनो देखो, आ तो आपणे बेनानी जी आवश्यकता ने पूर्ति ने बारे में बात करी, जी उद्योग धंधा ने बारे में बात करी, अवे जरा गुरु पूर्णिमा ने बारे में भी बात कर ला। सबसे की पहले तो सब भाई ने गुरु पूर्णिमा ने घनी घनी हार्दिक शुभकामनाएं। आज गुरु पूर्णिमा है, गुरु पूर्णिमा नो धाड़ो है, तो आपणे जीवन ने गुरु नो प्रति आभार ने सम्मान ने निष्ठा ने प्रति प्रकट करवानो एक सत्य की मोटो अवसर नो धाड़ो है। बेनो, आज गुरु पूर्णिमा है, ये आपणे केम मनावी रहे हरती है, तो आ महर्षि वेद व्यास ने आ जन्मोत्सव ने रूप में आ मनावी थक है, जिन्होंने आ वेदनो जी विभाजन करू तो इन्हें महान जी ज्ञान आलू तो इन्हें पावन अवसर पर आज शिष्य ने गुरु ने पूजा अर्चना ने शिष्य है इन आशीर्वाद लाया।

आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत लगभग 60 करोड़ लोग बने हैं 5 लाख रुपए के मुफ्त उपचार के हकदार। अब तक 12 करोड़ से भी ज्यादा मुफ्त उपचार किए जा चुके हैं, जिससे गरीब परिवारों के चिकित्सा खर्च में लगभग 2 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई। आज ही आयुष्मान ऐप डाउनलोड कर आयुष्मान कार्ड बनाएं। ज्यादा जानकारी के लिए 1-4-5-5-5 पर कॉल करें।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम बैरानीवाद। हम आकाशवाणी बांसवाड़ा के माही चैनल से बोल रहे हैं, एफएम बैंड 101.3 मेगाहर्ट्ज पर। शाम के 7:30 होने को है। अब आप सुनेंगे जयपुर केंद्र से अनुप्रसारित कार्यक्रम। रात 8:45 पर सुनिएगा।

समाचार संध्या दिल्ली केंद्र से और रात 9 बजे का समय रहेगा विविध भारती के कार्यक्रमों का। कृपया हमारे अगले प्रसारण की प्रतीक्षा करें।

ये आमिर चैनल से बोल रहे हैं। कृपया अगले कार्यक्रम की प्रतीक्षा कीजिए। यह आकाशवाणी का जयपुर अजमेर केंद्र है। लीजिए प्रस्तुत है कार्यक्रम खेती बाड़ी।

0: फाइनेंशियल इमरजेंसी कभी भी बिना बताए आ सकती है। ऐसे वक्त में एक स्मार्ट डिसीजन हर मुश्किल को आसानी से पार करने में मदद करता है।
1: स्मार्ट डिसीजन लेने वालों के लिए मन्नापुरम फाइनेंस लेकर आया है इजी ईएमआई गोल्ड लोन स्कीम, जहां आप हर महीने आसान ईएमआई के थ्रू इंटरेस्ट पे कर सकते हैं और अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग को बना सकते हैं और भी स्मार्ट।
0: ज्यादा जानकारी के लिए अपने नियरेस्ट मन्नापुरम फाइनेंस ब्रांच पर विजिट करें या टोल फ्री नंबर 1-800-420-2233 पर कॉल करें।
2: ખેતીવાડી કાર્યક્રમની વાટ અડીકતા સરળ શ્રોતાવાના અદિતિ ભટ્ટરોને ભર્યો નમસ્કાર ઓર ચંચલ આપને ભી રામ રામ
3: રામ રામ અદિતિ આપને ભી ઘણે માનું એક બાર ઓજુ રામ રામ ઓર સગળા કાશ્તકાર ભાયાને બહેણાને ચંચલનું રામ રામ ઓર સગળા બડા બુડાને એક બાર ઓજુ ઢોગર છે સા
2: જી બિરખા કો મોસમ સુહાવડો
3: બિલકુલ સાહેબ
2: જી કે માયના ખૂબ ચાટ પકોડિયા ખાવા કો ભી મજો આપણો અલોગી હૈ पर साथ जब आप सोचा कि अगर बिरखा थोड़ी सी भी लेट होगी तो आपने पानी की जरूरत तो बहुत पड़े।
3: बिल्कुल अदिति बहन, मन चीखे है कि पानी बिन सूखा अधर जीवन जइया पीर, कोयल भूली कुहकनो और मांग रही है नीर।
2: जी सा
3: तो पानी अगर न बरसे तो जल बिना कल कोनी, तो आप सब जाना है। और फिर भी जब बरसात होवे है यो अमृत बरसे है तो आपा चेता कोनी, आपा बिना संजोवा कोनी। और इकी जरूरत ने देखता थका सरकारा भी समय समय पर काम करती आई है। राजा महाराजा भी कुआ तालाब बावड़िया बनवाता रहा है और अबार भी एक अभियान चल रही है, कैच द रेन अभियान।
2: जी सर,
3: ये में बरसात का पानी रो संग्रहण संचयन हो रही है, संरक्षण हो रही है और उद्देश्य यही है कि पानी ने ज्यादा ज्यादा खेत रो पानी खेत में, कूड़ को पानी कूड़ में, कुआ को पानी कुआ में रहे और खेती किसानी में से ज्यादा ही को काम में ले सका।
2: जी सर, और जिससे कि जो अपनी जमीन को जो जल स्तर छे उमा भी बढ़ोतरी हो वाली।
3: ना सिर्फ जल स्तर अदिति बहन, अगर आप बिरखा को जो पानी है बिना धरती के मायने चौकी तरीका सु आप डाल दिया, जल स्तर तो बढ़ ही लो। सागे सागे जो लवणीय खारीय माटी की समस्या है वे भी कटे न कटे नीचे दब जावे या बैर बाहर चलिया जावे।
2: तो आपना करसा बाहर बहना के लिए तो अमृत समान छे और करसा बाहर बहना के लिए कहीं आप सबके मिनक के लिए पशु पक्षी जीव जिनावर चिड़ी चिड़कला सबके लिए छे अनमोल जल।
3: तो यो जो अनमोल जल है इन्हें आपने संजोनो है और बाता चीता तो आपा कराई ला, पर अब मैं चाहूं कि थे आपना जो पावना आ गया है आंसू बाता चीता करर माने जानकारियां दिला दियो सा।
2: श्रोताओं, आज हमारे सामने डॉक्टर शिव कुमार बासोतिया जी छे पशु चिकित्सा अधिकारी राजकीय पशु चिकित्सालय फतेहपुरा बासा जयपुर सुआ पधार्या। डॉक्टर साहब आपको कार्यक्रम में घणो घणो स्वागत। राम राम सा।
4: राम राम
2: सा। आज आपा आंसू जानकारी लेवाला बरसात का मौसम में पशु प्रबंधन आपा किण भांति कर सका जिससे कि आपना पशु भी सही रहवे, आपा भी सही रहवा, आर्थिक स्थिति पर कोई नुकसान नहीं आवे, कोई परेशानी नहीं आवे और आपा ये बरसात का मौसम आराम से काट सका। तो सबसे पहली जो सवाल छे हमारो आही छे डॉक्टर साहब से कि बरसात में पशु अक्सर बीमार पड़ जावे छे, पशु रख रखाव आपा किण भांति करा, पशु का आवास या फिर बाड़ा की व्यवस्था किन बात की होनी चाहिए जी जिससे कि पशु आराम सु बरसात को मौसम काट सके।
4: बारिश के

0: वातावरण का तापमान अधिक होता है और नमी होती है, जिस वजह से रोगाणु परजीवों की संख्या तेजी से बढ़ती है
1: जी,
0: जिससे पशुओं में रोग उत्पन्न होते हैं। अगर हम पशुओं के रखरखाव की बात करें तो पशु बाड़े का निर्माण एक ऐसी जगह हो जो सतह से बहुत ऊंचा हो
1: जी।
0: ताकि जल भराव की समस्या ना हो। जल भराव की समस्या के कारण होता क्या है, पशु गंभीर रोग जैसे कोक्सीडियोसिस है, पैर सड़ान जिसे हम फुटरोट भी कहते हैं।

0: जाता है। और हम पशुबाड़े की बात करें तो उसकी दीवारों में किसी प्रकार की दरार ना हो, छेद ना हो, क्योंकि ये दरार और छेद परजीवियों और चूहों के प्रजनन का स्थल बनते हैं जिससे इनका खतरा बढ़ जाता है। तो इसे बरसात के मौसम से पहले इन्हें चूने से पुतवा देना चाहिए। बाड़े की समय समय पर सफाई करें एवं बाड़े को सूखा रखें। पशु के मल मूत्र का नियमित रूप से साफ सफाई करें जिससे घातक रोगों का रोगजनक कहे जाने वाले जीवाणु परजीवियों आदि पर नियंत्रण किया जा सके। पशु बाड़े में खिड़कियां हो, हवादार हो ताकि नमी की मात्रा कम बनी रहे। और सप्ताह में एक दो बार चूने का छिड़काव जरूर करें जिससे पशुओं में पैर सड़ान, जिसे हम फुट रोट भी कहते हैं, उसकी समस्या को कम किया जा सके।
1: जी सर, तो आप बताया कि किन बात का आपने ध्यान रखना चाहिए, पशुओं का जो बाड़ो है, आवास व्यवस्था है, वह आपने किन बात की करनी चाहिए जिससे कि अपना पशु आरामदायक बरखा को मौसम निकाल सके। अब डॉक्टर साहब अगलो प्रश्न ये है कि बरखा को मौसम है, जीवाणु भी है और परेशानियां भी है, यानी कि बीमारियां साथ में ले रहा है, तो वहां से बचाव के लिए पशुपालक भाई जो है कौन कौन सी बातों को ध्यान रखे।
0: पशुपालक भाइयों, इस मौसम में पशुओं में कई तरह की बीमारियां देखने को मिलती है। उसमें कुछ संक्रामक बीमारियां हैं जैसे खुरपका, मुंहपका जिसे हम FMD भी कहते हैं, गलगोटू जिसे HS भी कहते हैं, और लंगड़ा बुखार। और गैर संक्रामक रोगों में हम देखें पशुओं को दस्त लग जाना, आफरा आ जाना और निमोनिया प्रमुख है। रोगों की अगर हम बात करें, संक्रामक रोगों में हम बात करें FMD की, जिसे हम खुरपका मुंहपका रोग भी कहते हैं, यह विषाणुजनित रोग है। पशुपालक भाइयों, इसमें होता क्या है, पशुओं के मुंह में छाले पड़ना, उसके थनों में छाले पड़ना और पशुओं के चलने फिरने में दिक्कत होती है और चारा खाने में समस्या आती है। जब भी पशु में ऐसे लक्षण दिखे, स्वस्थ पशु से उसको अलग रखें और तुरंत नजदीकी पशु चिकित्सालय में संपर्क करें। और बरसात से पूर्व इससे रोग से बचने के लिए आपके पशुओं का टीकाकरण करवाना चाहिए आप। इसी तरह कुछ जीवाणुजनित रोग है जैसे गलगोटू, यह पशुओं में एक जानलेवा बीमारी है जो इस बारिश के मौसम में तेजी से फैलती है। इसमें पशु की श्वास नली दबने लगती है, गले में सूजन आ जाती है जिससे सांस लेने में तकलीफ होती है और दम घुटने से पशु की मृत्यु हो जाती है। इस तरह के अगर लक्षण दिखाई दे तो तुरंत नजदीकी पशु चिकित्सक से संपर्क करें और पशु का इलाज प्रारंभ करें। इसी तरह पशुओं में एक लंगड़ा बुखार होता है, जो अच्छा पशु होता है, हष्टपुष्ट पशु होता है, उसमें यह रोग होता है और यह मांसपेशियों को प्रभावित करता है। मांसपेशियां सड़ने लगती है, पशु लंगड़ा के चलने लगता है, तेज बुखार होती है। जिन रोगों की मैंने बात की, इन सभी रोगों से बचाव के लिए हमें बारिश से पूर्व टीकाकरण करवा लेना चाहिए ताकि पशुपालकों को आर्थिक नुकसान से बचाया जा सके।
1: जी हाँ, बिल्कुल सही बात कह रहा छो। और जो अपना पशु छे आने भी टीको लगवावा, और टीकोकरण कितनो जरूरी छे और इना कद आपने करवानो चाहे जे, बिरखा सु पहले करानो चाहे जे, इनका बीच में करा लेना चाहे जे, तो वो किन किन बातों को आपने ध्यान रखता हूँ या टीकाकरण पे आपने जोर देना चाहिए वह बताओ सर।
0: टीकाकरण पशु स्वास्थ्य के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। वर्षा काल से पहले जो महत्वपूर्ण टीके जो आपको लगवाने हैं, खुरपका मुंहपका रोग, गलगोटू रोग और लंगड़ा बुखार का टीका, और भेड़ बकरियों में फड़किया रोग जिसे ETV भी कहते हैं, इनसे बचाव का टीका लगवाना चाहिए। इस मौसम में होता क्या है, भेड़ बकरियां ज्यादा चढ़ लेती है और इस वजह से फड़किया रोग इनमें सामान्यता पाया जाता है। टीके आपके नजदीकी पशु चिकित्सालय में भी निःशुल्क उपलब्ध है। वर्तमान में लंपी स्किन डिजीज बीमारी जो विगत वर्षों में देखने को मिली थी और हमारा गोवंश काल के ग्रास में समा गया था, काफी मृत्यु दर देखी गई थी, उनके टीके भी वर्तमान में पशुपालन विभाग द्वारा निःशुल्क लगाए जा रहे हैं। इन टीकों के लगने से पशु के अंदर रोग प्रतिरोधक क्षमता विकसित हो जाती है, पशु बीमारियों से बचा रहता है और अगर उस पशु में संक्रमण भी हो जाता है तो उस रोग की तीव्रता अन्य पशुओं की तुलना में उसमें कम देखने को मिलती है। अतः वर्षा काल से पहले खुरपका मुंहपका रोग, गलगोटू रोग, लंगड़ा बुखार रोग और बकरियों में फड़किया रोग का टीका बरसात से पूर्व जरूर लगवाएं।
1: जी सर, साफ जानकारी दिया, टीकाकरण की बात करी, सागे सागे अगर आप कृमिनाशक दवा जो छे जिन्हें डीवर्मिंग कहवा चा वह भी अगर पशुओं ने देवो शुरू करा तो वो कितनी लाभदायक छे और इन्हें कब कब देनी चाहिए जे वह बताओ।
0: बिल्कुल मैडम, पशुपालक भाइयों, मानसून या बरसात के मौसम में जैसे ही हरी घास आती है वैसे ही पेट के कीड़ों का संक्रमण तेजी से फैलता है, यानी कि बाह्य परजीवी, अंतः परजीवी, जू, चीचड़े, किलनी आदि की संख्या तेजी से बढ़ती है और ये हमारे पशु की पाचन क्षमता को भी प्रभावित करते हैं, उसकी जो त्वचा है उसको भी प्रभावित करते हैं। इसलिए हमें बरसात के मौसम के आने से पहले पशु चिकित्सक की सलाह से डीवर्मिंग करनी चाहिए। यह मुंह के द्वारा भी पिलाई जा सकती है या फिर इंजेक्शन के रूप में भी दी जा सकती है।

0: और टीकाकरण से पहले भी हमें पशुओं की डिवर्मिंग करनी चाहिए। इसमें मुख्य है जो छोटे बच्चे हैं उनको मुंह से पिलाई जाती है और जो बड़े जानवर है उनको इंजेक्शन के द्वारा भी ये कृमिनाशक दवा दी जाती है। बड़े पशु में हम इंजेक्टेबल देते हैं, पशु की जो मांसपेशियां हैं उसमें लगाया जाता है जिससे उसके अंदर परजीवियों का लोड कम होता है और पशु आराम से अच्छी वृद्धि करता है और तनाव मुक्त रहता है। कुछ बीमारियां ऐसी है जैसे सर्रा है, बबेसियोसिस है, टिलेरियोसिस है, ये पशु के खून को प्रभावित करती है, रक्तअल्पता करती है, पशु में उच्च तापक्रम बना रहता है, तो इस तरह की बीमारियों से भी टीवर्मिंग की वजह से बचाव हो जाता है।
1: जी डॉक्टर साहब, ये मौसम में हरा चारो जो है चारों मेर खूब है, अधिकता है और चारों मेर इतना अपना जो मवेशी है जो गाय भेड़ बकरी है इतना चर लेवे है जिससे कि वह में आफरो भी आ जावे है और कई सारा वहां में रोग भी वहां घेर ले है। पर जो पशुपालक भाई है वह आहार को प्रबंधन किन भांति करे जिससे कि पशुओं में कोई परेशानियां भी न होवे और काम आराम से चलतो रहे।
0: देखिए बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है पशुपालकों के लिए कि आहार की व्यवस्था इस बारिश के मौसम में कैसे सुनिश्चित करें। तो बरसात के मौसम के पहले ही पशुपालकों को उसके भंडारण की सही व्यवस्था करनी चाहिए। सूखा चारा है, दाना है, इनके भंडारण की व्यवस्था ऐसी जगह पर करें जहां नमी नहीं हो जिससे चारे के फफूंद ना आए। अगर फफूंद आ जाता है और उस चारे को हम पशु को अगर खिला देते हैं तो इस दशा में कोक्सीडियोसिस जैसी बीमारी हो जाती है, पाचन तंत्र में अनेक विकार उत्पन्न हो जाते हैं, इसलिए पशु को फफूंद लगा हुआ चारा एवं दाना ना दे। इस मौसम में हमने देखा है कि हरा चारा घास अधिक मात्रा में उपलब्ध होता है और पशुपालकों को यह लगता है कि हम हमारे जानवर को अधिक मात्रा में हरा चारा घास खिला देंगे तो बहुत फायदा हो जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं होता है। हरे चारे में पोषक तत्वों की मात्रा कम होती है और पानी की मात्रा अधिक होती है। अगर हरी घास पशुओं को खिलाते हैं तो उसमें आफरे जैसी बीमारी उत्पन्न हो जाती है, दस्त लग जाते हैं, इसलिए घास को निश्चित मात्रा में खिलाएं और सूखे चारे के साथ मिलाकर दें। इस बात का हमें विशेष ध्यान रखना चाहिए, अगर संभव हो हरी घास को पशुओं को खिलाने से पहले उसको धूप में सुखाएं। गाभिन जो पशु है जो 6 माह से अधिक के गाभिन है उनको अतिरिक्त मात्रा में चारा एवं खनिज मिश्रण खिलाएं।
1: जी सर, तो ई मौसम के मायने खूब अधिकता से उपलब्ध है हरे चारो, पशुपालक भाई आपने ध्यान रखनो चाहे डॉक्टर साहब की बाता को। श्रोताओं कार्यक्रम चल रहा है खेती बाड़ी और खेती बाड़ी कार्यक्रम में आज हमारे साथ गए डॉक्टर शिव कुमार बासोतिया जी। आप जानकारी ले रहे हैं बरसात का मौसम में पशु प्रबंधन आप किण भाती करा। तो डॉक्टर साहब अगलो प्रश्न मारो यही छे, खुर की समस्या थनैला जैसी बीमारियां भी ई टाइम पे खूब बढ़ चढ़ आ जावे छे पशुओं में, तो इनसे बचाव के लिए पशुपालक भाई काई करें?
0: पशुओं के खुर मुख्यतः खुरपका मुंहपका रोग जिसके बारे में हमने पहले भी चर्चा की है उसमें सबसे अधिक प्रभावित होते हैं। इस रोग में पशुओं के खुर पर मुंह पे और थनों के आसपास छाले हो जाते हैं, पशुओं को तेज बुखार आता है। यदि आपका पशु दुग्ध उत्पादन की अवस्था में है तो दुग्ध उत्पादन भी बहुत कम हो जाता है। ऐसी परिस्थिति में जो पशु का मुंह है, खुर है, थन है, इनको लाल दवा के घोल से धोना चाहिए और संक्रमित पशु को अन्य पशु से अलग रखना चाहिए। दूसरा, हम थनेला रोग की बात करें तो इस वजह से न केवल दुग्ध उत्पादन में ही कमी होती है बल्कि पशुओं के थन भी खराब हो जाते हैं। इससे बचने के लिए हमें दुग्ध धोने के बाद पशुओं के थनों को एक एंटीसेप्टिक घोल जैसे लाल दवा, ये आपके नजदीकी पशु चिकित्सालय में भी उपलब्ध है, इसका घोल बनाकर पशुओं के थनों को धोना चाहिए क्योंकि बरसात के समय में पशु बाड़े का फर्श गीला रहता है। ऐसे दुग्ध धोने के बाद पशु की जो थनों की दुग्ध नलिका है वह खुली रहती है और खुली रहने के कारण उसमें संक्रमण आसानी से प्रवेश कर जाता है एवं थनेला रोग का कारण बनता है। इसलिए पशुपालकों के लिए आवश्यक है कि हम न केवल अपने पशु से उत्पादन की ही आस रखें, उसके स्वास्थ्य का भी पूर्ण रूप से ख्याल रखें क्योंकि उत्पादन तभी बढ़ पाएगा जब हम अपने पशुओं को स्वस्थ रखेंगे।
1: जी सर, डॉक्टर साहब देखवा में आयो छे कि ई टाइम पे जो दुग्ध उत्पादन छे वा भी कम हो जावे छे, तो इन्हें उत्तो की उत्तो ही बनाया रखवा के लिए कौन कौन सा प्रभावी आपा उपाय अपनावा जिससे कि पशुओं में दूध उत्पादन में कोई कमी नहीं आवे?
0: जी बिल्कुल, यह जो मौसम होता है पशुपालक भाइयों पशुओं के लिए एक संक्रमण काल की तरह कार्य करता है। अधिक तापमान एवं आर्द्रता जू चीचड़े मक्खी मच्छर आदि के विकास के लिए अनुकूल होती है, इनकी वजह से पशु तनाव में आ जाता है और दुग्ध उत्पादन भी कम हो जाता है। ऐसी परिस्थितियों से बचने के लिए पशु का आवास हवादार बनाएं, मक्खी मच्छरों से बचाव के लिए साइपरमेथ्रिन फिनाइल आदि का छिड़काव करें जिससे

0: मक्खी मच्छर पशु को बार बार परेशान ना करें, जिससे पशु तनाव में नहीं आएगा और दुग्ध उत्पादन बना रहेगा।
1: जी सर, आप मक्खी मच्छर जून चीचड़ा की बात करी तो या तो समस्या तेजी से बढ़े चाहे ये टाइम पे इशा टाइम पे पशुपालक भाई नैया बताओ कि इनका नियंत्रण वे कहिया करे ताकि आंसू फैल वाला जो रोग छे पशुआ ने बचा पावे।
0: मक्खी मच्छरों के नियंत्रण के लिए सबसे महत्वपूर्ण ये है कि जो पशु पे चीचड़ियां होती है उनको फोड़े ना। हमारे गांव में सामान्यतः होता क्या है कि उस चीचड़ी की जो चीचड़ी पशु के त्वचा पे लगी रहती है उसको फोड़ देते हैं। यह चीचड़ी अपने साथ अंडों को लेकर चलती है और इसके फोड़ने से रोग की तीव्रता भी बढ़ जाती है। इन चीचड़ियों को हटाने के लिए जो बाह्य परजीवियों के लिए बाजार में घोल उपलब्ध है, आपके निकटतम पशु चिकित्सालय में भी आपको साइपरमेथ्रिन जो एक कीटनाशक है वो आपको आसानी से मिल जाएगा। साइपरमेथ्रिन को उपयोग किस तरह करना है, साइपरमेथ्रिन को 10 लीटर पानी लें और उसमें 1 ml साइपरमेथ्रिन डालें, उससे पशु को नहलाएं और यह भी ध्यान रखें कि यह एक विषैला पदार्थ है, इसका छिड़काव मुंह थनों पर ना करें और नहलाने के बाद पशु को इस तरह बांधे कि वह पशु उसको चाट ना सके। साथ ही साथ बाड़े में फिनाइल का छिड़काव करें, वहां की नालियों में भी फिनाइल का छिड़काव करें। जैसा मैंने पहले भी बताया था कि पशु बाड़े का जो फर्श है उस पर समय समय पर सप्ताह में 1-2 बार चूने का छिड़काव करें, जिससे पशु में होने वाला फुटरोट जिसे हम पैरों की सड़ान भी कहते हैं इस संक्रमण से बचा जा सके। पशु का जो पानी पीने का स्थान है जिसे हम खेली भी कहते हैं उसको स्वच्छ रखें, उसमें भी चूने का लेप करें। बाड़े में जाली लगाएं ताकि बाड़े में मक्खी मच्छर आदि प्रवेश ना कर सके।
1: जी सर, तो ये छोटी छोटी सी बात को पशुपालक भाई आपने ध्यान रखता हुआ आपने आगे बढ़ना चाहिए। और डॉक्टर साहब आगे मैं भी बढ़ूं और आपसे अगला प्रश्न करूं कि ये मौसम का मायने पशुओं की जो सामान्य बीमारियां भी हो बचे वासु आपना जो पशुपालक भाई छे वह कहीं बचाव करे और कोई घरेलू उपचार भी हो सके छे आका।
0: जी, बरसात का मौसम पशु के लिए जितना राहत लेकर आता है उतना ही बीमारियों का खतरा भी बढ़ा देता है।
1: जी,
0: इसलिए कुछ घरेलू उपाय अपना कर हम अपने पशु को स्वस्थ रख सकते हैं। मक्खी मच्छरों की संख्या को नियंत्रण करने के लिए एवं पशु की श्वास लेने की क्षमता को बढ़ाने के लिए हम बाड़े में नीम की पत्तियां एवं कपूर जला के रख सकते हैं। इसके अलावा पशु में अगर आफरे की समस्या हो इसको दूर करने के लिए हमारे घरों में जो सरसों का तेल उपलब्ध रहता है उसको 150 से लेकर 200 ml लें और अपने नजदीकी पशु चिकित्सालय में टर्पेंटाइन ऑयल भी उपलब्ध है, सरसों का तेल और टर्पेंटाइन ऑयल मिलाकर उस पशु को पिलाएं ताकि पशु को तुरंत आराम मिल सके। और थनेला रोग से बचाव के लिए लाल दवा का उपयोग करें, दुग्ध निकालने से पहले भी लाल दवा से उसके थनों को धोएं और दुग्ध निकालने के बाद में भी पशु के थनों को धोएं ताकि संक्रमण उस दुग्ध की नलिका में वहां प्रवेश ना करें और पशु थनेला जैसे रोग से बचा रहे। FMD रोग में पशु के मुंह में छाले हो जाते हैं जैसा हमने पहले भी चर्चा की है, उन छालों पर ग्लिसरीन से लेप करें जिससे पशु को तुरंत राहत मिलती है। और घरों में जो हमारे उपलब्ध है खाने का सोडा उसको 20 से लेकर 25 ग्राम लें और 1 लीटर पानी में लें, उसका अच्छे से घोल बनाएं और पशु के मुंह में 2-3 बार पानी से उसका मुंह साफ करें जिससे उस पशु के जो छाले हैं उनमें तुरंत राहत मिलती है।
1: जी सर, चलता चलता डॉक्टर साहब आप श्रोताओं ने कभी संदेश देना चाहो ताकि वह बिरखा का मौसम में पशुओं ने स्वस्थ रखकर चोखो उत्पादन और बेहतर आय प्राप्त कर सके तो बताओ सर।
0: सभी पशुपालक भाइयों को मेरा यही संदेश है कि बरसात में पशुओं को साफ एवं सूखे स्थान पर रखें, बिजली के तारों से ना बांधें, पशुओं को स्वच्छ एवं गुणवत्तापूर्ण चारा पेयजल उपलब्ध कराएं, समय पर टीकाकरण, नियमित डीवर्मिंग, कीट नियंत्रण करके आप अपने पशुओं को इस मौसम में स्वस्थ रख सकते हैं। किसी भी बीमारी के लक्षण दिखने पर तुरंत नजदीकी पशु चिकित्सालय में संपर्क करें। थोड़ी सी सावधानी बेहतर प्रबंधन से पशु स्वस्थ रहेंगे, दुग्ध उत्पादन बढ़ेगा एवं पशुपालकों की आय में वृद्धि होगी।
1: जी श्रोताओं, अगर आप जानकारी लिया बेखा का मौसम में पशु प्रबंधन आप के भाती करा और जानकारी देवा खातिर आया डॉक्टर शिव कुमार बासोतिया, आप पशु चिकित्सा अधिकारी राजकीय पशु चिकित्सालय फतेहपुरा बासा जयपुर स्व पधारिया। आपको इतनी कीमती वक्त में से वक्त निकाल और आप पधारिया, इनके लिए आपको घणो घणो धन्यवाद सा।
2: और धन्यवाद अदिति, आप रो भी बहुत बहुत बहुत बढ़िया जानकारी आप दिलाया क्योंकि आप अपनी सावचेती रखा खुद के तय ध्यान देवा पर ढांडा सासा जो अपना है आपनो पशुधन आपने आमदनी को मोटो हिस्सो है, बाको भी ध्यान रखना आपने जिम्मेदारी है, तो आपने भी धन्यवाद देवा और

0: को नहीं देवा साहब। तो गीत सुनावा?
1: चलो साहब,
0: पर पहले एक विज्ञापन।
2: फाइनेंशियल इमरजेंसी कभी भी बिना बताए आ सकती है। ऐसे वक्त में एक स्मार्ट डिसीजन हर मुश्किल को आसानी से पार करने में मदद करता है।
3: स्मार्ट डिसीजन लेने वालों के लिए मन्नापुरम फाइनेंस लेकर आया है इजी ईएमआई गोल्ड लोन स्कीम, जहां आप हर महीने आसान ईएमआई के थ्रू इंटरेस्ट पे कर सकते हैं और अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग को बना सकते हैं और भी स्मार्ट।
2: ज्यादा जानकारी के लिए अपने नियरेस्ट मन्नापुरम फाइनेंस ब्रांच पर विजिट करें या टोल फ्री नंबर 1-800-420-2233 पर कॉल करें।

0: कांवड़ियों तो आयो साहब
1: जी। स्वाति शर्मा की मीठी सी आवाज के मायने
0: बिल्कुल साहब। और जब सावन आवे सुवटिया बोले एक लिए बहुत जरूरी है कि सुवटिया के ताई कोई पेड़ वे जी पर बागा कोटर हो वे पर्यावरण बचो रहे और आप अपनी जिम्मेदारी निभाता रहवा
1: जी सर।
0: और सिर्फ पेड़ लगा दे बस में जिम्मेदारी पूरी कोनी होवे, पेड़ लगावा तो बिकी सावचेती रखा बिने बढ़ावा और दूसरा ने भी आपा प्रेरित करा पेड़ लगा बतानी है।
1: छोटा छोटा सा बहाना ही ले लियो, चाहे कोई को जन्मदिन छे अपने अंडे कोई की कोई ब्याह शादी हुआ छे कि वाकई आज में ही आपा छोटा सा पौधा लगावा।
0: बिल्कुल, क्योंकि पेड़ लगावो और पेड़ा ने बचावो ये तो अपनी संस्कृति में ही रहे हुए। चाहे आपा बहुत सारा खेजड़ी लिखा आंदोलन ने देखा, चिपको आंदोलन ने देखा, अब आज भी वर्तमान में भी कई आंदोलन पेड़ बचाबा ने जंगल बचाबा ने चल रहा है। लोग जान देवा ने तैयार है जी। अमृता देवी कही ही अमृता विष्णुई की सिर साठे रूख रहे तो भी सस्तो जान
1: जी।
0: तो पेड़ बचावा के ताई लोग मरवा ने प्राण देवा ने भी तैयार है, बस जागरूकता की जरूरत है साहब।
1: और सागे सागे आपनो जो जागरूक आपने टेम में भी रहनो है कि टेम कह रहे है कि अब तो सब खेती बाड़ी कार्यक्रम में अटे विराम दो
0: और चाला फिर करा
1: राम राम सा।

0: श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम खेती बाड़ी। इसका प्रसारण आकाशवाणी जयपुर अजमेर की आने
1: आकाशवाणी है। अब आप जागृति शर्मा से संसद में आज हुई कार्यवाही की समीक्षा सुनिए। पहले लोकसभा। लेखक है पीटीआई भाषा के दीपक रंजन। लोकसभा ने आज लोक परीक्षा अनुचित साधन निवारण संशोधन विधेयक 2026

भी इसको मंजूरी दे दी। नीट प्रश्न पत्र लीक की पृष्ठभूमि में लोक परीक्षा अनुचित साधन निवारण अधिनियम 2024 में सख्त प्रावधान शामिल करने के लिए लाए गए इस संशोधन विधेयक पर हुई चर्चा के दौरान नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी की कुछ टिप्पणियों को लेकर सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच तीखी नोकझोंक हुई। इस कारण सदन की कार्यवाही पहले एक बार करीब 40 मिनट के लिए अपराह्न 2:30 बजे तक और फिर 3 बजे तक स्थगित कर दी गई। हंगामे के बीच ही प्रधानमंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने विधेयक पर हुई चर्चा का जवाब दिया और उनके जवाब के बाद सदन ने ध्वनि मत से विधेयक को मंजूरी प्रदान कर दी। विधेयक पारित होने के बाद कांग्रेस सांसदों की नारेबाजी के बीच ही अध्यक्ष ओम बिरला ने कार्यवाही दिन भर के लिए स्थगित कर दी। चर्चा का जवाब देते हुए जितेंद्र सिंह ने कहा कि नीट प्रश्न पत्र लीक के मामले में सरकार ने फौरन कार्रवाई की और 12 जुलाई को जांच सीबीआई को सौंप दी गई। उन्होंने कहा कि कल इस मामले में आरोप पत्र दायर कर दिया गया है और आज से सुनवाई शुरू हो गई है। श्री जितेंद्र सिंह ने कहा कि नए संशोधन विधेयक के प्रभाव में आने के बाद फास्ट ट्रैक अदालत में सुनवाई के साथ इस मामले में 5 महीने में फैसला आ जाएगा। श्री सिंह ने कहा कि प्रश्न पत्र लीक के विरुद्ध कड़े प्रावधान के साथ मूल कानून 2024 में लागू किया गया था और आज प्रश्न पत्र लीक संबंधी खामियां सामने आने के बाद सरकार ने माना कि कानून को और कड़ा बनाने की आवश्यकता है। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि कांग्रेस सांसद गौरव गोगोई ने चर्चा के दौरान कहा कि दिल्ली में मासूम बच्चों पर जुल्म सितम ढाया गया, जबकि सरकार ने सर्वोच्च संयम के साथ कार्रवाई की और सुनिश्चित किया कि कोई भी हताहत नहीं हो। श्री सिंह ने कहा कि कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी ने देश में पिछले कुछ साल में 152 बार प्रश्न पत्र लीक होने और इसमें 750 करोड़ बच्चों के प्रभावित होने का दावा किया है। उन्होंने कहा कि पता नहीं प्रियंका गांधी ये आंकड़े कहां से लेकर आए हैं। उन्होंने कहा कि प्रियंका गांधी ने 2024 का कानून लागू होने के बाद कोई कार्रवाई नहीं होने की बात कही, जबकि ऐसे मामलों में 52 प्राथमिकियां दर्ज हो चुकी हैं। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की शिक्षा व्यवस्था में सुधार की प्रतिबद्धता के अनुरूप सरकार 2020 में राष्ट्रीय शिक्षा नीति लेकर आई, जो कांग्रेस का अधूरा काम था। लोक परीक्षा अनुचित साधन निवारण संशोधन विधेयक 2026 के प्रावधानों के अनुसार परीक्षाओं में प्रश्न पत्र लीक करने या अनुचित साधनों का इस्तेमाल करने वाले व्यक्तियों को कम से कम 5 साल और अधिकतम 10 साल तक के कारावास तथा 50 लाख रुपए तक के जुर्माने की सजा हो सकती है। इसी तरह संगठित अपराधों के लिए कम से कम 7 साल के कारावास और 10 करोड़ रुपए तक के जुर्माने का प्रस्ताव है। प्रस्तावित संशोधनों के तहत सभी जांच 2 महीने के भीतर पूरी करनी होगी। विधेयक में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को त्वरित अदालतें स्थापित करने का निर्देश देने का भी प्रस्ताव है। ये अदालतें आरोप पत्र दाखिल किए जाने के 3 महीने के भीतर मुकदमे की कार्यवाही पूरी करेंगी। इससे पहले सदन में लोक परीक्षा अनुचित साधन निवारण संशोधन विधेयक पर चर्चा में हिस्सा लेते हुए लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने नीट प्रश्न पत्र लीक के खिलाफ छात्रों के विरोध प्रदर्शन के दौरान पुलिस की कार्रवाई को लेकर बुधवार को लोकसभा में गृहमंत्री अमित शाह पर गंभीर आरोप लगाए। इसका सत्ता पक्ष ने तीखा विरोध किया और उनसे माफी की मांग की। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा कि या तो नेता प्रतिपक्ष बताएं कि किस आधार पर उन्होंने देश के एक जिम्मेदार व्यक्ति पर गंभीर आरोप लगाया है या फिर वे माफी मांगे। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कहा कि नेता प्रतिपक्ष बिना किसी तथ्य जांच और साक्ष्य के किसी के ऊपर आरोप नहीं लगा सकते। श्री राहुल गांधी ने आरोप लगाया कि देश की शिक्षा व्यवस्था की आत्मा पर भारतीय जनता पार्टी के वैचारिक संगठन ने कब्जा कर लिया है और पूर्व शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान तो सिर्फ एक प्रतीक मात्र थे। उन्होंने छात्रों के विरोध प्रदर्शन का उल्लेख करते हुए ये भी कहा कि प्रदर्शनकारी बच्चों के माता पिता में साहस नहीं है कि वे भाजपा और उसके वैचारिक संगठन का मुकाबला करें, लेकिन ये बच्चे सामने खड़े हो गए। उन्होंने कहा कि छात्रों ने डर को बाहर निकालकर चुनौती दी और खुलकर सवाल किया। उन्होंने सदन में गृहमंत्री की गैर मौजूदगी को लेकर दावा किया कि उनमें हिम्मत नहीं है कि वे सदन में आ सकें। नेता प्रतिपक्ष ने आरोप लगाया कि गृहमंत्री डरे हुए हैं। इसके बाद उन्होंने छात्रों पर बल प्रयोग का उल्लेख करते हुए गृहमंत्री पर गंभीर आरोप लगाए। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा कि नेता प्रतिपक्ष ने गंभीर आरोप लगाए हैं तो सरकार को बताना चाहिए कि छात्रों पर बल प्रयोग का आदेश किसने दिया था।
सत्ता पक्ष के सदस्यों ने राहुल गांधी

माफी मांगो और कांग्रेस के सदस्यों ने एलओपी को बोलने दो और गृह मंत्री जवाब दो के नारे लगाए। सदन में काफी देर तक गतिरोध की स्थिति बनी रही। श्री राहुल गांधी ने कहा कि सड़कों पर इस देश के भविष्य ने जो किया वो कोई गुस्सा, हिंसा और नफरत नहीं थी, बल्कि ये युवाओं की अभिव्यक्ति थी तथा सत्तारूढ़ दल समेत सभी दलों को इसका सम्मान करना चाहिए। उन्होंने कहा कि अगर भाजपा के मित्र अपने बच्चों से भी इसके बारे में पूछेंगे तो आंदोलनकारी बच्चों के साथ उनकी भी सहमति ही पाएंगे। उन्होंने कहा कि लोग एक परीक्षा पर जितना पैसा खर्च कर रहे हैं वो सरकार के शिक्षा बजट से ज्यादा है। सत्ता पक्ष की टोका टोकी के चलते राहुल गांधी ने बोलने से इनकार कर दिया और अपनी सीट पर बैठ गए। इसके बाद श्री रिजिजू ने कहा कि नेता प्रतिपक्ष ने एक असंसदीय शब्द का इस्तेमाल किया जिस पर आपत्ति जताई गई है। उन्होंने कहा कि हम उन्हें सुनने को तैयार हैं और वे अपनी बात रखें। उन्होंने कहा कि आप भावुक चेहरा दिखाकर सदन को गुमराह नहीं कर सकते। श्री बिरला ने कहा कि सदन में अच्छी व्यवस्थाएं रही हैं और अच्छी मर्यादाएं रही हैं, मर्यादा बनाए रखने का प्रयास करना चाहिए। उन्होंने कहा कि कोई मर्यादा और तर्क से बोलता है तो देश सुनता है और सम्मान भी करता है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भी श्री राहुल गांधी से भाषण जारी रखने की अपील की और सत्ता पक्ष के सदस्यों से उनके भाषण के बीच में टीका टिप्पणी नहीं करने को कहा। इसके बाद नेता प्रतिपक्ष ने भाषण जारी रखा। हालांकि दोनों पक्षों में नोकझोंक की स्थिति बनी रही और कार्यवाही 2:30 बजे तक स्थगित कर दी गई। सरकार ने जन्म और मृत्यु के पंजीकरण संबंधी कानून में संशोधन करने के प्रावधान वाला विधेयक भी आज सदन में पेश किया। गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने सदन में विपक्ष के हंगामे के बीच जन्म और मृत्यु का पंजीकरण संशोधन विधेयक 2026 पेश किया। संसदीय प्रक्रिया के तहत लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने विधेयक को पेश किए जाने का विरोध करने के लिए विपक्ष के कुछ सदस्यों के नाम पुकारे। हालांकि कोई विपक्षी सदस्य नहीं बोला और इसके बाद श्री नित्यानंद राय ने विधेयक पेश किया। इस विधेयक का उद्देश्य जन्म और मृत्यु पंजीकरण अधिनियम 1969 2023 में संशोधित की धारा

श्रोताओं अभी आपने सुना मोहम्मद अजीज और साथियों के स्वर में ये गीत फिल्म 20 साल बाद से। श्रोताओं अभी आप सुन रहे थे फिल्म संगीत का कार्यक्रम आकाशवाणी जयपुर अजमेर के आमेर चैनल से। हम आकाशवाणी जयपुर अजमेर के आमेर चैनल से बोल रहे हैं। मीडियम वेव 497.51 मीटर यानी 603 किलो हर्ट्स और एफएम बैंड 101.2 मेगाहर्ट्स तथा दूरदर्शन के डीटीएच चैनल पर। श्रोताओं कुछ ही देर बाद हमारे दिल्ली केंद्र से प्रसारित कार्यक्रमों में 8:30 पर होगा स्पोर्ट्स स्कैन, तत्पश्चात 8:45 पर समाचार संध्या और रात्रि 9 बजे News@9। साथ ही 9:15 पर आप सुनेंगे उर्दू में समाचार। कृपया अगले कार्यक्रम की प्रतीक्षा कीजिए।

0: 5 पदक पक्के किए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हरजिंदर कौर और गुलवीर सिंह को राष्ट्रमंडल खेलों
1: टीम चैंपियनशिप में भारतीय पुरुष और महिला टीम ने क्वार्टर फाइनल में जगह बनाई।
0: हॉकी इंडिया ने एशियाई खेलों के लिए भारतीय पुरुष टीम की घोषणा की। हरमनप्रीत सिंह को टीम की कमान सौंपी।
1: और शुभमन गिल बने वनडे में दुनिया के नंबर एक बल्लेबाज। वैभव ने लगाई लंबी छलांग।
0: जी हां, आज की हेडलाइन ये थी।

परिषदों खेल खबरों में सबसे पहले बात करते हैं राष्ट्रमंडल खेलों की। ग्लासगो में चल रहे राष्ट्रमंडल खेलों में आज का दिन भारतीय मुक्केबाजों के नाम रहा, जिसमें मुक्केबाजी में भारत ने 5 पदक पक्के कर लिए हैं। पुरुष वर्ग में नरेन बेरवाल ने 90 किलोग्राम, अंकुश ने 80 किलोग्राम और सचिन सिवाच ने 70 किलोग्राम

0: हर वर्ग के सेमीफाइनल में प्रवेश किया, जबकि महिला वर्ग में अरुंधति चौधरी ने 70 किलोग्राम और साक्षी चौधरी ने 51 किलोग्राम भार्ग वर्ग के सेमीफाइनल में जगह पक्की की।
1: सिद्धार्थ उधर, तजिंदर सिंह तूर और समरदीप सिंह गिल ने शॉटपुट इवेंट के फाइनल में प्रवेश कर लिया है। पदक तालिका में भारत अब 2 स्वर्ण 7 रजत और 3 कांस्य पदकों के साथ 9वें स्थान पर। सिद्धार्थ, लगातार भारतीय टीम हर दिन एक नया इतिहास रच रही है।
0: जी हां प्रशांत, और आज जिस तरह से हमारे मुक्केबाजों ने एक के बाद एक करके जो उन्होंने जीत का सिलसिला कायम किया, तो फिर वो रुका नहीं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे मुक्केबाजी के क्वार्टर फाइनल मुकाबलों की, और पुरुष मुक्केबाजी की पहले अगर हम बात करें तो नरेंद्र बेरवाल की बात करनी होगी, जिन्होंने 90 किलोग्राम भार्ग वर्ग के क्वार्टर फाइनल में समोआ के माइकल सेको को 3-2 से हराया। हालांकि शुरू में यह मुकाबला थोड़ा बराबरी पर रहा, लेकिन इसके बाद जिस तरीके से नरेंद्र ने अपना प्रदर्शन किया, उन्हें 3-2 से जीत मिली। वे टॉप फोर में पहुंचने वाले 9वें मुक्केबाज बन गए।
1: लेकिन सिद्धार्थ, अंकुश ने कोई भी कसर नहीं छोड़ी। उन्होंने एक तरफा मुकाबला खेला और 5-0 से अपने प्रतिद्वंदियों को जो शिकस्त दी है, उनसे पहले अंकुश ने 80 किलोग्राम भार वर्ग में सेशल्स के जे मिकॉक को 5-0 से हराकर एक बेहतरीन प्रदर्शन कर दिखाया। सिद्धार्थ,
0: जी हां, 5-0 जिसे हम कह सकते हैं कि, और हालांकि जो 5-0 का सिलसिला था वो प्रशांत रुका नहीं, और आगे का जो इसके पहले जो मैच हुआ उसमें सचिन ने 70 किलोग्राम वर्ग में बोत्सवाना के ट्रेसर मोरेमी को 5-0 से एक बार फिर से हराया, और जो जीत के लम्हे होते हैं ना, उसके बाद सचिन ने क्या कुछ कहा, ये सुनते हैं।
2: गोल्ड लेके जाना, गोल्ड की उम्मीद थी, और मेरे मेडल मेरे कोच और मेरे घर वालों को हुआ। स्टार्टिंग में बाउट से पहले थोड़ी घबराहट थी, लेकिन बाउट में जाते ही सारा डर वही ऑटोमेटिक चला गया, और इजी बाउट थी, और आगे भी यही अच्छा हल्के में निकलना है और गोल्ड लेके जाना है।
0: जी हाँ, तो ये थे हमारे पुरुष वर्ग के खिलाड़ी जिन्होंने आज 3 पदक पक्के किए, देश के नाम किए। और प्रशांत, महिला बॉक्सिंग की बात करें तो क्या कुछ बता रहे हैं आप।
1: अरुंधति और साक्षी चौधरी ने भी बेहतरीन प्रदर्शन किया है। सिद्धार्थ, अगर हम महिला बॉक्सिंग की बात करें तो अरुंधति ने 70 किलोग्राम भार वर्ग में न्यूजीलैंड की मॉर्गन एडरसन को 3-1 से हराया। सुनते हैं क्या कह रही है अरुंधति।
3: हार्ड डेडिकेट तो मैं मेरे छोटे भाई को करना चाहूंगी, और हाँ हार्ड था, क्योंकि जितना मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था वैसा ओपोनेंट था, बट काफी मजा आया, और जरूर गोल्ड मेडल लेकर आएंगे।
0: जी हाँ, अपने भाई को अपनी जीत को डेडिकेट किया है, और अब सबकी नजर अपने आगे के प्रदर्शन पर है कि सेमीफाइनल में क्या कुछ होता है। लेकिन इसके साथ ही 51 किलोग्राम भार वर्ग की अगर हम बात करें तो साक्षी चौधरी ने नॉर्थन आयरलैंड की कैथरीन फ्रेयर को 5-0 से हराकर अपना दमखम दिखाया। आइए जानते हैं साक्षी ने जीत के बाद क्या कुछ कहा।
3: ये जो जीत थी मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट थी, क्योंकि इसके बाद मेरा मेडल कंफर्म हो गया है, और ये मेरा फर्स्ट कॉमनवेल्थ गेम्स था, कि मैंने जो मेहनत की थी, जो सबका सपोर्ट था, उसकी वजह से आज मैं मेडल कंफर्म कर पाई हूँ, और अभी मेरी आगे यही कोशिश रहेगी कि मैं और अच्छा करती जाऊँ और मेडल का कलर गोल्ड में बदलूँ। मैं पूरे इंडिया को ये अपना जो जीत है इसको डेडिकेट करना चाहूंगी, जिसने मुझे यहाँ तक पहुँचने में सपोर्ट किया है।
0: जी हाँ, अपनी जीत भारत को डेडिकेट कर रही है साक्षी, और क्यों ना हो, क्योंकि जिस तरीके से आज
1: बॉक्सरों का जो प्रदर्शन रहा है,
0: पूरे मैच पर नजर बनाए हुए थे अपने उस शो के लिए, और एक के बाद, क्योंकि कई बार क्या होता है कि जब हमारे बॉक्सर्स पदक पक्का करने लगते हैं तो हमारे अंदर भी जोश आ जाता है, और वो फिर कहीं ना कहीं जो मोमेंट्स हैं वो कभी ना भूलने वाले मोमेंट्स होते हैं। और पूरे सफर पे अगर हम एक नजर डालें तो इससे पहले लवलीना बोरगोहेन ने 75 किलोग्राम, प्रीति पवार ने 54 किलोग्राम, प्रिया ने 60 किलोग्राम, और जादू मणि सिंह 55 किलोग्राम वर्ग के सेमीफाइनल में पहुंच

0: बहादुर गिहेर ने 75 किलोग्राम, प्रीति पवार ने 54 किलोग्राम, प्रिया ने 60 किलोग्राम और जादूमणि सिंह 55 किलोग्राम वर्ग के सेमीफाइनल में पहुंचकर पदक पक्का कर ही चुकी हैं। तो एक शानदार सफर, क्योंकि भारतीय मुक्केबाजों से काफी उम्मीद रहती है
1: बिल्कुल, और उसी उम्मीद पर कायम खड़े उतरे हैं। और सिद्धार्थ, अगर हम देखें तो पूरे अगर कॉमनवेल्थ गेम्स की अगर बात की जाए तो बॉक्सिंग में भारत ने 9 पदक पक्के कर लिए हैं और आज के दिन की बात की है तो 5 पदक खिलाड़ियों ने जो है देश को समर्पित किया है और बेहतरीन प्रदर्शन तो कर ही रहे हैं और भी इवेंट्स में, और बॉक्सिंग में आज उसी का एक प्रमाण देखने को मिला हमें।
0: बिल्कुल, तो अब देखना होगा कि सेमीफाइनल मुकाबले में भारतीय जो मुक्केबाज हैं वो किस तरीके के पंचेस लगाते हैं और अपने अपोनेंट को धाराशाही करके अपने पदक का, जो यहां पर पदक तो पक्का किया ही है लेकिन हम सभी को उम्मीद है कि जीत का ये जो परचम है वो देश के लिए ये सभी खिलाड़ी लहराते रहेंगे। और इसके साथ बॉक्सिंग से थोड़ा बाहर निकलते हैं, बात करते हैं शॉटपुट की। प्रशांत, शॉटपुट से क्या खबर है?
1: शॉटपुट में सिद्धार्थ, अगर हम बात करें तो तजिंदर पाल सिंह तूर और समरदीप सिंह गिल ने भी बेहतरीन प्रदर्शन करते हुए फाइनल के लिए क्वालिफाई कर लिया है। फाइनल इवेंट जो है वो बृहस्पतिवार को खेला जाएगा और आज सबकी निगाहें इन पर थी और उसी तरह का प्रदर्शन भी कर दिखाया उन्होंने।
0: जी, और क्वालिफिकेशन में तूर को ऑटोमेटिक क्वालिफिकेशन मार्क यानी 20 मीटर की दूरी पार करने के लिए ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ी। तूर ने अपने पहले प्रयास में 19.93 मीटर की दूरी तय की जबकि दूसरे प्रयास में उन्होंने 20.14 मीटर का थ्रो फेंकर फाइनल में जगह पक्की कर ली।
1: वहीं समरदीप सिंह गिल का दिन आज सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन पर रहा। उन्होंने 19.95 मीटर का थ्रो करके उन्होंने अपना पहले ही प्रयास में ये जो है अटेम्प्ट जो है सफल बनाया। उनका दूसरा थ्रो 19.75 मीटर का था जबकि तीसरा थ्रो फाउल हो गया लेकिन उनका भी प्रदर्शन बेहतरीन रहा।
0: जी हाँ, पहले ही थ्रो में देखिए तो 99.95 मीटर पे पहुंचा और दोनों ग्रुप में कुल 15 खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया था जिनमें से गिल कुल 5वें स्थान पर रहे। ग्रुप ए में 7 और ग्रुप बी में 8 खिलाड़ी शामिल थे। तो नियम के अनुसार जो खिलाड़ी 20 मीटर का मार्क पार करते हैं या टॉप 12 में रहते हैं वे फाइनल के लिए क्वालिफाई करते हैं। और इस बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हरजिंदर कौर और गुरवीर सिंह को राष्ट्रमंडल खेलों में पदक जीतने पर बधाई दी है। इन दोनों ने खिलाड़ियों ने भारत के लिए रजत पदक जीते। प्रधानमंत्री मोदी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, उन्हें पुरुषों की इस प्रतियोगिता में सिल्वर मेडल जीतने पर बधाई। उनकी प्रतिबद्धता और समर्पण तारीफ के काबिल है। भविष्य के प्रयासों के लिए उन्हें शुभकामनाएं।
1: उधर महिलाओं की 69 किलोग्राम वेटलिफ्टिंग प्रतियोगिता में सफलता के लिए हरजिंदर को बधाई देते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि इन खेलों में हमारे वेटलिफ्टर्स का इतना अच्छा प्रदर्शन देखना खुशी की बात है। हरजिंदर ने कुल 227 किलोग्राम वजन उठाकर सिल्वर मेडल जीता।
0: जी हाँ, हरजिंदर ने स्नैच में 101 किलोग्राम और क्लीन एंड जर्क में 126 किलोग्राम वजन उठाया। इस पोडियम फिनिश में ग्लासगो में भारत के शानदार वेट लिफ्टिंग अभियान को और ज्यादा मजबूत किया। पदक जीतने के बाद अपने जो हरजिंदर ने अपने अनुभव को कुछ इस तरीके से साझा किया।
2: मैं बहुत खुश हूँ सिल्वर मेडल जीत के और अपनी परफॉर्मेंस से भी बहुत खुश हूँ। ट्रेनिंग में मैंने इससे अच्छा क्लीन जर्क कर रखा है पर फिर भी मैं बहुत सेटिस्फाई हूँ कि मैंने अपनी 6 की 6 लिफ्ट पास। मैं सोच के आई थी इस बार के एक तो मैंने अपने मेडल का कलर चेंज करना है और दूसरा मुझे अपनी लिफ्टिंग अच्छी करके आनी है। मैं सबसे पहले अपनी फैमिली को डेडिकेट करना चाहती हूँ क्योंकि फैमिली का बहुत बड़ा सपोर्ट है मुझे और इंडियन फेडरेशन गवर्नमेंट सबका बहुत सपोर्ट है, उनकी वजह से आज हम यहाँ तक है।
1: उधर गुलवीर ने भी इस प्रतियोगिता में यादगार प्रदर्शन किया और देश के नाम रजत पदक जीता। जीत के बाद उन्होंने अपना अनुभव भी साझा किया।
3: अच्छा हुआ क्या हमारे देश के लिए मेडल आया है क्योंकि जिस हिसाब से हम प्रैक्टिस कर रहे हैं उसको खुशी है और जितने भी हमारे जो सपोर्ट कर रहे हैं कॉन्फिडेंस तो ये बाहर के जितने एथलीट हैं उनके साथ कंपटीशन कर रहे हैं हम इनके साथ कैसे दौड़ेंगे क्या हुआ। बड़े प्लेयर के साथ खेलते हैं तो हमारे अंदर की जो फीलिंग है ना वो निकल जाती है क्योंकि हम ये लगता है हम मेडल जीते किस हिसाब से वो कंपटीशन कर रहे हैं हमारे।
0: जी हाँ, जिस तरीके का प्रदर्शन गुलवीर ने किया, पुरुषों की 10,000 मीटर की रेस में दूसरा स्थान हासिल किया और वे इस इवेंट में मेडल जीतने वाले पहले भारतीय भी बने। और मुक्केबाजी की हम बात कर रहे थे, वही मुक्केबाज जादूमणि ने 55 किलोग्राम वर्ग में बेहतरीन प्रदर्शन करते हुए

0: जाम्बिया के मेंगो वाले को एक तरफा अंदाज में 5-0 से हराया। उन्होंने एक के बाद एक पंच लगाए और विपक्षी मुक्केबाज को वापसी करने का कोई भी मौका नहीं दिया। जीत के बाद उन्होंने अपना अनुभव कुछ इस तरीके से साझा किया।
1: काफी अच्छा लग रहा है मुझे, पहले का गेंद मेरा मेरे आगे, तो मैं इससे और अच्छा करूंगा कि आने वाला नेक्स्ट सेमीफाइनल में इससे बेहतर कर सकूंगा और इंडिया के लिए गोल लेकर जाऊंगा।
2: वहीं भारतीय खिलाड़ियों के शानदार प्रदर्शन की गूंज आज संसद में भी सुनाई दी। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने पदक विजेता खिलाड़ियों को बधाई दी।
3: 23वें राष्ट्रमंडल खेलों में सुश्री हरजिंदर कौर तथा श्री गुरवीर सिंह रजत पदक जीतकर इस प्रतियोगिता में भारत का गौरव बढ़ाया। मैं सदन की ओर से देश का मान बढ़ाने वाले सभी खिलाड़ियों, उनके कोच एवं टीम इंडिया को हार्दिक बधाई शुभकामनाएं देता हूं।
0: ऑन्टारियो में वर्ल्ड जूनियर स्क्वाश टीम चैंपियनशिप में भारत की पुरुष और महिला टीमों ने शानदार प्रदर्शन करते हुए क्वार्टर फाइनल में जगह बना ली है। पुरुष टीम ने प्री क्वार्टर फाइनल में कुवैत को 2-1 से हराया, जबकि महिला टीम ने ग्रुप चरण के अपने आखिरी मुकाबले में साउथ अफ्रीका को 3-0 से हराकर दमदार जीत दर्ज की है। सुनते हैं वैष्णव की ये रिपोर्ट।
4: 5वीं वरीयता प्राप्त भारतीय पुरुष टीम को कुवैत के खिलाफ जीत के लिए कड़ा संघर्ष करना पड़ा। मुकाबले की शुरुआत भारत के लिए अच्छी नहीं रही। पहले मैच में युशा नफीस को कुवैत के अब्दुल्ला अली के खिलाफ सीधे गेमों में हार का सामना करना पड़ा। इसके बाद भारतीय खिलाड़ियों ने शानदार वापसी की। दूसरे मुकाबले में आर्यवीर दीवान ने बेहतरीन खेल दिखाते हुए खालिद वली अल्फोजेन को 11-5, 11-6 और 11-5 से हराकर मुकाबला 1-1 से बराबर कर दिया। इसके बाद निर्णायक मैच में गुरवीर सिंह ने शानदार प्रदर्शन करते हुए अब्दुल रहमान अल सानिया को 11-3, 11-3 और 11-4 से हराकर भारत को 2-1 की जीत लाई। अब भारत
2: उधर भारतीय महिला हॉकी टीम बेल्जियम और नीदरलैंड्स में होने वाले हॉकी विश्व कप की तैयारियों के मद्देनजर आज यूरोप के लिए रवाना हो गई। ये विश्व कप 15 अगस्त से 30 अगस्त के बीच खेला जाएगा। भारत अपना पहला मुकाबला सिद्धार्थ 16 अगस्त को चीन के खिलाफ खेलेगा। विश्व कप से पहले भारतीय टीम 31 जुलाई और 1 अगस्त को मेजबान टीम जर्मनी के खिलाफ लगातार 2 फ्रेंडली मैच खेलेगी। और उधर सिद्धार्थ हॉकी इंडिया ने आज 20वें एशियाई खेलों के लिए 20 सदस्यीय भारतीय पुरुष टीम की घोषणा कर दी है।
0: जी, और हरमनप्रीत सिंह भारतीय टीम के कप्तान होंगे। यह प्रतियोगिता 19 सितंबर से 4 अक्टूबर के बीच जापान के आइची नागोया में खेली जाएगी। उधर ग्वालियर में हॉकी इंडिया सब जूनियर विमेंस एकेडमी चैंपियनशिप और हॉकी इंडिया जूनियर महिला एकेडमी चैंपियनशिप के दौरान सब जूनियर प्रतियोगिता में खालसा स्पोर्ट्स हॉकी एकेडमी कोलकाता और राजाकर हॉकी एकेडमी ने जीत हासिल की है, जबकि जूनियर प्रतियोगिता में भाई बहनों हॉकी एकेडमी और मध्य प्रदेश हॉकी एकेडमी विजय रहे।
2: और अब बात क्रिकेट पर भी कर लेते हैं। आईसीसी ने आज बल्लेबाजों की रैंकिंग जारी कर दी है। भारतीय कप्तान शुभमन गिल एक बार फिर एक दिवसीय क्रिकेट में दुनिया के शीर्ष बल्लेबाज बन गए। वहीं वैभव सूर्यवंशी को भी टी20 रैंकिंग में जबरदस्त फायदा पहुंचा है। वैभव 536 रेटिंग प्वाइंट के साथ अपने करियर की सर्वश्रेष्ठ 48वीं रैंकिंग पर पहुंच गए हैं।
0: और अब समय इजाजत नहीं दे रहा है कि हम आपसे कुछ और बातें करें या किसी और खेल खबरों पर चर्चा करें। इसी के साथ अनुमति दीजिए सिद्धार्थ और प्रशांत को। नमस्कार।

लोकसभा ने परीक्षा में गड़बड़ी रोकने के लिए सख्त सजा और फास्ट ट्रैक कोर्ट का प्रावधान करने वाला पेपर लीक रोकने वाला विधेयक पारित किया। राज्यसभा ने वंदे मातरम को राष्ट्रगान के समान कानूनी संरक्षण देने और इसके अपमान को अपराध घोषित करने वाला विधेयक पारित किया। ओडिशा में बाढ़ की स्थिति गंभीर, 4 लोगों की मौत और 4 लाख से ज्यादा लोग प्रभावित। छत्तीसगढ़ में मूसलाधार बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त। पाकिस्तान के अवैध कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में मरने वाले प्रदर्शनकारियों की संख्या बढ़कर

0: 40 हुए संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार कार्यालय ने चिंता व्यक्त की और राष्ट्रमंडल खेलों में मुक्केबाज अंकुश साक्षी अरुंधति सचिन और नरेंद्र ने सेमीफाइनल में प्रवेश किया। अब तक 9 भारतीय मुक्केबाजों ने पदक सुनिश्चित किए। अब समाचार विस्तार से। लोकसभा ने लोक परीक्षा अनुचित साधन रोकथाम संशोधन विधेयक 2026 पारित कर दिया है। विधेयक में 10 वर्ष तक के कारावास, 10 करोड़ रुपए तक का जुर्माना और अपराधियों की संपत्ति जब्त करने का प्रावधान है। मामलों के शीघ्र निपटारे के लिए प्रत्येक राज्य सरकार और केंद्र शासित प्रदेश को दैनिक सुनवाई के लिए विशेष फास्ट ट्रैक कोर्ट स्थापित करने का आदेश दिया गया है। अपराधों की जांच पुलिस थाने में सूचना दर्ज होने की तारीख से 2 महीने के भीतर पूरी की जानी चाहिए। मुकदमे की सुनवाई आरोप पत्र दाखिल होने की तारीख से 3 महीने के भीतर पूरी होनी चाहिए। कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन राज्य मंत्री डॉ जितेंद्र सिंह ने कहा कि ये संशोधन कानून को और अधिक सख्त बनाने तथा त्वरित न्याय दिलाने के लिए किया गया है। डॉ सिंह ने कहा कि नया विधेयक छात्रों और युवाओं के कल्याण के लिए सरकार की प्रतिबद्धता की पुष्टि करता है।
1: सरकार की प्रतिबद्धता का आप इसी बात से अनुमान लगा सकते हैं कि इसी विधेयक के लाने के साथ ही साथ हमारे लॉ मिनिस्टर की ओर से भी एक प्रस्ताव जारी कर दिया गया। स्पेशल फास्ट ट्रैक कोर्ट्स है, इनको स्थापित करने का भी क्रम प्रारंभ किया जाए। उसमें दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, मध्य प्रदेश, बिहार, उत्तराखंड में पहले ही इन्होंने गठित कर दिया है और आने वाले दिनों में बाकी स्थानों पर।
0: डॉक्टर सिंह ने बताया कि प्रधानमंत्री ने टास्क फोर्स का गठन भी किया है।
1: कल ही प्रधानमंत्री जी ने एक टास्क फोर्स का भी ऐलान किया है टू रिकमेंड रिफॉर्म्स टू मेक द एग्जाम सिस्टम्स लीक प्रूफ। उसमें कुछ एक बड़े वरिष्ठ लोग सम्मिलित किए गए और साथ ही साथ जो राधा कृष्ण कमेटी गठित की गई थी 22 जून 2024 में, उसमें से जो 46 की रिकमेंडेशन थी उसमें से भी 35 इम्प्लीमेंट हो चुकी है।
0: श्री सिंह ने विपक्ष के नेता राहुल गांधी के असंसदीय भाषा का इस्तेमाल करने की भी आलोचना करते हुए इसे अनुचित और दुर्भाग्यपूर्ण बताया। राज्यसभा ने राष्ट्रीय सम्मान की रक्षा के लिए राष्ट्रीय गौरव अपमान निवारण संशोधन विधेयक 2026 पारित कर दिया है। ये विधेयक वंदे मातरम को राष्ट्रीय गान के समान वैधानिक संरक्षण प्रदान करेगा। गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने कहा कि वंदे मातरम के अपमान के लिए अब 3 वर्ष तक की कैद, जुर्माना या दोनों की सजा हो सकती है।
2: राष्ट्रीय गीत अपमान पर इस विधेयक के माध्यम से दंडनीय प्रावधान करने का विचार हुआ है। वर्तमान संशोधन का उद्देश्य राष्ट्र गीत वंदे मातरम के जानबूझकर किए गए अपमान को भी उसी प्रकार के दंडनीय बनाया जाए जैसा कि वर्तमान कानून में है। हर भारतवासी के राष्ट्रप्रेम का उद्घोष है वंदे मातरम, विकसित भारत का संकल्प है वंदे मातरम।
0: संसद के दोनों सदनों में आज हुई कार्यवाही पर हमारे संवाददाता की रिपोर्ट।
3: संसद के दोनों सदनों में आज महत्वपूर्ण विधायी कार्य संपन्न हुए। हालांकि कार्रवाई के दौरान कई बार व्यवधान भी देखने को मिला। लोकसभा में गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने जन्म और मृत्यु पंजीकरण संशोधन विधेयक 2026 प्रस्तुत किया। इसके अलावा लोकसभा ने एक राष्ट्र एक चुनाव से संबंधित विधेयक की जाँच कर रही संयुक्त संसदीय समिति का कार्यकाल संसद के शीतकालीन सत्र 2026 के अंतिम सप्ताह के पहले दिन तक बढ़ाने के प्रस्ताव को भी मंजूरी दी। नीट मुद्दे को लेकर छात्रों के प्रदर्शन के दौरान कथित पुलिस कार्रवाई के विरोध में विपक्षी सदस्यों के हंगामे के कारण दोनों सदनों की कार्रवाई कई बार बाधित हुई। इस कारण लोकसभा और राज्यसभा में प्रश्नकाल नहीं चल सका। अनुपम मिश्र, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: केंद्रीय मंत्रियों और भाजपा के नेताओं ने विद्यार्थियों के विरोध प्रदर्शन के दौरान कथित पुलिस कार्रवाई को लेकर लोकसभा में गृह मंत्री अमित शाह पर विपक्ष नेता राहुल गांधी की टिप्पणी की आलोचना की। केंद्रीय मंत्री एसपी सिंह बघेल ने आकाशवाणी से विशेष बातचीत में कहा कि श्री राहुल गांधी अपने संवैधानिक पद की गरिमा बनाए रखने में विफल रहे हैं।
4: आज राहुल गांधी ने ऐसे शब्दों का प्रयोग किया जो संसदीय नहीं है। माननीय गृह मंत्री जी पर आरोप लगाया जबकि उनके पास इस तरह का कोई सबूत नहीं है। कभी भी कोई लाठी चार्ज, टियर गैस, फेनिंग या पानी के बौछार का आदेश कोई मंत्री नहीं देता है। ये उस मौके पर अनलॉफुल असेंबली को देखते हुए उस मौके के प्रेसिडेंट अफसर, पुलिस अफसर और प्रशासन के लोग ये निर्णय लेते हैं। ये मिथ्या आरोप उन्होंने माननीय गृह मंत्री पर लगाया है।
0: केंद्रीय मंत्री राजीव रंजन उर्फ लल्लन सिंह ने आरोप लगाया कि सदन में विपक्ष के नेता राहुल गांधी की भाषा संसदीय कार्यवाही के लिए अनुचित थी। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।

0: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 अगस्त को नशा मुक्त युवा फॉर विकसित भारत संकल्प अभियान का शुभारंभ करेंगे। ये नशाखोरी के खिलाफ 100 सप्ताह का राष्ट्रव्यापी जनभागीदारी आंदोलन है। इस पहल का लक्ष्य जागरूकता, सामुदायिक सहभागिता और निरंतर जनभागीदारी को बढ़ावा देकर नशा मुक्त भारत के निर्माण के लिए युवाओं को सामूहिक राष्ट्रीय मिशन में एकजुट करना है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज राष्ट्रपति भवन में भारतीय पारंपरिक कला रूपों के कलाकारों से मुलाकात की और उनके कार्यों का अवलोकन किया। बनारस भित्तिचित्र थंका नायका, केरल भित्तिचित्र बसोहली सुरपुर और मैसूर जैसी कला शैलियों का प्रतिनिधित्व करने वाले 12 कलाकार कलाकार निवास कार्यक्रम के अंतर्गत राष्ट्रपति भवन में रह रहे हैं। कलाकार निवास कार्यक्रम भारत की कलात्मक परंपराओं की भावना का उत्सव है। स्वास्थ्य मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने आज आगामी नीट स्नातक काउंसलिंग 2026 की तैयारियों की समीक्षा की। श्री नड्डा ने कहा कि काउंसलिंग प्रक्रिया पारदर्शी, निष्पक्ष और योग्यता आधारित तरीके से संचालित की जानी चाहिए। ओडिशा में लगातार जारी तेज बारिश और नदियों में आए उफान से राज्य के बड़े हिस्से को मानवीय संकट में डाल दिया है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि बाढ़ के कारण 4 लोगों की मौत हो गई है।
1: बाढ़ का पानी लगातार आगे बढ़ रहा है। उफनती बैतरणी नदी भारी तबाही मचा रही है, जबकि भद्रक, जाजपुर और बालेश्वर में बाढ़ की स्थिति खतरनाक स्तर पर पहुंच गई है। मयूरभंज में लगातार बारिश और नदियों के उफान ने संकट को और बढ़ा दिया है। सरकारी सूत्रों का कहना है कि 304 ग्राम पंचायत में लगभग 3,80,000 लोग प्रभावित हुए हैं। बचाव और राहत कार्य जारी है। इस बीच IMD ने नुआपड़ा, कलाहंडी, नवरंगपुर और कोरापुट जिले में ऑरेंज वार्निंग जारी की है। प्रकाश दास, आकाशवाणी समाचार, भुवनेश्वर।
0: छत्तीसगढ़ से हमारे संवाददाता ने बताया है कि पिछले 2 दिन से जारी मूसलाधार वर्षा के कारण कई जिलों में जनजीवन प्रभावित है।
2: छत्तीसगढ़ के गरियाबंद जिले में पंटोरा में स्थित कन्या आश्रम में पानी भरने से 50 से अधिक छात्राओं को दूसरे स्थान पर भेजा गया है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने सभी जिला कलेक्टरों सहित अन्य अधिकारियों को सतर्क रहने और जरूरी उपाय करने के निर्देश दिए हैं। मौसम विभाग ने अगले 24 घंटों के दौरान छत्तीसगढ़ के बालोद और कांकेर जिलों के लिए भारी बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। विकल्प शुक्ला, आकाशवाणी समाचार, रायपुर।
0: मौसम विभाग ने मध्य महाराष्ट्र और पश्चिमी मध्य प्रदेश के कुछ हिस्सों में कल मूसलाधार वर्षा की आशंका व्यक्त की है। पूर्वोत्तर भारत, तटीय कर्नाटक, पूर्वी मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, केरल और माहे, कोंकण, गोवा, पंजाब, दक्षिणांतरिक कर्नाटक, उप हिमालय, पश्चिम बंगाल और सिक्किम में भी कल तेज बारिश की संभावना है। दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, छत्तीसगढ़, जम्मू कश्मीर, लद्दाख और लक्षद्वीप में भी तेज वर्षा का अनुमान है। ऊपरी असम में आई विनाशकारी बाढ़ के मद्देनजर विधानसभा का पहला बजट सत्र आज निर्धारित समय से 2 दिन पहले समाप्त हो गया। एक रिपोर्ट।
3: पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री अतुल बोरा ने सदन को बताया कि राज्य सरकार बाढ़ प्रभावित लोगों को राहत प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि वरिष्ठ अधिकारियों की एक टीम कल ऊपरी असम का दौरा करेगी ताकि बाढ़ पीड़ितों को प्राथमिकता के आधार पर सहायता उपलब्ध कराई जा सके। सदन ने जान गंवाने वाले लोगों की स्मृति में 1 मिनट का मौन भी रखा। इसके बाद विधानसभा अध्यक्ष ने सदन की कार्यवाही अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दी। राकेश तोले, आकाशवाणी समाचार, गुवाहाटी।
0: ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन EIR ऐप पर भी उपलब्ध हैं। ये आकाशवाणी है। पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में अशांति लगातार बढ़ रही है। मरने वाले प्रदर्शनकारियों की संख्या बढ़कर 40 हो गई है। संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार उच्चायुक्त कार्यालय ने प्रदर्शनकारियों की मौत पर चिंता व्यक्त की है। संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार उच्चायुक्त के प्रवक्ता जेरेमी लॉरेंस ने कहा कि एक नागरिक समाज संगठन को अपराधी घोषित करना और सभाओं पर कड़े प्रतिबंध लगाना, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, शांतिपूर्ण सभा और संगठन के अधिकारों के उल्लंघन के बारे में गंभीर चिंताएं पैदा करता है। उधर ब्रिटेन में रहने वाले कश्मीरियों ने आज बर्मिंघम स्थित पाकिस्तानी वाणिज्य दूतावास के बाहर हत्याओं के विरोध में प्रदर्शन किया। उन्होंने संयुक्त अवामी एक्शन कमेटी के साथ एकजुटता व्यक्त करने के लिए दूतावास के बाहर जूते रखे। कई ब्रिटिश सांसदों ने कथित कार्रवाई की निंदा की। सांसद नाज शाह और इमरान हुसैन ने

0: प्रदर्शनकारियों पर गोलीबारी को बर्बर बताया और जवाबदेही तथा शांतिपूर्ण समाधान की मांग की। कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड द्वारा नौसेना के लिए निर्मित 8 पनडुब्बी रोधी जलपोतों में से 7वें जलपोत मछलीपट्टनम का आज जलावतरण किया गया। ये जलपोत समुद्र के भीतर की निगरानी, पनडुब्बी रोधी युद्ध अभियान और कम तीव्रता वाले समुद्री अभियान के साथ साथ बारूदी सुरंग भेदन क्षमता से लैस है। 80% से अधिक स्वदेशी सामग्री की ये परियोजना भारतीय पोत निर्माण उद्योग की बढ़ती क्षमता को प्रदर्शित करती है। दिल्ली पुलिस ने 20 जुलाई के नीट पेपर लीक के विरोध में प्रदर्शन के दौरान एक प्रदर्शनकारी को गोली लगने की अफवाहों का खंडन किया है। ये अफवाह मेडिको लीगल सर्टिफिकेट के निष्कर्षों से मेल नहीं खाती। पुलिस ने कहा कि सर्टिफिकेट में घाव को हल्की चोट बताया गया है, डॉक्टर के अनुसार गोली लगने का कोई सबूत नहीं है। पुलिस ने लोगों को ऐसी अफवाह फैलाने से पहले प्रामाणिक स्रोतों से जानकारी की पुष्टि करने की सलाह दी है। उत्तर प्रदेश के वाराणसी जिले के एक निजी स्कूल में 5 वर्षीय बच्चे के साथ शिक्षक द्वारा कथित यातना और अमानवीय व्यवहार के मामले में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव और वाराणसी पुलिस आयुक्त को नोटिस जारी किया है। मीडिया रिपोर्ट का स्वतः संज्ञान लेते हुए आयोग ने 2 सप्ताह के भीतर इस मामले पर विस्तृत रिपोर्ट मांगी है। सरकार ने कहा है कि लगभग 6 दशकों की हिंसा के बाद देश वामपंथी उग्रवाद से मुक्त हो गया है। राज्यसभा में एक प्रश्न के उत्तर में गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने कहा कि उपलब्धि वामपंथी उग्रवाद से निपटने के लिए 2015 की राष्ट्रीय नीति और कार्य योजना के दृढ़ कार्यान्वयन तथा केंद्र और राज्य सरकारों के समन्वित प्रयासों से हासिल हुई है। और अब आर्थिक जगत की खबरों के साथ है अम्बरीश सक्सेना।
1: सेंसेक्स 889 अंक ऊपर चढ़कर 77,655 पर पहुंच गया, जबकि निफ्टी 265 अंक की तेजी के साथ 24,250 पर बंद हुआ। उधर अंतर बैंकिंग विदेशी मुद्रा बाजार में रुपया 21 पैसे मजबूत होकर 1 अमरीकी डॉलर की तुलना में 95.64 रुपये पर बंद हुआ।
0: ग्लासगो में राष्ट्रमंडल खेलों में भारतीय मुक्केबाज अंकुश, साक्षी, अरुंधति, सचिन और नरेंद्र ने सेमीफाइनल में प्रवेश कर लिया है। भारतीय मुक्केबाजों ने अब तक 9 पदक सुनिश्चित कर लिए हैं। पदक तालिका में भारत 2 स्वर्ण, 7 रजत और 3 कांस्य पदकों के साथ 9वें स्थान पर है। जम्मू कश्मीर में आज गुरु पूर्णिमा के अवसर पर श्रीनगर के मैसुमा स्थित ऐतिहासिक दशनामी अखाड़े से पारंपरिक पवित्र गदा चारी मुबारक को विधिपूर्वक निकाला गया। ये समारोह श्री अमरनाथ जी गुफा मंदिर की वार्षिक यात्रा के प्रारंभ का प्रतीक है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। लोकसभा ने परीक्षा में गड़बड़ी रोकने के लिए सख्त सजा और फास्ट ट्रैक कोर्ट के प्रावधान वाला पेपर लीक रोधी विधेयक पारित किया। राज्यसभा ने वंदे मातरम को राष्ट्रगान के समान कानूनी संरक्षण देने और इसके अपराध अपमान को अपराध घोषित करने वाला विधेयक पारित किया। ओडिशा में बाढ़ की स्थिति गंभीर, 4 लोगों की मौत और 4 लाख से ज्यादा लोग प्रभावित। छत्तीसगढ़ में मूसलाधार बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त। और राष्ट्रमंडल खेलों में मुक्केबाज अंकुश, साक्षी, अरुंधति, सचिन और नरेंद्र ने सेमीफाइनल में प्रवेश किया। अब तक 9 भारतीय मुक्केबाजों ने पदक सुनिश्चित किए। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: गुड इवनिंग, दिस इज आकाशवाणी एंड आई एम वल्सा विलियम्स विद द न्यूज एट 9. The headlines. Lok Sabha passes anti-paper leak bill proposing tougher penalties and fast-track courts to curb exam malpractices. Rajya Sabha clears legislation granting Vande Mataram the same statutory protection as the national anthem makes insults to national songs.

0: इंजीनियरिंग और मेडिकल एंट्रेंस परीक्षा की पढ़ाई को कैसे बनाया जाए आसान, प्रभावी और तनाव मुक्त, इसके कुछ फॉर्मूले बताएंगे फिजिक्स के प्रोफेसर नयन वर्मा।
1: अगर आप कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए तैयारी कर रही है, आप अपना स्टडी टाइम डिवाइड कर लीजिए। 6 घंटा आप जो भी कोचिंग में जाते हैं, 7-8 घंटे की नींद, 1 घंटे का आपका स्पोर्ट्स, उसके बाद में आपके पास 6-7 घंटे जो बचते हैं वो टाइम डिवीजन आपके ऊपर डिपेंड करता है, बिकॉज दैट टाइम डिवीजन डिफर्स फ्रॉम स्टूडेंट टू स्टूडेंट। लेकिन आप एमसीक्यूज रोज प्रैक्टिस करें, बिकॉज आपका जो भी एडमिशन आपके ऑब्जेक्टिव एग्जाम के रैंक के ऊपर डिसाइड होता है।
0: काउंसलर डॉक्टर सुमति ओझा साझा करेंगी तनाव और दबाव से कैसे निपटें।
2: हम किस तरह से पेरेंटिंग करते हैं, जैसे हमारे माँ बाप ने हमारे साथ किया। अब जमाना बदल गया है, वी आर इन डिजिटल ईरा और इन्फॉर्मेशन फ्री फ्लोटिंग अवेलेबल है, तो इसलिए इम्पोर्टेंट है कि बार बार वर्कशॉप्स रखना, रोल प्ले बताना, उन्हें कैसे कम्युनिकेट करना, ये सब बताना बहुत जरूरी है।
0: फिल्म लेखिका विभा सिंह करेंगी इस कार्यक्रम का विचार मंथन।
3: आजकल हम बहुत बातें सुनते हैं कि कितनी मेहनत सही है और कितनी नहीं सही है, वो एक अलग डिस्कशन है, पर हार्ड वर्क का कोई रिप्लेसमेंट नहीं है, ये बच्चों को जानना बहुत जरूरी है।
0: तो सुनिए विविधा में सृजन भारती 2 अगस्त दिन में 11 बजे सिर्फ विविध भारती पर।

0: जाने माने फिल्मी संगीतकार दिलीप सेन हमसे साझा करेंगे अपनी फिल्मी संगीत यात्रा।
1: फोक कहते हैं आमद को। हमारी जो माताएं बहनें आज से 100-200 साल पहले दामाद आते थे तो उनके लिए गाने बनाती थी, उनको उस वक्त कोई राइटर तो होता नहीं था। तो गडरण भवन सुयो विनायक करो न सीती विन धरी मारा दिलीप सेन जीव धारिया।
0: कार्यक्रम बॉम्बे टॉकीज में 1 अगस्त दोपहर बाद 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर। तो सुनना न भूलिएगा विविध भारती, देश की सुरीली धड़कन।
2: लीजिए अब मोहम्मद रफी को सुनिए फिल्म राजकुमार में। हसरत जयपुरी की लिखी इस गीत की धुन बनाई है शंकर जयकिशन ने। रंग

0: एक आवाज जो आप सभी के जहन में ताजा है और जिससे जुड़ी हैं आपकी ढेर सारी रेडियो की यादें।
1: मैंने ये सोचा कि भारत में तो बहुत ज्यादा भावुक हैं लोग, करोड़ों की संख्या में सुन रहे हैं रेडियो से कान लगाए, तो मैंने तब अपनी आवाज में कंपन लाते हुए कहा था कि ये मैच अब कमजोर दिल के इंसानों के लिए नहीं रह गया है।
0: जानी माने क्रिकेट कमेंटेटर सुशील दोषी की जिंदगी की कहानी, मैटिनी शो 1 अगस्त दिन में 11 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: आए हाय
3: लीजिए, सुनिए लता मंगेशकर को फिल्म जिद्दी में। हसरत जयपुरी के बोल है और संगीत से सजाया है एसडी बर्मन ने।

अभी आपने जिद्दी फिल्म में लता मंगेशकर को सुना और ये है कार्यक्रम की अंतिम पेशकश मोहम्मद रफी की आवाज में। साथ दे रही लता मंगेशकर। फिल्म का नाम है हंसते जख्म। कैफी आसमी के लिखे इस गीत की धुन बनाई है मदन मोहन ने।

अभी आपने मोहम्मद रफी को फिल्म हंसते जख्म में सुना। इसी के साथ ही आपके लिए कार्यक्रम अब यहीं समाप्त होता है। आज का सफर आपने तय किया प्रीति मिश्रा के साथ। अब दीजिए इजाजत।

आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन छाया गीत कार्यक्रम बस कुछ ही पलों में।

प्रस्तुत है छाया गीत। सुनने वालों को मंदाकिनी जोशी का प्यार भरा नमस्कार। सामिन, किसी रिश्ते का सबसे दुखद पल या यूं कहें दुखद क्षण वो नहीं होता जब दो लोग अलग होते हैं। दुखद पल वो होता है जब दो लोग साथ रहते हुए भी एक दूसरे तक पहुंच नहीं पाते। शब्द होते हैं पर आपसी समझ नहीं होती, साथ है लेकिन सुकून नहीं होता, बातचीत होती है लेकिन दिल की बात नहीं होती। और ये रिश्ता बाहर से तो वैसा ही दिखता रहता है लेकिन भीतर उसका जीवन खत्म होता जाता है।

लोग साथ रहते हैं फिर भी एक दूसरे को कभी महसूस नहीं कर पाते। उनके बीच हजारों मील की दूरी होती है। स्त्री और पुरुष का रिश्ता सिर्फ एक छत के नीचे साथ रहने का नाम तो नहीं है ना? किसी भी रिश्ते को बाहर से देखने पर वो अक्सर दो लोगों की कहानी दिखाई देता है, लेकिन भीतर उतरकर देखिए तो सही, वहां दो लोग रहते हुए भी नहीं रहते। हाँ, वहां दो लोग रहते हुए भी

0: विविध भारती के पास है बेमिसाल हस्तियों का अनमोल खजाना। जरा सुनिए कैसे बना ये गाना।
1: घुंघरू की तरह बजता ही रहा हूं।
2: जिसने कहा है किशोरदन एक लड़का आया है कलकत्ते से, गाना सुन लो, इसका अगर तुमको ठीक लगे तो गा ले।
0: संगीतकार रविंद्र जैन।
2: किशोरदन ने कहा मैं गाना नहीं सुनूंगा, उसको बोला रिकॉर्डिंग रख लेगा। 9 बजे किशोरदा आ गए सुबह सुबह, मुझे गाने का मुखड़ा सुना दे। पहले मैं कहता था, अब मेरे लिए कहते हैं लोग, ये वही है कि जो बजता रहा घुंघरू की तरह।
3: कभी इस पग में

0: अनमोल यादें आपको मिलेंगी सिर्फ विविध भारती पर। विविध भारती, आपका जीवन संगीत।
1: आज के फनकार।

0: आज के फनकार हमारे आज के फनकार हैं कॉमेडियन अभिनेता जॉनी वॉकर।
1: मारे,

सर पर हाथ फिरा दूं चमके किस्मत उसकी। सुन सुन सुन अरे बेटा सुन इस चमकी में बड़े बड़े गुण। सुन सुन सुन अरे बेटा सुन इस चमकी में बड़े बड़े गुण।

0: घबराए।
1: जी हाँ, सिने जगत का ये लोकप्रिय नाम है इनका, लेकिन इनका नाम कुछ और है। आपको बता दें, 11 नवंबर 1920 के दिन इनका जन्म हुआ था बदरुद्दीन जमालुद्दीन काजी के रूप में। बाद में ये फिल्मी नाम गुरुदत्त साहब ने इन्हें दिया, जॉनी वॉकर। पर्दे पर इन्हें देख करके आप जरूर मुग्ध हो गए होंगे, क्योंकि कॉमेडी के रूप में इन्होंने बहुत ही सुंदर काम किया।
0: यार कहो बे झगड़ा, या बिजनेस का हो रगड़ा, सब लफड़ों का बोझ हटे जब पड़े हाथ एक तगड़ा। प्यार कहो बे झगड़ा, या बिजनेस का हो रगड़ा, सब लफड़ों का बोझ हटे जब पड़े हाथ एक तगड़ा। सुन सुन सुन अरे बाबू सुन, इस चमटी में बड़े बड़े गुण। सुन सुन सुन अरे बाबू सुन, इस चमटी में बड़े बड़े गुण। लाख दुखों की एक दवा है, क्यों ना आज।

भारतीय हिंदी सिनेमा के लोकप्रिय कॉमेडियन के रूप में जॉनी वॉकर हमेशा याद किए जाएंगे। बिना पिए पीने वाले की भूमिका इतनी सुंदर ये पर्दे पर निभाते थे कि इनकी छवि को देखकर लोग मुग्ध हो जाते थे। दर्शक हंसते हंसते लोटपोट हो जाते थे। इनका बहुत ही आकर्षक चेहरा था, उस पर से पेंसिल की तरह पतली इनकी मूछें थी जिन्हें देखते ही हंसी आ जाए। जॉनी वॉकर, इनका जन्म 11 नवंबर 1920 को हुआ था इंदौर मध्य प्रदेश में, और एक मिल वर्कर के यहाँ इनका जन्म हुआ था। बाद में इनका परिवार बॉम्बे में आ गया और यहाँ इन्होंने बहुत सारे काम किए जीविकोपार्जन के लिए। फिल्मों में इन्हें छोटे मोटे रोल मिलने लगे। और आगे की बातें से पहले हम आपको गाना सुनवा रहे हैं सीआईडी फिल्म का।

जॉनी वॉकर की फिल्मों का सुनहरा दौर था सन 1951 से लेकर सन 1997 तक यानी 1997 तक। मुंबई आने के बाद जॉनी वॉकर ने बेस्ट की बसेस में कंडक्टर का काम किया। बेस्ट की बसेस में ये कॉमेडी का रोल भी करते थे और जो पैसेंजर थे उनका मनोरंजन करते थे।

पंजू रूस और चीन में जाके काम की बात बता दी, अरे कामंड गाना गा के आया।

उस जमाने के सुप्रसिद्ध अभिनेता बलराज साहनी जॉनी वॉकर को बस में देखते रहते थे, वहाँ ये एक्टिंग करते थे। बलराज साहनी सन 1951 में फिल्म बाजी की स्क्रिप्ट लिख रहे थे। उसी दौर की फिल्म हलचल में इन्हें एक भूमिका दी गई। गुरुदत्त साहब जो कि उस जमाने में फिल्म का निर्माण करते थे, उन्होंने इनके काम को देखा और पसंद किया और बदरुद्दीन जमालुद्दीन काजी को एक नया नाम दिया, जॉनी वॉकर।

0: चाहे कोई खुश हो चाहे गाली या हजार दे, अरे मस्त राम बन के जिंदगी के दिन गुजार दे।
1: फिल्मकार गुरुदत्त जॉनी वॉकर की भूमिका को देखकर बहुत ही प्रभावित होते थे, खास तौर से पीने वाले की भूमिका। लेकिन आगे चलकर इन्होंने तरह तरह की भूमिकाएं की, लेकिन उसमें कॉमेडी का पुट हमेशा होता था और उस जमाने के नायक के बराबर कॉमेडियंस को भी सम्मान मिलता था।

0: हमारे तो गोला भात नहीं है डर की, ऑनलाइन क्लियर, ऑनलाइन क्लियर,
1: लाइन क्लियर बाय।
2: इनकी कामयाब फिल्में थी मेरे महबूब, सीआईडी, प्यासा, चोरी चोरी। इन फिल्मों में कॉमेडी के साथ साथ चरित्र अभिनेता के रूप में भी इन्होंने कार्य किया और इन्हें बहुत ही सम्मान मिला। सन 1950 से लेकर 1960 तक फिल्मी करियर जॉनी वॉकर का बहुत ही सुनहरा था, किंतु इसके बाद फिल्मकार गुरु दत्त के निधन के बाद जॉनी वॉकर का करियर डगमगा गया। सन 1964 से इन्हें एक नया मोड़ मिला फिल्मी करियर में, जब जॉनी वॉकर डायरेक्टर बिमल रॉय और विजय आनंद से मिले और इन दोनों ही निर्देशक और फिल्मकारों ने इन्हें बहुत ही गोल्डन चांस दिए।
3: जंगल में

0: जॉनी वॉकर को अवार्ड्स भी मिले। फिल्म फेयर बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर अवार्ड मधुमति फिल्म में विशेष भूमिका के लिए, फिल्म फेयर बेस्ट कॉमेडियन अवार्ड शिकार फिल्म की भूमिका के लिए।
1: आज दहिया ताए याद आवत है,
2: तबीयत नरम है आज।
1: नरम है तो हमसे पूछो नुक्सा, कंप्यूटर के हाथ के नीचे भी काम किया है, बोलो क्या तकलीफ है।
2: नींद नहीं आती रात भर।
1: नींद नहीं आवत है पर का है रोग तो बोलो, सर दुखत है, पेट दुखत है।
2: दुखता उगता नहीं, कसमसा है सारा बदन, नींद नहीं आती।
1: ओ ये तो नवा रोग लगा थे, सोचो तेज बहादुर खूब सोचो।
2: सोचना कैसा, कुछ इलाज करो ना हमारा।
1: ठहरो पहले ई बताओ सोवत कैसी हो, चित पट के करवट
2: कैसे। ऐसे
1: बराबर लेटो,
2: भाता है ना ऐसा लेटना।
1: नींद ना आए तो क्या फायदा।
2: अच्छा ये कैसा,
1: दुई कौड़ी का।
2: तो फिर कैसे,
1: इधर घूमो करवट,
2: फल नहीं पड़ता।

0: तुम्हें घुमाला
1: गोबर गणेश कहेगी।
2: जॉनी वॉकर ने 300 फिल्मों में काम किया। इनकी चर्चित फिल्में हैं सन 1951 में बाजी,
3: मिस्टर जॉर्ज क्रूज सन ऑफ जॉर्ज क्रूज, तुम उधर क्या देखता?
4: उधर मैं टेलीफोन देखता था। तुमने कितना अच्छा टेलीफोन लगाया, नहीं डबल कनेक्शन वाला, हॉल में भी लगा और बेडरूम में भी।
3: यू फूल, तुम हमको फूल बनाता, तुम टेलीफोन को नहीं छोकरी को देखता था।
4: छोकरी छोकरी टेलीफोन छोकरी का हाथ लगा?
3: यस।
4: ओ गॉड, जब हम सोचता था वो टेलीफोन वाला हाथ आदमी का नहीं हो सकता है, कहीं को हम खाली उसका हाथ देखता था ना। लेकिन डार्लिंग, जो बात तुम्हारे हाथ पे है ना, वो किसी में नहीं। डार्लिंग, तुम इसी लड़की का बात करता था ना, इसका अंकल पैसे नहीं भेजता?
3: हम उसका बात करते तो वो ठीक है, पर तुम काहे को उसका बात करता है? डोंट फॉरगेट, तुम हमारे पेइंग गेस्ट है।
5: वो तुम्हारा पेइंग गेस्ट हो या हमारा, रेंट किसी को नहीं देगा। लूसी, बहुत रात हो गया, सोने दो ना बेचारे को, नहीं सोएगा तबीयत खराब हो।
1: राइट राइट।
3: मैं सूजन फर्नांडिस, तुम अभी तक नहीं सोया?
5: कैसे सोएगा, नींद नहीं आता।
4: जब तक मैं नहीं सोऊंगा ये नहीं सोएगी।
3: यू शट अप। सूजन, तुम्हारे ड्रेसिंग गाउन किधर है? तुम क्या बोला, तुम क्या बोला?
4: मैं बोला तुम सिस्टर हो, कितना अच्छा है, साथ में सोता है साथ में उठता है। मैं तुम लोगों को छोड़ के कभी नहीं जाऊंगा।
6: तुम जिसे कहता है शादी, रोनो है पूरा।

0: हम तुम जिस कहता है शादी लूनो है पूरा बर्बादी जो तुम ललचाओगे पीछे पछताओगे मैं यू जाएगी आजादी।
1: आज के फनकार ये कार्यक्रम केंद्रित था जाने माने हास्य अभिनेता जॉनी वॉकर पर। चलते चलते हम आपको बता दें आज के इस कार्यक्रम में शोध आलेख और स्वर था शहनाज अख्तरी का, संपादक और प्रस्तुतकर्ता रमेश गोखले।
2: आज के फनकार।

अभी आप सुन रहे थे मुंबई केंद्र से अनुप्रसारित विविध भारती के कार्यक्रम। हम आकाशवाणी बांसवाड़ा के माही चैनल से बोल रहे हैं एफएम 101.3 मेगाहर्ट्ज पर। इस वक्त रात के 10 बजे हैं। पेश खिदमत है फिल्म संगीत।

आगाज किया है गीता दत्त की आवाज में गाए फिल्म भाई भाई किस नगमे के साथ। बोल राजेंद्र कृष्ण के हैं और तर्ज बनाई है मदन मोहन ने।

अभी आपने गीता दत्त को सुना फिल्म भाई भाई में। आइए अब सुनते हैं आनंद बख्शी का लिखा गीत, राहुल देव बर्मन के संगीत निर्देशन में, आवाजें लता मंगेशकर और किशोर कुमार की है और फिल्म का नाम है अलग अलग।

अभी आपने लता मंगेशकर को सुना फिल्म आपकी परछाइयां में। कलाम राजा मेहदीली खां का था और मौसिकी मदन मोहन की। फिल्म संगीत आप सुन रहे हैं आकाशवाणी बांसवाड़ा के माहे चैनल से। अगली पेशकश लता मंगेशकर और किशोर कुमार के युगल स्वरों में फिल्म अजनबी से। शब्द रचना आनंद बख्शी की है और संगीत निर्देशन राहुल देव बर्मन का।

0: दोस्तों, आकाशवाणी बांसवाड़ा का FM माही चैनल सुनने के लिए अब आपको कहीं जाने की दरकार नहीं, दुनिया के किसी भी कोने में सुन सकते हैं आकाशवाणी बांसवाड़ा का अपना FM माही चैनल। आपको करना बस इतना सा है, अपने मोबाइल फोन में प्ले स्टोर में जाइए, टाइप कीजिए न्यूज ऑन AIR बिना किसी स्पेस के, NEWSONAIR न्यूज ऑन AIR। आप जैसे ही टाइप करेंगे, यही है वो ऐप जिसके जरिए आप सुन सकते हैं आकाशवाणी बांसवाड़ा का माही चैनल। याद रखिएगा, प्ले स्टोर में जाकर आपको सर्च करना है न्यूज ऑन AIR। हमें रहेगा आपके फीडबैक का इंतजार। नमस्कार।
1: आमने सामने, जी हां श्रोताओं, अगला गीत हमने इसे फिल्म से चुना है जिसे मिली जुली आवाजें दी हैं मोहम्मद रफी और लता मंगेशकर ने। नगमा निगार हैं साहिल लुधियानवी और मौसीकार कल्याण जी आनंद जी।

फिल्म संगीत की अगली पेशकश, आइए सुनते हैं आशा भोसले और भूपिंदर सिंह की मिलीजुली आवाजों में फिल्म एतबार से। हसन कमाल के लिखे शब्दों को सुरों में ढाला है बप्पी लहरी ने।

एक मुसाफिर एक हसीना। जी हाँ श्रोताओं, अगला गीत हमने इसी फिल्म से लिया है जिसे स्वर दिए हैं मोहम्मद रफी और आशा भोसले ने। गीत लिखा है SH बिहारी ने और संगीत से सवारा है OP नैयर ने।

फिल्म संगीत आप सुन रहे हैं आकाशवाणी बांसवाड़ा के माही चैनल से। अगला गीत अमित कुमार और रजनी शर्मा की मिलीजुली आवाजों में फिल्म बालिका वधू से। गीत आनंद बख्शी का है और संगीत राहुल देव बर्मन का।

0: प्रसार भारती के पास है भारतीय संस्कृति की अनमोल धरोहर। इसमें शामिल हैं शास्त्रीय संगीत, नृत्य, साहित्य, नाट्य विधाएं, धारावाहिक, वृत्तचित्र और अन्य दुर्लभ रिकॉर्डिंग और अब आप आकाशवाणी और दूरदर्शन के खजाने की डीवीडीज और सीडीज हासिल कर सकते हैं भारत में अपने संग्रह के लिए। प्रसार भारती के कार्यक्रमों का खजाना अगर है आपको पाना तो लॉग ऑन कीजिए www.prasarbhartiarchives.co.in। याद रहे www.prasarbhartiarchives.co.in।
1: फिल्म संगीत की अगली पेशकश, आइए सुनते हैं आनंद बख्शी का लिखा गीत लक्ष्मीकांत प्यारेलाल के संगीत निर्देशन में आवाजें एसपी बालासुब्रमण्यम और लता मंगेशकर की हैं और फिल्म का नाम है एक दूजे के लिए।

रजिया सुल्तान। जी हाँ श्रोताओं, अगला गीत हमने इसे फिल्म से लिया है जिसे स्वर दिया है लता मंगेशकर ने। जय निसार अख्तर के लिखे बोलों को सुरों में ढाला है खय्याम ने।

फिल्म संगीत की आखिरी पेशकश, आइए सुनते हैं किशोर कुमार की आवाज में फिल्म कालिया से। नगमा निगार है मजरूह सुल्तानपुरी और मौसीकार राहुल देव बर्मन।

किशोर कुमार की आवाज में गाए फिल्म कालिया के स्नपे के साथ ही फिल्म संगीत अभी ही खत्म होता है। हम आकाशवाणी बांसवाड़ा के माही चैनल से बोल रहे हैं एफएम बैंड 101.3 मेगाहर्ट्ज पर। इस वक्त रात के 11 बजने को है। अब आप सुनेंगे हिंदी में समाचार आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से। कृपया समाचारों के लिए कुछ पल प्रतीक्षा करें।

0: श्रोताओं, फिल्म संगीत यहीं पर संपन्न होता है। अब दिल्ली केंद्र से हिंदी में समाचार प्रसारित होंगे।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं रवि कपूर। लोकसभा ने लोक परीक्षा अनुचित साधन रोकथाम संशोधन विधेयक 2026 पारित कर दिया है। विधेयक में 10 वर्ष तक के कारावास, 10 करोड़ रुपए तक का जुर्माना और अपराधियों की संपत्ति जब्त करने का प्रावधान है। मामलों के शीघ्र निपटारे के लिए प्रत्येक राज्य सरकार और केंद्र शासित प्रदेश को दैनिक सुनवाई के लिए विशेष फास्ट ट्रैक कोर्ट स्थापित करने का आदेश दिया गया है। अपराधों की जांच पुलिस थाने में सूचना दर्ज होने की तारीख से 2 महीने के भीतर पूरी की जानी चाहिए। मुकदमे की सुनवाई आरोप पत्र दाखिल होने की तारीख से 3 महीने के भीतर पूरी होनी चाहिए। कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने कहा कि ये संशोधन कानून को और अधिक सख्त बनाने तथा त्वरित न्याय दिलाने के लिए किया गया है। डॉक्टर सिंह ने कहा कि नया विधेयक छात्रों और युवाओं के कल्याण के लिए सरकार की प्रतिबद्धता की पुष्टि करता है। डॉक्टर सिंह ने बताया कि प्रधानमंत्री ने टास्क फोर्स का भी गठन किया है। सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने लोकसभा में लोक परीक्षा अनुचित साधन निवारण संशोधन विधेयक 2026 पारित होने पर विद्यार्थियों और युवा अभ्यर्थियों को बधाई दी है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री वैष्णव ने कहा कि यह विधेयक परीक्षा में होने वाली गड़बड़ियों और अनुचित गतिविधियों पर सख्त अंकुश लगाएगा। राज्यसभा ने राष्ट्रीय सम्मान की रक्षा के लिए राष्ट्रीय गौरव अपमान निवारण संशोधन विधेयक 2026 पारित कर दिया है। विधेयक वंदे मातरम को राष्ट्रीय गान के समान वैधानिक संरक्षण प्रदान करेगा। गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने कहा कि वंदे मातरम के अपमान के लिए अब 3 वर्ष तक की कैद, जुर्माना या दोनों की सजा हो सकती है। संसद के दोनों सदनों में आज हुई कार्यवाही पर हमारे संवाददाता की रिपोर्ट।
2: संसद के दोनों सदनों में आज महत्वपूर्ण विधायी कार्य संपन्न हुए। हालांकि कार्यवाही के दौरान कई बार व्यवधान भी देखने को मिला। लोकसभा में गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने जन्म और मृत्यु पंजीकरण संशोधन विधेयक 2026 प्रस्तुत किया। इसके अलावा लोकसभा ने एक राष्ट्र एक चुनाव से संबंधित विधेयक की जाँच कर रही संयुक्त संसदीय समिति का कार्यकाल संसद के शीतकालीन सत्र 2026 के अंतिम सप्ताह के पहले दिन तक बढ़ाने के प्रस्ताव को भी मंजूरी दी। नीट मुद्दे को लेकर छात्रों के प्रदर्शन के दौरान कथित पुलिस कार्रवाई के विरोध में विपक्षी सदस्यों के हंगामे के कारण दोनों सदनों की कार्रवाई कई बार बाधित हुई। इस कारण लोकसभा और राज्यसभा में

0: प्रश्नकाल नहीं चल सका। अनुपम मिश्र, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन से आज संसद भवन में स्काई रूट एयरोस्पेस के सह संस्थापक और सीईओ पवन चंद्रा ने अपनी टीम के साथ मुलाकात की। इस मुलाकात के बारे में उपराष्ट्रपति ने सोशल मीडिया पर जानकारी दी। उन्होंने बताया कि बैठक में स्काई रूट एयरोस्पेस की प्रेरणादायक यात्रा, विक्रम एक मिशन और भारत के अंतरिक्ष क्षेत्र के भविष्य को लेकर कंपनी की योजनाओं पर चर्चा हुई। पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में अशांति लगातार बढ़ रही है। मरने वाले प्रदर्शनकारियों की संख्या बढ़कर 40 हो गई है। संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार उच्चायुक्त कार्यालय ने प्रदर्शनकारियों की मौत पर चिंता व्यक्त की है। संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार उच्चायुक्त के प्रवक्ता जेरमी लॉरेंस ने कहा है कि एक नागरिक समाज संगठन को अपराधी घोषित करना और सभाओं पर कड़े प्रतिबंध लगाना, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, शांतिपूर्ण सभा और संगठन के अधिकारों के उल्लंघन के बारे में गंभीर चिंताएं पैदा करता है। ओडिशा में लगातार जारी तेज बारिश और नदियों में आए उफान ने राज्य के विशाल भूभाग को गंभीर मानवीय संकट में डाल दिया है। इस कारण 4 लोगों की मृत्यु हो गई है और हजारों लोग फंसे हुए हैं। प्रशासन ने बाढ़ की बिगड़ती और बेहद अस्थिर स्थिति के मद्देनजर बचाव और राहत कार्यों को तेज कर दिया है। ताइपे ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट में भारत के खिलाड़ियों ने शानदार शुरुआत की है। पुरुष सिंगल्स में एचएस प्रणय, थारुन मन्नेपल्ली और किरण जॉर्ज ने अपने अपने मुकाबले जीतकर दूसरे दौर में जगह बना ली है। महिला सिंगल्स में उन्नति हुड्डा, तान्या हेमंत, अनमोल खरब और तन्वी शर्मा ने भी जीत दर्ज कर अगले दौर में प्रवेश कर लिया है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: हम आकाशवाणी बांसवाड़ा के माही चैनल से बोल रहे हैं, एफएम बैंड 101.3 मेगाहर्ट्ज़ पर। इस वक्त रात के 11:05 हो चुके हैं। हमारी आज की प्रसारण सभा अब यहीं खत्म होती है। कल सुबह 5:53 पर पहली सभा की पेशकश के साथ हम आपकी खिदमत में फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए हमें इजाजत दीजिए। शब खैर, जय हिंद।